0: वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्योहार। बजरंगबली के दर्शन करने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। चारधाम यात्रियों का जोश आया, अब तक 974,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन, तो 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में लगाई हाजिरी। कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानी। सोनमर्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक। रोजगार मिलने से खिले स्थानीय लोगों के चेहरे। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू। कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर। जल जीवन मिशन ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज के गांवों के लोगों की बदली जिंदगी। नारायणपुर जिले के आखिरी गांव तक पहुंचा शुद्ध पेयजल, अब नहीं करनी पड़ती मशक्कत। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में अद्भुत प्रतिभा का दिखाया प्रदर्शन, जीता स्वर्ण।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। ये देखते हैं खास कार्यक्रम अच्छी बात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: आज हम आपको बताएंगे कैसे मां सती से पार्वती प्रकट हुई, कैसे सती से पार्वती की यात्रा हुई। रामचरितमानस का अगर आधार लें मां के प्रकट के लिए,

एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी माता, अपनी अर्धांगिनी हमारी आपकी भगवती माता सती को लेकर के गए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कौन? जो घड़े से प्रकट भय। जैसे ही गए माता सती ने पूछा, भोले बाबा कहां जा रहे? शंकर जी बोले कथा सुनने जा रहे। अच्छा एक बात बोले, कुछ लोग अपने मन से कथा में नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसन को देख करके आते, चलो भाई वो चल रहे तो हमें भी चलना चाहिए। और कुछ लोग कथा में थोड़ी आते, कथा में श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता भाई, एक होते वास्तविक श्रोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं। एक एक कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे और जैसे ही बैठेंगे तुरंत उन्हें ऐसी नींद आएगी जैसे डबल बेड डला हो, एकदम आंखें बंद लग सो रहे। और जब कथा पूरी हो जाए उन्हें, अरे यार थोड़ी और चलने देते, 5-10 मिनट और कह लेते, क्या बिगड़ जाता है? ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये सोता है, सोता। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा 250 केजी का, बहुत मोटा 250 केजी का, उसके लिए कपड़े ही अलग से बनते थे। हमारा चेला नाम चंगीलाल, प्रदेश हरियाणा। हमने कथा सुनाई और कथा सुनाई, हमारे सामने बैठता था जैसे तुम लोग बैठे, ऐसे ही बैठता था, लेकिन वो सामने बैठे हो, जैसे ही हम कथा शुरू करें तुरंत, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने बुलाया, हम कहा यू कम हेयर माई डियर, इधर आओ। जी जी जी गुरु जी, हम कहा ये बता, तुम कथा सुनते हो सोते हो? हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आंख बंद करके ध्यान में सोता हो। बोले गुरु जी सोते हैं। तो हम कहा तुम इसलिए कथा है कि तुम सो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की? हमने कहा 7 दिन की। बोले डेट नहीं बढ़ सकती? हमका मतलब? बोले 20 दिन की नहीं हो सकती? 25 दिन? हमका ठटरी के बरे, घर का काम थोड़ी है कि बैलेंस डालो मोबाइल चलाओ, कथा है 7 दिन की ही होगी, नियम है भागवत है। अरे बोले नहीं गुरुजी, अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ाओ। हमका उससे क्या होगा, क्यों डेट बढ़ाएं? बोले गुरुजी आज हमारी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल की उम्र में 20 साल से हम नींद की गोली खा रहे, 1 घंटा नींद नहीं आती और तुम्हारी कथा इतनी अद्भुत है, नींद की गोली नहीं खा रहे, नींद जा नहीं रही। बताओ कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती है? खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, नहीं नहीं ये तो हरियाणा की बात है, आप तो गुजरात के लोग हो, बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं। कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती, मेरे पागलों कथा

के बीच में पाप अकुलाते जो भीतर रहते पाप, और पाप है क्या, सबका बाप। पाप बड़ा खतरनाक है, ये कथा के बीच में ही आएगा, कथा के बीच में आएगा तो कई लोगों को फिर ऐसे ऐसे काम याद आते कथा में, अरे यार और तो सब ठीक है, उससे कर्जा लेना था। फिर कथा में तुम्हें पड़ोसी दिखेगा, पड़ोसन दिखेगी, फिर रबड़ी माल पुआ दिखेंगे, फापड़ा फेंपड़ा दिखेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज हम इतनी पूजा कर रहे, 1% भी हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पूजा लग भी रही कि नहीं लग रही। तब हमने उनसे कहा, तन से पूजा कर रहे, तन से।

वाले श्रोताओं, मेरे प्रिय पागलों, हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है, कथा में जब भी आओ, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु राम से। क्यों?

0: महाराज, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी आके बैठो। अच्छा महाराज, आप कहोगे महाराज कथा से मिलता क्या है? माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, कथा में बैठना इसलिए जरूरी है, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हें चोट कर जाए और परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल जाए। कौन सी वाणी चोट कर जाए? तो माता सती भगवान शंकर के साथ,
1: संग सती जग जननी भवानी।
0: और जैसे ही देखा तो कुंभज ऋषि अगस्त बाबा ने क्या किया?
1: पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
0: भगवान शंकर का पूजन किया। महाराज की जय हो। अब सती जी का दिमाग खराब हो गया कि हम तो श्रोता हैं, ये वक्ता है, और बताओ कितना उल्टा जमाना है, वक्ता श्रोता के पूजन करना। आप विचार करो, कथा व्यास जी किसी श्रोता के चरण धोए क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पूजन क्यों किया? क्योंकि ये जगत पिता है और कथा सुनने आए श्रोता मान करके पूजन नहीं किया कुंभज ऋषि ने, अपितु आहा, उन्होंने माना ये जगत पिता है। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया। एक बात बोले, गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भगवान कितने दयालु नहीं, कितनी भगवान ने कृपा नहीं की हम लोगों पर, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए माई बाप, हमारी प्रार्थना है कि कभी भी हो हमें अपने भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। सबरी का चरित्र पढ़ो, माता सबरी कभी परीक्षा। रामचरित मानस में दो प्रसंग है माई बाप। क्या? एक प्रसंग सूपनखा का। सूपनखा राम जी के पास परीक्षा लेने आई, परिणामतः नाक कान कट गए। हाँ जी या ना जी, कट गए ना। और हमारी सबरी माता, हमारी सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की, तो क्या हुआ? राम जी झोप

से सिद्ध हो गया, माई बाप भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुंभज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया, क्या? अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। माई बाप जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका, कथा पूरी हुई, कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले, क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा,

प्रणाम करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है, हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम है। पर सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते हैं, वो कौन है?

0: कह रहा है ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे। और प्रायः ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है। एक बार गुजरात का एक आदमी दांता में रहने वाला चंगीलाल मेला घूमने आया अंबाजी। मेले में पत्नी के साथ, पत्नी का नाम मुन्नी बहन, मुन्नी बहन के साथ चंगीलाल आया मेले में। और मेले में पत्नी गुम गई, गुम गई। अब बड़ा परेशान, रोने लगा, हे भगवान गुम गई। किसी ने कहा रो मत, बगल में राम जी का मंदिर है, वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। लोग हैं बता देते हैं उपचार, उपचार भारत में तो तुरंत मिलता है। तुरंत उसने 500 रुपए का मिठाई का डब्बा लिया, राम जी के मंदिर में पहुंच गया, हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, हे राम जी हमारी घरवाली गुम गई। सामने राम जी के मंदिर के सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, आहा, 1 किलो का मिठाई का डिब्बा, 500 का नोट। धीरे से कान के पास पहुंचे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मंदिर के पुजारी जी ने, हनुमान जी वालों ने सोचा कि ये नोट हमारे मंदिर में चढ़ जाए। क्यों रो रहे, क्या बात है? महाराज क्या बताएं, घरवाली मुन्नी बहन गुम गई। हाँ रो मत, मुन्नी बहन गुम गई, पत्नी कहां से लापता हुई, मेला से। तो पुजारी जी धीरे से बोले, गलत काउंटर पे चले गए। चंगीलाल बोला, मतलब? बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी, तुम जिनके प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। बोले उपाय क्या है? बोले,
1: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
10: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। चारधाम यात्रियों का जोश है, अब तक 9,74,000 श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन, तो 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में लगाई हाजिरी। कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की संख्या, सोनमर्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक, रोजगार मिलने से खिले स्थानीय कारोबारियों के चेहरे। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू, कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटों का सफर। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान, अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में अद्भुत प्रतिभा का दिखाया प्रदर्शन, जीता स्वर्ण पदक।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों।
10: देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्योहार। आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को होती हुई थी प्रभु श्री राम और भगवान बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता है, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक का मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी कसी कमर, अधिकारियों ने चंदरकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू, सुरंग तैयार होने के बाद घंटों की जगह मिनटों में तय हो सकेगा कश्मीर और लद्दाख की दूरी। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग, 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंतिम ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगा बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर महज 20 मिनट में। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत हो जाएगी खत्म, सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जोजिला सुरंग से सीमा क्षेत्र में सैन्य साजो सामान और रणनीतिक आवागमन को भी फायदा होगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सेना की सिख रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला को मिला शौर्य चक्र। मेजर आशीष कुमार को मिला शौर्य चक्र सम्मान। अनंतनाग में दो आतंकियों को मार गिराया था। सीआरपीएफ के सिपाही जीडी संजय तिवारी और सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को मिला शौर्य चक्र। भारतीय सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए। अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ हुआ। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर सजाए गए मंच पर गायकों ने रंग बिरंगी रोशनी के बीच फिल्मी गीतों से बांधा समा। समारोह के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने पेश की मनमोहक नृत्य। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर लोक कला और स्थानीय संस्कृति की भी अद्भुत झलक। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार नजर आए। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसर और आम लोग शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने पर्यटकों से नियमों के पालन की अपील। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है मानसून। पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है मानसून। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हो रही है मानसून की बारिश। देश के पहाड़ी राज्यों को फिर मिलेगी गर्मी से राहत। 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सभी पहाड़ी राज्यों में बारिश का अनुमान। मैदानी राज्यों में दिख सकता है नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। अगले 3 से 4 दिन में पश्चिम बंगाल पहुंच सकता है मानसून। मानसून के जून के आखिरी हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने की संभावना। कई राज्यों में पड़ रही है भीषण गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जम्मू कश्मीर का खुशनुमा मौसम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ी पर्यटकों की संख्या। साफ हवा, सुहाने मौसम और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सुहाने मौसम का आनंद लेने जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं सैलानी। बर्फ की चादर ओढ़ी पहाड़ियों की चोटियों का कर रहे हैं दीदार। भीड़ भाड़, प्रदूषण और गर्मी से दूर यहां सुकून के पल बता रहे हैं तमाम पर्यटक। सोनमर से सैलानियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग खुश। सैलानी बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने और अच्छी कमाई की उम्मीद। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। नितीश ने पैर संतुलन प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट कौशल और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए जीता स्वर्ण पदक। प्रतियोगिता में 79 देशों में 500 से ज्यादा लोग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। युवक विदेश राउत ने प्रतियोगिता में अद्भुत खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। बेटी की सफलता पर पूरे पालघर में खुशी की लहर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: क्या नवमांश कुंडली ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है? क्या नवमांश कुंडली देखे बिना गणना नहीं की जा सकती? क्या नवमांश कुंडली को देखे बिना विवाह करना भारी पड़ सकता है? क्या है नवमांश कुंडली का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: 8 baje, good news today par.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:39 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है, और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है, और गलत दशा आने पर
खराब दशा आने पर ये डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अध्यात्म पैदा कर देता है, व्यक्ति साधना की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है, कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। अवसाद के, डिप्रेशन के उपायों पर भी

अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का नाम जप करने के लिए कहें। डिप्रेशन के मामले में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, तो अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है अगर आपको, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल की दिक्कतें आ गई हैं, वो दवाइयों से बेहतर होंगी। और अगर आप साथ में उपाय भी करेंगे तो दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी, आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। डिप्रेशन की दो स्थितियां ज्योतिष में होती हैं। एक स्थिति हल्की होती है कि डिप्रेशन हुआ, समय बदला, डिप्रेशन समाप्त हो गया। और एक स्थिति ऐसी होती है कि डिप्रेशन हो गया, वो जीवन भर चलता है, उसमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज

के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
3: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। चारधाम यात्रियों का जोश आए, अब तक 9,74,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री विशाल के दर्शन, तो 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में लगाई हाजिरी। कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की संख्या, सोनमर्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक, रोजगार मिलने से स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू, कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटों का सफर। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान, अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में अद्भुत प्रतिभा का किया प्रदर्शन, जीता गोल्ड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
4: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी के साथ आज चर्चा होने वाली है नवमांश कुंडली के बारे में। नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है? पंडित जी आज आपको जानकारी देंगे कि ज्योतिष में नवमांश कुंडली होती क्या है, इसका हमारे और आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव होता है, इसके बारे में पंडित जी विस्तार से आपको समझाएंगे और उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र कौन सा है।
5: बाहर जो आप जूते चप्पल पहनते हैं उनको घर में पहनकर मत घूमिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। बाहर के जूते चप्पलों को घर के बाहर या घर के बाहरी हिस्से के किसी कोने में रखकर तब घर में प्रवेश करिए। बाहर पहने जाने वाले जूते चप्पलों को सामान्यतः घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
4: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं 9 जून 2026 मंगलवार के पंचांग के बारे में।
5: दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:39 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको जानकारी दी है कि नवमांश कुंडली के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहला प्रश्न पंडित जी से यही है कि क्या होती है नवमांश कुंडली और पंडित जी इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में।
5: जी, देखिए आम तौर पर ज्योतिष में हम ज्यादातर भविष्यवाणियां जन्म लग्न से करते हैं या लग्न कुंडली से करते हैं, लेकिन अगर आप केवल लग्न कुंडली से भविष्यवाणी करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगी, बहुत सही नहीं होगी। ज्योतिष के अध्ययन में वैसे तो जन्म लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है, मुख्य होती है, उसके साथ जन्म लग्न के साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां जुड़ी होती हैं, तो कुल मिलाकर 16 कुंडलियां हो जाती हैं। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को मिलाएं तो 16 कुंडली होंगी और इनको षोडश वर्ग कहा जाता है। इन कुंडलियों में लग्न कुंडली यानी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सप्तांश भी है, द्रेष्कांड भी है, पंचमांश भी है, बहुत सारी कुंडलियां हैं, लेकिन लग्न और नवमांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर लग्न कुंडली शरीर है तो नवमांश उसकी आत्मा है। केवल शरीर को देख करके आप जीवन का विचार नहीं कर सकते। बिना नवमांश कुंडली को देखे जन्म कुंडली पर विचार करना कभी सही परिणाम नहीं देता है। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति जान सकते हैं, वैवाहिक सुख जान सकते हैं और आपके जीवन के तमाम रहस्य कौन से हैं। जितनी बढ़िया लग्न कुंडली दिख रही है, क्या वास्तव में उतनी बढ़िया है या नहीं है, ये आप नवमांश कुंडली से जान सकते हैं।
4: चलिए, नवमांश कुंडली के महत्व के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से पूछेंगे। अब आते हैं राशिफल पर। पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या है।
5: मेष राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए नवमांश कुंडली के बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो पंडित जी अब आपसे अगला सवाल यही है कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है?
5: देखिए, लग्न कुंडली में ग्रहों की डिग्री होती है 30, भाव भी 30 अंश के होते हैं, तो मुख्यतः उनका जो नवा हिस्सा है 3 degrees 20 minutes, ये जो नवा हिस्सा है इससे एक अलग कुंडली बनाई जाती है जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं। क्या बता देती है ये? देखिए, किसी भी कुंडली का जो आधार है, कुंडली को हम समझते हैं, जानते हैं ग्रहों के माध्यम से और उनकी शक्ति के माध्यम से। बिना नवमांश को जाने हुए आप ग्रहों की क्षमता और उनकी ताकत कभी नहीं जान सकते। जैसे अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो वास्तव में वो कमजोर है, वो जीवन में औसत फल देगा, मजबूत फल नहीं देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत है लेकिन लग्न कुंडली में कमजोर है तो भी वो आपको जीवन में बेहतर फल प्रदान करेगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है तो ये आपको जीवन में बेहतरीन परिणाम जरूर देगा। इसी प्रकार अगर कोई राजयोग या कोई बुरा योग नवमांश कुंडली में बनता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। राजयोग या दुर्योग लग्न कुंडली में भी असर डालता है, लेकिन अगर नवमांश में कोई राजयोग बने या नवमांश में कोई धन योग बने या दुर्योग बने तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। नवमांश कुंडली अलग से भी देखी जाती है लग्न कुंडली के साथ मिलाए बिना। तो जब आप नवमांश कुंडली अलग से देखते हैं तो दरअसल ये विवाह के लिए देखा जाता है, और अगर विवाह पर विचार करना है या वैवाहिक जीवन को गहराई से जानना है तो आपको अलग से नवमांश कुंडली देखनी चाहिए। अगर आप अलग से नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना विवाह का निर्णय लेंगे तो विवाह का निर्णय गलत हो सकता है।
4: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब वापस आते हैं राशिफल पर। अगले 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क सिंह और कन्या वालों की।
5: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर के मामले आपके हल होंगे। कोई संपत्ति आप खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं आप सबके सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है आपका, पूछना चाहते हैं पंडित जी से, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज दीजिए, हम आपके शो आपके सवालों को इस शो में सम्मिलित करेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ पंडित जी बढ़ते हैं और जानते हैं किस दर्शक का है पहला सवाल।
5: जी, आज का पहला प्रश्न महिमा गुप्ता ने हमें लिखा है और महिमा हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1985, दोपहर में 2:40, जन्म स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है और मैं अपने पति से पिछले 1.5-2 साल से दूर रह रही हूं, तो क्या ये शादी चलेगी या इसमें सेपरेशन होने की संभावना बनती है। महिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के चल पाने की संभावना कमजोर है, विवाह चलना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत तक आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। दूसरा विवाह करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर आप दूसरी शादी भी करेंगी तो मामला वहां भी बहुत बेहतर नहीं दिखेगा। आपका करियर बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा रहे, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं अपने वैवाहिक झंझट से, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
4: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है अगला सवाल। पंडित जी,
5: जी। अगला प्रश्न प्रांजल ने हमें लिखा है और प्रांजल हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 2002, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है नोएडा। प्रांजल कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए मैनेजमेंट का क्षेत्र बेहतर होगा या मुझे किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए। प्रांजल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, और ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कोशिश करना शुरू करें तो साल 2027 के आरंभ से किसी अच्छे संस्थान से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैनेजमेंट की पढ़ाई बढ़िया है और आगे आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में बहुत अच्छा करियर बना सकेंगे, ये संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे आने वाले समय में बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
4: और चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं, और सवाल पंडित जी आपसे अब ये है कि नवमांश कुंडली का जिक्र हो रहा है, तो नवमांश कुंडली से विवाह के बारे में निर्णय कैसे लिया जा सकता है?
5: देखिए, अलग से अगर हम नवमांश कुंडली को देखें तो मुख्यतः ये विवाह के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देती है। कैसे निर्णय लें? लग्न कुंडली के साथ मिला करके नवमांश को देखें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाई देंगे। लग्न में शुक्र कैसा है और नवमांश में शुक्र की स्थिति कैसी है, इस पर विचार करिएगा। लग्न में शुक्र बहुत ही कमजोर है, लेकिन नवमांश में अगर शुक्र मजबूत हो गया है तो चीजें बेहतर हैं। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार जरूर करिए, एलिमेंट का। लग्न कुंडली में ज्यादातर ग्रह किस तत्व में बैठे हैं और नवमांश में किस तत्व में बैठे हैं, ये भी देख लीजिए। नवमांश कुंडली में ये जरूर देखिए कि 8वें स्थान की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी 12वें स्थान की स्थिति क्या है। और नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न कुंडली में तो मंगल अच्छा है, लेकिन नवमांश के 8वें स्थान में चला गया तो मंगल नकारात्मक हो गया, सतर्क रहें। लग्न और नवमांश को मिलाकर भी नवमांश को देख सकते हैं, और आप नवमांश कुंडली को अलग से इंडिपेंडेंट कुंडली मानकर भी देख सकते हैं, और लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को देख करके ही विवाह का सही निर्णय आपको लेना चाहिए। केवल लग्न कुंडली देख करके अगर आप विवाह का निर्णय लेंगे तो जो इसके रिजल्ट हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो परिणाम गलत होंगे।
4: और चलिए इसी के साथ राशिफल पर आते हुए अगली 3 राशियों का भी हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा है इनका भाग्य। तुला, वृश्चिक और धनु वालों की बारी है।
5: तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
4: चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, सवाल अगला आपसे ये है कि अगर जीवन में या ग्रहों में नवमांश कुंडली के कारण कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो आप बताएंगे?
5: देखिए, हो सकता है कि लग्न कुंडली से समस्या समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपने नवमांश को देखा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि समस्या कहां है। तो अगर नवमांश कुंडली की वजह से जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है, शादी तय नहीं हो पा रही है, तो एक मंत्र पढ़िएगा, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा, आपका विवाह शीघ्र तय होगा। अगर नवमांश कुंडली में ग्रह गड़बड़ हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, तो रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। अगर नवमांश कुंडली की वजह से कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों, तो सूर्य देव को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो नवमांश कुंडली की अशुभता कम हो जाएगी। अगर आपको नवमांश कुंडली को मजबूत करना है और जीवन में सफलताएं बढ़ानी हैं, तो देवी की उपासना करनी चाहिए, मां दुर्गा की उपासना करना बेहतर होगा। अगर आपकी नवमांश कुंडली बहुत कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें शुभता नहीं है, तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का अगर जप करें तो नवमांश कुंडली ताकतवर होगी, इसकी शुभता और पवित्रता का आपको लाभ होगा।
4: और चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की।
5: मकर राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए इसी के साथ आपके फिर से सवाल लेने का वक्त आ चला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
5: जी, अगला प्रश्न हमें दामिनी वर्मा ने लिखा है, और दामिनी जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1991, जन्म का समय सुबह के 7:55, जन्म का स्थान है लखनऊ। दामिनी कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है, और परिवार के लोग हम सब दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या मेरा दूसरा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? दामिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी दूसरी शादी होगी, लखनऊ या लखनऊ के आसपास ही होगी, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और अगर संभव हो तो सोमवार का उपवास रख करके भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा।
4: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी दर्शकों का अंतिम सवाल लेने का, पंडित जी से ही जान लेते हैं कौन से दर्शक का है पंडित जी अंतिम सवाल।
5: जी, आज का अंतिम प्रश्न जितेंद्र जी ने हमें लिखा है, और जितेंद्र जी हमें गुजरात अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1982, जन्म का समय है सुबह के 6:55, जन्म का स्थान है भोपाल। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी में परिवर्तन के 2 ऑफर आए हैं, तो क्या इस समय नौकरी में परिवर्तन करना मेरे लिए बेहतर होगा? जितेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी में परिवर्तन करने का सही समय नहीं चल रहा है। आप जिस नौकरी में हैं वहीं पर आपकी प्रगति अगले 6 महीने में अवश्य हो जाएगी, लेकिन नौकरी में परिवर्तन करने से हो सकता है बीच में आपको नौकरी छोड़नी पड़े, जो आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंडली के हिसाब से करियर में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जहां पर हैं वहीं पर बने रहिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 9 जून को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
5: जिन लोगों का जन्मदिन 9 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, साल के अंत में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
5: आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का जन्म उसी परिवार में होता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, मृत्यु के समय व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसी प्रकार का जीवन आगे मिलता है। क्योंकि मरते समय आदमी को अपने परिवार की याद बहुत आती है, बच्चों की, पति पत्नी की, माता पिता की, परिवार का ही ध्यान करता रहता है। इसीलिए ज्यादातर लोगों का अगला जन्म उसी परिवार में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम निरंतर जप किया जाए, भगवान का नाम निरंतर जपा जाए, ताकि मृत्यु के समय में परिवार की याद ना रहे, मृत्यु के समय में भगवान के नाम का स्मरण रहे। तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, नॉर्मली मृत्यु के बाद उनका जन्म अपने ही परिवार में होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के श्रद्धालु होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों का जन्म वहां होता है जहां उनको अगले जन्म में भी ईश्वर की उपासना करने का अवसर मिल सके।
4: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं 9 जून 2026 मंगलवार के शुभ के बारे में।
5: दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 जून मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में।
5: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इनकी शिक्षा सामान्यतः ठीक रहती है, एक साथ कई कोर्स कर लेते हैं या कई डिग्री इकट्ठी कर लेते हैं ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपको शिक्षा में लाभ होगा।
4: और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है वो भी आपसे जानते हैं।
5: जी अगर आप बेवजह झूठे इल्जाम में झूठे चक्कर में किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे, बेर का एक पौधा लगा सकते हैं घर के बाहर या पार्क में और रोज सुबह बेर के पौधे में जल डालिए। लाल रंग के हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाएं या लाल रंग के हनुमान जी की एक मूर्ति लगाएं, उनकी रोज पूजा करें और सुबह के समय हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो जिस तरह के मुकदमे में भी आप फंसे हैं उससे आपको मुक्ति जल्दी मिलेगी।
4: तो पंडित जी महा उपाय बताने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
5: धन्यवाद।
4: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दे जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip hop
7: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
8: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की हुई है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के सतना में लेकर चलते हैं, जहां पर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी पौराणिक स्थल की नेचुरल ब्यूटी, दो रहस्यमय गुफाएं, उनकी बनावट निश्चित ही आपको वहां जाने पर मजबूर कर देगी। इन तस्वीरों को आप तक लाए हैं एक व्लॉगर।

आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एमपी के चित्रकूट लेकर आया हूँ, जहाँ एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। इस जगह तक आपको अगर आसानी से पहुंचना है तो यूपी में आने वाले चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा रामघाट से आप यहां बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त गोदावरी रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। गुप्त गोदावरी यहां विंध्य पहाड़ों की पन्ना रेंज में एक गुप्त गुफा है जो कि गुप्त गोदावरी के नाम से मशहूर है। दरअसल ये पौराणिक नदी है, दो गुफाओं से होकर बहती है, जिनमें पहली गुफा काफी चौड़ी है। जब आप इस गुफा में एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट पर आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां मिलेंगी जो देखने में बहुत खूबसूरत है। तो दूसरी गुफा लंबी और संकरी है और आप जो यहाँ भरा हुआ पानी देख रहे हैं वो सिर्फ घुटनों तक ही है। यकीन मानिए इसमें कोई भी डूब नहीं सकता है, इसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। ये दोनों ही गुफाएं जहाँ अपनी पौराणिक और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है तो उतना ही रहस्यमय भी है। वो इसीलिए क्योंकि गोदावरी का पानी इन गुफाओं की चट्टानों से निकलकर कहां गायब हो जाता है आज तक किसी को नहीं पता चला। इसीलिए इस जगह को गुप्त गोदावरी कहते हैं। एक और अहम बात यह है कि पहली बड़ी गुफा के अंदर एक प्राकृतिक स्थान बना हुआ

0: 0340-99922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
1: सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। मुंबई के प्रणय जोशी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद अजीबोगरीब चैलेंज शेयर किया। उन्होंने चर्च गेट स्टेशन से विरार तक करीब 60 किलोमीटर का सफर लोकल ट्रेन में पानी से भरा ग्लास बिना गिराए ले जाने की चुनौती ली और जैसे ही ट्रेन आती है वो भारी भीड़ के बीच खुद को और उस गिलास को संभालते हुए डिब्बे के अंदर दाखिल होते हैं। चर्च गेट से विरार का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा प्रणय की मुश्किलें बढ़ती गईं। हर स्टेशन पर यात्री चढ़ते उतरते रहे और धक्का मुक्की तेज होती गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रणय कभी ट्रेन के कोने से सटकर खड़े होते हैं तो कभी भीड़ के बीच हाथ ऊपर करके गिलास को बचाते हैं, और जब ट्रेन विरार स्टेशन पहुंची तो जो नतीजा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। इतनी भीड़ और धक्कों के बावजूद ग्लास का पानी सुरक्षित था। प्रणय ने कैमरे के सामने थम्स अप दिखाकर अपनी जीत का जश्न मनाया।
2: बहुत अच्छे लगते और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, आप इतने अच्छे लगते हो।
1: बच्चा अपनी माँ के प्रति अपना प्यार बेहद सादगी और मासूमियत के साथ जाहिर करता है। उसकी बातों से साफ महसूस होता है कि उसके लिए उसकी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। बच्चे के चेहरे के भाव और बोलने का तरीका इतना स्वाभाविक है कि वीडियो देखने वाले लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वीडियो में बच्चे की माँ भी बेहद शांत और प्यार भरे अंदाज में उसकी बातें सुनती नजर आती है। माँ बेटे के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
2: मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को बुलाना पड़ता है, मम्मी नहीं तो खाना कोई नहीं बनाता।
1: एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है, लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आगे आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती

0: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
7: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को मर रहे हैं भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व।
8: श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में की गई मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास।
7: नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका बीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें साझा की। स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका।
8: आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू। कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी 20 मिनट में पूरा होगा, 3 घंटे का सफर।
7: कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानी की संख्या। सोनमार्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक। रोजगार मिलने से खिले स्थानीय कारोबारियों के चेहरे।
8: अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में पालघर के युवक ने जीता गोल्ड। 79 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए थे शामिल।
5: अल्ट्राटेक गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना
7: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
8: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज के मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत बड़ा मंगल के साथ होगी। देखिए आज छठा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। दिन भगवान हनुमान की उपासना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से उनकी विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आज सुबह से अयोध्या समेत देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। कैसा है वहां का नजारा, कैसे रंग है, आगे दिखाएंगे।
8: तो आपको उत्तराखंड भी लिए चलेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जून में भी इस बार यात्रा का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इसकी भी आगे विस्तार से होगी बात।
7: बिल्कुल गीतिका, देखिए मानसून जो है 12 राज्यों को कवर अप कर चुका है। हालांकि ज्यादातर राज्यों में कहीं मानसून तो कहीं पर प्री मानसून बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भले ही आज से गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन 11 जून को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दत्तक देने जा रहा है, जिससे दिल्ली वालियों को जो है राहत की उम्मीद है। और कहां कहां मिलेगी राहत आगे आपको बताएंगे।
8: तो छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से 18 महिला बाइकर्स का एक दल 12 नवापारा अभ्यारण्य पहुंचा। इस दौरान महिला बाइकर्स ने रोमांच और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम पेश करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। तो कैसे हुआ इन महिला बाइकर्स का स्वागत, ये पूरी विस्तार से आपको तस्वीरें हम आगे दिखाएंगे।
7: देखिए साथ ही साथ बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट की भी। मशीनों ने इंसानों को जिंदगी जो है अब आसान बना दिया है, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान की ही जगह ले ली है। खासतौर से अगर हम देखें तो चीन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर घरेलू कामकाज तक हर जगह ये नजारा देखने को मिल रहा है। कैसे काम करते हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
8: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया। दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ा मंगल को लेकर सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए।
7: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का दौरा किया और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और पंजीकरण से जुड़े प्रबंध की तेज कर दिए हैं।
8: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के लिए पहुंचे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 33 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 12 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
7: देश भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डल झील के खुशनुमा मौसम से लेकर पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग की सर्द वादियों तक सैलानी गर्मी से दूर जन्नत जैसे नजारों को कैद कर रहे हैं।
8: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर लोक कला और स्थानीय संस्कृति की झलक दिखी। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।
7: अहमदाबाद के ईके अरीना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के पालघर जिले के रहने वाले रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ा दिया। ये आयोजन भारत की मेजबानी में हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 102 स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
8: आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक मरीज की अवेक ब्रेन सर्जरी यानी जागते हुए दिमाग की सर्जरी की गई। इस दौरान मरीज को आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की फिल्म ओजी दिखाई गई। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यह दुर्लभ सर्जरी करते हुए महिला मरीज के दिमाग से ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला।
7: राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमा से होकर गुजर रही चंबल नदी नवजात कछुआ और घड़ियालों से पूरी तरीके से चहकुटिया। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में चंबल नदी के मुहाने पर करीब 1500 नन्हे घड़ियाल ने जन्म लिया है। साथ ही साथ करीब 2500 से 3000 बाटागुर कछुओं ने जन्म लिया है। इनकी देखभाल के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई।
8: रायपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे परिवार के साथ फिल्म देखी। फिल्म की हीरोइन कंगना रनौत भी साथ मौजूद रही। वहीं फिल्म भारत भाग्य विधाता की कहानी मुंबई आतंकी हमले में नर्स के साहस पर आधारित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म को 10 में से 10 नंबर दिए।

तो देखिए शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल ही मंगल के साथ। देखिए आज मंगलवार यानी महावीर का वार है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में मंगल बहुत शुभ अद्भुत माना जाता है। और इस साल तो अगर हम देखें तो पुरुषोत्तम मास है, ऐसे में बड़ा मंगल और ज्यादा फलदायी माना जाता है। आज छठा बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी की अपने दूत यानी हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। और यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त जो हैं रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां लगातार गूंज रही हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।

0: आज है ज्येष्ठ महीने का छठा कल्याणकारी बड़ा मंगल। बड़ा मंगल के स्वामी हैं वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। वैसे तो हर मंगलवार को हनुमान जी की अर्चना का दिन माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार का अपना अलग महत्व है। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी, और इसी दिन बजरंगबली को अमरता का आशीर्वाद भी मिला था। ऐसे में इस दिन बजरंगबली की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन संकट मोचन हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा, व्रत और सुंदरकांड का पाठ करने से भय, रोग और सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के अलग अलग विधान हैं, लेकिन अगर आप घर पर बड़ा मंगल बनाना चाहते हैं तो ये सरल विधि अपना सकते हैं। स्नान करके पूजा स्थान साफ करें, भगवान हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, परंपरा अनुसार सिंदूर, फूल, प्रसाद या फल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शक्ति, संरक्षण, साहस और सही कर्म की प्रार्थना करें, किसी व्यक्ति को भोजन पानी और सहायता देकर सेवा करें। छठा बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम यानी ज्येष्ठ मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है, इसलिए बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ बताया जा रहा है। बड़े मंगल के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और राम नाम का जाप करें। इस उपाय से ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये उपाय विशेष फलदायी होता है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी राम भक्त हैं और जो श्रीहरि का अवतार हैं, इसलिए इस मास में उनके आराधना से श्री हरि और हनुमान जी की दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। अधिक मास का बड़ा मंगल भगवान हनुमान की उपासना के लिए तो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अधिक मास में पड़ने वाला यह बड़ा मंगल हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने, बाधाओं को दूर करने और जीवन में तरक्की लाने का बेहतरीन अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और उपाय जल्दी असर दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और आज ज्येष्ठ माह का वैभव छठा बड़ा मंगल है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर के लिए जो है वहां पहुंच चुकी हैं, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मयंक जुड़ रहे हैं अयोध्या से, और हमारे साथ पंकज जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। तो चलिए पहले रुक करते हैं मयंक का। मयंक, सुबह से ही भक्त जो है मंदिर के लिए पहुंच चुके हैं और गर्मी भी जो है वो अपने चरम पर है, और लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में क्या भक्तों की आस्था में कोई कमी आपको दिख रही है?
2: जी बिल्कुल नहीं, भक्तों की आस्था में कोई कमी आपको दिख रही है, क्योंकि आज जो भीड़ है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। जैसे जैसे बड़ा बड़ा मंगल जो है जो खत्म हो रहा है, वैसे वैसे जो जैसे जैसे, क्योंकि आठ मंगल टोटल है और आज छठा मंगल है, और उसको देखते हुए आप लोगों को श्रद्धालु है यहाँ पे वो लगातार जो है हनुमान गढ़ी पे यहाँ पे जो भीड़ है वो उसका मजा ले रहे हैं, और गर्मी का भी खास मजा लेते हुए आप जो है दर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। जो लाइन है, लाइन की आप इसलिए देखते हैं क्योंकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल के लिए बीच में सारी व्यवस्थाएं की गई है। जगह जगह नगर निगम से पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, भंडारे चल रहे हैं। तो लगातार जो मंगलवार है, बड़ा मंगल है, उसको लेकर चारों तरफ पूरी अयोध्या में जो है वो भीड़ नजर आ रही है, और काफी ज्यादा संख्या में आज लोग ज्यादा है यहाँ पे, और साथ में बजरंगबली का दर्शन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो पूरी आज अयोध्या जो है पूरी श्रद्धालु से भरी नजर आ रही है, और सारी व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे की गई है। सुरक्षा की चाहे हम बात करें,
3: बिल्कुल
2: पानी की बात, गर्मी भी
3: विकराल है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए। पंकज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, वहां किस प्रकार का नजारा दिखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि नए भोग भी चढ़ाए जा रहे हैं, कहते हैं कि सिंदूर, चमेली का तेल, साथ ही साथ लड्डू भी तमाम चढ़ाए जा रहे हैं।
4: बिल्कुल, संगम से लेकर हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लगी हुई है, और आज विशेष प्रचार किया गया है लीची का, लीची मेले से भजन बली का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है, और सभी भक्त यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चमेली का तेल लगा रहे हैं और लड्डू और तुलसी का भोग लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ सुबह से लगी हुई है। देश भर में छठवां मंगल है, छठवें मंगल के पास श्रद्धालुओं देखने में उमड़ी हुई है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ उनको श्रद्धालुओं को छावनी लगा दी गई और नीचे कालीन बिछाई गई ताकि पैर ना जले। हालांकि गर्मी है, सुबह का मौसम था, बारिश हुई थी, इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार है, करीब 1 किलोमीटर से ही लंबी लाइन है। और यहाँ पर श्रद्धालु हमारे यहाँ पूछ सकते हैं जितनी भीड़ आप सुबह से कभी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। लोग लड्डू का भोग चला रहे हैं, माला चला रहे हैं और विशेष आज पूजा आज की गई है और आज लीची का भोग बजरंगबली को लगाया गया है।
1: जी बिल्कुल पंकज, तस्वीरें हम देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से लोग सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं और अलग अलग तरह के भोग हनुमान जी को चढ़ा रहे हैं। सबकी अपनी श्रद्धा है। और एक बार फिर से चलिए चलते हैं मयंक के पास। मयंक, गर्मी बहुत है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप भी मतलब लगातार पसीना बह रहा है और लेकिन वही आस्था जो है लोगों में वो बरकरार है। सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हैं भक्त दर्शन के लिए, जगह जगह भंडारे की व्यवस्था भी होगी और मंदिर में भी खासतौर पर भंडारा जो है वो किया जाता है बड़े मंगल पर।
2: जी बिल्कुल, यहाँ जगह जगह भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं, अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे पंडाल लगे हैं, हनुमानगढ़ी की तरफ से भंडारे हो रहे हैं और ये जो भक्ति पथ, राम पथ, दर्शन पथ, जितने पथ है वो सारे पथ आज जो है सिर्फ श्रद्धालुओं से भरे नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से गर्मी काफी ज्यादा है और लोग लाइनों में खड़े काफी देर से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ काफी देर से आप लोग खड़े हैं दर्शन करने के लिए? गर्मी भी ज्यादा है, क्या मांग रहे हैं आज बजरंगबली से? तो देखिए, लोगों की श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी नहीं नजर आ रही है, लोगों के चेहरे पे जो है हंसी खुशी भी नजर आ रही है, लेकिन गर्मी विकराल है और आस्था उस पर भारी है। और काफी छोटे छोटे बच्चे भी, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी साथ में है। और ये हंस में कहाँ से आ रहे बेटा, आप लोग क्या लेके आ रहे हैं बजरंगबली के आज के लिए? हो गर्मी ज्यादा है तो देखिये
3: प्रसन्न करने की जो कोशिश है मयंक वो लगातार जारी है और हर बार देखने को मिलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ेंगे आपके साथ फिर से। देखिए अयोध्या का हनुमानगढ़ी वो धाम है जहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है। बड़ा मंगल पर भक्तों की भीड़ यहां उमड़ी है। आज के दिन कई भक्तों की योजना होती है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए जाए। ऐसे में हनुमानगढ़ी में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए तस्वीरें कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो भक्त हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए हनुमान जी के पहुंचते हैं और भोग प्रसाद चढ़ाने का प्रयास करते हैं।
5: मैं सरयू स्नान करके यहाँ 2:30 बजे से बड़े मंगलवार के उपलक्ष में आके लाइन में लगा हूँ, जो कि 2 घंटे बाद मुझे प्रभु के अपने संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। और जो भी दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हमने अपने प्रभु से कामना किया कि सबका, समाज का, पूरे विश्व का कल्याण हो।
6: इतनी भीड़ है, हम लोगों ने पहली बार इतनी भीड़ देखी है। यहाँ पे दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने स्नान की है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ महिमा देख के हम लोग बिल्कुल अपने जन्मों जन्मों के हम लोग उद्धार हो गए हैं।
7: 2 घंटे तक ही हम लोग लगे रहे, उसके बाद में हम लोग को दर्शन हुए, पर भीड़ बढ़ती ही गई और जो नारे थे उसकी वजह से हम लोग वहाँ पर खड़े रहे। और फिर जब भगवान जी के दर्शन किए तो सारी थकावट दूर हो गई और अब बस यही मन करता कि हमेशा ऐसे ही आते रहे यहाँ पे और बस यही एनर्जी आती रहती है, भगवान जी पर आस्था ऐसे बढ़ती रहती है हम लोगों की।
1: अयोध्या में सुबह से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंचते हैं और आज बड़े मंगल का छठा बड़ा मंगल है। और आप देखिए अयोध्या में भक्तों का किस तरह से तांता लगा हुआ है। भले ही गर्मी है लेकिन भक्तों की आस्था पर इसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। आस्था भरपूर है और भक्त सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं।
3: और देखिए प्रयागराज के संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़े मंगल पर लीची और केले से बजरंगबली का श्रृंगार किया जा रहा है। भक्त यहां आकर बजरंगबली से अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
7: दो घंटे तक ही हम लोग लगे रहे, उसके बाद में
8: जैसे हम बड़ा मंगलवार कहते हैं, तो उसमें मैं यही कामना करूंगी कि हमारे देश में शांति रहे, हमारे परिवार में शांति रहे, सब स्वस्थ रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो।
9: यहाँ आज छठवां बड़ा मंगलवार है, इस बार आठ बड़ा मंगलवार पड़ा हुआ है। बड़े हनुमान जी महाराज के यहाँ लोग आकर के भोजन प्रसाद और शरबत का वितरण कर रहे हैं।
8: ये जो मनमास का छठवां मंगलवार,
1: तो देखिए ज्येष्ठ माह का छठा बड़ा मंगल है और भक्तों का जो सैलाब है सुबह से ही मंदिरों में लगा हुआ है और हमारे साथ हमारे दो सहयोग भी लगातार बने हुए हैं। तो चलिए अब पंकज का रुख करते हैं और चलते हैं सीधा प्रयागराज। पंकज, जैसा कि मंदिरों में फूलों से तो मंदिर का श्रृंगार किया ही जाता है, लेकिन जो मौसमी फल होते हैं उनसे भी भगवान का जो है श्रृंगार किया जाता है, जैसे आम है इस बार मौसमी फल में, लीची है, तो हनुमान जी का श्रृंगार आज किस तरीके से किया गया है?
10: पहले उन्होंने मंदिर प्रशासन ने आम से श्रृंगार किया, तमाम तरीके से मौसमी फल से यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है और भक्त सुबह से गंगा स्नान करने आए, उसके बाद यहाँ पर भजन दर्शन किए, भजन यहाँ पर लेडी अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं, तो एक अजब सा अलग सा एहसास होता है कि बजरंग बली के दर्शन करके।
3: बिल्कुल पंकज, यही मौसमी फल का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। मयंक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, आपसे समझने की कोशिश करूंगा किस प्रकार की मनोकामनाएं लेकर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग के सबसे ज्यादा प्रिय भगवान होते हैं हनुमान जी, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक।
2: जी बिल्कुल, मनोकामना तो इनके चेहरे पे नजर आ रही है क्योंकि गर्मी के ऊपर जो है आस्था भारी लग रही है। और आप अभी इनसे हम बात भी करेंगे, क्या मनोकामना लेके आए बजरंग बली के पास? कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से। तो प्रयागराज से आप अयोध्या है, प्रयागराज में भी हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी, और यहाँ बजरंग बली
11: प्रयागराज से मेरा घर है, मतनगर से आया।
2: कैसे देख रही है गर्मी आप आई है? देखिए काफी काफी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे हैं, लोगों के मुस्कान भी है चेहरे पे। आप कहाँ से आ रहे हैं?
11: गोरखपुर।
2: गोरखपुर, आप कितने दिन यहाँ पे, क्या लेके जा रहे हैं बजरंग बली के आज? लड्डू, लड्डू प्रिय है उनको। तो देखिए आप देख रहे हैं सर, कितनी गर्मी है उस पे ही लोगों की चेहरे पे मुस्कान है, और बजरंग बली के लिए बेसन के लड्डू लेके आए हैं, चढ़ा रहे हैं, और उनसे अपनी उनसे कुछ मांग भी है बजरंग बली से, लेकिन उनका आशीर्वाद यहाँ पे लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या का राजा है बजरंग बली। और जो भीड़ है, भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ की कमी नहीं है, और पूरी रो आप पूरी सीढ़ियां जो उसकी देखेंगे बजरंग बली के द्वार की, जो है पूरा द्वार द्वार भरा हुआ है, क्योंकि राम द्वार है तुम रखवाले, तो ये राम जी के रखवाले हैं और राम जी के द्वार पे बैठते हैं, और पूरी आज रो है जो जो तीनों रो है आज पूरी भरी हुई देखने।
1: बिल्कुल मयंक, तस्वीरें हम देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों का हुजूम जो है वो मंदिरों में पहुंचा हुआ है और तमाम मनोकामनाएं जो है वो लेकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। धन्यवाद मयंक आपका बहुत बहुत तमाम तस्वीरों के लिए, धन्यवाद पंकज आपका भी तमाम तस्वीरें में दिखाने के लिए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए सफर पर 18 महिला बाइकर्स।
12: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
13: कब व्यक्ति को अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाता है, चंद्रमा की डिप्रेशन में क्या भूमिका है, बुध किस तरह डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है, और डिप्रेशन से बचने के उपाय क्या हैं, क्या है डिप्रेशन का ज्योतिषीय रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: Right field, and it will...
14: From the first pitch of the season to the stretch run.
15: And that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व।
21: श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में की गई मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास।
3: नासा के अंतरिक्ष यात्री जैसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें साझा की, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जैसिका।
21: आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू, कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर।
3: कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की संख्या, सोनमर्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक, रोजगार मिलने से खिले स्थानीय कारोबारियों के चेहरे।
21: अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में पालघर के युवक ने जीता गोल्ड, 79 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए शामिल।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
21: खबर के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और अब बात जोजिला टनल की कर लेते हैं। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल होगा, इससे कश्मीर से लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, 3 घंटे का यह सफर 20 मिनट में तय होगा, यानी भारत की रणनीतिक जोजिला सुरंग परियोजना अब अपने मुकाम पर पहुंच गई है। आज टनल के अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टानी दीवार भी टूट जाएगी, आज उसमें अंतिम और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ब्लास्ट होने जा रहा है। नितिन गडकरी खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर करेंगे, आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे। यह सुरंग करीब 14 किलोमीटर लंबी होगी।
3: चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से 18 महिला बाइकर्स का एक दल जो है बारन पावारा अभ्यारण पहुंचा और इस दौरान महिला बाइकर्स ने रोमांच और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम पेश करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया।
0: अठारह महिला बाइकर्स और सफर छत्तीसगढ़ के रायपुर से बारनवा पारा अभ्यारण्य तक। मकसद इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, सुरक्षित यातायात के लिए लोगों में जागरूकता लाना। बारनवा पारा अभ्यारण्य की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच जब इन 18 महिला बाइकर्स का काफिला पहुंचा तो पर्यटकों और स्थानीय लोगों का उत्साह देखने लायक था। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से निकाली गई इस छोटी सी बाइक रैली में शामिल होने राज्य के अलग अलग शहरों से लड़कियां पहुंची थीं। सबने अभयारण्य की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर को करीब से देखा।
4: हमारा उद्देश्य ये है कि हम छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को अच्छे से प्रमोट कर पाएं, बाइकिंग के लिए गर्ल्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएं, महिला सशक्तिकरण भी एक हमारा मेन मोटो है और आगे चल के हम छत्तीसगढ़ को पूरे नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर पाएं, बाइकिंग में, टूरिस्ट में, हर चीज में यही हमारा मोटो हम लेके चल रहे हैं।
0: यात्रा के दौरान महिला बाइकर्स लोगों को हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। उनके इस पहल को स्थानीय लोगों और वन विभाग के अधिकारियों ने भी सराहा। उनके मुताबिक इससे समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचता है।
22: 20 लोगों की महिला बाइक राइडर्स की टीम हमारे मोहदा रिसोर्ट में आई हुई थी और इनका पर्पस है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि महिलाएं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आगे बढ़े, क्योंकि आज के समय में महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं। तो इसके माध्यम से ये हमारे टूरिज्म के पास ये मौका था कि हम महिलाओं का समर्थन करें इनके इस अच्छे काम के लिए, और हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने विजन के साथ साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ पर्यटन के भी सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाएं।
0: रोमांच, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के संदेश के साथ वारनवा पारा अभ्यारण्य पहुंची इन महिला बाइकर्स ने यह साबित कर दिया कि जागरूकता का संदेश भी साहस और उत्साह के साथ प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से दीपेंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

तो इंदौर में आज से ब्रिक्स महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। करीब 20 देशों के प्रतिनिधि ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, इंदौर पहुंच चुके हैं। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। इससे एक दिन पहले सभी विदेशी मेहमान इंदौर के मशहूर स्ट्रीट फूड हब 56 दुकान पहुंचे और एक से बढ़कर एक जायके का लुत्फ उठाते नजर आए। यहां पर सुबह से लेकर देर रात तक पोहा जलेबी से लेकर ग्लोबल फूड आइटम्स तक सब एक ही जगह मिल जाता है।

0: यूं तो इंदौर के मशहूर स्ट्रीट फूड हब 56 दुकान पर ये नजारा आम होता है। स्वाद से भरी ये गली हर दिन स्वाद के शौकीनों से गुलजार होती है, लेकिन सोमवार को यहाँ का नजारा कुछ खास था। यहाँ विजिट करने वाले मेहमान खास थे, लिहाजा पूरे फूड जोन और सेल्फी पॉइंट को आकर्षक फूलों से सजाया संवारा गया था। इस साल इंदौर ब्रिक्स महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है। 20 देशों के प्रतिनिधि 16वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंच चुके हैं। आज से 13 जून तक ये सम्मेलन चलेगा, लेकिन उससे पहले सोमवार को विदेशी प्रतिनिधियों के दल ने इंदौर के मशहूर स्ट्रीट फूड हब 56 दुकान का दौरा किया। विदेशी मेहमानों का स्वागत बेहद खास और पारंपरिक भारतीय अंदाज में किया गया। मेहमानों के मनोरंजन के लिए कलाकारों ने लाइव वायलिन और बांसुरी वादन की प्रस्तुति दी।
1: ब्रिक्स एग्रीकल्चर समिट जो है तो वो यहाँ अगले 5 दिन संचालित होगी, और इसी तारतम्य में जो कुछ डेलीगेट्स ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके थे उनमें से कुछ लोग यहाँ आए हैं 56 दुकान पे। तो हमारा सबका सोचना था कि जब इंदौर इतने दूर से मेहमान आए हैं तो इनको इंदौर का जो व्यंजन है, जो रंग है, जो चहल पहल है वो दिखाई जाए, तो उसी के लिए ये व्यवस्थाएँ यहाँ रखी गई थी। और सभी ने बहुत इंजॉय किया है, यहाँ के व्यंजन खा के उनको बड़ा अच्छा लगा है।
0: सुरीले संगीत के बाद बारी आई लजीज स्वाद की। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, इंडोनेशिया समेत 20 देशों के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक इंदौरी व्यंजनों का स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर से राउंड टेबल पर शुद्ध शाकाहारी और पारंपरिक व्यंजनों की थाली सजाई गई थी, जिसका सभी मेहमानों ने भरपूर लुत्फ उठाया। खोपरा पेटीज को मेहमानों ने खूब चाव से खाया। नारियल, उबले आलू और खास मसालों से बने इस पारंपरिक इंदौरी स्नैक का अनूठा मीठा तीखा स्वाद सबसे ज्यादा पसंद आया। कद्दूकस किए हुए मक्के और दूध से बने स्थानीय व्यंजन भुट्टे का केस का स्वाद मेहमानों के लिए बिल्कुल नया और लाजवाब था। हल्की और चटपटी साबुदाना खिचड़ी का भी विदेशी प्रतिनिधियों ने लुत्फ उठाया। इंदौर के सिग्नेचर नाश्ते पोहा और खस्ता मटर कचौड़ी के तीखे चटपटे स्वाद को भी मेहमानों ने चखा। मालवी मसालों और दही के कॉम्बिनेशन वाले दही बड़े का स्वाद भी खूब सराहा गया। तीखे और चटपटे स्वादों के बाद मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए पारंपरिक रबड़ी और मिठाइयां परोसी गईं। भोजन के अंत में भारतीय परंपरा के मुताबिक सभी मेहमानों को स्पेशल पान खिलाकर आतिथ्य सत्कार पूरा किया गया।
2: एक ही प्लेट में अलग अलग स्वादों का मिश्रण मुझे खूब पसंद आया, खास तौर पर मीठे और खट्टे का जायका मुझे अच्छा लगा। मैंने भारतीय व्यंजन का खूब एंजॉय किया, ये बहुत बढ़िया था। ये काफी हल्का था लेकिन उतना ही जायकेदार। ज्यादातर विदेशी लोगों को भारतीय व्यंजन के बारे में नहीं पता, लेकिन सब कुछ बेहद शानदार था।
0: ब्रिक्स सम्मेलन के बाद सभी विदेशी प्रतिनिधि अपने अपने देश को लौट जाएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जायके और यहाँ के मेहमान नवाजी उन्हें ताउम्र याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की हुई है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के सतना में लेकर चलते हैं, जहां पर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी पौराणिक स्थल के नेचुरल ब्यूटी, दो रहस्यमय गुफाएं दिखाते हैं आपको। चलिए,

0: आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एमपी के चित्रकूट लेकर आया हूँ, जहाँ एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। इस जगह तक आपको अगर आसानी से पहुंचना है तो यूपी में आने वाले चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा रामघाट से आप यहां बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त गोदावरी रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। गुप्त गोदावरी यहां विंध्य पहाड़ों की पन्ना रेंज में एक गुप्त गुफा है जो कि गुप्त गोदावरी के नाम से मशहूर है। दरअसल ये पौराणिक नदी है, दो गुफाओं से होकर बहती है, जिनमें पहली गुफा काफी चौड़ी है। जब आप इस गुफा में एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट पर आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां मिलेंगी जो देखने में बहुत खूबसूरत है। तो दूसरी गुफा लंबी और संकरी है और आप जो यहाँ भरा हुआ पानी देख रहे हैं वो सिर्फ घुटनों तक ही है, लेकिन मानिए इसमें कोई भी डूब नहीं सकता है, इसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। ये दोनों ही गुफाएं जहाँ अपनी पौराणिक और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है तो उतना ही रहस्यमय भी है। वो इसीलिए क्योंकि गोदावरी का पानी इन गुफाओं की चट्टानों से निकलकर कहां गायब हो जाता है आज तक किसी को नहीं पता चला। इसीलिए इस जगह को गुप्त गोदावरी कहते हैं। एक और अहम बात यह है कि पहली बड़ी गुफा के अंदर एक प्राकृतिक स्थान बना हुआ है जिसे राम दरबार कहते हैं। यहां पत्थर के आसन बने हुए हैं, शायद हो सकता है कि पौराणिक समय में लोग इस पर बैठते रहे हों, बैठकर पूजा करते रहे हों या तपस्या करते रहे हों। इस गुफा की एक और कहानी है। कहा जाता है कि रामायण के समय में श्री राम जब वनवास गए थे तब उन्होंने इसी गुफा में कुछ समय बिताया था। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो जुलाई से मार्च का महीना सबसे बेहतर होता है गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए। यकीन मानिए यहाँ आपको सुबह से लेकर शाम तक इस आध्यात्मिक पर्यटन का एक अलौकिक आनंद ही मिलेगा।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: देखिए, इस पर कोई शक नहीं है कि मशीनों ने इंसानों की जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो इंसान की ही जगह ले ली है। खासतौर से अगर हम देखें तो चीन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर घरेलू कामकाज तक हर जगह ये नजर आ रहे हैं।

0: ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर रोजमर्रा के कामों तक हर काम में आपका साथ देगा रोबोट। चाहे गेस्ट अटेंड करना हो, कॉफी बनाना हो, घरेलू कामकाज हो, डांस हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये हर काम में माहिर है और आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार। तभी तो चीन ने अपने देश में इन्हें हर मोर्चे पर उतार दिया है। ये है ह्यूमनॉइड रोबोट HJ985 रोबोट हांगसू, जिसे झेजियांग प्रांत में एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सड़क पर तैनात किया गया है, ताकि वो ट्रैफिक मैनेज कर सके और देखिए वो इस काम को कितनी खूबसूरती से निभा भी रहा है। इसे मालूम है कब रुकने का इशारा करना है, कब चलने का। ये न सिर्फ इशारों में अपनी बात कहता है, बल्कि अपनी आवाज से भी लोगों को चौंकाता है। HJ985 रोबोट हांगसू को पता है कि वो एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तैनात है। ऐसे में वो जहां एक और लोगों से बेवजह हॉर्न ना बजाने और परीक्षार्थियों को रास्ता देने की अपील कर रहा है, वहीं स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए शुभकामना देता भी नजर आए। AI और वीडियो बेस्ड इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से तैयार ये ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्त की तरह काम आ रहे हैं, जो बिना थके काम कर सकता है और आपात परिस्थितियों में उनसे तालमेल बिठाकर काम आसान कर सकता है। वहीं चीन के वुहान में तो ह्यूमनॉइड रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई इसका दीवाना है। काम जो आसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और 26 जून को अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज होने जा रही है, लेकिन अक्षय अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में इन दिनों खास बिजी हैं। डायरेक्टर अनीस बज्मी की इस अनाम फिल्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई में हो रही है, जहां सेट से लीक अक्षय कुमार का क्लीन शेव लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले फिल्म की केरलम की खूबसूरत वादियों में शूटिंग के दौरान भी विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ उनकी तस्वीर सुर्खियों बटोर रही थी।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अक्षय कुमार क्लीन शेव लुक में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकड्रॉप में बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग नजर आ रही है। बिल्डिंग के सामने सड़क पर अक्षय कुमार एक पुलिस वैन पर क्लीन शेव और ब्लू कलर की शर्ट पहने काफी यंग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनीस बज्मी की फिल्म का सेट है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल प्ले कर रहे हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी बने हैं। फिलहाल फिल्म का नाम तय नहीं है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये शूटिंग कहाँ हो रही है। डायरेक्टर अनीस बज्मी के मुताबिक इस फिल्म का 80% हिस्सा मुंबई में अलग अलग स्टूडियो और सेट्स पर शूट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा माना जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही किसी जगह पर हो रही होगी। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत भी 19 जनवरी को मुंबई से ही हुई थी। इससे पहले अक्षय कुमार की शूटिंग का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जब वो फिल्म की लीडिंग लेडीज विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ केरला में शूटिंग करने पहुंचे थे। मई के महीने में टीम ने एक बड़ा आउटडोर शेड्यूल केरलम के खूबसूरत वादियों में की थी। केरलम के हिल स्टेशन मुन्नार और उसके पास मौजूद मरायूर की वादियों में शूटिंग पूरी की गई थी। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के डायरेक्शन में यहां फिल्म का एक भव्य होली सॉन्ग भी फिल्माया गया। शूटिंग पूरी होने पर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें केरलम के पारंपरिक नृत्य कथकली, थेयम और मोहिनीअट्टम के कलाकार भी नजर आ रहे थे। केरलम से लौटने के बाद फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग अब मुंबई में ही पूरी की जा रही है। अक्षय कुमार का वायरल हो रहा क्लीन शेव लुक इसी शूटिंग का हिस्सा है। अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी भूल भुलैया और मिशन मंगल जैसे सुपरहिट फिल्मों के बाद वापसी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में विद्या बालन का किरदार बेहद मजबूत, मजेदार और उनके पिछले किरदारों से काफी अलग होने वाला है, जिसमें उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलेगी। वहीं राशि खन्ना अक्षय कुमार के एक्स गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अक्षय कुमार और उनके ऑन स्क्रीन बेटे के बीच की बॉन्डिंग और सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म की USP साबित हो सकती है। अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज्मी की जोड़ी इस फिल्म के जरिए 15 साल बाद कमबैक कर रही है। दोनों ने इसके पहले 2011 में आई फिल्म थैंक यू में साथ काम किया था। इस फिल्म को साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर दिलराजू प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म इसी साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इंस्टास्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए शिखर धवन की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: शर्म नहीं आती रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो
4: तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं।
5: आप कुछ बोलेंगे भाई साहब?
6: दो चाय बोली थी अभी तक आई नहीं।
7: तुम्हारी चाय ना बनी अभी तक?
5: पूरा खानदानी है।
1: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
2: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: अच्छी खबर सच्ची खबर
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: हमसे सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल की गई, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास। नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें कैद की, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का होगा ब्रेक थ्रू, कश्मीर से लद्दाख के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटों का सफर। कई राज्यों में गर्मी के बीच पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की आमद, सोनमर्ग में सुहाने मौसम, खूबसूरत वादियों में सुकून के पल बिता रहे हैं पर्यटक, रोजगार मिलने से खिले स्थानीय कारोबारियों के चेहरे। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में पाल घर के युवक ने जीता गोल्ड, 79 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए थे शामिल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अवसाद की यानी डिप्रेशन की। किन ग्रहों की वजह से जीवन में मानसिक अवसाद पैदा होता है, कौन से ग्रह जीवन में आपको डिप्रेशन देते हैं और ज्योतिष के अनुसार डिप्रेशन से निकलने के रास्ते क्या हैं? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:39 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से जीवन में डिप्रेशन होता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और डिप्रेशन में अवसाद में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। बुध आपके बुद्धि का, आपके सोचने समझने का मालिक है और ये आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है। बुध डिप्रेशन का रेगुलेटर है। चंद्रमा अगर काफी कमजोर हो या चंद्रमा अगर काफी दूषित हो तो जीवन में डिप्रेशन यानी अवसाद होता है और चंद्रमा को बहुत ज्यादा कमजोर करते हैं या दूषित करते हैं शनि, राहु और सूर्य। शनि, राहु या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े तो इनके प्रभाव से व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। यानी अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का एक्सिस हो
चंद्रमा पर शनि का प्रभाव हो या चंद्र पर सूर्य का प्रभाव हो तो डिप्रेशन की जबरदस्त संभावना बनती है और गलत दशा आने पर, खराब दशा आने पर ये डिप्रेशन निकल करके सामने आ जाता है। अवसाद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले हल होंगे, संपत्ति खरीद सकेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होती है जब व्यक्ति को अवसाद होता है या डिप्रेशन होता है। देखिए, शनि या राहु अगर चंद्रमा को प्रभावित करें तो अवसाद की स्थिति बन जाती है, डिप्रेशन होता ही है। शनि वाला जो डिप्रेशन है ये कभी कभी अध्यात्म पैदा कर देता है, व्यक्ति साधना की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला जाता है। राहु वाला जो डिप्रेशन है ये कल्पना की बीमारियां पैदा करता है, कुछ ना हो तब भी व्यक्ति काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक बीमारियां पैदा कर लेता है। चंद्रमा अगर कुंडली में अस्त हो जाए तो भी अवसाद की, डिप्रेशन की संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना रहती है। अगर चंद्रमा खराब है और बुध आपका ठीक है तो व्यक्ति अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। लेकिन अगर चंद्रमा भी गड़बड़ है और बुध भी गड़बड़ है तो अवसाद से निकल पाना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति बहुत शुभ है और चंद्रमा को थोड़ा भी प्रभावित कर देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकल आता है।
अवसाद के डिप्रेशन के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन के खर्चों पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, संयम से काम लें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।

कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ज्योतिष के हिसाब से आपको अवसाद से, डिप्रेशन से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए, किसी मनोचिकित्सक से मिलिए, उससे और जल्दी फायदा होगा उपायों के साथ। डिप्रेशन दूर करने में, अवसाद दूर करने में आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी हैं। आसन करने से, प्राणायाम करने से डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो भी लाभ होगा। अंधकार में मत रहें, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा। दिन भर में एक केला जरूर खाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। डिप्रेशन के मामले में सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना डिप्रेशन के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। सामान्य स्थितियों में सलाह लेकर पन्ना पहनना बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको जबरदस्त डिप्रेशन रहता हो, आप अवसाद से गुजर रहे हो, तो डिप्रेशन की अवस्था में मोती नहीं पहननी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

मिलेगी, धन का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा।

बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, डिप्रेशन हो जाने की संभावना कुंडली में आप शुरुआत से देख सकते हैं। अगर किसी कुंडली में डिप्रेशन होने की संभावना शुरुआत से दिख रही है तो उस व्यक्ति को शुरुआत से बुध या बृहस्पति का रत्न पहनाएं। उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल वर्क करने के लिए कहें और नियमित रूप से भगवान का नाम जप करने के लिए कहें। डिप्रेशन के मामले में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, तो अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है, पवित्र आहार ग्रहण करता है, तो डिप्रेशन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाता है अगर आपको, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसमें शर्माने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग के न्यूरॉन्स में जो प्रॉब्लम है, जो केमिकल की दिक्कतें आ गई हैं, वो दवाइयों से बेहतर होंगी। और अगर आप साथ में उपाय भी करेंगे तो दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी, आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। डिप्रेशन की दो स्थितियां ज्योतिष में होती हैं। एक स्थिति हल्की होती है कि डिप्रेशन हुआ, समय बदला, डिप्रेशन समाप्त हो गया। और एक स्थिति ऐसी होती है कि डिप्रेशन हो गया, वो जीवन भर चलता है, उसमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं और उपाय करने पड़ते हैं। तो आपका डिप्रेशन किस लेवल का है उसको समझ करके उसके हिसाब से उपाय करेंगे या उसके हिसाब से अगर दवाइयां खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आज हमने बात की अवसाद की, डिप्रेशन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाता हो तो एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जून दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

आज हम आपको बताएंगे कैसे मां सती से पार्वती प्रकट रही, कैसे सती से पार्वती की यात्रा हुई। रामचरितमानस का अगर आधार लें मां के प्रकट के लिए,

एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी माता, अपनी अर्धांगिनी, हमारी आपकी भगवती माता सती को लेकर के गए। कहां? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कौन? जो घड़े से प्रकट भए। जैसे ही गए, माता सती ने पूछा, भोले बाबा कहां जा रहे? शंकर जी बोले, कथा सुनने जा रहे। अच्छा एक बात बोले, कुछ लोग अपने मन से कथा में नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसन को देख करके आते, चलो भाई वो चल रहे तो हमें भी चलना चाहिए। और कुछ लोग कथा में थोड़ी आते, कथा में श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता, भाई एक होते वास्तविक श्रोता। चार प्रकार के श्रोता होते हैं, एक एक कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे, और जैसे ही बैठेंगे तुरंत उन्हें ऐसी नींद आएगी जैसे डबल बेड डला हो, एकदम आंखें बंद लग सो रहे। और जब कथा पूरी हो जाए, उन्हें यार थोड़ी और चलने देते, 5-10 मिनट और कह देते, क्या बिगड़ जाता है? ये कौन है? ये श्रोता नहीं है, ये सोता है, सोता। एक हमारा चेला था हरियाणा में, भारी मोटा, 250 केजी का, बहुत मोटा, 250 केजी का, उसके लिए कपड़े ही अलग से बनते थे। हमारा चेला, नाम चंगीलाल, प्रदेश हरियाणा। हमने कथा सुनाई, और कथा सुनाई हमारे सामने बैठता था, जैसे तुम लोग बैठे, ऐसे ही बैठता था, लेकिन वो सामने बैठे हो, जैसे ही हम कथा शुरू करें तुरंत, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। चौथे दिन हमने बुलाया, हम कहा यू कम हेयर माई डियर, इधर आओ। जी जी जी गुरु जी, हम कहा ये बता, तुम कथा सुनते हो सोते हो? हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आंख बंद करके ध्यान में सोता हो। बोले गुरु जी सोते हैं। तो हम कहा तुम इसलिए कथा है कि तुम सो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की? हमने कहा 7 दिन की। बोले डेट नहीं बढ़ सकती? हमका मतलब? बोले 20 दिन की नहीं हो सकती? 25 दिन? हमका ठटरी के बरे, घर का काम थोड़ी है कि बैलेंस डालो, मोबाइल चलाओ, कथा है 7 दिन की ही होगी, नियम है, भागवत है। अरे बोले नहीं गुरुजी, अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ाओ। हमका उससे क्या होगा, क्यों डेट बढ़ाएं? बोले गुरुजी आज हमारी उम्र 55 साल हो गई, 55 साल की उम्र में 20 साल से हम नींद की गोली खा रहे, 1 घंटा नींद नहीं आती, और तुम्हारी कथा इतनी अद्भुत है, नींद की गोली नहीं खा रहे, नींद जा नहीं रही। बताओ, कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम आती है। खैर आप लोग नहीं हो ऐसे, नहीं नहीं ये तो हरियाणा की बात है, आप तो गुजरात के लोग, बहुत अच्छे लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोगों को ऐसी भी कथा काम में आती। मेरे पागलों, कथा

था के बीच में पाप अकुलाते जो भीतर रहते पाप, और पाप है क्या? सबका बाप। पाप बड़ा खतरनाक है, ये कथा के बीच में ही आएगा। कथा के बीच में आएगा तो कई लोगों को फिर ऐसे ऐसे काम याद आते कथा में, अरे यार और तो सब ठीक है, उससे कर्जा लेना था। फिर कथा में तुम्हें पड़ोसी दिखेगा, पड़ोसन दिखेगी, फिर रबड़ी माल पुआ दिखेंगे, फाफड़ा फेफड़ा दिखेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज हम इतनी पूजा कर रहे हैं, 1% भी हमें लाभ नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पूजा लग भी रही कि नहीं लग रही। तब हमने उनसे कहा, तन से पूजा कर रहे, तन से, अरे तन

तो कथा में आने वाले श्रोताओं, मेरे प्रिय पागलों, हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है, कथा में जब भी आओ, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु राम से। क्यों?

0: आधी घड़ी आके बैठो। अच्छा महाराज, आप कहोगे महाराज कथा से मिलता क्या है? माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, कथा में बैठना इसलिए जरूरी है, ना जाने कौन सा शब्द तुम्हें चोट कर जाए और परमात्मा से मिलने का रास्ता खुल जाए। कौन सी वाणी चोट कर जाए? तो माता सती भगवान शंकर के साथ,
1: संग सती जग जननी भवानी।
0: और जैसे ही देखा तो कुंभज ऋषि अगस्त बाबा ने क्या किया,
1: पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
0: भगवान शंकर का पूजन किया, महाराज की जय हो। अब सती जी का दिमाग खराब हो गया कि हम तो श्रोता हैं, ये वक्ता है, और बताओ कितना उल्टा जमाना है, वक्ता श्रोता के पूजन करना। आप विचार करो, कथा व्यास जी किसी श्रोता के चरण धोएं क्या अच्छा लगेगा? लेकिन पूजन क्यों किया? क्योंकि ये जगत पिता है और कथा सुनने आए श्रोता मान करके पूजन नहीं किया कुंभज ऋषि ने, अपितु आहा, उन्होंने माना ये जगत पिता है। लेकिन सती के मन में संदेह हो गया। एक बात बोले, गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भगवान कितने दयालु नहीं, कितनी भगवान ने कृपा नहीं की हम लोगों पर, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए माई बाप, हमारी प्रार्थना है कि कभी भी हो हमें अपने भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? प्रतीक्षा। सबरी का चरित्र पढ़ो, माता सबरी कभी परीक्षा, रामचरित मानस में दो प्रसंग है माई बाप। क्या? एक प्रसंग सूपनखा का। सूपनखा राम जी के पास परीक्षा लेने आई, परिणामतः नाक कान कट गए। हाँ जी अना जी, कट गए ना। और हमारी सबरी माता, हमारी सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की, तो क्या हुआ? राम जी झोपड़ी

से सिद्ध हो गया माई बाप, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुंभज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया, क्या? अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। माई बाप, जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका, कथा पूरी हुई, कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले, क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा,

करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है, हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम है। पर सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते हैं, वो कौन है?

0: कह रहा है ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे हैं। और प्रायः ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है।
1: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
2: Tech is moving fast, and employers want people who get it. At WGU, you'll earn a computer science degree that teaches you the skills behind AI. Online, accredited, built for what's next. Get started at WGU.edu.
3: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
4: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
11: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
12: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
13: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
14: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर

0: न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोंदिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद कर फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
9: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details.
10: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises.

0: coaxial lines. Restrictions apply.
1: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
9: Sage University Transforming Your Passion into Profession
8: TIT Bhopal Gen Z's Gateway to Unbeatable Placements
10: सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी 13 किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ाव 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़ सुबह से बजरंगबली के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धिदात्री के श्रृंगार दर्शन को उमड़े भक्त निकाली गई मनमोहक झांकियां फूलों से की गई मंदिर

0: কিভাবে সাজাবে। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में की गई मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगा आसन चैंपियनशिप में पालघर के युवक ने जीता गोल्ड, 79 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए थे शामिल। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें की साझा, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका मीर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्योहार। आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन। विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व। मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता। ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य की कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के छठा मंगल बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ रही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू की आपूर्ति की। छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। छठे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में छठा बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाया जय श्री राम का जयकारा। प्रयागराज के बंधवा हनुमान जी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के छठा बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्त शामिल। अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजा मां का दरबार। नैनीताल के गैंची धाम में नीमकरोली धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 15 जून को लगेगा महामेला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैची धाम के आसपास विशेष ट्रैकिंग रूट और साथ ही सुगम पैदल यात्रा मार्ग किए जा रहे विकसित। कैची मेले के लिए श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष शटल सेवा, किराया भी तय। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया पूजन। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया जा रहा है राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार। अयोध्या पहुंची भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय, रामलला के किए दर्शन पूजन। सिंगर निशा उपाध्याय ने की सिंगर पवन सिंह की जीत की कामना, कहा इस बार पवन सिंह की जीत पक्की।

0: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता की गई, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी तेज, सुरक्षा बलों ने उधमपुर में किया मॉक ड्रिल। अभ्यास में जम्मू और कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर भी मॉक ड्रिल, प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज, रेलवे ट्रैक क्वार्टर में भी तलाशी ली गई। मॉक ड्रिल में NH-44 पर लंगर स्थल में भूस्खलन से लेकर लंगर पर आतंकवादी हमला और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभियान जैसे वास्तविक आपदा परिदृश्यों का दर्शाया गया। मॉक ड्रिल के अलावा अन्य तरह से विशेष बलों के साथ समन्वय को भी परखा गया, लोगों को भी आपातकाल के बचाव के दिए गए टिप्स। अमृतसर के सचखंड के श्री दरबार साहिब में श्री गुरु हरिगोबिंद साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस पर भव्य आयोजन, लोगों ने गुरुद्वारे में जलाई दी। गुरुता गद्दी दिवस पर लोगों ने जमकर किया आतिशबाजी, पवित्र सरोवर के आसपास के पूरे नजारे को अद्भुत और दिव्य बना दिया गया। दिवस पर कीर्तन और प्रार्थना की गूंज से सराबोर हुआ मंदिर परिसर, स्वर्ण मंदिर परिसर दीपमाला और रोशनी से जगमग उठा। गुरुत्वागति दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, विदेश से भी आए हजारों श्रद्धालु अमृतसर पहुंचे। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश के मंत्री एस सविता, विधि विधान से की पूजा अर्चना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़ नीज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है।

0: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: आधार से परोसा।
1: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ाव, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर। बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। पुरुषोत्तम महीने में मां सिद्धिदात्री के श्रृंगार दर्शन को उमड़े भक्त, निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से की गई मंदिर की भव्य सजावट। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में की गई मल्टी एजेंसी मॉकड्रिल, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगा आसन चैंपियनशिप में पालघर के युवक ने जीता गोल्ड, 79 देशों के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हुए थे शामिल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।

साथ पूजा पराशर आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात धार्मिक पर्यटन के स्वामी दौर की। दरअसल भारत में धार्मिक पर्यटन अपने स्वर्ण युग चल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने इसे एक विशाल आर्थिक और सांस्कृतिक उत्सव बना दिया है। भारत में आस्था केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था की भी एक मजबूत धुरी बन चुकी है। बीते कुछ वर्षों में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका असर सिर्फ मंदिरों और तीर्थस्थलों तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन और रोजगार के नए अवसरों तक साफ दिखाई दे रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन पवित्र धामों की यात्रा पर जहां पर आस्था का सैलाब विकास की नई इबारत लिख रहा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर मथुरा, अयोध्या, उज्जैन तक हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में भव्य कॉरिडोर, बेहतर सुविधाएं और आध्यात्मिक वातावरण ने इस प्राचीन नगरी को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बना दिया है। यहां गंगा घाट की रौनक बढ़ी है, बाजारों में कारोबार बढ़ा है और स्थानीय लोगों को नए अवसर मिल रहे हैं।

0: हिंदुस्तान सदियों से साधना और उपासना की भूमि रहा है। सनातन संस्कृति में मानव देह को मोक्ष का द्वार माना गया है। साधन धाम मोच कर द्वारा पाई न जेही पर लोक सवारा। सनातन के युगातीत सद ग्रंथों ने परमात्मा से मिलन को ही जीवात्मा का लक्ष्य बताया है। ऐसा लगता है कि सदियों पुराने इस सनातन सत्य का बोध लोगों को होने लगा है। पिछले कुछ वर्षों से हिंदुस्तान के सिद्ध और प्रसिद्ध धामों पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर वाला आस्था विश्वास कलयुग में जीवंत हो गया है। क्या आप यकीन करेंगे कि साल 2025 में घरेलू टूरिज्म का करीब 60% हिस्सा अकेले रिलीजियस टूरिज्म का रहा है। इसका मतलब ये कि साल 2025 में 100 लोगों ने अगर छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बनाया तो उनमें से 60 लोगों ने अयोध्या, मथुरा, काशी, पुरी, द्वारका या रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थानों को चुना। आज हालत ये है कि रिलीजियस टूरिज्म भारत के जीडीपी को बूस्ट करने में काफी मददगार साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 में धार्मिक अर्थव्यवस्था 70 अरब डॉलर यानी करीब 6,00,000 करोड़ के आसपास रही है। हिंदुस्तान में मौजूद आस्था के धाम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अकेले अयोध्या में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं के देश और दुनिया के विभिन्न हिस्से से आने से एयरलाइंस, रेलवे, रोडवेज और हॉस्पिटैलिटी जैसे बड़े सेक्टर्स से लेकर फूल माला, प्रसाद और चढ़ावे जैसे छोटे सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलता है। अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा, उज्जैन, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में भी श्रद्धालुओं की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 19 से 23 अप्रैल के बीच चार धाम के कपाट खुलने के बाद से इन धामों में 32,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की तादाद कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। ये सनातन धर्मावलंबियों की बढ़ती श्रद्धा और आस्था का ही असर है कि सबसे दुर्गम और कठिन होने के बावजूद केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साधना और उपासना का लोगों के दिलो दिमाग पर असर किस कदर बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विंध्याचल मंदिर में देवी मां का दर्शन करने के लिए अकेले साल 2025 में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। प्रयागराज में पिछले साल आयोजित महाकुंभ ने तो एक अनोखा रिकॉर्ड ही बना दिया था। 4000 हेक्टेयर के छोटे से मेला क्षेत्र में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। दुनिया के अब तक के इतिहास में किसी भी धार्मिक आयोजन में एक जगह पर इतने ज्यादा लोगों के पहुंचने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से बदली वैश्विक व्यवस्था के दुष्प्रभावों से देश को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा की जगह देश के ही विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने की अपील की है। ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा की ऊर्जा से लबरेज लोग पहले से ही इस सलाह पर अमल कर रहे हैं। आस्था के धाम को लेकर लोगों का रुझान पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बदला, ये न सिर्फ देश के इकोनॉमी को फायदा पहुंचा, बल्कि अवसाद और निराशा के भंवर से भी लोगों को निकालने में मदद पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो
0: देखिए, भारत में आस्था अब सिर्फ भावना नहीं रही बल्कि एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक ट्रेंड बन चुकी है। देश के मंदिरों, धाम, शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर पवित्र स्थल भक्तों से गुलजार है। वैष्णो देवी से लेकर काशी विश्वनाथ तक और अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। कॉरिडोर डेवलपमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल सुविधाओं ने धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार दी है।

0: भारत में धार्मिक पर्यटन इस समय अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ना उमड़ रही हो। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और भव्य कॉरिडोर के निर्माण ने आस्था के सफर को बेहद सुगम बना दिया है।
1: चार धाम यात्रा के लिए आए, पहला हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, फिर अभी बद्रीनाथ, फिर अच्छी तरह दर्शन हो गए। मस्त क्लाइमेट अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, पार्किंग वगैरह सब अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा उत्तराखंड।
2: केदारनाथ जी के दर्शन प्राप्त किए और बद्रीनाथ जी के और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें मिला और एक ये सुखद अनुभव है। हमें ये लगता है कि चार धाम का यात्रा जीवन एक बार जरूर करनी चाहिए।
0: अभी तक भारत में धार्मिक यात्रा सिर्फ आस्था का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब यही यात्रा एक बड़े टूरिज्म इंडस्ट्री में बदल चुकी है।

जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी धाम की बात करें तो यहां इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही 40,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल 2025 की बात करें तो माता के इस धाम में 70,00,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे थे।

असम में कामाख्या मंदिर की बात करें तो पूर्वोत्तर के सबसे बड़े शक्तिपीठ में अंबुबाची मेले के दौरान ही 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सालाना यहां करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। केदारनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे धाम में हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा भी हर साल करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। कठिन रास्तों और मौसम के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। खराब मौसम की चुनौतियों के बावजूद पिछले साल करीब 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस साल की यात्रा के लिए भी देश विदेश से रिकॉर्ड एडवांस रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन 5.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी में जुटा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है। जहां जहां भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है वहां पर्यटन की पूरी तस्वीर बदल गई है। साल 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले यहां सालाना 80 लाख से 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं का सालाना आंकड़ा 7 से 8 करोड़ को पार कर गया है। अब सामान्य दिनों में यहां हर रोज करीब 1.5 लाख से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, जबकि विशेष त्योहारों पर ये संख्या 3 से 6 लाख तक पहुंच जाती है। सावन के महीने में तो हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दरबार में 6 से 7 लाख भक्त हाजिरी लगाते हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में सालाना 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और मंदिर पर पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के आयोजन के बाद अब रोज करीब 75,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दिन यहां 3.5 लाख से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। उत्तराखंड आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल है। राज्य में आस्था और पर्यटन का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम और हेमकुंड साहिब जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं।

0: ताजा आंकड़ों के मुताबिक चारधाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 11.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में करीब 10 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में अब तक 11 लाख श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुँच चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में सिखों के पवित्र स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे में भी श्रद्धालु का तांता लगा है। श्री हेमकुंड साहिब में अब तक 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। उधर उड़ीसा में पुरी की पवित्र धरती पर इन दिनों भक्ति और उत्साह का माहौल है। यहाँ हर किसी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इंतजार है, जिसकी तैयारियाँ जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी 3 भव्य रथ तैयार किए जा रहे हैं। आस्था और परंपरा के इस अनूठे संगम को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पुरी पहुंचने लगे हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है देखकर जगन्नाथ जी के दर्शन के। अभी हम लोग फ्लैग होस्टिंग देखने आए हैं और यहाँ पर जो जगन्नाथ जी की यात्रा की जो निकलता है उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है और लाइक बहुत मेहनत करते हैं वो लोग बनाने के लिए एंड ऑल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय जगन्नाथ।
0: इस साल 16 जुलाई को भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। इस भव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करेंगे। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर लाखों श्रद्धालु रथों को खींचने के लिए उमड़ते हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक इस साल रथ यात्रा में 15 से 20 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। इसे देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल, LED स्क्रीन, निगरानी तंत्र और विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। भारत का धार्मिक टूरिज्म आज देश की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई दे रहा है। मौजूदा रुझानों को देखते हुए आने वाले साल में धार्मिक पर्यटन के और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल हो चुके हैं। केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ में भी श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खुलने से लेकर अब तक 9,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि अभी जून का पहला हफ्ता खत्म ही हुआ है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा का नया रिकॉर्ड बन सकता है।

0: देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या 32 लाख के पार निकल चुकी है। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, हर जगह इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु भले ही केदारनाथ पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हों, लेकिन बद्रीनाथ में भी आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। अब तक 9.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर चुके हैं। हर रोज 20 से 25 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हो या तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल हो या आसपास के सभी दर्शन स्थल, हर जगह भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। टोकन काउंटर से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक हर जगह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान नारायण के दर्शन के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मौसम पल पल बदल रहा है। बारिश के साथ ही बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, फिर भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही है।
1: भीड़ है बद्रीनाथ धाम में, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तप्त कुंड हो, ब्रह्म कपाल हो, या फिर टोकनों की लाइन हो, या दर्शनों की जो लाइन है, यहाँ पे साफ साफ भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह से दोपहर तक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, लगातार लंबी कतारें, यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है। श्रद्धालु हर कोई आ रहे हैं इस समय बद्रीनाथ धाम में। अभी जून का पहला सप्ताह बीता ही है और इस बार आने वाला समय जो होगा वो इस बार नई रिकॉर्ड यात्रा का होगा, क्योंकि इस बार जून का पहला सप्ताह में ही 10 लाख के करीब अब यात्री पहुंचने लगे हैं। और जो पिछले वर्ष की अगर बात करें, जो यात्रा काल की बात करें, तो 15 से 16 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आए थे। ऐसे में इस बार जल्दी ही ये आंकड़ा पार हो सकता है।
0: जिस उत्साह के साथ भक्त बद्री विशाल के प्रांगण में पहुंच रहे हैं, प्रशासन और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार बद्रीनाथ यात्रा के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
6: कुछ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
12: सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान कर देने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशालकाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। मुंबई के प्रणय जोशी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद अजीबोगरीब चैलेंज शेयर किया। उन्होंने चर्च गेट स्टेशन से विरार तक करीब 60 किलोमीटर का सफर लोकल ट्रेन में पानी से भरा ग्लास बिना गिराए ले जाने की चुनौती ली और जैसे ही ट्रेन आती है वो भारी भीड़ के बीच खुद को और उस गिलास को संभालते हुए डिब्बे के अंदर दाखिल होते हैं। चर्च गेट से विरार का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा प्रणय की मुश्किलें बढ़ती गईं। हर स्टेशन पर यात्री चढ़ते उतरते रहे और धक्का मुक्की तेज होती गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रणय कभी

0: ट्रेन के कोने से सटकर खड़े होते हैं तो कभी भीड़ के बीच हाथ ऊपर करके गिलास को बचाते हैं। और जब ट्रेन विरार स्टेशन पहुंची तो जो नतीजा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। इतनी भीड़ और धक्कों के बावजूद ग्लास का पानी सुरक्षित था। ट्रेन ने कैमरे के सामने थम्स अप दिखाकर अपनी जीत का जश्न मनाया।
1: बहुत अच्छा लगते और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, आप इतने अच्छे लगते हो।
0: बच्चा अपनी माँ के प्रति अपना प्यार बेहद सादगी और मासूमियत के साथ जाहिर करता है। उसकी बातों से साफ महसूस होता है कि उसके लिए उसकी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। बच्चे के चेहरे के भाव और बोलने का तरीका इतना स्वाभाविक है कि वीडियो देखने वाले लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वीडियो में बच्चे की माँ भी बेहद शांत और प्यार भरे अंदाज में उसकी बातें सुनती नजर आती है। माँ बेटे के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
1: मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को बुलाना पड़ता है। मम्मी मैं तो खाना कोई नहीं बनाता।
0: एक सब्जी विक्रेता का ठेला अचानक सड़क पर पलट जाता है। ठेले में रखे आलू और प्याज बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता सब्जियों से भर जाता है और ठेला चालक असहाय नजर आने लगता है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मेहनत से जुटाई गई सब्जियों को दोबारा समेटने की होती है। लेकिन इसके बाद जो सीन सामने आता है वो हर किसी का दिल जीत लेता है। आसपास से गुजर रहे लोग बिना किसी झिझक के मदद के लिए आगे आने लगते हैं। कोई सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगता है तो कोई प्याज इकट्ठा करने में जुट जाता है। कुछ लोग ठेले को संभालने और उसे सीधा करने में मदद करते हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। 12 महीने कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख, 20 मिनट में पूरा होगा 3 घंटे का सफर। बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंग बली के दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धदात्री के श्रृंगार दर्शन को उमड़े भक्त, निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से की गई मंदिर की भव्य सजावट। उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने का सिलसिला। बद्रीनाथ में अब तक 9,74,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 65,000 से ज्यादा भक्त टेक चुके हैं मत्था। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर में की गई मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल, सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का परखा गया, बचाव कार्यों का किया गया लाइव अभ्यास। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें की साझा। स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका मीर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट और 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा बड़े मंगलवार का त्योहार। आज के दिन बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। बड़े मंगल का दिन विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी विधि विधान से पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा। इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी तेज। सुरक्षा बलों ने उधमपुर में किया मॉक ड्रिल। अभ्यास में जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला अटनल का ब्रेक थ्रू। सुरंग तैयार होने के बाद घंटों की जगह मिनटों में तय हो सकेगी कश्मीर और लद्दाख की दूरी। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। अयोध्या पहुंची भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय। रामलला के दर्शन पूजन किए। नैनीताल के कैंची धाम में नीम करोली धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज। 15 जून को लगेगा महामेला। अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस पर भव्य आयोजन। लोगों ने गुरुद्वारे में जलाए दीप। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे आंध्र प्रदेश की मंत्री एस सविता। विधि विधान से की पूजा अर्चना। बम्बोलिया में 42वें ईईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन। सीएम सावंत हुए शामिल। पटना में भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार का भव्य स्वागत। मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। सीएम धामीने की शिरकत। ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों का रेस्क्यू किया। भारत ने किया धन्यवाद। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें से शेयर की। स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका मीर। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ स्टार फिल्म अल्फा का टीजर। 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। रिलीज से पहले ही फिल्म वेलकम टू द जंगल का जलवा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म ने सैटेलाइट और ओटीटी राइट से कमाए 120 करोड़। 15 साल बाद साथ में अक्षय और अनीस बज्मी आए। मुंबई में चल रही आराम फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना की मुख्य भूमिका। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल पर बड़ा अपडेट। निर्देशक अनीस बज्मी ने दी जानकारी। फिल्म नो एंट्री 2 पर काम शुरू। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी। फिल्म में डबल रोल में दिखेंगे अरशद वारसी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। आज जम्मू कश्मीर में बन रही जोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू। 3.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 15 मिनट में होगा तय।
6: आज ज्येष्ठ महीने का छठा बड़ा मंगल। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए देशभर के हनुमान मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। तेजी से जारी है अमरनाथ यात्रा की तैयारी, सुरक्षा तैयारी और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल।
5: पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ा देश का मान, अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में अद्भुत प्रतिभा का किया प्रदर्शन, जीता स्वर्ण पदक।
6: फिल्म अल्फा में आलिया का दिखेगा एक्शन अवतार, कल दिखेगी फिल्म की पहली झलक।
5: और दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल होने वाला है। थोड़ी ही देर में जोजिला टनल के अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टानी दीवार को अब ये तोड़ दिया गया है। और अब ये देखिए, नितिन गडकरी मौके पर पहुंच चुके हैं और वो खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर उन्होंने किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीनमर्ग आपस में जुड़ गए हैं। ये सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी, 7.57 मीटर ऊंची और 14.15 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये सिंगल ट्यूब दो लेन सड़क सुरंग होगी। ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी है। तो देखिए, नितिन गडकरी खुद वहां पहुंचे, उन्होंने ट्रिगर जो है दबाया और इसी के साथ देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का तोहफा देशवासियों को मिल गया है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी और एक बार फिर से देश ने इतिहास रच दिया है। और देखिए ये ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और हमारे सहयोगी आशुतोष हमसे जुड़ रहे हैं। आशुतोष, किस तरह का नजारा है, कितना जोश है लोगों में, जरा तस्वीरें दिखाइए।
7: बिल्कुल कुछ सेकंड पहले ही वो ब्लास्ट किया गया है, तो आप ऐसे समझिए, सीधे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये है वो जोजिला के टनल, ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर बनी हुई ये सुरंग है। और जैसे ही ये धमाका हुआ है, एक छोटा सा धमाका जिससे 3.5 किलोमीटर एक तरफ ये पूर्वी पटल है और जो वेस्टर्न पोर्टल है वो बालटाल की तरफ है, और इन दोनों के बीच थोड़ी सी दीवार रह गई थी, उसे धमाके से उड़ा दिया गया। अब से ये कह सकते हैं कि कश्मीर से लद्दाख अब सुरंग मार्ग से 12 महीने जुड़ गया है। अब इस वेदर को आप देखिए, ट्रेन को दिखाता हूँ, क्यों ये जरूरी था। हम जो जोजिला पास में ना, जोजिला पास हिमालय का सबसे दुर्गम इलाका है। 5 महीने ऐसे होते हैं जब यहाँ 30 से 40 फीट की बर्फ होती है, और वो आपने कश्मीर तस्वीरें देखूंगी कि बीआरओ रास्तों को क्लियर करती है, तब गाड़ियां निकलती हैं। तो अगर कश्मीर से लद्दाख के पर्यटन को भी छोड़ दें, तो सामरिक नजरिए से भी आपके पास एक तरफ सियाचिन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो सीमाएं हैं, चीन की सीमाएं हैं, तो आप इन पहाड़ों पर जो जमी बर्फ देख रहे हैं, अगर आप सोचिए कि जून के महीने में आप जहां पर, वहां 43 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये वो इलाका है जहां जून के महीने में भी इन ऊंचे इलाकों पर आपको बर्फ दिख रही है, 1 फीट से 1.5 फीट बर्फ है। तो आप सोच सकती हैं कि अक्टूबर की बात से लेकर के अप्रैल तक या मार्च पहले सप्ताह तक यहाँ कितनी बर्फ होती होगी। ये पूरे इलाके में बर्फ निकालने में बर्फबारी होती है, एक एक हफ्ते 10-10 दिन सड़कें बंद हो जाती हैं, और इसीलिए फिर ये जोजिला टनल को खोला गया कि सबसे पहले कश्मीर को सोनमर्ग से जोड़ा गया। सोनमर्ग की जब जैदमोर टनल बन गई, तब ये सवाल था कि सोनमर्ग 12 महीने इसे कैसे जोड़ा जाए, यानी अभी से लेकर के अक्टूबर तक सब आसान होगा, लेकिन जब वो बर्फबारी होती है, ये पूरा जोजिला पास, ये इतनी ऊंचाई पर है 11,500 फीट, यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वेजिटेशन नहीं है, इसको व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, सफेद मरुस्थल। ये वो पहाड़ आप देखिए पूरी तरह से, इनको आपने अक्सर जो है देखा होगा कि ये वही सारी जगह है जहां पर दरअसल करगिल की लड़ाई हुई थी। ये पूरे व्हाइट पहाड़, और बर्फ से जब ये ढकते हैं तो रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब ये सुरंग जब बनेगी, पहली ऐसी सुरंग जिसके बनने के बाद 12 महीने कश्मीर से लद्दाख, कारगिल, द्रास, लेह, लद्दाख, ये सारे रास्ते जुड़ जाएंगे, तो सबसे बड़ा फायदा पर्यटन को। दूसरा, कनेक्टिविटी के तौर पर अगर देखें तो कश्मीर को नहीं बल्कि कन्याकुमारी से कश्मीर होते हुए लद्दाख अब आप अपनी गाड़ी लेके 12 महीने जा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक रूप से देखें, सामरिक रूप से भारत की जरूरतें उसके सीमाओं को देखते हुए, तो लॉजिस्टिक आमतौर पर क्या होता है, सर्दी आती है तो आपको स्टॉक पाइल करना पड़ता है। स्टॉक के साथ अभी क्या होगा कि 12 महीने आपका रसद, आपका गोला बारूद, आपका असला, सब कुछ सुरंग से होते हुए लेह लद्दाख, चाहे पाकिस्तान से लगती सीमाएं हों या फिर चीन से लगती सीमाएं हों, वहां पर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। और यहां पर धमाके में इनको अभी अभी आप देखिए कुछ गाड़ियां जा रही हैं, अगर इसको समझना हो तो इन गाड़ियों के मूवमेंट को देखिए कि जब ये बर्फ से ढक जाती होंगी तो छोटी गाड़ियां तो बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, लेकिन 13 किलोमीटर की दूरी, अब एक बार जरा बर्फीली चोटियों के पास ले चलते हैं, इसी को कहा जाता है जोजिला पास। ये जोजिला पास न्यूनतम स्तर पर भी जब यहाँ बर्फ होती है तो 30 से 40 फीट होती है, लेकिन और इसी वजह से जब बीआरओ इसको खोलती भी है, रास्ता निकालती है, तो ये रास्ता इतना खराब हो जाता है कि 3 से 4 घंटे का समय लगता है इसे पार करने में, दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद 13 किलोमीटर का रास्ता है, 60 की रफ्तार है, यानी 20 से 22 मिनट में वो एक तो समय बच जाएगा, 12 महीने आपकी आवाजाही रहेगी, कनेक्टिविटी सुचारू हो जाएगी, यातायात माध्यम सुचारू हो जाएगा, आपके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सामरिक दृष्टि से स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी अगर देखें तो भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। अब आपको क्या लगा कि आखिर सुरंग तो बन रही है रास्ता, इसमें खास क्या है? आमतौर पर हमने देखा जैसे काजीकुंड टनल बनाई गई तो ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। अगर आप लोग रोहतांग गए और हमारे तमाम दर्शक भी, आप देखे होंगे रोहतांग में जो टनल है वहाँ सरफेस के नीचे सुरंग जाती है, स्केप टनल है। ये भारत की पहली ऐसी सुरंग होगी जहाँ ओवरहेड आपको स्केप टनल मिलेगा। कोई हादसा हो जाए, गाड़ी जल जाए, कहीं पर आग लग जाती है, कुछ हो तो आप लोगों को बचाएंगे कैसे? तो ओवरहेड टनल भी आपको मिलेगी क्योंकि इसका जो व्यास है वो बहुत बड़ा है। ओवरहेड टनल मिलेंगे, एक स्केप टनल मिलेगा, उसके साथ वेंटिलेशन शाफ्ट होगी तो सुविधा के तौर पर। लेकिन सबसे खास बात समझिए कि इन सब सुरंगों की मजबूती इतनी है कि चाहे इस पर किसी तरह के मिसाइल के धमाके हों या परमाणु बम के धमाके हों, इनको कोई असर नहीं होने वाला। और ये दिमाग में इसलिए आता है ना कि हम देखते हैं जब ईरान और अमेरिका के हमलों में, जब ईरान के इस्फहान में वहां जो सुरंगें हैं उन सुरंगों में उसके हथियारों का जखीरा है, अमेरिका बमबारी से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ये उससे भी ज्यादा मजबूत वो सुरंगें हैं इस पर मिसाइल के हमले, परमाणु बम के हमले वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। तो अब से थोड़ी देर से पहले कश्मीर से लद्दाख, जिस दिन अब जो है ना फाइनल फिनिशिंग टचिंग का काम रह गया है, थोड़े से स्ट्रक्चरिंग का काम है, सड़कें बन जाएंगी तो साल भर सवा साल के अंदर ये खुल जाएगा। तो आज वो तारीख है जब कश्मीर से लेके कारगिल लद्दाख 12 महीने के लिए अब एक सुरंग के जरिए सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। अब इंतजार होगा उस तारीख का जब ये परियोजना पूरी हो, ये रास्ता पूरा खुल जाए, पर्यटन के लिए भी अच्छा होगा, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा होगा और खासकर आप ठंड के महीने में जिन इलाकों में आना जाना मुश्किल होगा अब वो सुगमता आसान हो जाएगी।
6: आशुतोष, आपने इसकी खासियत की बात करी और देखिए दशकों पुराना अब इंतजार मानो खत्म होने वाला है। हम टनल की क्योंकि बात कर रहे हैं आशुतोष, थोड़ा टनल के आकार के बारे में समझाइएगा जैसा उसको बनाया गया है।
7: सामान्य से अगर आप देखेंगे तो आपको दिमाग में लाना होगा कि इस तरह की हमने कितनी सुरंगें देखी हैं। आप अटल सुरंग देख लें, काजीकुंड की जो टनल देख लें, उत्तरकाशी में शिलक्यारा की एक सुरंग हो, एक बार मनीष से कहूंगा जरा सुरंग पर फोकस करें। ये पहला पूर्वी पटल है, क्योंकि धमाकों की वजह से हमें वहां थोड़ी दूरी पर आना पड़ा। पूर्वी पटल का व्यास आपको लग रहा है तो छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ऊंचा है, जमीन से इसकी ऊंचाई 60 फीट से 70 फीट से ज्यादा है। और इसका व्यास इसलिए इतना बड़ा बनाया गया क्योंकि उसके नीचे आपको वेंटिलेशन देना है, वेंटिलेशन के साथ स्टीप टनल बनाना है, तो सुरक्षा के लिहाज से तो मजबूती है क्योंकि आपको 12 महीने इसे खुला रखना है। लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि इस पहाड़ पर जहां पर लाखों अरबों टन जो बर्फ का मलबा है वो साल भर रहेगा तो उससे लीकेज होता है, तो उससे मलबे पर दबाव, जो स्ट्रक्चर उस पर दबाव ना पड़े, तो पानी की जो निकासी है वो सामान्य हो सके। उसी के साथ साथ 13 किलोमीटर लंबी किसी सुरंग में जाएंगे, आप सोचेंगे सांस हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो वेंटिलेशन की वो सुविधा जो है वो सुनिश्चित की जाए। और दूसरा, ये जो NETN इसे कहा जाता है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जो है, ये बहुत खास हो जाती है। थोड़ी सी ड्रिलिंग होती है, विस्फोटक लगाए जाते हैं, मशीन अपने साथ क्या करती है, मलबा इसको पूछा करती है, लेकिन जो टनल का ढांचा बना है उसको साथ साथ इस तरह, आप इसको समझिए कि इस तरह का एक आर्क बना दिया जाता है, एक बड़ा आता है और आर्क उसको सपोर्ट करती चली जाती है। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो तकनीकी दक्षता की एक अद्भुत मिसाल है ये टनल। सुरक्षा के लिहाज से हर वो पैमाने पर ये खरी उतरती है, लेकिन इसकी जरूरत अगर देखें तो वो कहीं बहुत ज्यादा थी। और बिल्कुल सही कहा, दशकों का इंतजार था कि क्या करगिल से ले लद्दाख, कश्मीर से ले लद्दाख 12 महीने आवागमन हो सकता है। पहले तो उनमर तक ही जाना मुश्किल था, वो खुल गया तो कम से कम आधा रास्ता पूरा हो गया है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लद्दाख की यात्रा, जो अब जो है बेहद आसान हो जाएगी जैसे ये परियोजना पूरी हो जाती है।
6: बिल्कुल आशुतोष, और इस सुरंग को एशिया की सबसे बड़ी सुरंग, सिंगल ट्यूब टनल भी कहा जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि यात्रा जो है वो आसान हो जाएगी, मुझे लगता है कि जो पर्यटक हैं उनके लिए ड्राइव जो है वो बहुत एक्साइटमेंट भरी रहेगी, क्योंकि सिंगल टनल है और आपको जो एहसास, जो फील होगा वो सबसे अद्भुत और सबसे निराला होगा।
7: बिल्कुल होगा, इसलिए कह रहे कि अभी इस समय मौसम अच्छा है, वहाँ गर्मियां पड़ रही हैं, लोग नैनीताल उत्तराखंड जा रहे हैं, गाड़ी उठाइए, ड्राइव करते हुए देखिए सोनमर्ग तो आ सकते हैं। आप काजीकुंड की टनल देखते हुए आएंगे, बनिहाल होते हुए बारामूला कश्मीर से जैसे आप निकलेंगे गांधरबल होते हुए सोनमर्ग तो आ सकते हैं। सोनमर्ग से आगे अभी लद्दाख भी जाना है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि गर्मियों में तो लोग यहाँ पर आ गए, दरअसल ये नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है ना जब यहाँ सफेद बर्फ की चादर है। और क्यों, अब कई सारे लोग जल रहे होंगे, मेरे पीछे बर्फीली वादियां, यहाँ पर तापमान सुबह जो है 3 डिग्री हो गया था, मैं 43 डिग्री से निकल निकल करके आया हूँ और इन सारी चोटियों की जो चोटियां हैं ये पूरी बर्फ से ढकी हुई हैं। लेकिन आप सोचिए कि नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ये कितना खूबसूरत नजारा होता होगा। तो हाँ, अगर पर्यटन के नजरिए से भी देखेंगे तो ये तो कम से कम अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इस पूरे इलाके के लिए। ये सोनमर्ग तक तो आना आसान है, सोनमर्ग में लोग आते हैं 8-10 तक की बर्फ।
6: चलिए ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारे सहयोगी आशुतोष ने खुद जोजिला टनल से एक रिपोर्ट तैयार की है, चलिए अब वो दिखाते हैं आपको।
8: तो जल्द ही वो तारीख आ सकती है जिससे कश्मीर से लद्दाख को साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। और उसी नजरिए से अगर देखें तो भारत के पर्वतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी सुरंग जोजिला, जो लगभग अब अपने निर्माण के बेहद करीब है, इसका ब्रेक थ्रू जिस तरह से होता है, और ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जोजिला टनल का पूर्वी और पश्चिम हिस्सा अब जुड़ चुका है। और जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला है, ये सुरंग का देखिए जो हिस्सा है बेहद आधुनिक तकनीक और पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर, खासकर वो इलाका जो जिला का जो कि कारगिल, द्रास और श्रीनगर को जोड़ता है सोनमर्ग से आगे, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिरता है। और एलिवेशन अगर आप देखें तो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 11.5 किलोमीटर यानी 11,500 मीटर है। और ऐसी जगह पर इस तरह का सुरंग का निर्माण, इसके कई फायदे, एक सबसे ज्यादा कि सोनमर्ग से आगे यानी श्रीनगर को आगे कारगिल से लेकर के लेह लद्दाख तक जोड़ना, यानी जहां पर भारत के सामने चुनौतियां उसके दो पड़ोसी देश हैं जो हमेशा जो होस्टाइल हो जाते हैं, ऐसे में वहां तक लॉजिस्टिक पहुंचाना, साथ ही इस पूरे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना, और कुल मिलाकर के सामरिक नजरिए से भी ये जो जिला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये पूरा जो परियोजना अगर आप देखें तो इसे कहा जाता है कि जैसे एक जेडमो टनल है और दूसरा ये हॉर्स शू, तो घोड़े के नाल जैसे होती ना कुछ इस आकार की ये टनल है। तो हम जहां पर हैं ये दरअसल इसका ईस्ट पोर्टल है, वेस्टर्न पोर्टल जो कि सोनमर्ग के पास आप जैसे श्रीनगर की ओर देखते हैं, तो श्रीनगर से होते हुए सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद आपको यहां से द्रास और द्रास कारगिल और उसके बाद लेह लद्दाख का रास्ता। अगले 1.5 साल में ये माना जा रहा है कि ये सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद सर्दियों में ये पूरा इलाका का यहां पर एवलॉन्च होते हैं। अब अक्सर तस्वीरें देखी होंगी सर्दियों में बीआरओ के सामने बड़ी मशक्कत होती है इस रास्ते को खुला रखना, जहां 20 से 25 फीट तक बर्फ जम जाती है, सर्दी -30 डिग्री तक पारा गिर जाता है, और रास्ता बंद होने वजह से काफी जो है जो विषम परिस्थितियां यहां पर होती हैं। और ऐसे में ये जोजिला सुरंग जो है वो भारत के इस पर्वतीय इलाके में बेहद दुर्गम परिस्थिति में आना जाना बेहद आसान कर देगी, तो जिससे न सिर्फ इलाके की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामरिक दृष्टि से अगर देखें, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी देखें, तो भारत की सेनाओं के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, जो जरूरत है, उसको भी जोजिला की ये सुरंग पूरा करेगी। द्रास में जोजिला टनल के ठीक बाहर मनीष बिधूड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
5: और चलिए वहीं एक जिंदगी बचाने की खबर देश के पहाड़ी हिस्से लाहौल स्पीति से भी आई है, जहां चंद्रा नदी में फंसे एक सैलानी का सफल रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से यहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये सैलानी सिसु के समीप अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे लुत्फ उठा रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में वो बह गया। सैलानी की मदद की गुहार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत वहां पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। देखिए किस तरह से स्थानीय लोगों ने इस युवक की जान बचाई, गुहार सुनकर मौके पर तुरंत जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चंद्रा नदी से उन्हें निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसकी जान बचाई जा सकी और सैलानी जो है वो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए थे, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और वो नदी में बह गए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी बताइएगा आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे उसका रेस्क्यू किया गया? शिवानी आपको आवाज आ रही है? तो चलिए शिवानी के पास लौटेंगे। ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद क्या आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षित नदी से फिलहाल युवक को बाहर निकाल लिया गया है, जो ग्रामीण वहां पर थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को नदी से बाहर निकाला। ये सैलानी सिसु के समीप अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे लुत्फ उठा रहा था और तभी अचानक उसका पैर फिसलना जो कहा जा रहा है अभी तक उसका पैर फिसला, जिसकी वजह से तेज बहाव में वो बह गया। सैलानी की मदद की गुहार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत वहां पहुंचे और काफी मशक्कत उनको करनी पड़ी, लेकिन युवक को सुरक्षित नदी से उस वक्त तुरंत बाहर निकाल लिया गया।
6: और अब बात एक महा रेस्क्यू की। ओमान में अटैक का शिकार बने तेल इंजन जहाज से 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीयों को बचाया। तो इस ऑपरेशन में ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीयों को बचाया गया। हमले के बाद शिप पर मौजूद चालक दल ने SOS संदेश भेजकर सहायता मांगी थी। MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान की समुद्री एजेंसीज OMSC के साथ कोऑर्डिनेशन करके मदद की पहल की। इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से जहाज पर फंसे सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम मॉरिवेक्स बताया गया और उसी पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे जिनका सफल रेस्क्यू हो गया। तो देखिए किस तरह से 24 भारतीयों का सफल तरीके से रेस्क्यू किया गया और शिप में फंसे थे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। जी हां, इस ऑपरेशन में ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीयों को बचाया गया। हमले के बाद शिप पर मौजूद चालक दल ने SOS संदेश भेजकर सहायता मांगी। MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान की समुद्री एजेंसीज OMSC के साथ कोऑर्डिनेट करके मदद की पहल की। इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से जहाज पर फंसे सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम मॉरिवेक्स बताया गया और उसी पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे जिनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया।

0: तो वहीं एक जिंदगी बचाने की खबर देश के पहाड़ी हिस्से लाहौल स्पीति से भी है, जहां पर चंद्रा नदी में फंसे एक सैलानी का सफल रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये सैलानी सिसू के समीप अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे लुत्फ उठा रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में वो बह गया। सैलानी की मदद की गुहार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत वहां पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। तो कड़ी मशक्कत वहां करनी पड़ी, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने सैलानी की मदद की और तुरंत इसको सुरक्षित वहां से बचा लिया गया। लोगों ने गुहार सुनी उस सैलानी की। कड़ी मशक्कत के बाद उस पर्यटक को चंद्रा नदी के बहाव में बहने से बचा लिया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बॉलीवुड की एक्शन क्वींस को।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे

0: आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: देश की सबसे लंबी जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू, सैन्य आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है ये टनल, 20 मिनट में तय होगा 3 घंटे का सफर।
3: लखनऊ में दिखेगा संस्कृति और आध्यात्म का हाईटेक संगम, रिचुअल सेंटर में जीवंत तो होंगी भारतीय परंपराएं, आधुनिक तकनीक से भारतीय जीवन शैली और आध्यात्मिक सोच को किया जाएगा प्रदर्शन।
2: बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को मर रहे हैं भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का है विशेष महत्व।
3: पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धिदात्री के श्रृंगार दर्शन को उमड़े भक्त, निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से की गई मंदिर की भव्य सजावट।
2: उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने का सिलसिला, बद्रीनाथ में अब तक 9,74,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, हेमकुंड साहिब में भी 65,000 से ज्यादा भक्त टेक चुके हैं मत्था।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: लंच टाइम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बात कर लेते हैं अभिनेत्रियों के एक्शन अवतार की। अब बॉलीवुड में एक्शन हीरोइंस का ट्रेंड ज्यादा नजर आ रहा है। अब देखिए अदाकारा आलिया भट्ट ही इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अल्फा में अपने रोल को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है, जिसकी झलक ऋतिक रोशन की वॉर 2 में देखने को मिली थी, और इस फिल्म की नायिकाएं आलिया और शर्वरी एक्शन अवतार में नजर आएंगी। दरअसल सलमान नयनतारा स्टारर अनटाइटल फिल्म में नयनतारा का किरदार भी अब एक्शन वाला होगा।

0: बॉलीवुड में अब नायिकाओं का एक्शन अवतार ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में दो बड़ी फिल्में हैं जिनमें बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म अल्फा का पहला टीजर बुधवार यानी कल 10 जून को रिलीज किया जा रहा है। ये टीजर एक ऐसी लड़की की ओरिजिनल स्टोरी पर बना है जिसे एक खतरनाक किलिंग मशीन बनने के लिए तैयार किया जाता है और इसका किरदार निभाते दिखेंगी आलिया भट्ट, जो उनके अब तक के किरदारों से बहुत अलग माना जा रहा है। यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की ये पहली ऐसी ओरिजिनल स्टोरी है जिसमें मुख्य किरदार एक असैसिन है। साथ ही शर्वरी भी बिल्कुल अलग और दमदार किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म के जरिए अल्फा शब्द के नए मायने जानने को मिलेंगे। अल्फा का प्रमोशन कैंपेन इस तरह से तैयार किया गया है कि लड़कियों को अल्फा होने के विचार का पर्याय अपेक्षाओं के दायरे में बंधने से इनकार कर रही हैं। इसलिए कल टीजर रिलीज होने के बाद दर्शकों को एक मजेदार, कूल, बेबाक और एटीट्यूड से भरपूर कैंपेन देखने को मिलेगा। शिव रवेल निर्देशित फिल्म अल्फा यशराज फिल्म्स की एक भव्य थिएटर रिलीज फिल्म है। वहीं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म अनाउंसमेंट सलमान खान और नयनतारा की अनटाइटल मूवी की भी है। सलमान नयनतारा की इस अनटाइटल मूवी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है जो नयनतारा के किरदार से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि नयनतारा इस मूवी में कई एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में चेस सीन, गाड़ियों के साथ एक्शन, करीब से लड़ाई और भी बड़ी भीड़ वाले सीन होंगे जिसमें सलमान के साथ नयनतारा भी एक्शन अवतार में दिखाई देंगी। आपको बता दें कि सलमान नयनतारा स्टारर ये फिल्म साउथ के मशहूर फिल्म मेकर वामसी पेडिपली और दिल राजू की जोड़ी बना रही है जिसे काम चलाओ टाइटल SVC 63 दिया गया है। नयनतारा और आलिया के इन एक्शन रोल्स को देखने के लिए फैंस उम्मीदें लेकर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन फिल्मों में महिलाओं की बहादुरी और मिशन के साथ उन्हें गैर पारंपरिक रोल से हटकर किरदार दिए गए हैं जिसके बारे में सोचना ही दर्शकों में रोमांच पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: करीब 21 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसने दर्शकों को हंसा हंसा कर लुटपुट कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नो एंट्री की। अब इसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल नो एंट्री 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से फिल्म की देरी और स्टार कास्ट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने खुद सामने आकर फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी है।
2: साल 2005 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की तिकड़ी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई। अब लगभग दो दशक बाद इसके सीक्वल नो एंट्री 2 का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से फिल्म की मेकिंग और स्टार कास्ट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। इन चर्चाओं के बीच निर्माता निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ फिल्मों को बनाने में वक्त लगता है।
3: कुछ फिल्मों की कुंडली होती है, मैं मानता हूँ कि कुंडली होती है। कभी कोई फिल्म जल्दी बन जाती है, कभी देर से बनती है, लेकिन हम सब की कोशिश है कि ये फिल्म बने।
2: अनीस बज्मी ने बताया कि उन्होंने नो एंट्री 2 की कहानी काफी प्यार और मेहनत से लिखी है। उनके मुताबिक ये उनकी सबसे बेहतरीन लिखी गई फिल्मों में से एक है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। खबरें हैं कि फिल्म में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले थे। हालांकि बाद में दिलजीत की डेट्स की वजह से फिल्म से अलग होने की खबर भी सामने आई। वहीं वरुण धवन को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट और रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल इतना तय है कि नो एंट्री 2 का सफर भले थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन फिल्म बंद नहीं हुई है। मेकर्स इसे बड़े पर्दे तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और फैंस को अब अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यानी साफ है कि नो एंट्री 2 को लेकर भले ही देरी हो रही हो, लेकिन फिल्म अब भी ट्रैक पर है। फिल्म के निर्देशक अनीस बज़मी की बातों से तो फैंस यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको एक बार फिर कॉमेडी का डबल डोज मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो वही 26 जून को अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल रिलीज होने जा रही है, लेकिन अक्षय अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में इन दिनों खास बिजी है। इस फिल्म को भी अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं और उनकी इस अनाम फिल्म की शूटिंग इन दिनों मुंबई में हो रही है, जहां पर सेट से लीक अक्षय कुमार का क्लीन शेव्ड लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इससे पहले फिल्म की केरलम की खूबसूरती वादियों में शूटिंग के दौरान भी विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ उनकी तस्वीर सुर्खियों में बनी थी।
4: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अक्षय कुमार क्लीन शेव लुक में काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकड्रॉप में बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग नजर आ रही है। बिल्डिंग के सामने सड़क पर अक्षय कुमार एक पुलिस वैन पर क्लीन शेव और ब्लू कलर की शर्ट पहने काफी यंग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनीस बज़मी की फिल्म का सेट है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल प्ले कर रहे हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी बने हैं। फिलहाल फिल्म का नाम तय नहीं। वीडियो देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये शूटिंग कहाँ हो रही है। डायरेक्टर अनीस बज़मी के मुताबिक इस फिल्म का 80% हिस्सा मुंबई में अलग अलग स्टूडियो और सेट्स पर शूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लिहाजा माना जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही किसी जगह पर हो रही होगी। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत भी 19 जनवरी को मुंबई से ही हुई थी। इससे पहले अक्षय कुमार की शूटिंग का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जब वो फिल्म की लीडिंग लेडीज विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ केरला में शूटिंग करने पहुंचे थे। मई के महीने में टीम ने एक बड़ा आउटडोर शेड्यूल केरलम के खूबसूरत वादियों में की थी। केरलम के हिल स्टेशन मुन्नार और उसके पास मौजूद मरायूर की वादियों में शूटिंग पूरी की गई थी। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के डायरेक्शन में यहां फिल्म का एक भव्य होली सॉन्ग भी फिल्माया गया। शूटिंग पूरी होने पर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर विद्या बालन और राशि खन्ना के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें केरलम के पारंपरिक नृत्य कथकली, हेयम और मोहिनीअट्टम के कलाकार भी नजर आ रहे थे। केरलम से लौटने के बाद फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग अब मुंबई में ही पूरी की जा रही है। अक्षय कुमार का वायरल हो रहा क्लीन शेव लुक इसी शूटिंग का हिस्सा है। अक्षय कुमार और विद्या बालन की जोड़ी भूल भुलैया और मिशन मंगल जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद वापसी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में विद्या बालन का किरदार बेहद मजबूत, मजेदार और उनके पिछले किरदारों से काफी अलग होने वाला है, जिसमें उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग देखने को मिलेगी। वहीं राशि खन्ना अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में अक्षय कुमार और उनके ऑन स्क्रीन बेटे के बीच की बॉन्डिंग और सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म की USP साबित हो सकती है। अक्षय कुमार और डायरेक्टर अनीस बज़मी की जोड़ी इस फिल्म के जरिए 15 साल बाद कमबैक कर रही है। दोनों ने इसके पहले 2011 में आई फिल्म थैंक यू में साथ काम किया था। इस फिल्म को साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर दिलराजु प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म इसी साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: बिहार के गया में पटवा टोली की एक संस्था की छोटी सी पहल ने एक परिवार की पूरी तकदीर बदल के रख दी। पति के निधन के बाद कृष्णा देवी अपने 4 बच्चों के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। ऐसे में मुश्किल समय में वृक्ष संस्थान ने न सिर्फ कृष्णा देवी को रोजगार दिया बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाई। संस्थान के सहयोग और अपनी मेहनत के दम पर कृष्णा देवी की बड़ी बेटी कशिश कुमारी ने IIT में सफलता हासिल की और आज वो छत्तीसगढ़ के IIT भिलाई में सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। वहीं उनकी दूसरी बेटी भी अब IIT की तैयारी कर रही है। कृष्णा देवी की कोशिश ने कशिश दोनों मानती हैं कि अगर वृक्ष संस्थान का साथ नहीं मिलता तो शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होता। आज ये कहानी सिर्फ एक परिवार की सफलता नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक सहयोग की ताकत की मिसाल भी बन गई है। हिसार की एक महिला आज उन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी जला रही है जिन्हें कभी स्कूल का रास्ता भी नसीब नहीं था। हम बात कर रहे हैं सुमन मलिक की, जो कि पेशे से सरकारी स्कूल में हेड टीचर है। स्कूल की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुमन रोज ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के करीब 25 बच्चों को पढ़ाने पहुंचती है। खास बात यह है कि सुमन सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि अपने घर से बच्चों के लिए टिफिन भी लेकर आती है ताकि पढ़ाई के साथ उन्हें भरपेट भोजन भी मिल सके। शिक्षा और सेवा के इस अनूठे अभियान में अब कई लोग उनका साथ दे रहे हैं। सुमन की पहल समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर सितारों की चमक तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन अब मिलिए नोएडा की मयूरी मित्तल से, जिनकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। मयूरी ने 28 साल पहले एक सपना देखा था और उसे एक पेंटिंग में उतार दिया। वक्त बदला और वही सपना अब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सच गया। मयूरी को कान से बुलावा आया उनके अनोखे ब्यूटी पेंजन की वजह से। जिसमें बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी खूबसूरती को महत्व दिया जाता है। इस मंच पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, दिव्यांग और समाज की तय सुंदरता की परिभाषा से अलग महिलाएं शामिल होती हैं। कान पहुंचने का सफर भी आसान नहीं था, वीजा आखिरी वक्त में मिला और जल्दबाजी में मयूरी ने अपनी पुरानी पेंटिंग को ही अपनी ड्रेस का खास हिस्सा बना लिया। आज मयूरी मित्तल की कहानी ये साबित करती है कि सपने पूरे करने के लिए बड़े संसाधन नहीं, बड़े इरादे और लगातार मेहनत चाहिए।
12: फतेहपुर के बिंदकी तहसील क्षेत्र के कृपालपुर बिंदा गांव से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। रिन नदी पर पुल की मांग सालों तक अनसुनी रही, लेकिन जब ग्रामीण महिलाओं ने खुद आगे आकर लकड़ी का पुल बनाने की मुहिम शुरू की तो यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और अब सेतु निगम की ओर से करीब 27 करोड़ रूपये की लागत से स्थायी पुल का निर्माण शुरू हो गया। गांव की गृहिणी कलावती और उनकी साथी महिलाओं की पहल ने बदलाव की राह दिखाई। पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। करीब 70,000 ग्रामीण और सैकड़ों छात्र प्रभावित थे। पुल निर्माण शुरू होने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है और ग्रामीण इस मुहिम के सफल होने का धन्यवाद भी जता रहे हैं।
1: 46 साल का इंतजार और फिर ऐसा मिलन जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। पिथौरागढ़ के बैरीनाग में 15 साल की उम्र में घर से लापता हुआ बेटा साधु के वेश में अचानक अपने गांव लौट आया। 85 साल की मां ने उसे देखते ही पहचान लिया और बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बताया जा रहा है कि घर छोड़ने के बाद बेटा साधु जीवन अपनाकर राजस्थान के बीकानेर में रहने लगा। अब 4 दशक से ज्यादा समय बाद मां बेटे के इस भावुक मिलन की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की हुई है तो जीएनटीवी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील की है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के सतना में लेकर चलते हैं, जहां पर चित्रकूट के गुप्त गोदावरी पौराणिक स्थल की नेचुरल ब्यूटी, दो रहस्यमय गुफाएं हैं।

आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एमपी के चित्रकूट लेकर आया हूँ, जहाँ एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। इस जगह तक आपको अगर आसानी से पहुंचना है तो यूपी में आने वाले चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा रामघाट से आप यहां बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त गोदावरी रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। गुप्त गोदावरी यहां विंध्या पहाड़ों की पन्ना रेंज में एक गुप्त गुफा है जो कि गुप्त गोदावरी के नाम से मशहूर है। दरअसल ये पौराणिक नदी है

0: बैठकर पूजा करते रहे हो या तपस्या करते रहे हो। इस गुफा की एक और कहानी है। कहा जाता है कि रामायण के समय में श्री राम जब वनवास गए थे तब उन्होंने इसी गुफा में कुछ समय बिताया था। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो जुलाई से मार्च का महीना सबसे बेहतर होता है गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए। यकीन मानिए, यहाँ आपको सुबह से लेकर शाम तक इस आध्यात्मिक पर्यटन का एक अलौकिक आनंद ही मिलेगा।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

0: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
1: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
2: No ticket, no line, just showtime. Qualo Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qualo Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।

0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: देश की सबसे लंबी सुजला टनल का सफल ब्रेक थ्रू। सैन्य आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है यह टनल, 20 मिनट में तय होगा 3 घंटों का सफर। लखनऊ के BKT में बनेगी यूनिक कल्चरल म्यूजियम, 3D तकनीक और इंटरैक्टिव गैलरियों में दिखेगी भारतीय जीवन यात्रा की अद्भुत झलक। बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धिदात्री के श्रृंगार, दर्शन को उमड़े भक्त, निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से की गई भव्य सजा। उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने का सिलसिला। बद्रीनाथ में अब तक 9,74,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 65,000 का आंकड़ा पार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू। नितिन गडकरी, LG मनोज सिन्हा ने टनल का निरीक्षण किया। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंतिम ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर अब महज 20 मिनटों में। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत होगी खत्म, सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जोजिला सुरंग से सीमा क्षेत्र में सैन्य साजो सामान और रणनीतिक आवागमन को भी फायदा मिलेगा। देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्यौहार। आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन। विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का विशेष महत्व। मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को हुई थी भगवान श्री राम और बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य का कई गुना फलदायी होता है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़ा मंगल पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी हुई लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके चमेली का तेल सिंदूर अर्पित किया। छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार हुआ, भगवान को अर्पित किए गई फूल वाली माला। छठे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, राम मंदिर में तैनात नजर आए जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए पूजा की जाती है। अयोध्या में छठा बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी हुई है लंबी कतारें, भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। प्रयागराज में बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठा बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान जी को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी इंतजाम। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री का विशेष श्रृंगार किया गया, फूलों से सजा दरबार। नैनी लाख के कैंशी धाम में नीम करोली धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 15 जून को लगेगा महामेला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैंची धाम के आसपास विशेष ट्रेनिंग रूट और सुगम पैदल मार्ग के लिए विकसित किए जा रहे हैं। कैंची मेले के लिए श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष शटल सेवा, की किराया भी हुआ तय। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दुग्ध दही घी शहद फलों से पंचामृत। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया, सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। अयोध्या पहुंची भोजपुरी सिंगर रनेशा उपाध्याय, रामलला के दर्शन किए। सिंगर रनेशा उपाध्याय ने सिंगर पवन सिंह की जीत की कामना की, कहा इस बार पवन सिंह की जीत पक्की है। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में दौरा किया, इंतजामों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी कसी कमर, अधिकारियों ने चंदरकूट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा अरफानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा बलों ने उधमपुर में मॉक ड्रिल की। अभ्यास में जम्मू और कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड की तैयारी। जम्मू कश्मीर की बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई, प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज और रेलवे ट्रैक क्वार्टर में तलाश। मॉक ड्रिल में NH-44 पर लंगर स्थल पर भूस्खलन से लेकर लंगर पर आतंकवाद हमला और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभियान जैसे वास्तविक आपदा परिदृश्यों पर दर्शाया। मॉक ड्रिल के अलावा अन्य तरह के विशेष बलों के साथ समन्वय भी परखा गया। अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में श्री हरगोविंद सिंह साहिब जी के गुरदा गद्दी दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, लोगों ने गुरुद्वारे में दीपक जलाए। गुरदा गद्दी दिवस पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पवित्र सरोवर के आसपास पूरे नजारे का अद्भुत दृश्य। गुरुता गद्दी दिवस पर कीर्तन और प्रार्थना की गूंज से सराबोर हुआ मंदिर परिसर। गुरुतागद्दी दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की मंत्री एस सविता, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। गोवा के बंबोलिया में 42वें EEPC इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री शामिल हुए। पटना में भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार का भव्य स्वागत हुआ। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव का बेद ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदन लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें शेयर की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ हुआ। राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। शिमला समर फेस्टिवल में शुभारंभ के मौके पर सजाए गए मंच पर गायकों ने बांधा समा। समारोह के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने पेश किया मनमोहक नृत्य। कलाकारों में जबरदस्त उत्साह। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर लोक कला और स्थानीय संस्कृति के जबरदस्त रंग देखने को मिले। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए कलाकार। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसर और आम लोग भी शामिल हुए। कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं पर्यटक। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जम्मू कश्मीर का खुशनुमा मौसम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बड़ी पर्यटकों की संख्या। साफ हवा, सुहाने मौसम कर रहे हैं आकर्षित। सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं जम्मू कश्मीर पहुंच रहे सैलानी। बर्फ की चादर ओढ़ी पहाड़ियों की चोटी, सूरज की रोशनी देख रहे हैं। भीड़भाड़, प्रदूषण और गर्मी से दूर यहां सुकून भरे पल बिता रहे हैं पर्यटक। सोनमर्ग में सैलानियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग खुश। सैलानी बढ़ने से स्थानीय कारोबारी में भी इजाफा। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान। अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। विदेश ने पैर संतुलन स्पर्धा में उत्कृष्ट कौशल और संतुलन का प्रदर्शन दिखाते हुए जीता सोना। युवक विदेश राउत ने प्रतियोगिता में अद्भुत खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। बेटी की सफलता पर पूरा पालघर में खुशी की लहर। अहमदाबाद के एका अरीना में 4 से 8 जून तक किया गया पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शानदार आयोजन। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था समारोह का उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और योग गुरु रामदेव भी शामिल हुए। इंदौर ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक के पहले विदेशी प्रतिनिधियों ने चखा इंदौर का अलग अलग जायका। बैठक से पहले इंदौर की चार चौपाटी पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि, पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया। भारत के सबसे स्वच्छ शहर की 56 दुकान पहुंचे विदेशी मेहमानों की ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका समेत तमाम प्रतिनिधि। मेहमानों ने पोहा, भुट्टे का कीस, दही बड़ा, कचौरी भी टेस्ट की। ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक 11 जून तक चलेगी, जिसके बाद 12 और 13 जून को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की होगी बैठक। ओडिशा के मयूरभंज को विकास की सौगात। 430 करोड़ की लागत से तैयार 30 योजनाओं का शुभारंभ। बारीपादा में 650 बिस्तर की टीचिंग अस्पताल का उद्घाटन। पिंपलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुंबई में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। तेलंगाना से संगारेड्डी जिले में एक बच्ची की शिकायत बनी। 600 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की बजाय शिकायत के बाद साइकिल बांटने की मुहिम 600 बच्चों तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ग्वालियर पुलिस लाइन में 34वीं अंतर्राज्यीय नॉर्थ जोन पुलिस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों का तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: Schwarber to right field, and it will lead.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मशीनों ने इंसानों को उनकी जो जिंदगी है आसान बना दिया है, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो इंसानों की जगह ही ले ली है। खास तौर से अगर हम देखें तो चीन में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर घरेलू कामकाज तक हर जगह ये नजर आ रहे हैं।

0: ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर रोजमर्रा के कामों तक हर काम में आपका साथ देगा रोबोट। चाहे गेस्ट अटेंड करना हो, कॉफी बनाना हो, घरेलू कामकाज हो, डांस हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये हर काम में माहिर है और आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार। तभी तो चीन ने अपने देश में इन्हें हर मोर्चे पर उतार दिया है। ये है ह्यूमनॉइड रोबोट HJ985 रोबोट हांगसू, जिसे झेजियांग प्रांत में एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सड़क पर तैनात किया गया है, ताकि वो ट्रैफिक मैनेज कर सके। और देखिए वो इस काम को कितने खूबसूरती से निभा भी रहा है। इसे मालूम है कब रुकने का इशारा करना है, कब चलने का। ये न सिर्फ इशारों में अपनी बात कहता है, बल्कि अपनी आवाज से भी लोगों को चौंकाता है। HJ985 रोबोट हांगसू को पता है कि वो एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तैनात है। ऐसे में वो जहां एक और लोगों से बेवजह हॉर्न ना बजाने और परीक्षार्थियों को रास्ता देने की अपील कर रहा है, वहीं स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए शुभकामना देता भी नजर आए। AI और वीडियो बेस्ड इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से तैयार ये ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्त की तरह काम आ रहे हैं, जो बिना थके काम कर सकता है और आपात परिस्थितियों में उनसे तालमेल बिठाकर काम आसान कर सकता है। वहीं चीन के वुहान में तो ह्यूमनॉइड रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई इसका दीवाना है। काम जो आसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: देश की सबसे लंबी जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू, सैन्य आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है यह टनल, 20 मिनट में तय होगा 3 घंटों का सफर। लखनऊ के बीकेटी में बनेगा यूनिक कल्चरल म्यूजियम, 3D तकनीक और इंटरैक्टिव गैलरियों में दिखेगी भारतीय जीवन यात्रा की अद्भुत झलक। बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त, आज हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धिदात्री के श्रृंगार, दर्शन को उमड़े भक्त, निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से किया गया श्रृंगार। उत्साह से जारी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने का सिलसिला, बद्रीनाथ में अब तक 9,74,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 65,000 का आंकड़ा पार।
10: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: जासूस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधों को सुलझाने या फिर जानकारी जुटाने के लिए जांच करता है। और आज तो मैं हूँ सास बहु और बेटिया की जासूस। तो चलिए फिर ताका झांकी करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में और पता कर आते हैं कि आज कौन किसके पीछे कर रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग, कौन बिछा रहा है जाल या फिर कौन रच रहा है एक नया षड्यंत्र। आज तो पेश है आप सबके लिए सास बहु और बेटिया की एंटरटेनमेंट वाली रिपोर्ट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये एंटरटेनमेंट का सफर हेडलाइंस के साथ।
1: एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज़ आज देखिए, ललित करेगा अपराजिता पर अत्याचार, फूटेगा रक्षित का गुस्सा। विक्रांत के लिए तड़पती मन्नत, धैर्य करेगा खुद का खुलासा। आरंभी और ध्रुव के रिश्ते पर लगेंगे इल्जाम, आरंभी देगी पलट कर जवाब।

0: सीरियल अनुपमा में होगी नए रिश्तों की शुरुआत।
1: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
2: हम मंकी और बेबी गर्ल को बोल देंगे आपस में डिस्कस करके, दोनों में से कोई एक तो डॉक्टर बन ही जाए।
0: अरमान की यादों के लिए वीडियोस बनाएगी अभीरा।
2: इस वीडियो में तुम्हारी हेल्थ के लिए, मंकी और बेबी गर्ल के लिए हमारे जो भी डर, जो भी ड्रीम्स, होप्स डिस्कस होंगे।
0: और बरेली के बच्चन के लॉन्च पर दिखेगा अनोखा अंदाज। देखेंगे संगम का मेकओवर, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: अरे आप राजिता, डोंट वरी, कोई भी आपको परेशान कर रहा है आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, मैं ना कर दूंगी उसका काम तमाम। और फिर उसकी मजाल नहीं है कि आपके आस पास भटके। वैसे देखिए, अगर आप रक्षित का नाम लेने वाली हैं ना, तो वो तो हैं आउट ऑफ आवर लिस्ट, क्योंकि रक्षित तो हैं हम सबके फेवरेट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको प्राजिता और रक्षित के पास, और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
1: अपराजिता के आगे गिड़गिड़ाता ललित।
2: मैं बहुत गलती की, नहीं करनी चाहिए, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तुम जो कहोगी मैं करूँगा। एक
3: मैं आपको कोई मौका नहीं दे सकता।
1: ललित के लिए अपराजिता का इनकार। ललित पर फूटा रक्षित का गुस्सा। स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में आज कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर ललित यानी कि अपराजिता का पति उसके ऑफिस तक पहुंच चुका है। और देखिए कैसे फोकट ने केवल हाथ जोड़कर अपराजिता से माफी मांग रहा है, और साथ ही उसे एक और मौका देने के लिए भी कह रहा है, लेकिन अपराजिता इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है।
2: और कहां जाऊंगा बीबी जी, मैं जिसका दिल दुखाया है, जिसके साथ गलत किया, उससे माफी भी तो मांगनी पड़ रही। प्लीज प्लीज
3: माफ
2: कर दो। अरे तुम बाहर कहीं मिलती नहीं हो तो ऑफिस में मिलना पड़ेगा ना। देखो मैंने बहुत गलतियाँ की, नहीं करनी चाहिए। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। एक
1: जहाँ एक तरफ ललित कह रहा है कि वो बदल चुका है, तो ऐसे में अपराजिता के मना करने के बावजूद भी फिर एक बार ललित का गुस्सा सामने आ गया, और असली रूप भी देखिए कैसे वो फिर एक बार अपराजिता को टॉर्चर करने लगा। ऐसे में अपराजिता खुद को बचाकर केबिन से बाहर निकल जाती है।
2: कितनी जरूरत तो
3: मुझसे
2: और किसके साथ रहोगी? माँ बाप, भाई बहन, वो कब तक साथ देंगे तुम्हारा, कब तक? अरे हर ऊंच नीच में सुख दुख में एक पति ही साथ देता है, एक औरत का असली सहारा उसका पति देता है। इसे चलो मेरे साथ, मैं सब ठीक
3: करूंगा।
1: दूसरी तरफ आ गए हैं रक्षित के पापा, और ऐसे में होती है उनकी मुलाकात अपराजिता से, और अपराजिता देखिए कैसे उन्हें देती है मौका ये साड़ी बनाने का, लेकिन यहाँ पर ईरा आकर बवाल कर देती है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि अपराजिता रक्षित के पापा से काम करवा रही है, लेकिन रक्षित के पापा ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था।
4: लड़की भी ना अपना काम कंपनी के मालिक से करवा रही है। बेचारे अंकल की हालत वैसे भी ऐसी,
3: उनकी हालत उनकी वजह से ही हो सकता है।
5: नर्मदा मैया पे जो साड़ी चढ़ानी है, तो मैं रक्षित को बोलता हूँ मुझे वो देखना है कि वो साड़ी कैसी बन रही है, तो वो मुझे अपने ऑफिस में लेकर आता है कि चलो आपको दिखाता हूँ साड़ी कैसी बन रही है। तो मैं वेट कर रहा होता हूँ, तो मुझे कुछ सुनाई देता है गाने की आवाज़, तो मैं चलते चलते वहाँ आ जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अपराजिता वो साड़ी बना रही है।
1: लेकिन यहाँ पर ईरा को मिल गया है अपराजिता को सुनाने का एक और मौका, जिसे उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर भी रक्षित आ गया है अपराजिता की साइड से बोलने के लिए।
4: रक्षित और पापा जी को पटाने की कोशिश कर रही है ना, इसलिए तुम पापा जी को यहाँ लेके आए। तुमने उनके काम में, तुम उनकी keep talking to?
3: ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं किसी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ना ही मुझे जरूरत रक्षित सर आपको इतना पसंद कर
4: देखो
3: अपनी हिम्मत में रहो एम्प्लॉय हो एम्प्लॉय की तरह रहना सीखो
4: फैमिली बनने की कोशिश मत करो काम कौन से काम की बात कर रहे हो अंकल जी से साड़ी बनाने का काम
2: पापा से वो साड़ी क्यों बनवाए
4: ओ और अपराजिता ने कह दिया तू सही होगा राइट
6: एक्चुअली ऐसा नहीं कि ईरा को रास नहीं आ रहा लेकिन डेफिनेटली वो मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनको डिमेंशिया भी है तो हमेशा मुझे ही भूलते हैं ये मुझे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सो आई फील कि मुझे भी याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा उनका तो मुझे बहुत ही खटके क्योंकि वो मुझे मेरा नाम नहीं याद रखती लेकिन उसको बहू बता रहे हैं सो डेफिनेटली ईरा इज़ वेरी वेरी एंग्री कि हमेशा अपराजिता के तरफ से सब क्यों सॉफ्ट हो जाते हैं वो तो इतना जानती भी नहीं है परिवार वालों को एंड स्टिल दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर तो दिस इरिटेट्स ईरा अ लॉट
1: खैर इन सब के बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा जहां खतरे में पड़ जाएगी अपराजिता की जान और अपराजिता अस्पताल में है ऐसे में उसके घर वाले तो आते ही हैं साथ ही यहां पर पहुंच गया है ललित भी जो कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहा है तभी वहां पर पहुंच जाते हैं रक्षित जो ललित को सिखाते हैं सबक
7: बेसिकली अपराजिता ने शायद तो रक्षित को कहीं से शायद थोड़ा पता लग जाता है कि ये एक अब्यूसिव हस्बैंड से मैरिड है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रक्षित को पता लग जाती हैं तो ऑफ कोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा यू नो ऐसी बातें अगर हम सुनेंगे तो उसी जोश में वो मेरी तरफ पड़ता है और मुझे देख लेता है अब आपने ये बातें किसी के बारे में सुनी हैं और वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे तो वही रक्षित कर रहा है और यू नो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग यार इसको बेसिकली किसी चीज़ से मतलब है नहीं बस अपना काम निकलवाना है अपना काम बनाना है इसको तो भला बनने के लिए वो यहाँ पे आया है कि यार मैं देखूँ मेरी बीवी कहाँ है इट्स ऑल यू नो नाटक है सारा फेक है जो वो कर रहा है बट हाँ करना तो उसको पड़ेगा क्योंकि अगर उसको वापस अपराजिता के पास जाना है So he has to do all those things.
1: तो भाई रक्षित को पता चल चुका है कि ललित किस तरह का इंसान है और अब वो करेंगे अपराजिता से ललित की रक्षा इसी बीच क्या बन जाएगा रक्षित और अपराजिता का रिश्ता ये देखना होगा काफी दिलचस्प
8: के लिए नहीं पहचान लेकर ऊंची उड़ान भरने के
9: थैंक यू गणेश मेरा आत्मसम्मान मेरा वजूद मेरी आजादी मुझे लौटाने के लिए और उस हिम्मत के लिए जिसकी वजह से मैं अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ पाई उस पुरानी जिंदगी का काला साया मेरी आने वाली जिंदगी पे ना पड़े
1: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
10: मुझे मम्मी मारिए आपको जो करना है कीजिए लेकिन मुझे मेरी अपराजिता वापस कर दीजिए मैं इसके बिना मर जाऊंगा
0: अनुपमा आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपको कौन कर रहा है तंग देखिए आज तो मैं हूँ सास बहू और बेटिया की स्पेशल एजेंट यानी जासूस यूं चुटकियों में पता लगा लूंगी उसके बारे में और बस फिर तो हो जाएगा उसका दी एंड तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास अब अनुपमा की हेल्प करना तो बनता है ना गेट सेट

0: चाहिए,
1: हो रहा है प्यार का इजहार भी।
0: क्या चाहिए?
2: मेरा काम ये कुक्स के पीछे भागना नहीं है। तुम सिर्फ एक दिन एक ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाओ।
1: रिश्तों में कहीं हो रही है तकरार भी।
3: आप कहाँ आ रही हैं?
4: मैं नहीं चाहता मेरे कैफे में कोई भी नेगेटिविटी हो।
1: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में किस्मत अनुपमा और दिग्विजय को करीब लाने की कोशिश में जुट गई है। जरा देखिए कैसे आज अनुपमा और दिग्विजय दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई है। असल में अनुपमा रसोई में पहुंची थी अपने लिए गर्म पानी करने के लिए, लेकिन वहां दिग्विजय पहुंच गए और देखिए जैसे ही अनुपमा और दिग्विजय आमने सामने आए दोनों के बीच दोस्ती वाली तू तू मैं शुरू हो गई, यानी दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे।
5: एक बात कहूं सर, अगर आप मेरे साथ रेस लगाएंगे ना तो मैं एक टांग पे भी आपको धूल चटा दूंगी। धूल अम्मा,
6: आपके लिए दालचीनी वाली चाय बना देता हूँ, आपको पेन में आराम मिलेगा।
5: तो सर अपने लिए भी बना लीजिए, पेन में राहत मिलेगी।

इंडियाज बेस्ट डांसर में खास मेहमान बनकर आने वाली है माधुरी दीक्षित यानी कि टीम माँ बहन। ऐसे में यहाँ पर लग गया है डांस का तड़का। इसी के साथ सोनी टीवी लेकर आ रहा है सितारों का सेलिब्रेशन, जहाँ पर शामिल होंगे सितारे और होगा एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड।

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के सेट से सामने आई है हर्ष गुजराल और रोहित शेट्टी की ये तस्वीरें, जहां शूटिंग के साथ लग रहे हैं ठहाके। बात करें मन्नत की, तो टीम मन्नत ने की पार्टी और ऐसे में ये सभी ऑफ स्क्रीन साथ साथ नजर आए पार्टी करते हुए। इसी के साथ मन्नत के सेट से खबर आ रही है कि सीरियल में जल्द ही होगी नई एंट्री, यानी कि पुनीत तेजवानी, जो नागिन 7 में नेगेटिव रोल में नजर आ चुके हैं, वो मन्नत की कास्ट को ज्वाइन करेंगे और कहानी मिलाएंगे नया ट्विस्ट।

सनी देओल और प्रीति जिंटा की बन गई है जोड़ी। ये दोनों नजर आने वाले हैं आने वाली नई फिल्म बंटवारा 1947 में। सामने आया है इसका ट्रेलर। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म 16 अगस्त को रिलीज होगी।

बिग बॉस फेम नेहल बन गई हैं दुल्हनिया, देख लीजिए इनकी ये दुल्हन वाली तस्वीरें। वैसे आपको बता दे कि ये रियल लाइफ में दुल्हन नहीं बनी है, बल्कि एक म्यूजिक वीडियो के लिए। ये है उनका नया लुक।

अविका गौर ने शेयर किए हैं बीटीएस नज़ारे अगली स्टोरी से, जो कि जियो हॉटस्टार पर आ रही है। आप भी डालीजिए इन बीटीएस नज़ारों पर एक नज़र। बीती शाम हुई आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, शर्मन जोशी, एहसास जना, डोनाल्ड बेस्ट, सुनिधि चौहान, निकिता दत्ता और कई और सितारे।

वही खबरों की माने तो पहले फिल्म धमाल 4 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हो रही है, यानी कि फैंस के लिए है ये गुड न्यूज। शशि सुमित प्रोडक्शन लेकर आ रही है जी टीवी पर अगला शो, और खबरों की माने तो इसमें बतौर लीड नजर आ सकते हैं फहमान खान।

बॉस के नए शो बरेली के बच्चन में जल्द हो सकती है एक्ट्रेस पायल गुप्ता की एंट्री, जिन्हें आप कई और सीरियल में देख चुके हैं, जैसे कि मीत, बन्नी चाओ और कई और। खबरों की माने तो कुणाल के कपूर जल्द ही टेलीविजन पर कर सकते हैं अपना कमबैक आने वाले नए शो शायद यही प्यार है से, जिसकी कास्ट को ये ज्वाइन करेंगे, जिसमें लीड्स निभा रहे हैं अदिति शर्मा और दक्ष पुरी। सन्नियों के शो दिव्य प्रेम में जल्द होने वाली है गणेश कार्तिक।

0: अपनी पारखी नजर से चोरी चुपके कर देते हैं अपना काम। वैसे इसी तरह सास बहू और बेटा की टीम भी अपनी पारखी नजर से लेकर आई है आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
1: What, chumka?

0: बरेली के बच्चंस, जहाँ पर एक ससुर जी है और उनके 3 बेटे हैं, लेकिन इनके घर में कोई नारी नहीं और इनके घर आने वाली है संगम दिलों को जोड़ने।
1: भैया बाजार के झुमके से लेके प्रियंका चोपड़ा के ठुमके तक अपना बरेली फेमस है, और फेमस है अजब सिंह के गजब घर के लिए, यानी मैं। सालों पहले जब माँ इस फ्रेम में आई, उसके बाद यहाँ कोई स्त्री नहीं आई। वातावरण मर्दाना, घर बना मैं खाना, सारी रौनक जाने लगी। भैया अब तो आईने को भी दाढ़ी आने लगी। फिर एक दिन हवा में खुशबू फैली, पायल की छनछन हुई और मेरी दहलीज पर पड़े संगम के कदम। भैया ससुराल में मचा है छीछा लेना, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर।
0: एक ऐसा ससुराल जहां पर सास नहीं, जल्द ही संगम आकर यहां पर उस कमी को पूरा करेगी। सास बहु बेटियां आज आपको लेकर चल रहा है बरेली के बच्चन की दुनिया में, जहां पर मस्ती है, मजाक है, ससुर है, 3 बेटे हैं और एक होने वाली बहुरानी है जो है बड़ी मॉडर्न ख्यालों वाली, लेकिन इनका ससुराल है बड़ा ही अतरंगी। इस अतरंगी ससुराल में घर की हालत बहुत खराब है, ऐसे में बहुरानी आकर इस ससुराल को ठीक करेगी।
1: कृष्णा ने तिकड़म से संगम के साथ कर ली शादी, पर औरत रहित इस घर में सिर्फ मर्दों की है आबादी। भैया ससुराल में मचा है छीछा लेदर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर, बरेली के बच्चन।
0: लेकिन बहुरानी इस ससुराल में कैसे फिट बैठेगी, इसके लिए आज हम बरेली के बच्चन की सरगम यानी रमनी कटारिया के साथ पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। देखेंगे कि रमनी कैसे रेडी होती है, कैसे करती है श्रृंगार और कैसे अपने सास बिना ससुराल यानी बच्चन हाउस की बहू बनने की तैयारी कर रही है।

0: मुंबई में हुआ कलर्स के नए शो बरेली के बच्चन का लॉन्च और अब ये शो आ चुका है। वही पर्दे के पीछे इस शो का लॉन्च बड़ा ही ग्रैंड था, जहां पर मुख्य कलाकार प्रविष्ट मिश्रा उर्फ कृष्णा बच्चन ने सूत्रधार बनकर अपने शो की कहानी सुनाई, अपने पिता से मंगवाया, अपने तीनों भाइयों से मिलाया और हाँ, अपनी होने वाली दुल्हनिया सरगम से भी मिला, जिनके साथ माला पहनकर वो उनके पति बन गए हैं और इश्क फरमा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे इनका रोमांस बड़ा ही अंग्रेजी है, जो सिर्फ सास बहू और बेटियां में आपको दिखेगा, क्योंकि सरगम आज हमें अपने इस बच्चन ससुराल को घुमाने वाली है। देखेंगे कि ससुराल की बहू बनने के लिए सरगम यानी रमनी कैसे तैयारी करती है, कैसे रेडी होती है, कैसे दिल्ली की लड़की मुंबई में अपने सीरियल के चलते अपनी फैमिली को मिस कर रही है, कौन है इनके सेट के संगीत साथी, क्या होती है पर्दे के पीछे की मस्ती। तो सीधा चलते हैं बरेली के बच्चन की संगम से मिलने।
1: अभी लॉन्च है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, काम भी फील कर रही हूँ, बट बहुत मेहनत करी है, कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इसको शूट करने में, और आपको उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में। तो आज हम रेडी हो रहे हैं फ्रॉम रमनीक टू संगम का सफ़र, तो आइए रेडी होइए हमारे साथ।
0: दिल्ली की रमनी का मुंबई में बच चुकी है, क्योंकि इनका शो बरेली के बच्चन अब आ चुका है। भाई मुंबई में इसके लॉन्च वाले दिन के लिए आज रमनी खास श्रृंगार कर रही है, अपने किरदार में ढल रही है, यानी देखेंगे कि कैसे रमनी बनती है बरेली की सरगम। तो भाई कैसा होता है इनका साजो श्रृंगार, आइए जानते हैं।
1: मेकअप कर रहे हैं प्रसाद दादा, मेरा मेकअप करते हैं रोज, मुझे संगम बनाते हैं, और सुषमा ताई मेरे हेयर करती है, जो संगम के हेयर करती है। ये रिहर्सल्स चल रही हैं, और इवन इस कैरेक्टर के लिए मैंने, मतलब अ पार्ट ऑफ मी इज़ दिस कैरेक्टर, बिकॉज़ मेरा कैरेक्टर बहुत एम्बिशियस है, इंडिपेंडेंट लड़की है, बट बहुत चीज़ें मैंने सीखी भी हैं इस कैरेक्टर से, बट वो आपको देखने को मिलेगा, अभी मज़े आएंगे।
2: कितना टाइम जाने वाला दादा?

0: हफ़नास में रहेंगे।
1: क्या अलग करने वाले आज?
2: संगम संगम बनाएंगे।
3: हमने मेकअप रखा है, इवन हेयर जो रखे हैं, मेकअप बहुत रॉ मेकअप है, काइंड ऑफ लाइक नो मेकअप लुक ही है, बिकॉज वो एक यंग फ्रेश लुक देता है एंड ऑन स्क्रीन भी अच्छा लगता है, इवन इन माई कैरेक्टर वो एक अच्छी एनर्जी देता है, तो वी हैव केप्ट इट वेरी लाइट लाइट मेकअप, नॉट हैवी हैवी मेकअप।
4: तो भाई बच्चन परिवार के होने वाली बहुरानी बड़ी ही ग्लैमरस है और पूरे बरेली में हल्ला मचाने वाली है, लेकिन इनका मेकअप होता है बड़ा ही सटल। चेहरे की बेस की तैयारी शुरू हुई, इन्होंने पहले से अपनी स्किन प्रेप कर लिया है।

0: वैसे साथ साथ इनकी हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है। भाई ने जल्दी जल्दी स्टेज पर जाना है, अपने शो का विधिवत लॉन्च करना है, इसलिए फटाफट इनका मेकअप और हेयर शुरू हो चुका है।
1: स्किन केयर बाय द वे अभी दिखाया नहीं बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, तो स्किन केयर के लिए मैं टोनर लगाती हूँ सबसे पहले, बिकॉज मेरी स्किन लाइक थोड़ी एक्ने प्रोन स्किन है, तो ऑयली भी हो जाती है और गर्मी बहुत है आजकल, तो हम लोग बहुत गर्मी शुरू करें, टैन भी हो गई हूँ मैं बहुत, आप लोगों को शायद एपिसोड्स में भी दिखेगा कुछ कुछ सीन्स में कि कोई अलग कलर है, फिर कुछ कुछ मैडम बेस से मैच करने की कोशिश करें, बहुत गर्मी हो तो मैं मॉइस्चराइजर थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज वही ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं। एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, उसके बाद फिर हम बेस से शुरू करते हैं।
0: पिछले का बेस तो शुरू हो गया, लेकिन रमनीक का मेकअप बहुत ही सिंपल होता है। आजकल सीरियल में नया ट्रेंड आ गया है जहाँ पर नो मेकअप मेकअप लुक हो रहा है, और बरेली के बच्चन की रियलिस्टिक कहानी में सरगम का लुक भी काफी रियल है।
1: हल्का सा कलर करेक्ट करा, अंडर आई वगैरह जो भी थोड़े बहुत मार्क्स वार्क्स है, एंड उसके बाद हमने अभी हम बेस कर रहे हैं, और सबसे पहले हम आई मेकअप से शुरू करते हैं। तो हल्का सा वही जो मैं कह रही थी, हम बहुत आज हम थोड़ा शायद ज्यादा कर रहे हैं मेकअप, बट यूजुअली एपिसोड्स में बहुत ही, बिकॉज कॉलेज की लड़की है, अभी जस्ट ग्रेजुएट है, तो हमें बिल्कुल वैसी रॉ फीलिंग देनी है उसे, नेचुरल ब्यूटी वाली, तो आज थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा वो आई शेडो रखा है थोड़ा रेड के टोन में, पिंक के टोन में, एंड आई लाइनर थोड़ा ज़्यादा विंग करा है, एंड अब हम बेस कर रहे हैं।

0: भैरवनीप की मेकअप टीम लगी हुई है उनके चेहरे को चमकाने में, क्योंकि मुंबई में जबरदस्त गर्मी पड़ी है पूरे देश की तरह। बरेली के बच्चन की शूटिंग कभी इंडोर तो कभी आउटडोर होती है, ऐसे में मेकअप को टिकाना जरूरी है, जिसके लिए टीम पूरी मेहनत कर रही है।
1: रियल लाइफ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेकअप अवॉइड करती हूँ, स्पेशली जब से शूट स्टार्ट हुआ है, बिकॉज़ आई लेट माई स्किन ब्रीद, क्योंकि 12-12 13-13 घंटे मेकअप रहता है, टचअप होता है, फिर मेकअप उतरता है, टचअप, इवन दो इट्स लाइट मेकअप बट स्टिल मेकअप इज़ मेकअप एंड वो पोर्स को आई लेट माई स्किन ब्रीद बेसिकली। तो जैसे ही पैकअप होता है मैं घर जाती हूँ, सबसे पहले मेकअप उतारती हूँ एंड दैट्स द बेस्ट फीलिंग ऑन अर्थ, और बाल खुलती हूँ।

0: फेस के मेकअप के बाद बारी आंखों के मेकअप के, उन्हें फाइनल टचेस दिया गया और देखिए रमणीक अब संगम में बदल रही है।
1: ब्राउ भी हम लोग ज्यादा फिल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज आई हैव थिकर ब्राउज तो नीड नहीं पड़ती, एंड इवन लैशेज वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी लाइट लुक है, मतलब इवन फॉर माई फेस इट्स वेरी लाइट। इतना लाइट बोल दिया है मैंने, इतना फेस हो चुका है। आज थोड़ा हैवी कर रहे हैं, एंड मेरे मेकअप को होने में, मतलब मुझे रेडी होने में, हाँ 20 मिनट्स मतलब मैक्सिमम लगते हैं, हेयर प्लस मेकअप।
0: रमणीक उफ सरगम की इस मेकअप डे आउट में जानते हैं कि इस मेकअप में उनका फेवरेट स्टेप कौन सा है।
1: अब मेरा फेवरेट स्टेप आने वाला है, मतलब जो मेरी फेवरेट चीज है, कि अगर मैं और कुछ ना लगाऊं तो ये चीज आई नेवर मिस, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट थिंग। दिस इज अ रमणीक एक्स संगम स्टेप, जो एज रमणीक आल्सो आई लव दिस, एज संगम आल्सो आई लव दिस, व्हिच इज वाइट काजल, बिकॉज ब्लैक काजल मुझ पर इतना सूट नहीं करता है, अगेन इट लुक्स वेरी हैवी ऑन माई आईज, तो वी डू वाइट काजल एंड उससे एकदम से लुक, आंखें खुल जाती हैं चाहे कितना भी सोया।
0: तो यह है रमणीक यानी सरगम का ही जादुई काजल, जिससे उनकी आंखें शो में बड़ी बड़ी लगती है और इन आंखों पर उनके कृष्णा उन पर फिदा हो गए हैं। तो देखिए कैसे ये वाइट काजल उनकी आंखों के लुक को संवार रहा है।
1: प्रसाद दादा बहुत कंजूसी करते हैं इसमें, अपना वाइट काजल बचा रहे हैं वो।
0: फाइनली रमणीक के मेकअप को फाइनल टचेस दिए गए और कुछ हैक्स के साथ अब वो रेडी हैं मुंबई की गर्मी को फेस करने के लिए।
1: हम आउटडोर शूट कर रहे होते हैं, मेकअप टिकता ही नहीं है, मतलब बिकॉज इतनी गर्मी हो रही है अभी मुंबई में, इतनी गर्मी हो रही है, एंड जैसे मड में कभी शूट कर रहे हो या इवन यहाँ पे भी आउटडोर है, तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ हैक्स लगानी पड़ती हैं, मतलब एवरी सीन के बाद थोड़ा टचअप करना पड़ता है, मतलब वहीं पे स्पंज के साथ। बट मेरे फेवरेट डेज होते हैं मेकअप के वन में शूटिंग इंडोर्स, बिकॉज उस दिन सुबह मेकअप होता है 8-9 बजे एंड वो रात तक टिकता है, मतलब वो रात के 10-11 बजे तक टिका रहता है, तो वो बहुत कंफर्टेबल लगता है।
0: रमणीक ने कुछ टिप्स आज वो बेटियों के व्यूअर्स को दी कि कैसे मिक्स एंड मैच करके वो अपना फेवरेट शेड बनाती है।
1: मुझे पर्सनली लगता है ये जो शेड्स है, ये मुझे शेड इतना नहीं पसंद, बट एक लिपस्टिक है मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, जिसका मैं आपको हाल दिखाती हूं क्या हो रहा है। फिर कभी नाचे तू जैसे, बड़ी मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, तो आई कंबाइन दिस, मतलब ये हल्का सा लाइन करती हूं मैं इसको एंड हल्का सा इसको कंबाइन कर देती हूं, तो बहुत अच्छा प्यारा शेड निकल के आता है। फील लाइक मतलब फॉर इंडियन स्किन टोन दिस शेड इज द बेस्ट, मतलब पिंक मैंने ट्राई करा हुआ है, ऑरेंज, पता नहीं क्या क्या मैंने इतने शूट्स पे, आई हैव ट्राइड सो मेनी कलर्स, बट एंड ये हल्का सा टिंट आई पुट, सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ 2-3 थिंग्स एंड उससे बहुत प्यारा शेड निकल के आता है, उससे दांत भी पील हो जाते हैं इस टिंट से, बट दिस इज अ लिप ग्लॉस दैट आई यूज। But for Indian skin tone, go for these shades. Well, these shades are the best. And you'll thank me later.
0: अब रमणीक जीन्स और स्पेगेटी की जगह जल्द ही संस्कारी रूप लेने वाली है। वही बच्चन परिवार की बहू रानी का लुक बिल्कुल देसी है। तो जरा देखते हैं उनकी कॉस्ट्यूम कैसी है।
1: Okay, I am ready makeup wise and अब मैं आपको आज का आउटफिट दिखाने वाली हूँ, जो रिलीज का आउटफिट है, एंड ऑल्सो ये एक एपिसोड में भी आपको दिखेगा। अब आई डोंट रिमेम्बर कौन सा एपिसोड, इतने शूट हो चुके हैं। तो ये है, एंड पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स बिकॉज आई लव दिस कलर, तोता कलर। तो ये है नीचे का एंड ये है ऊपर का, एंड संगम के साथ ये एक चीज़ है कि हमने बहुत इंडो वेस्टर्न टाइप लुक दिया, उसे मॉडर्न लड़की है, इंडो वेस्टर्न, एंड वी हैव गिवन नॉट टू ट्रेडिशनल, इवन द ज्वेलरी इज वेरी नाइस, इसके साथ जो है वो ईयर रिंग्स बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी. बट वही है कि मेरे कैरेक्टर में हमने ज़्यादा उसको ट्रेडिशनल देसी वैसी लुक नहीं दी है, तो इंडो वेस्टर्न बहुत अच्छे प्यारे कलर्स भी हैं और स्टाइल्स भी हैं. तो दो तीन तरीके के स्टाइल्स एक्सप्लोर करें इन द शो अभी के लिए, शादी से पहले तक का मैं बोल रही हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है. तो मैं चेंज कर लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे.
0: भाई रमनीक ने पहनी अपनी कॉस्ट्यूम जो बिल्कुल तोतिया है. आज इस तोते वाले हरे रंग पर तो कृष्णा बिल्कुल फिदा हो जाएंगे, लेकिन ये लुक कंप्लीट होगा जब इसमें राइट अमाउंट ऑफ एक्सेसरीज और ज्वेलरी जाएंगी. तो चलिए कॉस्ट्यूम तो हो गया, देखते हैं ज्वेलरी कैसी है.
1: आई एम रेडी एज संगम एंड मैं कह रही थी आई लव दिस कलर, तोता कलर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कलर है. एंड ये मेरी ज्वेलरी है, तो ये आपको हर एपिसोड में दिखेगा, अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ मैं एक हाथ में पहनती हूँ और एक हाथ में घड़ी पहनती हूँ. और बिकॉज हमारे शो का नाम बरेली के बच्चन है एंड बरेली में क्या फेमस है, झुमका फेमस है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के झुमके अगर मेरे बाल ना छुपा रहे हो तो दिखने को मिलेंगे. झुमके इयर रिंग्स बहुत ही यूनिक टाइप के, जैसे ये है तोता ही है ये इसमें आई थिंक शायद, तो ये इसके साथ दिया है. और बिकॉज शुरू में तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ बिकॉज मेरे विल के अगेंस्ट बहुत चीज़ें हो रही है मेरी फैमिली में, तो रिंग हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट बिकॉज मैं हमेशा अपनी रिंग के साथ फिजिट करती हुई दिखूंगी, तो हमेशा मेरे इस उंगली में रिंग रहती है. तो चलो मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ.

0: हेयर मेकअप ज्वेलरी कॉस्ट्यूम के बाद फाइनल एक्सेसराइजेशन के बाद अब रमनीक बन गई है सरगम।
1: इन आउटफिट्स की जो अच्छी लगती है, इनका मटेरियल कॉटन है, बहुत सॉफ्ट है यूजुअली, मतलब जब ऐसे आउटफिट्स रहते हैं, एंड बहुत लाइट है क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा था गर्मी बहुत हो रही है मुंबई में, तो बहुत फ्री फ्लोइंग है और बड़े मजे आते हैं इनको पहन के।
0: अब भाई सरगम तो बनने वाली है बच्चन परिवार की बहू, लेकिन उनके दूल्हे राजा से तो मिलने, भाई उनके पिया कृष्णा से। भाई इस किरदार को निभा रहे हैं प्रवेश मिश्रा, जो पहले ही ढेर सारे शोज कर चुके हैं और इस शो में प्रवेश एक नए अंदाज में है। तो चलिए सरगम के साथ चलते हैं उनके पिया से मिलने। सरगम और कृष्णा की जोड़ी जल्द ही बनने वाली है, लेकिन इस देसी रोमांस का एक इंटरनेशनल वर्जन देख लें। भाई दोनों बड़ी फिल्मी हैं और फिल्मी अंदाज में देखिए कैसे सरगम और कृष्णा रोमांस कर रहे हैं।

0: हरा तोता लग रही हैं और पूरी टोटा लग रही हैं।
1: तोता तो बहुत सुना है मैंने।
2: तो आप हरा तोता लग रही हैं।
1: यूपी दिल्ली वगैरह में बहुत बोलते हैं।
2: बाकी तुम कुछ ना करिए, तुम जाने जहाँ तुम सबसे हसीन तुम।
0: तो हाल बेहाल है क्योंकि अब तक संगम जी हमारी जिंदगी में आई नहीं है, लेकिन दीदार हो गया तो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया मामला।
1: मेरा ही मैच कर रहे हैं
0: बॉल से। हाँ, शेड आसपास का है।
1: प्रेस हुई नहीं है और होगी भी नहीं क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लव एट फर्स्ट साइट है और वन साइडेड लव है।
0: बिना इंप्रेस हुए शादी कर ले रही है।
3: ये रांझना वाला हाल हो पड़ा है। मतलब
0: अबे आप देखेंगे, पहला एक शॉट है आज के एवी में भी देखेंगे, उसमें जो एक मैं ऐसे पहली बार जब संगम को देखता है कृष्णा तो ऐसे हाथ रख के ऐसे गिरता है। और वो शॉट मतलब बहुत बार बहुत अलग अलग तरीकों से लिया गया था। तो मुझको किसी ने पूछा था कि विच इज़ योर फेवरेट, तो मैंने बोला कि वो शॉट, क्योंकि उसमें वो रांझना वाला फील है, बांसुरी है, मोरपंख है, तो कृष्णा का एकदम कृष्णा स्टाइल है, निराला एकदम रास लीला रचाने। नहीं, रास लीला कृष्णा जब तक संगम नहीं आ रही थी तो कृष्णा सब जगह रास रचाने की कोशिश करता है, सोचता है कि कोई गोपी आ जाए कोई गोपी आ जाए। पर एक बार जब राधा आ गई, बरेली झुमका सिटी है, नाथ नगरी है, लेकिन अब बरेली की एक नई पहचान होगी कि बरेली बच्चनों वाला शहर है। हमारी जो प्रोड्यूसर हैं आरुषि, शी हरसेल्फ इज सो क्रिएटिव, तो उनके इनपुट्स थे, हमारे डायरेक्टर शशांक सर उनके बहुत सारे इनपुट्स थे, पूरी यूनिट के, और फिर एक्टर्स ने आपस में भी, हमने जब करते करते करते करते कुछ कुछ मतलब होता ना कि वो मत दे गए तो मक्खन फिर बाहर आया है कुछ।
1: संगम का ऐसा है कि हमेशा वो एक पिंजरे में रही है, तो पिंजरे से निकलने की उसको खुशी भी है, पर वही है कि कहाँ से निकले कहाँ गिरे, खजूर पे अटके। हाँ,
0: आसमान से गिरे खजूर पे,
1: एक चीज से हट रहे थे और ये इवन वर्स सिचुएशन में आ फंसी है, तो मजेदार होगा, मजे आएंगे देखने।
0: द फैक्ट कि चार भाई हैं, एक फादर हैं, पांच मर्दों का घर है, और जहाँ सिर्फ मर्द रहते हो आप देखिएगा घर की हालत भी आपको दिखाएंगे हाउस टू में कि घर की हालत क्या है, वैसे घर में संगम आएगी और ऐसे लोगों के साथ रहेगी जो एक ही कपड़ा चार चार दिन पहनते हैं, ठीक है, मतलब तीन दिन पहने, एक बार वापस उठा के सूंघ लिए, बुरा नहीं लग रहा है, तो चौथे दिन पहन लिए, और ऐसे में ही आएगी। और तो है मतलब परफ्यूम एकदम गम का हुआ तो परफ्यूम मतलब भौकाल लूज नहीं होना चाहिए, भौकाल एकदम टाइट। पैसा थोड़ा कम है तो कुछ है उसमें, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कम है पैसा है, खर्च कम करते हैं, लेकिन शौक से जीते हैं, प्यार से जीते हैं।
1: हाँ, मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे इसने ये भी नहीं बताया कि, मतलब मुझे ये तो पता है कि ये ड्राइवर है, पर जब मैं इसके घर आती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं होता है कि सिर्फ मर्दों का घर है, तो मैं भी गो विद द फ्लो हूँ, फिर आके पता चलेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे इसने ये भी नहीं बताया कि, मतलब मुझे ये तो पता है कि ये ड्राइवर है, पर जब मैं इसके घर आती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं होता है कि सिर्फ मर्दों का घर है, तो मैं भी गो विद द फ्लो हूँ, फिर आके पता चलेगा।
0: हाँ, वो दफ्लो का झटका लग जाता है उसको
1: उससे पहले तो। हाँ, क्योंकि मैं एक चीज को एस्केप कर रही हूँ, तो मैं भी चलो ठीक है कर लेते हैं जो भी हो रहा है, फिर झटका लगेगा।
0: प्रोड्यूसर यशपाल सर हूज प्लेइंग आवर फादर, किंशुक भाई जो हमारे भाई बने, बाकी हमारे दोनों भाई सतलुज माही संगम जी हैं, संगम जी का पूरा परिवार है, इनके जो फादर हैं गोविंद सर, इनकी जो मॉम अनीता मैम, तो मतलब उस भार को उठाने के लिए बहुत मजबूत कंधे हैं। बाकी हम कृष्णा हैं, हमको भार कंधों से उठाना नहीं पड़ता, हम तो सीधा छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं।
4: बरेली के बच्चन की सरगम के पियाजी यानी कृष्णा से तो मिल लिए, यहाँ पर उनके कुछ क्यूट से दोस्तों से भी मिलते हैं।
1: आइए मिलिए हमारे सेट के बच्चनों से। ये हमेशा मेरे रूम के आगे आके बैठ जाता है और ये रूम मेरा रूम गार्ड करता है। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हाँ हाँ, मेरे पास भी डॉग है घर पे एंड आई मिस हिम सो मच, तो मैं इन्हीं के साथ।
4: दिल्ली की रमनीक इस मौके पर अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है, इसलिए मम्मी का वीडियो कॉल आया और देखिए वो कितनी एक्साइटेड है।
5: तो मेरी मॉम रहती है दिल्ली में, इनको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो मैं उनको ऐसे सारे वीडियोज़ बनाते रहती हूँ, सेट का भी डेज भेजते रहती हूँ, और हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत नर्वस भी हूँ, बट देखते हैं, मैं फीलिंग वेरी काम, इट्स फाइन, बात
0: आराम से।
5: मैं अपनी मॉम को, मेरे डैड को, मेरे घर को बहुत मिस कर रही हूँ आज। माई मॉम हैज़ बिन माई बिगेस्ट रूटर ऑलवेज, मतलब उनकी वजह से मैं एक्टिंग में घुसी हूँ, उनको हमेशा आती है मैं एक्टिंग ही करूँ, एंड आज वो है नहीं यहाँ, बट वो है भी, वो हर जगह है, वो मेरे पास है, मेरे दिल में, तो या
4: तो भाई रमनीक रेडी है और उन्होंने स्टेज पर ज्वाइन किया कृष्णा को, जिन्होंने विधिवत शो को लॉन्च किया एज सूत्रधार। तो देखते हैं कैसे प्रवेश मिश्रा ने कृष्णा बनकर शाम का रंग दिखाया।
6: आपको ये पता है

0: कंपनी को प्रवेश के साथ शो का लॉन्च तो हो गया, लेकिन सबसे खास है बरेली के बच्चन के बच्चन से मुलाकात। जी हाँ, शो में प्रवेश के साथ तीन चेहरे हैं। एक है किंगशुक महाजन, जो ऑलरेडी टीवी की दुनिया में दिख रहे हैं, और साथ में दो नए चेहरे भी इस शो में दिखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सरगम के होने वाले जेठ जी और उनके देवरों से।
1: ये हमारे छोटे बच्चन, हमारे छुटके बच्चन, माही नाम है इनका। स्कूल कॉलेज जाना काम है इनका, सिर्फ जाना, वहाँ पढ़ाई करना नहीं, वहाँ जाके रील बनाते हैं और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऐप पे अपना अकाउंट बनाए हैं, स्वाइप करते रहते हैं, राइट राइट लेफ्ट वाला नहीं, ऊपर नीचे वाला।
2: और हम हैं गंगा बच्चन जी। बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये मेरे एक शो से मेल खाता हुआ शो है, लेकिन जहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और शो की लैंग्वेज चेंज है, और यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं आपस में आर्टिस्टों की वो भी अलग है। तो दिस इज़ इक्वली गुड, आई टेल माई ओल्ड ऑडियंस टू कम एंड वॉच दिस शो, बिकॉज ये बहुत बहुत ही डिफरेंट है उससे, लेकिन आपको उससे ज़्यादा मज़ा आएगा।
1: हमारे एंग्री बच्चन हैं, सतलुज नाम है इनका, और इनका क्या काम है खुद बताएंगे, देखिए।
3: तो हमारा काम, हम मैकेनिक हैं, इस घर में सबसे ज़्यादा पैसा लाने का काम हमारा ही है। इन लोगों को खुश भी रखते हैं, लेकिन दिमाग ठीक करके, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं, लाइन पर रखने की आदत हमारी है, इतना ही हमारा काम है।
4: नहीं बवाल है ये कैसा ससुराल है, नहीं बवाल है ये कैसा ससुराल है।
5: बरेली के बच्चन, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पे। कलर्स
1: संगम के जीवन में मच गया है छीछा लेदर।
6: संगम संगम बरेली वाले बच्चनों के घर।
0: और आखिर में मिलते हैं सरगम के ससुर जी से, जिसका किरदार निभा रहे हैं मशहूर बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा, जिनका अंदाज काफी अलग है।
7: अरे देखिए, ये हमारा घर है और ये हमारा फैमिली के दो लोग हैं। हमारा एक बिटवा है, गुस्सैल बिटवा, इधर। ये हमारा गुस्सैल बिटवा है, बहुत गुस्सा करता है। हम इसको यंग एंग्री मैन बोलते हैं, नाम भी बच्चन है, तो देख लीजिए बाकी कैसे होंगे।
8: ये तो ट्रेलर है।
7: हाँ, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। चलिए,
0: इसके बाद स्टेज पर शो के लॉन्च का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर एक एक करके प्रवेश यानी कृष्णा ने अपने पिता और अपने भाइयों का स्टेज पर स्वागत किया।
9: तो आप सबको लेके चलते हैं बरेली के बच्चों के बच्चन निवास, मतलब नमूना निवास। ये हमारे महाराज, हमारे पूज्य पिताजी अजब सिंह बच्चन, नाम बच्चन और काम पूरा मधुशाला। ये हो रहे नहीं, पिताजी हमेशा रहते हैं ताई।

तो ये बच्चन परिवार के सबसे बड़े बेटे हमारे सबसे बड़े भैया गंगा, सबसे प्यारे, सबसे भोले, इसीलिए इनको कहते हैं भोले बच्चे। लेकिन स्पेशलिटी यह है कि भैया एकदम उंगली चाट खाना बनाते हैं। बाकी कभी महसूस नहीं होने देते।

0: काम अचाना ये हमारे भाई सतलुज एंग्री बच्चे, गुस्सा हमेशा नाक पे, नहीं डरते किसी के बाप से। ये हमारे घर का सबसे छोटा, सबसे प्यारा, सबसे स्मार्ट बच्चा, छुटके बच्चे, चार भाई चारों तबाही, लेकिन चारों में से एक के पास भी नहीं हुआ है। तो मर्दों की संख्या ज्यादा है, औरतों का अभाव है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी जिंदगी हमारे घर में एक मूल्य जरूर है।
1: तो भाई बरेली के बच्चन आ चुके हैं टेलीविजन पर। एक लंबे समय के बाद एक ऐसी कहानी आई है जिसमें बहू तो है लेकिन सास नहीं, ससुराल तो है लेकिन ससुराल की रंगत नहीं। तो देखना होगा कि बहू रानी अपने इस टेढ़े मेढ़े ससुराल में कैसे रंग भरेगी। यानी कुछ कुछ सत्य पे सत्ता और कुछ कुछ सीरियल सास बिना ससुराल। तो उम्मीद है दर्शकों को कुछ अलग हटके एंटरटेनमेंट मिले। मुंबई से नमो माची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: क्यों?
1: ऐसे काफी ताका झाकी की है मैंने डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में भी, और मुझे तो यही पता लगा है कि यहाँ पर तो हैं सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट्स। क्या हम खोल सकते हैं ट्विस्ट की नॉट्स को? वेल, एक एक कर कर तो शायद हम निपट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कभी कभी हो जाती है लिटरली।
2: आरंभी और ध्रुव के रिश्ते पर उठे सवाल, फूटा विश्वास का गुस्सा, अवंतिका ने चली नई चाल, टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। असल में ध्रुव गलती से पहुंच गया है आरंभी के कमरे में, और यहां पर आरंभी उठा रही है नीचे गिरी हुई अंगूठी, लेकिन तभी वहां पर विश्वास और बाकी घर वाले आ जाते हैं जिन्हें कुछ अटपटा लगता है, और ऐसे में वो आरंभी पर लगाने लगते हैं इल्जाम। और आरंभी डॉक्टर विश्वास को सच बता रही है कि असल में सिचुएशन क्या थी।

0: ボケなんや。
1: हमने जो देख लिया वो काफी नहीं था, क्या हमें सुनना भी पड़ेगा? हाँ भाभी, ये सब हो क्या रहा है हमारे घर में? हाँ
2: अरे तो मैडम आराम से देर से सोकर उठी, रात भर गायब रही तो यही होगा ना, देर से सोएंगी तो देर से उठेगी, फिर जिद करने लगी कि मैं काम और घर दोनों संभालूंगी। ओके ठीक है संभालो, हमने ये भी समझ लिया, लेकिन अब ये आरंभ भी, ये भी देखना पड़ेगा हमें।
3: एक सेकंड मिसेस टंडन, ऐसा क्या देख लिया आपने जो मैंने नहीं देखा, और आप लोग के दिमाग दौड़ दौड़ के कहां तक पहुंच गए? ये अपनी उंगली से रिंग निकाल रही थी, रिंग निकालते निकालते उसका हाथ मुझ पे लगा, मैं गिरा फिसल रहा था, मुझे बचा रही थी बस और कुछ नहीं।
4: ऐसे में जब आरंभी सच बताती है तब नायरा की अंगूठी आरंभी के पास होती है। इस बात पर भी होने लगता है बवाल, क्योंकि सासू माँ लगा देती है आरंभी पर इल्जाम कि उसने अंगूठी भी चुराई है। ऐसे में यहाँ शुरू हो गया है तमाशा। भाई ध्रुव अवंतिका की असलियत सामने ला ही रहा होता है कि घर में आ जाते हैं मेहमान और सच अधूरा रह जाता है।
2: क्या नहीं दिया है मेरे विश्वास ने तुम्हें, डायमंड्स गोल्ड क्या क्या नहीं दिया है, फिर ये आरंभी बॉय।
1: मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं है कि ये
0: वो आरंभी। प्लीज स्टॉप इट, बंद करो अपनी ये बकवास। ये रिंग तुम्हारी उंगली में और तुम्हें पता नहीं तुम्हारी उंगली में कैसे?
1: मुझे नहीं पता ये मेरी।
0: ओह कम ऑन, और डीसी हमारे कमरे में क्या कर रहे थे?
3: मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो मुझे इस कमरे में भेजा आपकी गर्लफ्रेंड ने।
0: व्हाट?
3: हाँ वो योर गर्लफ्रेंड।
1: ओ एक सेकेंड, मैंने आपको मेरे रूम में जाने को कहा था, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप आरंभी के रूम में क्यों चले गए? मैंने आपको कहा था ना यहाँ से सेकेंड।
3: नहीं, देयर इज नो कंफ्यूजन, मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझसे कहा था। अरे पूछो
1: मैडम, वो नायरा जी के घर से कोई आया है।
4: भाई ये तमाशा यही नहीं रुका है, यहाँ पर तो पहुँच गया है विश्वास आरंभी को घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ आरंभी ने भी हार नहीं मानी, उसने भी शर्त रख दी कि अगर वो घर से जाएगी तो अवंतिका भी जाएगी। और साथ ही साथ विश्वास को आरंभी ने ये भी बताया कि सारा की अधरा अवंतिका का ही है। यानी धीरे धीरे आरंभी को समझ आ रहा है कि अवंतिका उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है।
1: बदला दुश्मनों से लिया जाता है विश्वास, ये मेरा परिवार है।
0: इसलिए तुम्हारा बैग इस कमरे से बाहर फेंका है मैंने।
1: एक सेकंड, तुम चाहते हो तो चलिए, ठीक है मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम्हें काम, तुम मुझे अपनी पत्नी को इस बहू को कैसे जाना है? अब जब अवंतिका से भी ये कहना होगा कि अपना सामान पैक कर और यहाँ से जाओ, जैसे ये यहाँ से चली जाएगी मैं भी चली जाऊंगी। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने मम्मी जी की साइड पर वो मैसेज किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो तमाशा करना मेरा प्लान था, ताकि उसके बाद मैं सबके नंबर्स कमा सकूं और हाय बेचारी बनके सबकी सहानुभूति बटोर सकूं।
5: ऑफ कोर्स तुम सबको यही दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत बड़ी महान बहू हो।
1: मुझे लगता है कि ये सब कुछ डॉक्टर अवंतिका ने, मेरे हाथ में नायरा की रिंग डॉक्टर अवंतिका ने डाली थी, डीसी को मेरे कमरे में जानबूझ के डॉक्टर अवंतिका ने भेजा था, तो बेहतर है हमारे टंडन परिवार के लिए यही सही है कि ये इस घर से चली जाए।
5: What nonsense!
1: मुझे भी बस पता है, अगर किसी पे इल्जाम लगाओ तो मेक श्योर तुम्हारे पास एविडेंस हो उसके खिलाफ।
6: तो ऐसा कहते हैं कि हरकत में बरकत है, तो जहाँ अवंतिका है वहाँ थोड़ी हरकत तो होगी ही, ड्रामा तो होगा, और जहाँ ड्रामा होता है वहाँ पे धमाकेदार तमाशे भी होते हैं। तो एक के बाद एक चीज़ें ऐसी खुलती जा रही हैं इस शो में, और अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जो आने वाला ट्रैक है, मैं ऐसे कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती, बट

0: जो हमारे डीसी सराय हैं वो सब के बैंड बजाएंगे. तो आई थिंक अभी वो वक्त आ चुका है कि जो हमारी डॉक्टर आरंभी का जो एक टैग लाइन है, सेटबैक से कमबैक, उसके सफ़र में उसको साथ देने डीसी आ गए हैं. और जब वो आ गया है घर में तो और खुलासे होंगे और बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा. ये तो चलो, ये कुछ ना कुछ तिगड़म करते रहती है अवंतिका ताकि आरंभी को हेट करे सब लोग और वो उसे घर से बाहर निकाले सब लोग. बट क्या करे, I'm a baddie. I mean, Avantika is a baddie. She has to do what she has to do. You know what I mean? So I think I've officially entered my villain era and I'm loving it. Yeah, so stay tuned. We're going to entertain you more and more in the upcoming episodes.
1: भाई फिलहाल तो आरंभी ने पलट कर जवाब दिया है और अवंतिका पर इल्जाम भी लगाए हैं. लेकिन अब आरंभी का साथ देने आएगा ध्रुव, जो करेगा सच का खुलासा, क्योंकि आने वाली कहानी में कई सारे ट्विस्ट जो आने वाले हैं.
2: मिसेस टंडन, आप अपनी बहू के लिए कौन सी साड़ी चुन रही हैं?
3: शायद आप ही आरंभी के लिए साड़ी पिक करना चाहते हैं, सो प्लीज गो अहेड.
2: ताकि डॉक्टर विश्वास स्ट्रेस फ्री होके आपके लिए साड़ी चूज कर सके, है ना? डॉक्टर विश्वास, बाहर वाली के लिए साड़ी चूज कर रहे हो, घर वाली के लिए भी कुछ ले लो.
1: भाई ये तो रही सीरियल की बात, लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन की तो आज सेट पर आरंभी यानी कि ऐश्वर्या काफी खुश है क्योंकि आए हैं उनके पापा. तो आइए जानते हैं पापा और बेटी की बॉन्डिंग कैसी है और पापा बेटी पर कितना प्राउड फील करते हैं.
4: मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि पिछले 7-8 सालों से इसने जितने भी करेक्टर किए हैं, एक वो घरेलू बहू के टिपिकल बहू होती है जो हमेशा रोती रहती है, लेकिन अब इस सीरियल में थोड़ा सा उठ के खड़ी हुई है और अब बातों का जवाब दे रही है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है. और एक जो महिला को होना चाहिए अंदर से शक्ति वाला, तो वो देख के पूरी फैमिली को हमारे बहुत अच्छा लग रहा है.
5: मैं एक्चुअली रियल लाइफ में भी ऐसी हूं. वो तो बताओ.
4: आरंभी जैसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर इसको कोई बात नहीं अच्छी लगती है तो ये रिएक्ट करती है, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद में फिर उसको नॉर्मल हो जाती है, लेकिन रिएक्ट करती है उसको कि हाँ ये गलत है, तो गलत के खिलाफ खड़ी होती है, तो अच्छी बात है ये.
5: जैसी तो हुई. मतलब मैं लक्ष्मी से ज्यादा आरंभी से रिलेट कर पाती. लक्ष्मी हमेशा से रोती रहती थी और
4: अपनी बातों को,
5: अब कुछ बोलती नहीं थी, आरंभी बोलती है, तो इसलिए मैं बहुत नेचुरली कर देती हूँ.
4: लोग तो कहते हैं कि बेरूपर ही गई है, लेकिन हाँ, लेकिन मम्मी और इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है. बहुत सारी बातें मम्मी से ज़्यादा शेयर करती, मेरे से तो बहुत ही कम होती हैं. मतलब 100 में 1 बात मेरे से शेयर होती है, बाकी 99 मम्मी से होती है शेयर.
5: मुझे पता है मम्मी अग्री नहीं करेंगी, वो मैं पापा से कर देती हूं. जो मुझे पता है पापा अग्री नहीं करेंगे, वो अपनी बात मनाने का तरीका है.
4: एक सम्मान भी है थोड़ा सा, सम्मान एक पिता के प्रति जो सम्मान रहता है बच्चों में वो है. बाकी तो हम लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है, कोई बात छुपाती नहीं. सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई बात छुपाती नहीं है और तीनों बेटियां नहीं छुपाती हैं, कोई भी बात सब बता देती हैं. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटियां हैं जो भी कदम उठाती हैं तो वो कम से कम मुझे बताती हैं कि पापा मैं ऐसा करने जा रही हूँ या ये मेरे जीवन में हो रहा है. तो अगर मुझे लगता है तो मैं अपनी तरफ से सलाह देता हूँ और मुझे मतलब कभी इन्होंने ऐसी नाजायज मांग भी नहीं की जो हम मना कर सकें.
1: इसी के साथ ऐश्वर्या ने मुंबई में अपना खुद का घर खरीदा है, जिस बारे में ऐश्वर्या और उनके पापा हमें बता रहे हैं.
5: अभी जी नहीं रही हूँ यार, अभी टाइम है थोड़ा मुझे मिलने में. अभी हमें सिर्फ पोजेशन मिला है बट अभी हम रहना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब जब मैं शायद रहूँगी तब मैं आपको बेटर फीलिंग बता पाऊँगी क्या है. बट हाँ, मम्मी पापा साथ में थे और हमें, मुझे जब चाबी मिली तो ऑब्वियसली ऐसे खुशी के आंसू आ गए थे, सबके ही आ गए थे, सब बहुत खुश थे. बिकॉज इट्स बिन 13-14 ईयर्स. अब मैं 2014 में आई थी शायद बॉम्बे, तो मैं काफ़ी टाइम से रह रही हूँ. और एक एक गोल होता है, आई थिंक सबकी लाइफ का नहीं होता, बट मेरी भी लाइफ का नहीं था एक्चुअली. मेरी मम्मी की लाइफ का गोल था कि मैं घर खरीदूँ, तो ये उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया. मुझे तो घूमना फिरना था कि मुझे तो ट्रैवल करना है, ये करना है, तो उन्होंने बोला. एंड बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग यू नो व्हेन यू हैव, आपके पास खुद का घर होता है जब आप बोलते हो ये मेरा घर है, तो बहुत मज़ा आता है सुन के. बस अब रहेंगे.
4: तो हम लोग बेसिकली छतरपुर मध्य प्रदेश में एक शहर है, छोटा सा विलेज ही कहेंगे एक तरह से. तो वहाँ से हम लोग भोपाल आए और भोपाल में भी हमने कभी नहीं सोचा था कि भोपाल में हमारा घर होगा, लेकिन इनकी मम्मी की जिद की वजह से भोपाल में पहले हमारा घर हुआ। इसके बाद फिर ये बॉम्बे आई और बॉम्बे में से ये मना करती थी कि पापा मैं घर नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और यहाँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्लान बना और फिर इसने कहा कि नहीं अब मैं ले सकती हूँ। तो अच्छी बात यह है ना कि जब हम देख सकते हैं कि कहीं हमारी चादर कितनी है, हम हमारे पैर वहाँ तक जाना चाहिए, तब इसने सोचा। ऐसा नहीं कि शुरुआती जगह हम ले लें और फिर पता चला कि हमको काम नहीं मिल रहा है, फिर हम उसकी किस्तें भर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं।
5: तो इससे अच्छा मम्मी की वजह से,
4: हाँ सब मम्मी की वजह से।
5: मम्मी ने पापा बोला था घर लो, यहाँ पर मम्मी ने मुझे बोला घर लो
4: नहीं, लेकिन मैंने ये भी देखा ना कि ये कर सकती है। इसके बाद हम लोगों ने दोनों ने तीनों ने बैठ के डिसाइड किया, क्योंकि जब तक नहीं कर सकती थी तब तक मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता रहा कि अभी नहीं करना।
1: तो भाई हम तो यही कहेंगे कि ऐश्वर्या यूं ही तरक्की करती रहे और आरंभ भी यूं ही अपने फैंस को एंटरटेन करती रहे। मुंबई से शीतल कावा और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अरे भाई सोशल मीडिया का जमाना है तो हर जासूस को होना चाहिए आजकल सोशल मीडिया सेवी भी, क्योंकि यहाँ पर भी तो खुलते हैं कई राज। वैसे हमारे पास जो अगली खबर है ना वो राज नहीं है, लेकिन उसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, क्योंकि देखिए कहानी में फिर से आया है एक नया मोड़ जो लेकर आ रहा है कहानी में ड्रामा। अब जब आता है कहानी में ड्रामा तो क्या होता है, हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।

बर्फीली वादियों में मिस्टर एंड मिसेस परशुराम बच्चों संग पिकनिक मनाते शिव और शालिनी जिंदगी के प्यारे लम्हों आने वाले सारे पलों से मैं तो खुद क्यों मिल जाऊंगी तेरी बात ने दम तो है बड़ा खुशियों का सपना मनाली की वादियों में मियां बीवी का रोमांस

0: स्टार प्लस के सीरियल मिस्टर मिसेस परशुराम में शिव और शालिनी दोनों अपने बच्चों संग पहुंच गए हैं मनाली की वादियों में मनाने पिकनिक। भाई काम के बीच परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना तो जरूरी है, ऐसे में शिव प्रसाद अपनी बीवी और बच्चों संग अपना हॉलिडे एंजॉय करने आए हैं। और तो और मनाली की बर्फीली वादियों में शिव और शालिनी दोनों ही अपने बच्चों संग नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं।
1: बोलो।
2: अच्छा तुम लोग कैसे हो, तू कैसी है और बच्चे बच्चे कैसे है?
1: अरे हम तो बहुत मस्त है और बच्चे भी दोनों बहुत मस्त है, खेल रहे हैं।
2: चलो अच्छा, और दामाद जी वो कैसे हैं?
1: आपके दामाद जी वो तो बहुत मस्त है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
2: जरूर जरूर, बहुत मजा आ रहा होगा। नहीं तुम्हारे हिल स्टेशन की ट्रिप कैसे चल रही है?
1: हाँ माँ, शादी के बाद तो पहली बार हम कहीं बाहर आए ना, एक तरह से देखा जाए ना तो ये हमारी हनीमून ट्रिप ही है।
0: अब इतनी हसीन जगह पर आए हैं तो भला एंजॉयमेंट तो बनता है, इसीलिए शिव और शालिनी जमकर इस दिन को जी लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो तो अपने हनीमून को भी याद कर रहे हैं और इस वादियों में खो रहे हैं प्यार में भी।

लेकिन ये प्यार के सीन फिल्माना इतना आसान नहीं है। जरा देखिए कैसे नील और शांभवी दोनों ही हर एक सीन फिल्माने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

वैसे शिव और शालिनी के इसी रोमांस में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि उस हसीन वादियों में पहुंच जाएंगे करण कुलकर्णी के गुंडे भी, जो करेंगे शिव पर हमला। हालांकि शिव उन गुंडों का सामना करेगा, उनकी धुलाई भी करेगा, लेकिन ये धुलाई शिव को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि शिव गोली का शिकार जो होगा।

0: शालिनी से जाने अनजाने शिव को ही गोली लगेगी, लेकिन शिव बाल बाल बच जाएंगे। लेकिन उस गुंडे का पता जरूर लगाएंगे जिसने उनके परिवार पर हमला किया था, और ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मन्नत, आपकी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स तो खत्म ही हो जाती अगर आप मुझे पहले हायर कर लेती। अरे मैं तो कब का कर देती ऐश्वर्या को एक्सपोज। एक तो आपने इतना वेट किया, और देखिए आपकी कहानी के जो सुपर विलन्स है ना, बार बार करते हैं कुछ ना कुछ कांड और फिर अपनी आंखों से आंसुओं को छलकाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर से आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। मतलब ये विशेष सर्कल तो यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत के पास।
0: मन्नत की तड़प।
2: अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम घर वालों के पास जाके ये बोलोगी कि ये आदमी खूनी है, ये आदमी गलत है, गंदा है,
3: क्योंकि विक्रांत के
0: याशिका मल्ला और धैर्य की मिली भगत।
3: मन्नत पे काबू रखने के लिए दुआ का कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बनेगी माँ का सहारा। कलर्स के सीरियल मन्नत में विक्रांत जिंदा बच गया है, और जैसे ही मन्नत को ये बात पता चली कि एक आदमी को गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है, तो देखिए कैसे मन्नत दौड़ी चली गई अस्पताल में उस आदमी से मिलने। लेकिन वहाँ उसे मिलती है नाकामी। ऐसे में देखिए कैसे वो घर पर आकर माता रानी के सामने खड़े होकर अपने आंसू बहा रही है, हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है कि उसे उसके विक्रांत से मिला दे।
4: खुद हैरी जी बार बार बोल रहे हैं कि विक्रांत नहीं रहे दुनिया में, और बिलीव करे और मम्मा को समझाए और मम्मा के साथ रहे एंड ऐसा और वैसा, एंड मन्नत को ज़रूरत है इस वक्त दुआ की, ऐसा समझा रहे। बट दुआ का मन कहता है कि मम्मा अगर कह रही है, मन्नत की बात पे फेथ है उसे, तो कहीं ना कहीं पापा जिंदा है, तो वो भी प्रे कर रही है, ब्लाइंड फेथ रख रही है मन्नत के ज़रूर मिलेंगे। उसे लगता है कि दे आर मेंट टू बी टुगेदर एंड दे आर मेंट टू लिव टुगेदर। तो एंड देन उसको श्रुति माँ की बात याद है, उसको नीतू माँ की बात याद है, एंड वो बस पेशेंटली वेट कर रही है, ढूंढ रही है।
0: भाई मन्नत को तो पूरा यकीन है कि उसका विक्रांत जिंदा है, और अब दुआ को भी अपनी माँ की बातों पर यकीन हो चला है।

0: मानो एक दूसरे का सहारा भी बन रही है। हालांकि धैर्य अपनी चालें चल रहा है। जरा देखिए कैसे वो मौका पाते ही दुआ का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई और माने न माने, लेकिन दुआ अपनी माँ की ही बात मानेगी। वहीं दूसरी ओर याशिका पहुंच गई है जेल विशाखा से मिलने और ये जानने कि आखिर उसने विक्रांत को क्यों मारा। ऐसे में विशाखा चीख चीख कर कह रही है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तभी उनके सामने एक और सच आ जाता है।
1: अपनी सगी माँ के साथ वो ऐसा क्यों करेगा?
2: कि आपने भी तो अपने बेटे को इतने धोखे दिए।
1: वो जो भी है, पर अभी जो सारे इल्जाम उस पे लगाए जा रहे हैं वो तो सबके सब झूठे हैं ना।
2: मुझे आपके सच पे पूरा भरोसा है और अपनी पार की नजर पे।
1: पर एक बात तो बताओ, वहां क्या हुआ? आप वहां पहुंची कैसे? क्या आपको कुछ भी याद नहीं? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वापस
2: मैंने अभी भी एयरलाइन से कंफर्म किया है। एंड गेस व्हाट, धैर्य ने कभी भी फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की थी।
1: Yes. मुझे पता था इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड धैर्य ही है। आपने अपने दोनों बेटों के साथ इतना सब कुछ किया है, वो सब कुछ आपको सूद समेत वापस मिल रहा है।
3: हम लोग आए हैं विशाखा जी के पास पता करने कि भाई वहाँ पे कैसे पहुंची, प्रूफ आपके खिलाफ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ। एंड शी इज क्लूलेस कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि विशाखा आंटी इतना बड़ा कांड तो नहीं कर सकती है, छोटे छोटे कर सकती है। सो जैसे हम शॉक्ड है, वो भी शॉक्ड है, और यहाँ के पता चलता है कि धैर्य है इसके पीछे। सो हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, स्पेशली इनके।
4: हाँ, क्योंकि धैर्य तो मेरा बेटा है और मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अपनी सगी माँ के साथ ये सब कुछ करेगा, लेकिन है तो वो मास्टरमाइंड। अभी उसका जो क्या बोलते हैं, जो चोला पहन के रखा था उसने, वो चोला अभी उसने निकाल दिया और अपना असली रूप सामने लेकर आया है। तो धैर्य ही है मास्टरमाइंड इस सब कांड के पीछे, और माँ को तो जेल भेज दिया। अब देखो आगे क्या क्या कांड करते ही जाएगा वो। तो
5: वो मुझे नहीं लगता कोई भी सोच सकता था, तो वो खुद ही शौक में है कि धैर्य जैसा इंसान ये कर रहा है। और धैर्य खुद भी कहता है, जब मेरा भाई मेरा जुनून नहीं वो कर पाया सर्वाइव, तो तुम लोग कैसे करोगे। तो वो काफी तो आई डोंट नो वो कितना साथ देंगे, कहाँ तक साथ देंगे, आई डोंट नो। और मन्नत को भी नहीं पता है, मन्नत को यही नहीं पता है कि धैर्य ने किया। आई थिंक वो तो पता नहीं कैसे हैंडल होगा। और विक्रांत प्रायोरिटी है, मन्नत यू नो कोई कुछ भी करे अपना करता रहे, बट शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट विक्रांत। एंड या
0: भाई मल्ला, विशाखा और याशिका तीनों के सामने ये सच आ गया है कि धैर्य ने ही खेल खेला है। ऐसे में बाहर आकर याशिका और मल्ला इसी बारे में बात कर ही रही होती हैं कि पीछे से आ जाता है धैर्य भी, और देखिए कैसे इत्मीनान से उनकी बातें सुनता है। इतना ही नहीं, वो तो उनके सामने भी आ जाता है और उनके सामने मुस्कुराता भी है। इतना ही नहीं, वो तो सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल देता है। बस फिर क्या, ये सुनकर याशिका और मल्ला दोनों ही हैरान है, लेकिन याशिका उसे पूरा यकीन है कि जल्द ही मन्नत को धैर्य पर शक जरूर होगा।
6: अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम घर वालों के पास जाके ये बोलोगे कि ये आदमी खूनी है, ये आदमी गलत है, गंदा है,
1: क्योंकि इसके दिल में विक्रांत बसता है, तो गॉड फरिश्ता दोस्त चाहे जो मानती हो वो तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसके प्यार की इज्जत और अपनी हद नहीं रखी, लेकिन इसका तुम सारी हदें पार कर चुके। जब तुमने मन्नत से यही कहा कि विक्रांत मर चुका, हाउ डेयर यू धैर्या जी, ऐसी चलाई थी ऑनेस्टली। जितने शौक तुम थे उतने शौक मैं भी थी कि मन्नत जी, तुम्हारी मन्नत जी तुम्हारे खिलाफ चली गई, तुम्हारी बात नहीं सुनी,

0: दोस्ती ने तो प्यार जीता है और एक छोटा सा सबूत उसके दिल में शक पैदा कर सकता है अपने फरिश्ते की। तो मैं तेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये कि विक्रांत के जाने के बाद मन्नत पे काबू रखने के लिए दुआ का कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: कि हम यही डिस्कस कर रहे थे यार, ये धैर्य जैसा इंसान खूनी निकलेगा ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यशिका तो पहले से ही श्योर थी क्योंकि ये थोड़ा तेज दिमाग की है, इसकी मम्मी ने इसको बादाम ज्यादा खिलाए थे। मेरी मम्मी ने बस बोला क्रेडिट कार्ड लो शॉपिंग करो, तो इसीलिए मेरे में वो थोड़ा कम रहा।
2: इसकी पार्क की नजर है, याशिका की पार्क की नजर है,
1: वो पहचान लेती है। पता चला कि भाई धैर्य ने किया है और धैर्य आके हमें ताओ दिखाता है, नई नई हवा चढ़िया से
3: नए नए विलन बने हैं। हाँ सब इतना पॉजिटिव दिखा अब नए नए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वही याशिका बोलती है भाई ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। नहीं नहीं धैर्य ऑलरेडी सब कुछ ट्रेंड, अभी और कर
1: पहचान लेती है। पता चला कि भाई धैर्य ने किया है और धैर्य आके हमें ताओ दिखाता है, नई नई हवा चढ़िया से
3: नए नए विलन बने हैं। हाँ सब इतना पॉजिटिव दिखा अब नए नए, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वही यशिका बोलती है भाई ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। नहीं नहीं धैर्य ऑलरेडी सब कुछ ट्रेंड, अभी और कर
1: बस आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, जिस एम पे आपने जो एम टारगेट किया है वो पूरा हो जाए, तरीका कुछ भी हो सकता है। सो शायद किसी को भी किसी की टिप्स की जरूरत नहीं है, सब अपने आप में धुरंधर है।
3: मतलब रियल लाइफ में तो मनीष जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हम रियल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम धैर्य की बात कर रहे हैं।
4: भाई धैर्य ने तो अपनी सारी प्लानिंग बड़ी ही चालाकी से की है, ऐसा धैर्य को लग रहा है। लेकिन जैसे ही याशिका ने दुआ का नाम लेते हुए धैर्य को ये बताया कि दुआ की बागडोर मन्नत के हाथ में है और दुआ मन्नत की ही बात मानेगी, तो देखिए कैसे धैर्य हैरान है और अंदर ही अंदर यही सोच रहा है कि कैसे मन्नत और दुआ दोनों के बीच दरार लाई जाए। देखना होगा क्या धैर्य उसमें कामयाब हो पाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: तो देखा आपने, आपकी सास बहू और बेटा की इस जासूस ने आज पेश की ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की सटीक रिपोर्ट। क्या कुछ हुआ है एंटरटेनमेंट के आंगन में, किस कहानी से आई हमारे लिए गुड न्यूज और किस कहानी में आया कोई नया ट्विस्ट। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Hot Mics with Billy Bush, streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर।

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
6: विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह

0: चाय की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
4: सेना की जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में NTPC के सहयोग से डेवलप होगा 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट। देश की सबसे लंबी जोजीला टनल का सफल ब्रेक थ्रू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सपना हुआ साकार। हर मौसम में देश से बना रहेगा लद्दाख का संपर्क।

0: भारतीय जीवन यात्रा की अद्भुत झलक। बड़ा मंगलवार पर मंदिरों में भारी भीड़, सुबह से बजरंगबली के दर्शन को मर रहे हैं भक्त। आज हनुमान जी की पूजा का है विशेष महत्व। पुरुषोत्तम मास में मां सिद्धदात्री के श्रृंगार दर्शन को उमड़ रहे हैं भक्त। निकाली गई मनमोहक झांकियां, फूलों से की गई मंदिर की भव्य सजावट।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का सफल रेस्क्यू, नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा ने टनल का किया निरीक्षण। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग। 13 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंतिम ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर घटकर करीब 20 मिनट होने के अनुमान। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत होगी खत्म, सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी मिलेगा इसका लाभ। जोजिला सुरंग से सीमा क्षेत्र में सैन्य साजो सामान और रणनीतिक आवागमन को भी होगा फायदा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है बड़े मंगल का त्योहार। आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली की मुलाकात।

0: भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया गया, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। छठे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसी दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में छठा बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजा मां का दरबार। नैनीताल के कैची धाम में नीम करौली धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 15 जून को लगेगा महामेला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैची धाम के आसपास विशेष ट्रैकिंग रूट और सुगम पैदल मार्ग किए जा रहे हैं विकसित। कैची मेले के लिए श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष शटल सेवा, किराया भी हुआ तय। उज्जैन में बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
6: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज़ टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
7: Jack, come home. It's supper time.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
8: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
6: Jack FM, playing what we want.
9: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
15: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
16: सेना की जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में NTPC के सहयोग से डेवलप होगा 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट। देश की सबसे लंबी जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सपना हुआ साकार, हर मौसम में देश से बना रहेगा लद्दाख का संपर्क। लखनऊ के बीकेटी में बनेगा यूनिक कल्चरल म्यूजियम, 3D टेक्निक और इंटरैक्टिव गैलरीज में दिखेगी भारतीय जीवन यात्रा की अद्भुत झलक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। और आज हम आपको बताएंगे बजरंग बाण की शक्तियों के बारे में। बजरंग बाण यानी वो चंद लाइनें जिसमें बजरंग बली की शक्ति समाई हुई है। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका पाठ करने वालों को उसके दुश्मन छू भी नहीं पाते हैं, बल्कि ज्योतिषी तो यहां तक मानते हैं कि बजरंग बाण के पाठ से किसी भी हनुमान भक्त की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके पीठ पीछे भी कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो चलिए आपको बताते हैं बजरंग बाण की महिमा और उसकी अपरंपार शक्ति के बारे में।

0: भक्ति और शक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं श्री राम भक्त हनुमान। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी की आराधना से सिद्ध न हो सके। कहते हैं जिनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी, उसे कोई कष्ट या बाधा छू भी नहीं सकती, क्योंकि बजरंगबली को कलयुग का सबसे जागृत देवता माना जाता है। जानकार बताते हैं कि बजरंगबली की पूजा आराधना के कई तरीके हैं। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कोई चोला चढ़ाता है, तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। पर आज हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, ज्योतिष के जानकार उसे बजरंगबली को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय बताते हैं। हनुमान जी, जो श्री राम के एकनिष्ठ भक्त हैं, और कहते हैं कि श्री राम की सौगंध पर हनुमान जी सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं, तो यदि आप भी पवन पुत्र से कोई वरदान पाना चाहते हैं, तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को दी गई है उनके आराध्य श्री राम की सौगंध। आइए आपको बताते हैं कैसे करें बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का पाठ मंगलवार या शनिवार को करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनके सामने ऊन या कुशा के आसन पर बैठ जाएं। एक दिन पहले गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को शुद्ध जल में भिगो दें। आराधना के दिन अनाजों को पीसकर दीपक बनाएं। अपनी लंबाई के बराबर लाल रंग का धागा लेकर उसकी बाती बनाएं। दीपक में सुगंधित तेल जलाकर लाल रंग की बाती का अखंड दीपक जलाएं। गुग्गल की धूप जलाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। दरिद्रता, भूत प्रेत बाधा व शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा।
1: किसी व्यक्ति को शत्रुओं से अत्यंत पीड़ा हो, तंत्र प्रयोग हो, व्यक्ति को अपने शत्रुओं का नाश करना हो, और इतना सरल, इतना वो कि इस 10 महावीरों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कलयुग के महावीर भगवान हनुमान जी से उसकी है ना रक्षा करने को उद्यत करना हो, तो वो कहलाता है बजरंग बाण। नाम ही है, जैसे भगवान श्री राम का बाण होता है, उसी प्रकार से ये हनुमान जी श्री राम के बाण के समान ही व्यक्ति का कार्य सिद्ध कराते हैं, ऐसा माना जाता है।
0: माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए कैसे करें बजरंग बाण का पाठ। अगर आपको नजर दोष की समस्या है, तो देखिए बजरंग बाण की ये चौपाई, जिसे राम बाण कहा जाता है। संकटों की काट है बजरंग बाण, भूत प्रेत पिशाच निसाचर, अगिन बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मरजाद नाम की। इन चौपाई का 22 बार उच्चारण करें। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय, हूं फट स्वाहा मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। जनेऊ शिखा धारण करें। भोज पात्र पर लाल चंदन से गायत्री मंत्र लिखें। भोज पात्र को घर के हर कमरे में टांग दें। उड़द के 41 दाने प्रतिदिन जल में प्रवाहित करें।
1: तुलसीदास जी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए थे विभिन्न प्रकार से, और ऐसा माना जाता है उनके पूरे शरीर में पीड़ा अत्यधिक थी, मानसिक विषाद बहुत अधिक था, शरीर में चर्म रोग हो गए, और इतनी पीड़ा के भगवान की शरणागत हुए बाद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने श्री राम जी का ध्यान करके हनुमान जी के इस बजरंग बाण का निर्माण किया। और बजरंग बाण के पीड़ा में कहा गया है, चूंकि बजरंग बाण का निर्माण करते ही जैसे उन्होंने करना शुरू किया, मात्र 10 दिन में भगवान की कृपा से उनके शरीर में तंत्र का नाश हुआ, उनके शरीर में जो पीड़ा थी समाप्त होकर और उनके शत्रुओं का नाश हुआ था।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा से मंगल संबंधी बाधा का भी निवारण किया जा सकता है। अगर आप भी मंगल दोष की समस्या से परेशान हैं, तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो बजरंग बाण से कैसे दूर होगा मंगल दोष, आइए जानते हैं। बजरंग बाण और मंगल दोष। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, इन चौपाई का 11 बार उच्चारण करें। ओम सर्व विघ्न विनाशकाय नमः मंत्र का 44 बार पाठ करें। घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। कमल या सूरजमुखी का पुष्प चढ़ाएं। दूध का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। घी में काले तिल व शहद मिलाकर हवन करें। नारियल के गोले में पंचमेवा शक्कर भरकर जमीन में दबा दें।
1: क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता माने जाते हैं, तो जो व्यक्ति बजरंग बाण हनुमान जी के मंदिर में पढ़ता है और लाल रंग के आसन पे भगवान के आगे दीपक जला के पढ़ता है, तो उसको मंगल की कृपा प्राप्त होने लगती है। मंगल अगर प्रतिकूल हो तो मंगल दोष शांत होने लगता है, और अनुकूल हो तो उसके लाभ से संपत्ति निर्माण आदि व्यक्ति का जरूर होता है।
0: हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी का पूजन करने वाले भक्तों पर शनि की विशेष कृपा बरसती है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंसान भयभीत हो जाता है, पर बजरंग बाण का पाठ आपको शनि दोष से भी मुक्ति दिला सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। बजरंग बाण और शनि बाधा, सत्य हो हु हरि सपत पाई कै, राम दूत धरु मारु धाई कै, जय हनुमंत अनंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। इन चौपाई का 23 बार उच्चारण करें। श्री राम भक्ताय नमः का रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप करें। मंत्र जाप के लिए काले कंबल के आसन का प्रयोग करें। जौ के आटे में गुड़ मिलाकर गुलगुले बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर भैंसे को खिलाएं। शनिवार का व्रत करें। उड़द के पकवान खाकर व्रत खोलें। हनुमान चालीसा व सुंदर कांड की 11 किताबें लोगों में बांटें। लाल कपड़े में पंचधातु का बना हनुमान जी का लॉकेट गले में धारण करें।
1: अगर किसी व्यक्ति को शनिकृत पीड़ा हो तो शनि देव ने स्वयं उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है कि जो हनुमान जी का पूजन करता हो, जो हनुमान जी के मंदिर में जाके बजरंग बाण आदि सुंदर कांड आदि का पाठ करता हो तो उसको मैं पीड़ा नहीं देता हूँ। तो जो व्यक्ति शनिकृत पीड़ा से परेशान है वो सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में जाए और इनका पाठ करे।
0: दावा किया जाता है कि बजरंग बाण का पाठ विद्यार्थियों के लिए भी किसी अचूक उपाय से कम नहीं है। तो बजरंग बाण की किस चौपाई से होगा विद्यार्थियों को लाभ और क्या होगी पूजा विधि, आइए जानते हैं। बजरंग बाण और विद्या की शक्ति। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। इस चौपाई का 32 बार उच्चारण करें। ओम श्रीम राम प्रियाय नमः का 108 बार जाप करें। सूरजमुखी की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। पूजा सुबह के समय में करें। गुड़ लड्डू मोदक का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। तिल के आटे का चौमुखी दीपक बनाकर तिल के तेल का 4 बाती का दीपक जलाएं। चंदन कपूर गोरोचन इलायची लौंग घी में मिलाकर हवन करें।
1: अगर विद्यार्जन में किसी प्रकार की प्रतिकूलता पा रहा हो या उसका आत्मविश्वास कमजोर हो कि वो न अपने विद्या में या अपने जो है परीक्षाओं में अच्छा फल नहीं लेके आ पा रहा हो, तो परीक्षा से जस्ट पहले हनुमान जी के मंदिर में या मार्ग में जाते हुए ही अगर वो इस बजरंग बाण को पढ़ते हुए जाए और फिर परीक्षा बैठ कर दे, तो परीक्षा में अपेक्षाकृत उसको निश्चित सफलता मिलेगी। पहले के मुकाबले आत्मविश्वास बहुत सुंदर हो जाता है व्यक्ति का।
0: तो देखा आपने, हनुमान जी के आशीर्वाद और बजरंग बाण से जीवन में तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। दुखों कष्टों बाधाओं से मुक्ति के लिए बजरंग बाण का प्रयोग अमोघ है।
2: बजरंग बली के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे भगवान है जो जागृत स्वरूप में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। ऐसे में वो फौरन अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। बजरंग बाण का सच्ची श्रद्धा से पाठ करने वाले भक्तों की कुंडली में जो भी दोष हो उनको भी बजरंग बली अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। तो चलिए हम आपको इस विषय के बारे में अब ज्यादा जानकारी देते हैं।

0: जब जीवन में हालात होते हैं विकट, तब भक्तों की रक्षा को हनुमान जी होते हैं प्रकट। जब जीवन में आ जाए घोर संकट, हर काम में आने लगे रुकावट, तब कीजिए बजरंग बाण का पाठ, जिसमें है हर संकट की काट। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिनके पास संसार की सारी शक्तियों का भंडार है, जो संकट में भक्तों की ढाल हैं, जो अपनी आराधना से पहले श्री राम नाम के जाप को सर्वोपरि मानते हों, और भला जिस पाठ में स्वयं श्री राम की आन हो, तो ऐसा अद्भुत पाठ भक्तों की हर मुसीबत का अंत कर सकता है।
1: तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, बहुत अधिक आपके ऊपर शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो, तब तक इसको नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के मध्य किसी उनके मंदिर में बैठ के उनको भेंट पूजा अर्थात चोला चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के और उनके आगे दीपक जला के, लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र धारण करके बैठ के इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से करने से आपके बजरंग बाण का तुरंत आपको फल प्राप्त होता है।
0: हम सभी जानते हैं हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां मिली हुई हैं और उन्हें कलयुग में भी अमर माना गया है। इसलिए हनुमान जी की साधना और उनसे समर्पित हर पाठ अपने आप में चमत्कारी और अमोघ माना गया है। माना जाता है कि भक्तों को अगर हनुमान जी की सिद्धि और शक्ति मिल जाए तो साधक जीवन की तमाम समस्याओं से पार पा सकता है, और ये संभव हो सकता है मात्र बजरंग बाण के पाठ से। कहते हैं विधिवत बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो कुंडली में ग्रह कितने भी बुरी अवस्था में क्यों न हो, उनका क्रूर प्रभाव इंसान को आहत नहीं कर सकता। तो चलिए अब आपको बताते हैं बजरंग बाण कैसे आपकी धन संबंधी बाधा का निदान कर सकता है। समृद्धि लाएगा बजरंग बाण, निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्धि करे हनुमान। इस दोहे का 11 बार उच्चारण करें, अपने घर के मंदिर में चारों दिशाओं में हनुमान जी का चित्र लगाएं, रुई की बाती को केसरिया रंग में रंग कर घी का अखंड दीपक जलाएं, 1 किलो गुड़, 250 ग्राम सिंदूर, 500 ग्राम चमेली का तेल, 11 तांबे के सिक्के लें, सभी सामग्री लाल कपड़े में बांध कर हनुमान जी को चढ़ाएं, बजरंग बाण का एक बार पाठ करें, मूंग की दाल और गुड़ का हलवा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं।
1: ठीक है, धन की कामना के लिए विशेष तौर पे बजरंग बाण का प्रयोग नहीं होता, परंतु अगर धनागम में कहीं आपका ऋण पे आप परेशान हो, आपका धनागम में कहीं मुकदमे में फंस रहा हो, या कहीं किसी प्रकार से आपके मार्ग में लोग अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हो, तब बजरंग बाण का पाठ करने से आपके धनागम के स्रोत खुल जाते हैं।
0: माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर आपकी विदेश यात्रा करने की तमन्ना हो और किस्मत साथ न दे रही हो, किसी कारणवश बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो बजरंग बाण के पाठ से आपकी ये इच्छा पूरी भी हो सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। ओम चन चन चन चन चपल चलंता, ओम हनु हनु हनु हनुमंता, ओम हम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सन सन सहमी पराने खलदल। इन चौपाई का 23 बार उच्चारण करें, लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उत्तर मुखी हनुमान जी की स्थापना करें, कुशा के आसन पर बैठकर ईशान कोण की ओर मुख कर बैठ जाएं, हाथ में चावल पुष्प जल दक्षिणा लेकर पूजा का संकल्प लें, मूंग के आटे का दीपक बनाकर सुगंधित तेल का दीपक जलाएं, केला अमरूद व आम का प्रसाद चढ़ाएं, मंगलवार का व्रत करें, पूजा के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम होगा।
1: ये बहुत ही उग्र प्रयोग है, मेरा निवेदन है अत्यंत आवश्यक स्थितियों में ही करें और घर पे कभी ना करें। इस बजरंग बाण के पाठ को हमेशा मंदिर में करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर, वो भी दिव्य हो, जागृत हो, और अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी हो तो विशेष पुण्यदायी होगा, विशेष फलदायी होगा। और सावधानी ये रखें कि अनावश्यक प्रयोग ना करें, किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता भाव में ना करें, पर शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तब आप इसका अवश्य प्रयोग करें।
0: तो देखा आपने, बजरंग बाण का पाठ कितनी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, बस आपकी कामना हृदय से होनी चाहिए। फिर देखिए, महाबली की कृपा से आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी और आपकी बिगड़ी बन जाएगी। लेकिन माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब समस्या बहुत या तो बहुत जटिल हो या फिर बहुत गंभीर।
2: चलिए अब आपको बताते हैं कि मंगल के बुरे प्रभावों से अगर पानी है आपको मुक्ति या फिर शनि से जुड़ी कोई बाधा आपको कर रही है परेशान, हनुमान जी की भक्ति में है हर समस्या का समाधान। कौन सी है वो चमत्कारी वस्तु जो हनुमान जी की पूजा उपासना में अर्पित करने से इन बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है, गौर से देखिए।

0: चाहे मंगल हो विपरीत या शनि दे रहे हो पीड़ा, भक्तों के संकट हरने का महावीर ने उठाया है बीड़ा। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाए उसे संकट छू भी नहीं पाते। ग्रहों की बाधा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की कृपा पाना अति आवश्यक है। कहते हैं कि हनुमान जी का जीवन ही श्री राम के काज के लिए हुआ है, इसलिए जहां श्री राम होते हैं वहां हनुमान जी का भी वास होता है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम की आन है। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी के नाम की शक्ति ही अपने आप में परम शक्ति है। उनके नाम की पुकार सुनकर ही नकारात्मक शक्तियां भयभीत होकर दूर हो जाती हैं। वैसे तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला सबसे अधिक भाता है, लेकिन कोई भक्त अगर मन से श्री राम का सुमिरन कर उनके सम्मुख हो तो वे उस भक्त के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है श्री राम नाम का जाप। दुनिया में हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय राम नाम। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर पीपल के पत्ते पर राम राम लिखें। राम राम लिखे पीपल के इस पत्ते को हनुमान जी को अर्पित करें, अपने जीवन के निवारण के लिए प्रार्थना करें। जीवन में हर समस्या को खत्म करने के लिए ये उपाय कारगर हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम है। हनुमान जी की भक्ति का केंद्र है श्री राम, और जो श्री राम का नाम जपता है हनुमान जी उसकी रक्षा एक ढाल की तरह करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा में आपको किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हनुमान जी की उपासना में मूल मंत्र है राम। हनुमान जी का जप तप पूजा पाठ अगर कुछ भी सीधे हनुमान जी के नाम से किया जाए तो वे कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी का रोम रोम राममय है, इसलिए हनुमान जी सीधे अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करने से पहले राम नाम का जाप जरूर करना चाहिए। पहले राम का नाम लें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। तो देखा आपने, आप भी विधिवत करें हनुमत भक्ति, श्री राम दिलाएंगे आपको कष्टों से मुक्ति, क्योंकि हनुमान जी को मिलती है श्री राम से शक्ति। आप भी अपनी पूजा उपासना में रखें इन बातों का ध्यान, श्री राम की कृपा से दूर हो जाएंगे आपके जीवन के सारे व्यवधान।
1: तो हम तो यही आशा करते हैं कि बजरंग बली की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: I'm not 18 anymore. I don't live in a dorm and I have little free time. I'm working, raising two kids and I'm tired. But I'm not done. That's why I chose University of Phoenix. I take one class at a time, log in on my schedule, and I don't have to worry about tuition going up. It just fits my life.
4: University of Phoenix, built for real life. Get started at phoenix.edu.
5: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
6: रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से फॉरेन ट्रिप के बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीर को शेयर करने की अपील कर रहा है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखा भी रहे हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको मध्य प्रदेश के सतना में लेकर चलते हैं, जहां चित्रकूट के गुप्त गोदावरी पौराणिक स्थल की नेचुरल ब्यूटी, दो रहस्यमय गुफाएं हम आपको दिखाएंगे।

आज मैं अपने ब्लॉग में आपको एमपी के चित्रकूट लेकर आया हूँ, जहाँ एक गुप्त गुफा है जिसे गुप्त गोदावरी कहते हैं। इस जगह तक आपको अगर आसानी से पहुंचना है तो यूपी में आने वाले चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा रामघाट से आप यहां बेहद आसानी से पहुंच सकते हैं। गुप्त गोदावरी रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। गुप्त गोदावरी यहां विंध्य पहाड़ों की पन्ना रेंज में एक गुप्त गुफा है जो कि गुप्त गोदावरी के नाम से मशहूर है। दरअसल ये पौराणिक नदी है, दो गुफाओं से होकर बहती है जिनमें पहली गुफा काफी

0: श्री राम जब वनवास गए थे तब उन्होंने इसी गुफा में कुछ समय बिताया था। मेरे इस छोटे से ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो जुलाई से मार्च का महीना सबसे बेहतर होता है गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए। यकीन मानिए, यहाँ आपको सुबह से लेकर शाम तक इस आध्यात्मिक पर्यटन का एक अलौकिक आनंद ही मिलेगा।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
4: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
5: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
6: हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ

0: आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: सेना की जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। यूपी के सीतापुर में एनटीपीसी के सहयोग से डेवलप होगा 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट। राजला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। देश भर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन। अयोध्या की हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़। दिल्ली में स्पेशल सेल्फ डिफेंस समर कैंप का आयोजन, लड़कियों और महिलाओं को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, 12 दिनों तक मुश्किल हालात से निपटने के सिखाए जा रहे गुण। दिल्ली समेत एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, आमदनी जारी के येलो अलर्ट, आंधी बारिश का जताया अनुमान।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। स्वागत है आपका हमारी इस विशेष पेशकश में। आ रहा है गॉडज़िला अल नीनो, क्या किया जाए उपाय, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देश के 13 राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और ये मॉनसून की शुरुआत है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साल मॉनसून कमजोर रहेगा और ये अल नीनो की वजह से रह सकता है और इससे कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है। तो मॉनसून पर सुपर अल नीनो का साया इस साल मंडरा रहा है। क्यों धधक रहे हैं प्रशांत महासागर की लहरें? मौसम पर यूरोप से क्या आई है बड़ी चेतावनी? क्या आ रहा है गॉडज़िला अल नीनो? क्या करें उपाय? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौसम और पर्यावरण विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। तो चलिए, मॉनसून पर अल नीनो का साया मंडरा रहा है। दरअसल दुनिया के मौसमी हाल पर यह बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। द यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की ये रिपोर्ट है और ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसे दुनिया का सबसे सटीक और शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सेंटर माना जाता है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत महासागर में खतरनाक सुपर अल नीनो की सुबुगाहट है। इतिहास का सबसे शक्तिशाली अल नीनो होने का अनुमान जताया जा रहा है और इस साल कहा यह जा रहा है कि यानी ये जो साल है 2026 में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रह सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अल नीनो का पूरी पृथ्वी पर असर पड़ेगा। विनाशकारी अल नीनो क्लाइमेट बम की तरह काम करेगा क्योंकि प्रशांत महासागर में लहरें तप रही हैं। अल नीनो तब रूप लेता है जब मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर तापमान सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है और इससे दुनिया भर में हवाओं का रुख बदलने लगता है। हजारों किलोमीटर दूर बारिश तापमान के पैटर्न में बदल जाती है। इस बार सुपर अल नीनो या फिर कहें कि गॉडज़िला अल नीनो है, इससे कहीं ज्यादा गर्मी होगी तो कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ और बारिश की संभावना भी है। इससे भारत में भी मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, भारत पर भी इसका असर होगा। खेतीबाड़ी के लिए मॉनसून का अच्छा होना बहुत अहम रहता है। पिछली बार साल 2015 में सुपर अल नीनो आया था, तबाही तब भी मची थी। अब एक बार फिर से सुपर अल नीनो आ रहा है जिसका असर भारत समेत दुनिया भर में पड़ने वाला है, यानी कि जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ है वो होने वाला है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा मौसमी बदलाव भी हम कह सकते हैं जिसका असर दुनिया के देशों पर नजर आएगा। खेती पर इसका असर होने की संभावना है, लिहाजा भारत में कुछ उपायों पर भी आज हम चर्चा करेंगे जिनको लेकर लगातार विचार हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह ये दी है कि किसान पारंपरिक तरीकों में सुधार लाएं, जैसे कि खेती में पानी रोकना, इसके लिए तैयारियां होनी चाहिए, बारिश का पानी बहने न दें, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन हो, इसको लेकर चर्चा हो रही है।
1: देखिए, ये तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव है, ये सही बात है। उसके वजह से जो तापमान का वगैरह हम देख रहे हैं ये एल नीनो का ही परिणाम है। परिस्थिति तो वैसी जैसा ये जो तापमान इस साल का जो है ये 100 साल में पहली दफा इतना बड़ा हुआ है, इतना कभी बड़ा नहीं है सागरी तापमान, तो इस वजह से। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा अभी हो रहा कि आने 85 से 88% बारिश होने वाली है ऐसा बोला जा रहा है। ये तो बदलते रहता है, ये कुछ ये तो अभी का अनुमान है, ये इतना सिस्टम है कि ये तो फ्रैक्शन है, 2-5 सेकंड में भी कुछ कहाँ के कहाँ बदलाव इसमें आ सकते हैं। लेकिन ये जो अनुमान है तो इस हिसाब से हमने डरने की कोई बात नहीं है। यदि 12% हमारी बारिश कम हो रही है तो इसका मतलब 700 मिलीमीटर प्रदेश का यदि प्रदेश है तो हमें 600 मिलीमीटर तो बारिश मिल ही रही है ना। तो बात ऐसी है कि हमें इस वजह से जो भी बारिश मिलने वाली है उसका एक हमें एक प्रकार से जो भी कुछ टेक्निक्स या ये सब जो काश्तकारी की पद्धति जो है मशागती पद्धति वो हमें अवलंबना चाहिए। वो विद्यापीठ ने बड़े अच्छे जरूर से स्टडी करके उसको बहुत दिन उस पर संशोधन करके दी हुई है। तो देखिए किसान भाइयों कि जिनकी खेत में ज़्यादा ढाल नहीं है, एक प्रकार के ऐसा समझो कि फ्लैट खेती है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि उन्होंने अभी खेती तैयार हो गई है, हम लोग बारिश की राह देख रहे हैं, हमें बोनी करनी है, उसके पहले ट्रैक्टर को एक हल लगा देना चाहिए और खड़े और आड़े 20-20 मीटर अंतर पे चर निकाल देना, यानी एक स्क्वेयर चौकुनी ऐसे वाफे तैयार हो जाएंगे अपने खेत में, और ताकि कितना भी जम से भी बारिश आ गई पहली कि वो उसके बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ का पानी वहीं रुकेगा, वहाँ की मट्टी वहाँ रुकेंगी, वहाँ का खाद वहाँ रुकेगा और अच्छे तरह से मूलस्थानी जल संधारण होगा, जिसको हम इन सीतु मॉइस्चर कंजर्वेशन कहते हैं। और ये इस तरह से हमने यदि हमारा जमीन में का नबी यदि बढ़ा ली तो समझो ऐसा किया कि हमारी बोनी हो गई, तो क्या हो जाता है कि एक दफे बोनी होने के बाद फिर उसका फसल ऊपर आने के लिए नबी कम गिरती है, तो वो दिक्कत हमें नहीं आएगी क्योंकि हमने हमारी नबी बढ़ा ली है।
0: चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि मॉनसून का हाल कैसा है, क्या प्रेडिक्शन इसको लेकर की जा रही है। दरअसल इस साल सामान्य से 10% कम बारिश होने का अनुमान है क्योंकि मॉनसून पर अलनीनो का असर पड़ेगा और इस महीने जून में थोड़ा सा प्रभाव कमजोर रह सकता है। सितंबर तक मजबूत रूप से मॉनसून रह सकता है, जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून का असर रहेगा। बरसात के 4 महीने काफी अहम माने जाते हैं क्योंकि ये साल भर की बारिश का 70-90% हिस्सा होता है। 60% खेती मानसूनी बारिश पर ही पूरी तरह से टिकी होती है और इस सीजन 90% बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि बारिश कम होगी तो उपाय जरूरी हैं। वो उपाय कौन से हैं जो आपको करना है, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा है, वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ परेश गोस्वामी जी वेदर एक्सपर्ट हैं, सुभाष शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी भी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुरुदत्त, मैं चाहूंगी ये जो टर्म आया है गॉडज़िला अलनीनो, जरा इसको थोड़ा सा समझाइए, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से इसको लिया जाए।
2: गॉडज़िला जो नीनो की बात, गॉडज़िला की जो बात कर रहा हूँ, ये कोई वैज्ञानिक के शब्द नहीं है, यह मीडिया द्वारा अत्यंत शक्तिशाली अलनीनो जो घटनाएं 97-98 या 2015-16 में इस्तेमाल किया गया उसके लिए के लोकप्रिय शब्द है। एक्चुअली अलनीनो का क्या होता है कि प्रशांत महासागर में जब तापमान 0.5 degrees तक रहता है उस समय तक कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इस साल जो अभी उनको जो तापमान मिला है 0.9 बढ़ा हुआ मिला है, तो घबराने की जरूरत शुरू हो गई है। और ये WMO का कहना है कि ये तापमान 3-4 degrees अधिक बढ़ेगा, जब ये 3-4 degrees तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, करीब 80-90% अलनीनो का प्रभाव रहेगा। अब अलनीनो शब्द क्या है इसकी बात भी कर दूं मैं, अलनीनो एक्चुअली छोटा इशू बाल इशू को कहते हैं, स्पेनिश शब्द है ये, पेरू के मछुआरों द्वारा इसको नाम दिया गया है। तो ये जो पूरे समुद्र का जो बदलाव है, होने वाले बदलाव है, ये मौसम चक्र को प्रभावित करता है, इसी का नाम अलनीनो है। और करीब ये 10 सालों में 2-3 बार आता है, कभी इसका कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, कई बार इसका मानसून में तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा इसका, क्योंकि कम वर्षा है, खेती में पानी की समस्या होगी, ये महीनों चलने वाली घटनाएं हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये हम देखेंगे कि अलनीनो के कारण से कहीं तेज हवाएं, कभी ज्यादा पानी होगा, कहीं कम पानी होगा, यह ट्रेड विंड होती है जो कि प्रशांत महासागर से गर्म पानी को एशिया की ओर ढकेलती है, लेकिन अलनीनो क्या करता है, इसको हवाएं कमजोर पड़ जाती है और गर्म पानी वापस पूर्व की ओर खिसक जाता है और महासागर अपनी गर्मी जमा करने की जगह बदल लेता है, तो हमारा पूरा एशिया जो महाद्वीप है इसमें प्रभावित होता है। अभी जो मानसून की गति है खासकर केरला वगैरह में अभी तक बढ़िया चल रहा है काफी धीरे धीरे, लेकिन उसकी गति क्या होगी, आगे क्या परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि जो WMO विश्व मौसम संगठन जो अधिकृत है उसका यह कहना है कि साल के अंत तक ये बहुत ताकतवर होगा, सुपर अलनीनो 80-90% तक ये प्रभावित करेगा। अब इसमें क्या होगा, किसानों की एक चीजें होती है कि थोड़ा सा मैं किसानों के लिए बता दूं कि जो फसल का विविधीकरण अपना है, कम पानी वाली फसलों पर विचार करें, वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दें और मौसम आधारित कृषि करें हम, और आम नागरिकों को चाहिए कि अभी से जल का संरक्षण करें, लू के उपाय करें और मौसम आधारित खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गर्मी लू से बचे, पेड़ पौधे लगाएं, हरित घर बनाएं और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां है उस पर जरूर ध्यान दें। लेकिन अलनीनो का भाग ऐसा नहीं है कि भारत के मानसून कैसी पर निर्भर करता है, ये एक्चुअली प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, मानसूनी परिस्थितियों पर नजर रखता है। अभी सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा होगी, हो सकता है कि ईश्वर करे अच्छी वर्षा हो, सब जगह समान रूप से वर्षा मिलना चाहिए।
0: ठीक है ठीक है, यानी सर इसीलिए क्योंकि इस शो को करने का मकसद ये कि लोग डरे नहीं घबराए नहीं बल्कि क्या वैकल्पिक इंतजाम आप कर सकते हैं अभी से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। परेश जी एक बार आपके पास आऊंगी, अगर इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कितना असर भारत पर इसका रहेगा और कहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है?
3: बिल्कुल देखा जाए तो जो अलनीलो अभी जो बनने जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि इस साल अलनीलो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऐसा नहीं इतिहास में पहले कई बार अलनीलो बन चुका है और अलनीलो के कारण हमारा मौसम पे असर भी पड़ा है। इस साल भी मौसम पे बिल्कुल असर पड़ने की पूरी संभावनाएं दिख रही है, लेकिन जो अलनीलो एक ही पैरामीटर ऐसा नहीं कि उनके वजह से हमारा पूरा जो मौसम सिस्टम है खराब हो जाए। हमारे पास जो हिंद महासागर है जिन्हें बोलते हैं और इंडियन ओशन जो आईओडी है यानी कि इंडियन ओशन डिपोल है वो पॉजिटिव रहता है तो भी हमारे भारत में मॉनसून अच्छी रहती है, लेकिन इस साल क्या होगा कि आईओडी पॉजिटिव रहने की संभावना है। अभी अभी की बात की जाए तो अभी तो आईओडी न्यूट्रल है लेकिन आगे जाके आईओडी पॉजिटिव बनेगा और अलनीलो क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जो बंगाल की जो खाड़ी है उनमें बरसाती सिस्टम कम बनेगी और जो अरब सागर है उनमें जो मौसम की जो सिस्टम होती है बरसात की वो ज्यादा बनेगी। तो इस साल पूरी ये सिस्टम रहने की वजह से जो पश्चिमी भारत है यानी कि जो अरब सागर के किनारे जितने भी राज्य है टोटल 5 राज्य है, एक है गुजरात महाराष्ट्र कोंकण गोवा कर्नाटका और केरला, ये जो 5 राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है यानी कि 95% बारिश हो सकती है। पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले साल 100% से अधिक बारिश हुई है लेकिन इस साल 8-9% बारिश कम होने की संभावना है। वैसे उत्तर भारत है और जो पूर्व भारत है जैसे कि उड़ीसा है फिर मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है यूपी है बिहार है हरियाणा है पंजाब है उन सभी इलाकों में यानी कि पूर्व और उत्तर भारत में बारिश ज्यादा कम होने की आशा है। जो 90% बारिश की आशंका बताया जा रहा है मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 80-85% बारिश उन इलाकों में हो सकती है, 90% से भी कम बारिश की संभावना है। अलनीनो का प्रभाव उत्तरी भारत और पूर्व भारत के ऊपर पड़ेगा और जो अरब सागर के किनारे जो राज्य है उनमें आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहने की वजह से वहां पे ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है।
0: ठीक है सर, इसका देश और दुनिया पर कितना असर होगा इस पर भी हम आगे विचार करेंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं। दो एनवायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ हैं, मैं डॉक्टर सुशील आपके पास आना चाहूंगी। सर एक आंकड़ा आपको बताती हूँ सर, 1982-1983 में जब प्रशांत महासागर का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था वैश्विक स्तर पर सूखे जैसी स्थिति पैदा हुई थी। 97-98 की बात करें तो तब भी सुपर अलिनो आया था जो बहुत ही खतरनाक माना जा रहा था और ये जो इसके बाद 2015-16 आधुनिक दौर का सबसे तेज अलिनो, लेकिन उसके बाद साल 2026 का अलिनो कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है जिसमें बात अगर की जाए ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका ये तमाम साउथ एशिया की बात की जाए बूंद बूंद के लिए कहा जा रहा है कि तरसेंगे। वहीं बहुत से ऐसे राज्य चाहे वो अमेरिका उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की बात करें वहां तेज बाढ़ आ सकती है। स्थिति कैसी होने वाली है प्रकृति के लिए, क्या ये क्लाइमेट बम की तरह है?
4: बिल्कुल नवजोत जी, ये क्लाइमेट बम ही है, इसके पीछे पूरी तरह से विज्ञान आधारित सच्चाई है क्योंकि एक तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से भरी हुई दुनिया है, मतलब पूरी तरह से हमारा जो आसपास का पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित है, हम और आप लोग बुरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण के शिकार हैं और वो अलग अलग प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण हो सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एयर पॉल्यूशन और सुपर अलिनो और एयर पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण दोनों हम कह सकते हैं कि मानसून के दुश्मन है। ये दोनों मिलके मानसूनी हवाओं को कमजोर करेंगे और जिसकी वजह से ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि बारिश कम होगी और मौसम बहुत गर्म हो जाएगा। हम और आप लोगों ने अभी जो डिस्कशन हुआ उससे बात निकल के आई कि अलनीनो के कारण पानी चूंकि कम बरसता है, बिल्कुल सही बात है, और प्रदूषण भी हवा में नमी को रोकता है तो दोनों मिलके बिल्कुल नमी को बढ़ा देंगे और जो आसपास का जो पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है विशेषकर भारत और नेपाल के आसपास के एरिया है यहाँ पर जो खेती है ये काफी हद तक मानसून पर निर्भर होती है और जब बारिश कम होगी तो सीधी सी बात है कि लोगों की जीवनचर्या प्रभावित होगी, महंगाई आएगी, कहीं ना कहीं से जो उनकी रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हैं वो महंगी होंगी, और कुल मिला के जो विपन्न हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए जीवन कठिन होने वाला है आगे चल के। देखिए ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम होती है, इससे एक जिस प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग एक कंट्री से और कई सारे कंट्री से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया एक है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें और आपको कुछ निगोशिएशन करने पड़ेंगे, कुछ कुछ अपने अपना सुझाव करने पड़ेंगे, लेकिन अभी उन निगोशिएशन पर जाने के पहले हमें थोड़ी सी जल्दबाजी होगी फिलहाल दुनिया में, जैसे सुपर एल निनो के कारण जो व्यक्त किया जा रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अंतिम जो निष्कर्ष निकलना है उस निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मौसम और महासागरों की जो ये जटिल प्रणाली है ये लगातार बदलती रहती है, इसलिए भारत सहित अन्य देश लगातार इस चीज इन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप
0: लेकिन
4: जैसे
0: सर, एक चीज और आपने कहा थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इस पर सुभाष जी आपकी राय भी चाहूंगी, खासतौर पर अगर हम कृषि की बात करें, हमारे दोनों मौसम वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, बार बार इसको लेकर चर्चा भी होती है, पहले भी होती आई है कि हम अपने बारिश के पैटर्न के, क्योंकि अब हमें मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ कितनी बारिश होगी, इसकी काफी हद तक एक्यूरेसी मिल जाती है मौसम विभाग की तरफ से, और ये एडवाइस दी जा रही है कि उस हिसाब से आप अपनी फसलों के पैटर्न को तैयार कीजिए। आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या अब सही वक्त नहीं आ गया है, हम तैयारी क्यों ना अभी से की जाए इसकी? सुशील जी, डॉक्टर सुशील,
4: जैसे इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि तैयारी के रूप में, जैसे आप जैसे जो मीडिया संस्थान है, प्रमुख मीडिया संस्थान, ये लगातार किसानों को आग्रह कर रहे, तो अब वो छोटे बीजों का चयन करें, मतलब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ऐसी उन्नत किस्मों के बीज बोएं जो सूखा सहने की क्षमता रखते हो, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को वो बोएं। इसमें क्या होगा, चूंकि ये कहा जा रहा है कि कम बारिश होगी, सूखा होने की संभावना है, तो सीधी से सीधी बात है कि मेरी आपकी थाली में भोजन कम आने की संभावना है, तो जब हम ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स को बोएंगे तो हो सकता है कि खेती उतनी प्रभावित ना हो। साथ में मिश्रित खेती, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें एक साथ दो फसलों को उगाया जाता है, उदाहरण के रूप में कपास के साथ अगर सोयाबीन को अगर उगाएंगे या अरहर तोर को उगाएंगे, तो ये क्या होगा कि अगर एक फसल को नुकसान हो गया, मान लीजिए मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से, तो दूसरी से उसकी भरपाई हो सकती है। साथ ही आधुनिक सिंचाई पद्धति, जो भी आप देख रहे हैं कि पानी की हर एक बूंद को बचाना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है, इसके लिए हमारे किसान बंधु ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर, जिसके लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, प्रमोट कर रही है, उसको भी अपना सकते हैं। साथ में मुल्चिंग, मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए खेत की सतह को सूखी पत्तियों या पुआल या प्लास्टिक शीट से भी ढक सकते हैं, और इसके अलावा जो भी बारिश हो नवजोत जी, मैं तो कहूंगा ये बारिश हमारे लिए अमृत होती है, पानी की एक एक बूंद को बचाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, और इसके लिए हमें सिंगापुर जैसे देशों से लेसन लेना चाहिए, जहां पर वो सड़क के नीचे हर जगह बड़े चौड़े चौड़े पाइप के द्वारा पानी की एक एक बूंद, बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाते हैं।
0: सुभाष शर्मा जी, बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर चर्चा करनी है, खास मेहमान तमाम हमारे साथ हैं, सुभाष जी भी इंतजार कर रहे हैं। अब सुभाष जी देखिए, हमारे देश की जो खेती है वो काफी हद तक इस मानसूनी बारिश पर निर्भर होती है। अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी की बात करें, अभी तक तो कहा जा रहा है कि मानसून बिल्कुल अपनी सही रफ्तार से चल रहा है, लेकिन अगर इस सुपर एल नीनो का असर होता है तो अरब सागर के जितने तटीय इलाके हैं या फिर जितने राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहां बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत में कहा जा रहा है और उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि कम बारिश होगी। ऐसा होता है तो कितना असर हमारी कृषि खेती पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से इसी पर निर्भर करती है।
5: बिल्कुल सही बात है कि भारत में करीब 50% से लेकर 55% तक वर्षा पर आधारित खेती होती है, और वर्षा कम होने से वो फसलें निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। मगर ये भी सही है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए हमें, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है ये मौसम। ये बात सही है कि जो प्रशांत महासागर का मध्य क्षेत्र है उसमें नीनो 3.4 क्षेत्र में 0.9% तापमान बढ़ गया है, और 0.5% बढ़ने के बाद ही अल नीनो की संभावना तीव्र हो जाती है, तो जाहिर है कि वो स्थिति तो आ गई है। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी परिवर्तन भी होता रहता है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसमें वेदर पैटर्न भी बदलता रहता है, अचानक भी बदल जाता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगती है कम समय में, कभी कभी देर तक बारिश नहीं होती है, कभी कभी गर्मी का सीजन काफ़ी बढ़ जाता है ड्यूरेशन, और बाद में फिर हमारा जो ठंडी का सीजन है वो भी बढ़ जाता है,
0: और कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही नहीं आता है, जो जरूरी भी है।
5: हाँ, लेकिन ये बहुत सतर्क रहने की निश्चित रूप से आवश्यकता है कि हमको कोई अगर जानकारी मिली है, इसमें वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी दी है कि भारत और अन्य एशियाई देशों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। असल में ये जो जून महीना है इसमें जो सूरज की किरणें हमारे ऊपर सीधे पड़ती हैं इस महाद्वीप पर, और ये चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर सूरज जाता है यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, तो सारी किरणें सीधे पड़ती हैं तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में नवतपा कहा जाता है, नौ दिन बहुत तपता है। हाँ, हाँ। और इस बार 25 मई से लेकर 2 जून तक नवतपा था। उसके फायदे भी हैं कि बहुत सारे गर्मी होने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, बीमारियाँ कुछ खत्म होती हैं, और बारिश की भी संभावना बढ़ती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बारिश भी अच्छी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो नवतपा बढ़ता जा रहा है, उसका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है,
0: 9 दिन की बजाय ज्यादा दिन का।
5: हाँ, ज्यादा हो जा रहा है, ये चिंता का विषय अवश्य है।
0: ठीक है, चलिए सर, एक एक सेकंड जरा एक बार गुरुदत्त जी को मैं साथ लेना चाहूंगा। गुरुदत्त जी, एक एक जो अगर ये सुपर अलिनो आता है, हालांकि देखिए दोनों एक्सपर्ट हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है जैसा कि हमने आंकड़ा भी बताया, इससे पहले 2015 में आया था, 82-83 में आया था, सिचुएशन जो है, जो ये रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये तमाम एरियाज जो है यहाँ सूखा ज्यादा पड़ेगा, और अगर हम अमेरिका, चाहे वो उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के तमाम राज्यों इलाके, यहाँ पर बाढ़ बारिश बहुत आएगी, दुनिया पर असर कितना हो सकता है इसका?
2: देखिए, जब हमको बुखार आना शुरू होती है तो हम पैरासिटामॉल लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम इंतजार करें कि जब हमारे ऊपर आफत आए तब हम छत बनाए, जब ये पूरा साइंस पे टिका हुआ है, हमारा पूरा धरातल साइंस पे। अब जो अलिनो आया था, मैं कह रहा हूँ 97, 98, 15, 16 में, उसमें आज की परिस्थितियां डिफरेंट है, आबादी बढ़ गई है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई है, हमने सुविधा भोगी अपने आप को बना लिया है, हमको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है, हमको जब बिजली नहीं बनेगी, पानी नहीं होगा तो हम बिजली कहाँ से मिलेगी, पावर हाउस कैसे चलेंगे हमारे। तो हमको अभी से सावधानी, अगर बरसात आ रही तो किसान अपने छप्परों को मजबूत करता है पहले से कि हमारे बरसात में घर में पानी ना आए। जब वैज्ञानिक संकेत दे रहे हैं, तापमान प्रशांत महासागर का बढ़ रहा है, अगर आपने देखा होगा कि नवंबर जनवरी और दिसंबर में ये जो माउठा है पानी नहीं गिरा, इस साल WD स्ट्रांग नहीं आए, और खासकर इस उतनी गर्मी आप देखिए मई में कुछ दिनों बहुत भयानक गर्मी पड़ी। हाँ। क्या चेतावनी नहीं है? इसके लिए अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो हम करें, पैनिक ना हो, लेकिन अपनी तैयारियां हम पूरी रखें, तैयारी जरूरी है हमको।
0: अभी सर मानसून की रफ्तार कैसी है? देखिए सीधा सा सवाल है, अभी की मानसून की रफ्तार के हिसाब से आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी की मानसून की रफ्तार से क्या पूरे देश को मानसून 30 जून तक कवर कर लेगा, जो अमूमन डेट्स दी जाती हैं?
2: देखिए, मानसून कवर करना और भरपूर वर्षा होना दोनों में बहुत अंतर है। अभी लगातार आप देखिए कि मानसून धीरे धीरे बढ़ रहा, 10 तारीख तक उसको लगभग मुंबई आ जाना था तो मुंबई नहीं पहुंचा। अभी जो परिस्थितियां निर्मित हुई उसमें से 4 से 5 दिन अभी आगे बढ़ने में मानसून में धीरे धीरे बंबई और जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है और बहुत सारा है, तो मानसून आने में और लगातार वर्षा होने में, क्योंकि मानसून आने के बाद ब्रेक की स्थिति भी आती है और वो ब्रेक बड़ा लंबा होता है, इसलिए मानसून तो समय पर आ सकता है, लेकिन भरपूर वर्षा किसानों को, जो सेंट्रल इंडिया में धान का क्षेत्र है आप देखेंगे, उड़द वगैरह है और सोयाबीन का जो क्षेत्र है, तो उनको पानी की आवश्यकता बढ़ती है। अगर किसान अभी से रोपा वगैरह की तैयारी कर ले और बाद में पानी नहीं गिरा तो किसान का नुकसान तो हो जाएगा, इसलिए तैयारी पूरी रखना चाहिए। और मानसून तो तय समय पर अभी ठीक ठाक चल रहा है, लगभग थोड़ा 2-4 दिन देरी से है लेकिन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो अलिनो की इफेक्ट कर रहा हूँ, जो गर्म पानी वहां से आता है प्रशांत महासागर से, और समय पे अगर ये पूरा सिचुएशन नहीं हुई तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमको अपनी तैयारी, कम दिन वाली फसल, कम पानी वाली फसल और जो पानी गिर रहा है अभी प्री मानसून रेन भी हो रही है इंडिया में, चाहे सेंट्रल इंडिया में हो चाहे दिल्ली साइड में, तो जो पानी है उसका हम संरक्षण करें, उसको बचा के भी रखें, चाहे जमीन के अंदर डाल लें या तालाब की साफ सफाई से या कुएं बावड़ियां हैं जो भी हो, दुरुपयोग कम करें, पानी का दुरुपयोग बहुत होता है आजकल हिंदुस्तान में।
0: चलिए यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, देश और दुनिया पर असर कितना होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी से इसकी तैयारी करनी होगी, वैकल्पिक इंतजाम क्या हो सकते हैं, बारिश अगर कम होती है तब, बारिश अगर ज्यादा होती है तब, अभी से किस तरह की तैयारी करनी होगी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: रहा है गौडज़िला अलनीनो। अब अलनीनो की बात हो रही है, गौडज़िला अलनीनो। हालांकि वेदर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो मीडिया का दिया हुआ टर्म है, लेकिन कुल मिलाकर एक क्लाइमेट बम की तरह इसको देखा जा रहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहां से सवाल यही उठता है कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। परेश जी, दो सवाल सर। पिछली बार जब इस तरह का अलनीनो आया था, असर कितना हुआ था, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, इस बार हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: बिल्कुल, देखा जाए तो अलनीनो कोई नई चीज तो है नहीं कि पहली बार आ रहा है। तो इतिहास में देखा जाए तो बहुत बार, हर 8 से 10 साल में एक बार अलनीनो का प्रभाव देखने को मिलता है। और जैसे कि 2015 में आया, उससे पहले भी अलनीनो आया, लेकिन अलनीनो का जो एक सुपर स्ट्रॉन्ग अलनीनो का रेकॉर्ड है वो है 1877 में। 1877 में जो अलनीनो का जो एक प्रभाव हुआ था, उनकी वजह से, यानी कि आज से 149 साल पहले जो सूखा पड़ा था, खास करके दक्षिण एशियाई देशों में जो सूखा पड़ा था अलनीनो के वजह से, उनकी वजह से जो उत्पादन होता है जो किसानों का, वो बहुत कम हुआ। उनकी वजह से पृथ्वी की टोटल जो आबादी है, उनके 4% आबादी भूख और प्यास से मर चुकी थी। अलनीनो यहाँ तक भी असर कर सकता है, लेकिन वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज संसाधन हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, बोरवेल की सुविधाएं है, इलेक्ट्रिसिटी की तैयार जो सुविधाएं है, उनकी वजह से हम पानी भी जमीन से निकाल सकते हैं। और खास करके आज हमारे पास हाइब्रिड बियारण है, और फिर और भी ज्यादा हमारे पास सुविधा है, इसलिए अब इसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि पानी का जो संग्रह है वो ठीक तरह से करना चाहिए। अलनीनो का प्रभाव है वो ऐसा नहीं है कि 2026 में ही पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर अलनीनो बनने जा रहा है। हो सकता है कि 2026 में तो इसका असर होगा और 27 या तो 28 तक चल सकता है, क्योंकि अलनीनो का ये नहीं है कि इस साल आया है तो फिर 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये तो महीनों तक चलता है, कभी साल भर भी चलता है, अगले साल भी, अब तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आगे की सोच के हमें पानी का संग्रह खास करना चाहिए और पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण भी आज खराब हो रहा है, और पर्यावरण खराब हो रहा है इसकी वजह से बार बार ये अलनीनो का प्रभाव आ रहा है। देखा जाए तो इस साल जो बर्फ वर्षा हमारे यहाँ पे होती है, जो खास करके उत्तर गोलार्ध में जो बर्फ वर्षा होती है, वो भी 2 सालों से कम हो रही है। उनकी वजह से जमीनी तापमान उनके साथ साथ समुद्री तापमान भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसकी डायरेक्ट किसानों को असर पड़ेगी।
0: ठीक है, उस पर बात करेंगे सर। एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कहा यह जा रहा है कि सितंबर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम भारत के मानसून की बात करें तो भारत का मानसून तो अभी जून से लेकर सितंबर तक रहेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि बारिश कितनी होगी, उस पर फोकस किया जाए, या बारिश की रफ्तार कहां कहां कैसी होगी, जिसको लेकर गुरुदत्त जी कह भी रहे थे।
1: देखिए, अभी तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अभी जो आगे बढ़ रहा है, जैसे कि केरला में, उनके बाद महाराष्ट्र तक तो मानसून पहुंच गया, लेकिन आज ये स्थिति बन गई है कि आज मानसून रुक गया है, क्योंकि जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, आज अभी जो अपडेट हुआ है आईएमडी का, उनमें ये अपडेट आया है कि मानसून जहां कल था वही आज है, मानसून प्रगति नहीं किया। तो हो सकता है कि आगे जाके मानसून थोड़ा धीमा पड़ सकता है, लेकिन एक बात तय है कि जो भारत में मानसून चलता है उनमें जून से जो मानसून की शुरुआत होती है, सितंबर तक तो उत्तर भारत में खत्म होता है, लेकिन जो दक्षिण भारत है वहां तो फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून चालू होता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र से लेके जो नीचे के इलाके जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में तो नवंबर तक तो मौसम देखने को मिलता है, बारिश होती है। तो ये जो अभी अलनीनो सक्रिय हो रहा है, तो इसका ऐसा अभी तो एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि सितंबर तक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी एक अनुमान है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो हमारी जो धारणा है इतना स्ट्रॉन्ग न भी हो, वो थोड़ा स्लाइड हो जाए या तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। हम तो यही अभी आशा रखते हैं कि जितना माना जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो भी एक संभावना है। और इनका जो असर है वो सितंबर तक जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें दक्षिण भारत में जो सितंबर के बाद जो बारिश पड़ती है उनमें भी ये असर कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश में, ये जो हमारा विंटर सीजन आएगा तो उनके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा।
0: हाँ, और पिछले साल भी हमने देखा, और पिछले 1-2 साल से लगातार पैटर्न ऐसा नजर ही आ रहा है। अब डॉक्टर सुशील द्विवेदी, सीधा किस तरह के इंतजाम, किस तरह के उपाय, कैसी तैयारी हमारी होनी चाहिए?
2: अब बिल्कुल जैसा कि अभी ये बात निकल के आई कि सुपर अलनीनो के कारण सीधे सीधे मानवता प्रभावित होने जा रही, और हमारा देश चूंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो सीधे सीधे हम लोग प्रभावित होने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में तो सीधे स्वाभाविक विकल्प के रूप में हमें और आपको मोटे अनाजों की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे हमारे देश के यशस्वी
0: यानी
2: प्रधानमंत्री जी
0: बैक
2: और
0: टू
2: अलग अलग
0: बेसिक्स जिसको
2: वैज्ञानिक,
0: हम कहते हैं।
2: यस यस, सुपर फूड भी कहते हैं,
0: हाँ
2: श्री अन्न भी कहते हैं, और इन्हें गरीबों का फसल भी कहा जाता है, लेकिन ये गरीबों की फसल नहीं रही अब, ये एंशियंट ग्रेन है और ये प्रचुर प्रचुर पोषक तत्वों से भरपूर हैं, और ये कम समय में भी उग जाते हैं, बहुत कम पानी और खराब मौसम में भी उग जाते हैं, और इनमें हम साथ में दलहनों का भी उगा सकते हैं, मूंग और उड़द को, उड़द बहुत अच्छा एक विकल्प हो सकता है, मूंग एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, 60-70 दिन में, लगभग 2 से 2.5 महीने में ये तैयार हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। देखिए नवजोत जी, मेरी आपकी जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, मेरी आपकी दराज में, मेरी अलमारी में कपड़े बढ़ते जा रहे, कारें बड़ी होती जा रही, लंबी रखते जा रहे, सड़कें हाईवे बनते जा रहे, मतलब हम लोग कंज्यूमरिज्म के जाल में फंसते जा रहे हैं, चीजों की हम लगातार खरीदारी कर रहे हैं, अर्थात आवश्यकताएं बढ़ रही, लेकिन धरती तो उतना ही है ना, धरती नहीं बढ़ रही। तो ये जो पूरा इम्बेलेंस बन रहा है, धरती का तो हम बढ़ा नहीं पा रहे और हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, तो ये जो परेशानी आ रही है उससे हम पहले ही जूझ रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मेरे आपके लिए पानी की उपलब्धता, और साथ में ये परेशानी अब सामने आ रही है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के जीने को सीखने की तरफ अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, और अपने आप को हमें पुराने जो वही जो रवायतें, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये बार बार ये आपके साथ में डायलॉग करता हूं और ये बात रखता हूं, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे, देखिए इस बार हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया, उसकी थीम ही रखी गई थी कि इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर फॉर द प्लेनेट फॉर द फ्यूचर। तो हम प्रकृति से प्रेरित चीजों को सीखें, प्रकृति में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जा
0: बिल्कुल
2: रही, प्रकृति अपनी समस्या को कैसे सॉल्व कर रही है। तो जब तक हम प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, जो कि हमारे आपके ऋग्वेद में बहुत अच्छे से कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, और कहाँ हम माता की तरह उनको सम्मान दे पा
0: बिल्कुल
2: रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: स्कूल
0: हाँ सर
2: कॉलेजों में ये मूवमेंट भी चला हुआ है। तो अब हमें लौटना पड़ेगा इसकी
0: वापस
2: तरफ,
0: उसी पर,
2: हमें
0: सुभाष जी
2: प्रकृति की तरफ
0: जहां
2: बचाने
0: से
2: के लिए
0: शुरू हुए
2: टूटना
0: थे
2: पड़ेगा।
0: वापस, यानी ये धरती बिल्कुल वैसी ही है, हमने अपने पैटर्न्स बदल लिए, हमने अपने तौर तरीके खान पान को हमने बदल लिया, लेकिन वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि धरती से खिलवाड़, पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ, कंक्रीट के जंगल बना दिए, लेकिन अब वापस से उसी बैक टू बेसिक्स की तरफ आना होगा। उपाय क्या किए जा सकते, तैयारी कैसी हो अभी से?
3: एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो अनाज का उत्पादन तो बहुत बढ़ाई, उसकी वजह से भुखमरी की समस्या काफी हद तक घटी, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए, जैसे कि पानी का जलस्तर करीब 1,200 फीट नीचे चला गया है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दूसरा है कि जो इतना ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से हमारे जो फसलें हैं, फल हैं, उसमें भी वो कीटनाशक घुस गए हैं और उसको हम खाते हैं तो हमारे खून में भी आ गए हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पंजाब में हो रहे हैं,
0: बिल्कुल हाँ,
3: क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत होता है और फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत इस्तेमाल होता है। तो हमारा पूरा जो स्वास्थ्य है प्रभावित हो गया, इसलिए इस पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। और कई कृषि वैज्ञानिकों ने, जिसमें प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो उसमें बहुत ही आगे की भूमिका निभाए थे, उन्होंने भी कहा कि इसको पैटर्न बदलना पड़ेगा। जो धान और गेहूं हम लोग बोते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ज़्यादा पानी लेते हैं और वहाँ पर ज़रूरत है कि उस फसल का हम लोग परिवर्तन करें, दूसरी फसलें, ऐसे जैसे उन्होंने कहा श्री अन्न या मोटे अनाज की फसलों को बोना जरूरी हो गया है, और धान खास करके वहाँ पर हम लोग कम से कम बोएं। अभी जो खरीफ फसल शुरू होने वाली है इसी में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। और दूसरी बात है कि जो सिंचाई की पद्धति है वो फ्लड इरिगेशन है, हम एक बार पाइप छोड़ देते हैं पूरा खेत भरता रहता है तो अनावश्यक पानी इकट्ठा होता है। जो ड्रिप इरिगेशन है, बूंद बूंद सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। कुछ इलाकों में, गुजरात वगैरह में, हमने देखा है कि उसका काफ़ी प्रचलन है, बूंद बूंद की सिंचाई करने का। अन्ना हजारे ने भी इस चीज का बहुत इस्तेमाल किया अपने राले सिद्धि गांव में
0: जी।
3: तो इसलिए हमको ये पैटर्न बदलना होगा, जो खेती का पैटर्न हमारा है उसको बदलना होगा। वास्तव में पहले जो जौ बोया जाता था उसमें बहुत कम पानी लगता था, चना में भी कम पानी लगता था, और जो कुछ धान की वैरायटी थी जैसे कि बगरी और साठा धान, ये 60 दिन में हो जाते थे। कम पानी लेना और कम से कम समय में पैदा हो जाना,
0: उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। बिल्कुल डॉक्टर गुरुदत्त जी, तैयारी कैसी होनी चाहिए?
4: देखिए एक चीज और बता दूं मैं कि अलिनो की जो बात चल रही है, जब ये सितंबर के बाद एक्टिव होगा ज्यादा अलिनो, तो उस समय रबी की फसल होगी भारत में। और हमारा जो भारत है कृषि प्रधान, खासकर गेहूं का देश है, गेहूं बहुत ज्यादा भारत में पैदा होता है, उसको तापमान भी कम चाहिए। अगर जब अलिनो होगा तो तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा ठंड के टाइम पे, और गेहूं को 15 से 20 डिग्री मतलब ग्रो ही नहीं कर पाएगा आपका गेहूं। तो जब अभी मानसून में अगर अच्छी वर्षा हो भी गई और हमने रबी फसल को बो भी दिया गेहूं या चना जो भी है, लेकिन उसको अगर तापमान नहीं मिला फसल के अनुरूप में, तो वो गेहूं ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो लगातार मतलब और स्ट्रांग होगा सितंबर के बाद, जिस टाइम से ये जो ट्रेड विंड्स है, व्यापारिक हवाएं हैं, बहुत ही कमजोर हो जाती है इस समय जो भारत में।
0: तो इसी को देखते हुए बिल्कुल इसी को देखते हुए तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो क्या है गौडज़िला अलनीनो, सुपर अलनीनो, और इसका असर कितना देश और दुनिया पर हो सकता है, तैयारी अभी से कैसी होनी चाहिए, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: वाराणसी घूमने वालों के लिए एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जिससे कि यहाँ की गलियों में आप आराम से घूम फिर सकेंगे, यहाँ के खान पान को एंजॉय भी कर सकेंगे। एआई आधारित इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैदल यात्रियों की परेशानी को दूर करेगा।

0: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा, गंगा के घाटों, प्राचीन मंदिरों, शास्त्रीय संगीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का यहाँ अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस पवित्र नगरी को लेकर मान्यता है कि यहाँ की भूमि पर प्राण त्यागने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। यहाँ के गंगा घाट भी श्रद्धालुओं के साथ देसी विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। विशेषकर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती अपनी एक अलग पहचान रखती है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक और अधिक बढ़ चुकी है। यहाँ की गलियों का दीदार कर वो यहाँ के खान पान का भी पूरा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इन संकरी और तंग गलियों में रास्ता ढूंढना अक्सर आसान नहीं होता, इसलिए लोगों को भटकना भी पड़ जाता है। इस समस्या को देखते हुए तकनीक के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश की गई है।
1: काशी की प्रसिद्धि यहाँ के गलियों से भी है, लेकिन इन्हीं गलियों की वजह से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक, आस्थावान और श्रद्धालु कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं और गलियों के जाल में खो से जाते हैं, जिसकी वजह से मौजूदा समय में जो तमाम मोबाइल ऐप हैं, जो मैप के जरिए लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वे काशी की गलियों में नाकाम साबित होते हैं। इसी को देखते हुए वाराणसी स्मार्ट सिटी और एक निजी कंपनी ने आपस में मिलकर एक ऐप लॉन्च किया है और ख़ास तौर से कस्टमाइज तौर पर इसे काशी के गलियों के हिसाब से ही बनाया गया है।
0: स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित एक खास मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसका नाम है बेहतर वे यानी बेटर वे। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर आधारित एक नेविगेशन ऐप है, जो काशी की गलियों में पैदल चलने वालों के लिए बेहद उपयोगी है। इसे वाराणसी जैसे शहर की गलियों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सही रास्ता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी समेत 8 भाषाओं में है। ऑडियो गाइड और 3D वीडियो से लैस इस ऐप से घाटों, मंदिरों और बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे भटकने की समस्या नहीं होगी।
2: आपको दशाश्वमेध जाना है तो ये आप यदि गूगल मैप पे जाते, जो नॉर्मल रास्ता है, उसमें आपको एक ही रास्ता बताता। यहाँ पे आप देखिए, आपको चार अलग अलग रास्ते बता रहे। हर रास्ते का क्या खासियत है, आप सो क्लिक करेंगे इस घर रास्ते में क्या पड़ता है आसपास, और ये ऑडियो नोट के थ्रू भी बताता है। ऑडियो नोट भी है तो ऑडियो नोट के थ्रू भी बताता है क्या खासियत है। इंग्लिश, हिंदी, जापनीज, फ्रेंच, भोजपुरी सब में है। आप किसी में जाइए, देखिए आप जहाँ पे है
1: तो न केवल उस गंतव्य तक पहुँचाएगा, उस गंतव्य के रास्ते जो तमाम पढ़ने वाले यहाँ के फेमस जगह है उनसे भी वाकिफ
2: की जगह, GI टैग शॉप्स, कल्चरल म्यूजियम्स, कोई भी पुराने दुकानें हैं, पुराने पान का दुकान हुआ, पुराने लस्सी का दुकान हुआ, सब इसमें होगा। और ये ऐप पूरा AI एनेबल्ड है।
0: बेहतर वे ऐप में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो इसे दूसरे वैसे ऐप से अलग बनाता है, जो लोगों को रास्ता बताने में मदद करते हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए।
2: अभी जो आप कोई भी मोस्टली जो मैप यूज करते हैं, गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स, वो पैदल यात्री के लिए बनी नहीं है। पैदल यात्री गली से जा सकते, गाड़ियाँ नहीं जा सकती गली से, तो गूगल मैप्स ने बनाया है गाड़ियों के लिए। तो पैदल रास्ते वाले उनके लिए बनाए नहीं है, तो उनके वाले रास्ते दिखते ही नहीं है। हेंस आपको हमारे ऐप में हमने वो रास्तों के लिए पैदल यात्रियों के लिए बनाया है, जो धार्मिक स्थान में आया है उन पैदल यात्रियों के लिए, जो रास्ते आपको गूगल में नहीं दिखेंगे। गूगल में आपके बस भीड़ वाले रास्ते दिखते, यहाँ भीड़ बिना भीड़ के आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाइए, मज़े लेते हुए जाइए। अब अनुभव अलग अलग लोकल क्यूजीन का, लोकल शॉप्स का, लोकल स्टोरीज का आप अनुभव लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते, जो आपको नॉर्मल मैप कभी दिखाएगा ही नहीं।
0: अगर किसी गली में जाम जैसी स्थिति है या फिर कोई और दिक्कत पेश आ रही है तो उसकी जानकारी भी बेहतर वे ऐप के जरिए आपको मिल जाएगी।
2: स्मार्ट सिटी ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कैमराज का बंदोबस्त करके रखा हुआ था, उन कैमरा के फीड्स पे हमारे AI एल्गोरिदम चलते जिससे ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाता है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे इस वजह से बढ़ रहा है भीड़ कि एक गाड़ी उल्टा खड़ा हो गया, यहाँ पे कुछ बंदे किसी की तबीयत खराब हो गई इसीलिए वो जाके इकट्ठा कर रहा है किसी को, तो अब यदि वहाँ भीड़ बढ़ा कैमरा में तो ऑटोमेटिकली गली का रूट चेंज हो जाएगा। ये आप ये देखिए क्वाइट मॉडरेट क्राउडेड वेरी बिजी, इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा भीड़ है वो वेरी बिजी है और जो आराम से लोग जा सकते हैं वो क्वाइट है, तो अब बंदा अपने हिसाब से चूज करके जा सकता है।
0: इस बेहतर ऐप को काशी दर्शन सेवा और स्मार्ट काशी ऐप से जोड़ने की योजना भी है।
3: गलियों का शहर है, गूगल मैप्स कई बार गलियों में फेल हो जाता है, गलियों उसमें आ नहीं पाती हैं, तो जो पर्यटक आते हैं काशी की गलियों को और बेहतर जान पाए, साथ ही साथ मेन रोड से हम ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट को थोड़ा गलियों की तरफ ले जाएं, इसके लिए बेहतर वे ऐप टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन की मदद से काशी में विकसित किया गया है और हम इसको अपने काशी के अलग अलग जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म है, काशी दर्शन सेवा है, स्मार्ट काशी ऐप है, इस पे इसके API को लेके आएंगे ताकि अलग से इसके ऐप को डाउनलोड ना करना पड़े।
0: AI सेंसर्ड कैमरे के जरिए लोगों को लाइव ट्रैक मिल सकेगा, जहां भी जाना होगा उसका डायरेक्शन और मूवमेंट प्लान मिलेगा, तो जाहिर है रास्ता आसान भी होगा और भटकने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। चर्चा की शुरुआत आज करेंगे तरक्की की उस तस्वीर से जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली जोजिला टनल की राह आज खुल गई है, बहुत ही जल्द ये टनल आम जनता के लिए खोल भी दी जाएगी और ये टनल जम्मू कश्मीर में पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और इसके साथ ही दिखाएंगे अमरनाथ यात्रा की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या कुछ इस बार किया जा रहा है।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के नए ट्रेंड भी। अभी तक तो अल्फा फिल्म में आलिया के एक्शन की चर्चा हो रही थी, अब इस बेफेरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है नयनतारा का। कैसे बॉलीवुड में एक्शन क्वींस का दौर शुरू हो रहा है, इस पर भी आगे करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: टीआईटी भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबाग चौराजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देश भर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, अयोध्या में हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़। सेना की जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी, यूपी के सीतापुर में एनटीपीसी के सहयोग से डेवलप होगा 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। स्पेशल सेल्फ डिफेंस समर कैंप का आयोजन, लड़कियों और महिलाओं को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग, 12 दिनों तक मुश्किल हालात से निपटने के सिखाएंगे गुर।

0: दिल्ली एनसीआर में बदल सकता है मौसम का मिजाज, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, आंधी बारिश का जताया अनुमान।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
0: अगर इरादे मजबूत हों, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी मिसाल बन गई है। आज फाइन ब्रेक थ्रू के बाद सुरंग का अंतिम सिरा भी खुल गया है।
2: बिल्कुल, यानी कि अब सुरंग के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाने की राह आसान हो गई है और ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार, सुरक्षा के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित होगी।

0: इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस जोजिला टनल ने आज तरक्की की एक नई इबारत लिखी है। सुरंग का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीर कर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है।
1: इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा।
0: पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लगते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी।
2: सर्दियों में ये पूरा इलाका का यहाँ पर एवलॉन्च होते हैं। अब अक्सर तस्वीरें देखूंगी सर्दियों में बीआरओ के सामने बड़ी मशक्कत होती है इस रास्ते को खुला रखना, जहाँ 20 से 25 फीट तक बर्फ जम जाती है, सर्दी -30 डिग्री तक पारा गिर जाता है और रास्ता बंद होने की वजह से काफी विषम परिस्थितियां यहां पर होती हैं। और ऐसे में ये जोजिला सुरंग जो है वो भारत के इस पर्वतीय इलाके में बेहद दुर्गम परिस्थिति में आना जाना बेहद आसान कर देगी, तो जिससे न सिर्फ इलाके की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामरिक दृष्टि से भी देखें, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी देखें तो भारत की सेनाओं के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, जो जरूरत है, उसको भी जोजिला की ये सुरंग पूरा करेगी।
0: जोजिला टनल सिर्फ एक टनल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास का नया द्वार बन गई है। दुर्गम पहाड़ी इलाके में इस टनल को बनाने में कई चुनौतियां आई। जटिल पहाड़ियां, लगातार हिमपात, तो कभी शून्य से नीचे के तापमान में निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों के जज्बे के आगे सारी चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। इस टनल को आधुनिक सुरक्षा मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। टनल में आने और जाने को दो अलग रास्ते हैं। टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अधिकतम हिमपात और हिमस्खलन से हमेशा सुरक्षित रहेगी और इस टनल से आवाजाही कभी प्रभावित नहीं होगी।
3: जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था, तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए। टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। देश चाहे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी देख ले, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना के साथ फ्लेयरअप हुआ है और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि बहुत जरूरी है टनल, तो अब बनने को तैयार है और इससे न सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि लद्दाख के पूरे रीजन के लिए एक वरदान और गेम चेंजर बन के आएगी।
0: जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी भागीदार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा। जोजिला टनल पहाड़ों में भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इस विश्व स्तरीय टनल के निर्माण से भारत ने अपनी तकनीकी दक्षता और दृढ़ता संकल्प का प्रमाण दिया है। ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही, ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं को भी जोड़ रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए यहीं से एक और खबर, वंदे भारत वाली खबर। कितनी इम्पोर्टेंट खबर है ये, देखिए कि किस तरीके से लोगों का न सिर्फ सफर आसान हुआ है लेकिन जो कहा जाता था कि इकोनॉमिकली भी अगर इसको देखा जाए तो काफी फायदा लोगों को हो
5: और मुझे तो लग रहा है इससे ना घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा।
4: हाँ, मतलब जो लोग सोचते थे कि कब हम पहुंचेंगे वहां पर, एटलीस्ट अब स्पेशली अगर हम पर्यटन की भी बात करें तो इजिली जो जम्मू तक जा रहा है तो वो आगे श्रीनगर तक पहुंच।
5: बिल्कुल, और ट्रेन का सफर करने का अलग ही मजा है। आपको कैसा लगता है ट्रेन का सफर,
4: और स्पेशली इस रूट पर? अगर आपको याद हो हमने सर्दियों में भी दिखाया था किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पूरा सफर है, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा होगा। तो जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार वहां बनाई जा रही सड़कों के अलावा पुल भी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बडगाम के बीरवा में एक लोहे का पुल तैयार किया जा रहा है, जो जाहिर है कि यहाँ के लोगों को विकास की एक उम्मीद दिखा रहा है।
5: तो कभी बेली ब्रिज था जिसे 90 के दशक में आर्मी ने तैयार किया, काफी पुराना और टूटे होने पर इसकी मरम्मत भी हुई, लेकिन अब इस आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए इस पक्के पुल का निर्माण हो रहा है।

0: जम्मू कश्मीर के बड़गाम में करोड़ों की लागत से बन रहा ये लोहे का पुल इस क्षेत्र के विकास को जहां रफ्तार देने के लिए तैयार हो रहा है, वहीं पर्यटन को भी यहां उड़ने के लिए पंख दे रहा है। पहले कभी यहां साल 1990 में सेना ने एक बेली ब्रिज बनाया था, लेकिन एक तरफा रास्ते के कारण ट्रैफिक जैम के हालात अक्सर बने रहते थे। साथ ही पुल क्योंकि पुराना और टूट फूट गया था, उसकी मरम्मत भी कराई गई, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही को लेकर दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो वक्त आया जब बीते 30 नवंबर से रोड्स एंड ब्रिजेस और नाबार्ड प्रोजेक्ट ने पुल निर्माण का काम शुरू किया, जिसके तहत बीरवा में नाला सुखनाथ पर बन रहे इस नए मुख्य पुल को बनाने का काम काफी तेजी से हो रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को खासकर पर्यटन विकास की एक उम्मीद जगी है।
1: कनेक्टिविटी की बात करेंगे, पहले ही ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से लोगों को मिलाती है। उसके अलावा दूध पथरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां तक भी रसाई हासिल होती है। वही जो भी इलाके हैं, जो बड़े बड़े मेन इलाके हैं, वहां तक ही मेन कनेक्टिविटी है। इससे टूरिज्म फ्लो होगा और कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट पहले आते थे और खस्ता ब्रिजेस देखते थे तो वो यहाँ से सफर नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि जब ये ब्रिजेस बनेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, एक खूबसूरती तश्कील होगी और वो खूबसूरती नहीं होगी, यहाँ से टूरिज्म का भी एक बड़ा फ्लो होगा।
2: जरूरत ये थी कि ये शहर है दूध पथरी, बड़गाम, बीरू और गुलमर्ग, पेश मैदान चार सपोर्टर्स जो इंटरनेशनल में इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेस है चार, वो इसको कनेक्ट करते हैं। ये ब्रिज
0: अगर सब ठीक रहता है तो ये लोहे का पुल निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की आवाजाही और यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने का एक मजबूत सपोर्ट बनकर उभरेगा। पुल निर्माण के काम में लगे इंजीनियर्स ने भी अगले एक साल के अंदर इस पुल का काम पूरा होने की उम्मीद जताई है।
1: ये 30 नवंबर को हमने काम स्टार्ट किया है, हालांकि एज पर अलॉटमेंट इसका कम्प्लीशन टाइम 3 ईयर्स है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक साल में हम इसको इंशाल्लाह कम्प्लीट करेंगे।
0: जाहिर है सड़कों का विकास किसी भी क्षेत्र के पर्यटन की रीढ़ है। अगर बेहतर आरामदायक सड़कें होंगी तो यात्रा का समय घटेगा और पर्यटक भी खूब आएंगे, और अगर बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे तो लोकल इकोनॉमी के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: वैसे हम ब्रिज वाली खबर आपको हमने दिखाई, लेकिन चर्चा हम कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन को लेकर और किस तरीके से कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर के बीच में और इजी हो जाए। आपने वंदे भारत में सफर किया?
4: मैंने अभी तक नहीं किया।
3: मेरे साथ तो ट्रेजेडी हो गई। मुझे अमृतसर जाना था एक्चुअली, और मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि शताब्दी की बजाय इस बार वंदे भारत ट्राई की जाए, लेकिन हमें बुकिंग ही नहीं मिली। थैंक्स टू समर वेकेशन बहुत ज्यादा बुकिंग वहां पर।
4: आपको लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है? कहीं पुल बन रहे हैं तो कहीं टनल्स बन रही हैं, वंदे भारत ट्रेन मतलब बम्पर बम्पर, मतलब ये साल जम्मू कश्मीर वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया।

इस समय हम निकल पड़े हैं श्रीनगर की ओर और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जो श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जाती है वो लग चुकी है। हम भी इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे और आपको इस पूरे रेल मार्ग के बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि वंदे भारत ट्रेन सेवा से किस प्रकार से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो दूरी है वो कम हुई है। किसी को अगर श्रीनगर से जम्मू आना हो या जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो अब वंदे भारत ट्रेन को ही पहली प्राथमिकता रखते हैं सभी लोग। तो अब हम इस ट्रेन में सवार होते हैं और इस ट्रेन यात्रा का अनुभव करेंगे हम और साथ ही में यात्रियों से भी हम बात करेंगे।

0: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है, उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है, इस बटन को प्रेस करना है और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं।
1: श्रीनगर जा,
0: तो पहली बार वंदे भारत ट्रेन में जा रहे
1: हैं? पहले भी गए हैं।
0: तो कैसा रहा अभी तक आपका अनुभव इस ट्रेन का?
1: अच्छा है, बढ़िया है।
0: तो क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है?
1: इसमें समय का काफ़ी क्लोज है कि 4 घंटे में लगभग जम्मू से श्रीनगर पहुँच जाता है, और थोड़ा सस्ते में भी हो जाएगा।
2: क्योंकि देखिए, जैसे लोग पहले जाते थे तो काफ़ी, एक तो समय लगता था, दूसरा कि जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं, थोड़ा हिली,
0: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग,
2: जी हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे। एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे इससे जो है, मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
0: जो वंदे भारत ट्रेन है वो 2 मिनट ही किसी स्टेशन पर रुकती है। हालांकि ये जो रेल मार्ग है, इसमें जो धर्मनगरी कटरा का जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये ट्रेन 5 मिनट रुकती है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। धर्मनगरी कटरा है जो कि बेस कैंप है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का, तो उस दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए वहाँ पर 5 मिनट ये ट्रेन रुकती है। रहने वाले
3: रामपुर यूपी,
0: उत्तर प्रदेश जी। कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
3: जी घूमने जा रहे
0: हैं। पहली बार जा रहे हैं? पहले भी
3: जा चुके हैं।
0: तो इस बार तो अनुभव अलग है, वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं?
3: फैमिली भी है साथ में।
0: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव है इस बार?
3: बढ़िया
0: है। उधमपुर में मात्र 2 मिनट ये ट्रेन रुकती है, हम भी तुरंत इस ट्रेन में वापस बैठ गए, क्योंकि 2 मिनट काफ़ी कम समय रहता है, लेकिन एक स्टॉप रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि उधमपुर में भी काफ़ी आबादी है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है, तो उस दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए यहाँ पर जो सेना जो है, सैनिक जो हैं, उनको भी यहाँ पर सुविधा होती है। अगर यहाँ से सैनिक जो है उनको कश्मीर जाना हो तो वो ट्रेन के जरिए जा सकते हैं, या उनको जम्मू जाना हो तो वो जम्मू जा सकते हैं। अब इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में पहुँचा जाता है, लेकिन ये समय से पहले पहुँच चुकी है ट्रेन। मात्र 4.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुँचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रांतिकारी ये बदलाव जम्मू कश्मीर की परिस्थिति में लाने वाली है। जम्मू और श्रीनगर के बीच जो दूरी थी वो कम हुई है।

0: जरा कल्पना कीजिए कि एक वो भी समय था जब घंटों लग जाते थे जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में या श्रीनगर से जम्मू पहुंचने में। अब मात्र 5 घंटे से भी कम अवधि में जम्मू से श्रीनगर पहुंचा जा सकता है या श्रीनगर से जम्मू पहुंचा जा सकता है। इसे न केवल जम्मू कश्मीर के बीच जो दूरियां हैं, यानी कि जम्मू और श्रीनगर के बीच जो दूरी है वो कम हुई है, और इससे कनेक्टिविटी को काफी सुधार मिला है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, और साथ ही में ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा बल देने जा रही है। कश्मीर के लोगों को तो सौगात मिली ही है, साथ ही में जो देश भर से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है और वो इस ट्रेन की सेवा का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
1: और चलिए बात आस्था और भक्ति की कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। 3 जुलाई से जय बाबा बर्फानी का जय घोष गूंजने लगेगा। भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए दर्शन का इंतजार कर रहे हैं।
2: लेकिन उससे पहले, हालांकि आस्था की नगर बहुत मुश्किल है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप जा रहे हैं इस बार यात्रा करने के लिए कि वहां पर किस तरह के इंतजाम है। बताते चले कि पुलिस, एनडीआरएफ, सेना के जवान वहां पर तैनात हैं, और इस बार जो सुरक्षा का घेरा है वो बहुत ज्यादा सख्त है। चाक चौबंद सुरक्षा वहां पर कर दी गई है। मॉक ड्रिल लगातार हो रही है।

0: मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास है। भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई, दुर्गम रास्ते, खराब मौसम और थका देने वाला सफर, ये वो पड़ाव है जो बाबा के भक्तों का कड़ा इम्तिहान लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि श्रद्धा की सबसे कठिन डगर है। हर साल बर्फ, बारिश और कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इस बार भी बाबा के दर्शन के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं।
1: मैं सबको यही आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि आप अच्छे से आइए, अच्छे मन से आइए, आप यात्रा कंटिन्यू कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहेगा, उस पर हम लोग कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको वेलकम कर रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए।
0: उधमपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। रामबन में हुई इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे पुलिस और पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान शामिल हुए। सभी एजेंसियों ने मिलकर मुश्किल हालात से निपटने का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान रेलवे स्टेशन के पास अचानक हमला होता है। हमले का अंदाजा होते ही वहां तैनात जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, दुश्मन की तरफ अपनी बंदूकें तान दी। सुरक्षा बल की मुस्तैदी काम आई और रेलवे स्टेशन में एक बेंच की आड़ में छिपे दुश्मनों को ढेर कर दिया गया।
1: तो जैसे मैंने मेंशन किया, हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी, यहाँ पे मेडिकल एड टीम थी, फिर हमने VDGs, ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है। RPF और GRP ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टेशंस पे, तो उसके अलावा हमने इन सारी एजेंसीज जो मैंने अभी जस्ट मेंशन की उनको भी हमने कम्युनिकेट किया था।
0: इसी तरह की मॉक ड्रिल वहाँ के जंगलों में भी की गई। इसमें अलग अलग एजेंसियों से जुड़े जवानों ने गजब का तालमेल दिखाया। एक टीम ने दुश्मन की घेराबंदी की तो दूसरी टीम ने मिशन को अंजाम दिया। इसमें सुरक्षा बल के खोजी कुत्तों ने बड़ी भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसके पास एक घना जंगल है जिसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यात्रा के दौरान इस जंगल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नए पिकेट्स और बंकर्स बनाने की तैयारी है, ताकि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। आस्था के स्मारक पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले CCTV की संख्या पिछली बार से बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ मजबूत सुरक्षा का घेरा भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, आज हम आपको टूरिज्म की बहुत सारी खबरें दिखा रहे हैं। जॉर्जिला टनल खुल गई है, मतलब लद्दाख के साथ पूरा साल इंडिया एकदम कनेक्ट रहेगा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक वंदे भारत वाली खबर दिखा दी। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री वैसे ही कह रहे हैं कि भाई विदेश जाने की जरूरत नहीं, अपना देश बहुत खूबसूरत है, तो अपने देश में ही घूमिए फिरिए। तो इसीलिए गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत और ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए लगातार अपील कर रहा है कि आप भी अपने आसपास की वीडियोज बनाइए और हमें भेजिए।
3: तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत लेपाक्षी मंदिर हम लेकर चलते हैं। कहने को एक शिव मंदिर है, लेकिन इसकी एक कहानी त्रेता युग में सीता हरण से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस ब्लॉगर की नजर से लेपाक्षी मंदिर की खूबसूरती को आप भी देखिए।

0: आज मैं आपको लेकर आया हूँ आंध्र प्रदेश।
1: आज मैं आपको ऐसे रहस्यमय और पौराणिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कहानियाँ रामायण से भी जुड़ी हैं। लिपाक्षी मंदिर। लिपाक्षी मंदिर की एक दिलचस्प कहानी भी है जो रामायण के प्रसंग से जुड़ा है। जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, लेकिन इसी जगह पर जटायु को रावण ने घायल कर दिया था। उसके बाद जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे तो उन्होंने घायल जटायु को उठाते हुए लिपाक्षी कहा। मैं आपको बता दूं कि लिपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। लेकिन फिर 16th century में जाकर इस मंदिर को भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र स्वामी के नाम से बनाया गया, जो आज लिपाक्षी के साथ वीरभद्र स्वामी मंदिर के नाम से वर्ल्ड फेमस है।
2: देखिए ये है वो जटायु जो हम देखने आए थे दूर से। बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी चट्टान है। यहाँ से तो आपको छोटा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है ये। बताओ टिका कैसे, ये सोचो ये टिका कैसे होते सालों से। ये वही जगह है जहाँ पर रावण से युद्ध करते हुए जटायु नीचे गिर गए थे सीता माता को बचाते हुए। तो ये राम जी जब यहाँ थे उन्होंने बोला था लो पक्षी लिपाक्षी, तब इसे इसका नाम लिपाक्षी रखा गया है। और यहाँ पर सीता माता जी के बहुत बड़े पद चिन्ह भी हैं जो हमने वहां दिखाए थे, वो अंदर हनुमान जी के पद चिन्ह थे लिपाक्षी टेम्पल में।
3: फ्रेंड्स ये जो सारा है लिपाक्षी टेम्पल, नंदी महाराज और ये गरुड़ थीम पार्क, ये सारा इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल साइट के अंदर आता है। एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, आप आते हैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। सब जगह से ओपननेस, पूरा ओपन एरिया है लिपाक्षी का।
2: पीछे जो पत्थर देख रहे हैं जैसे ये नेचुरल था, वहाँ पर हुआ क्या था कि रावण से लड़ाई करते हुए कि ये थोड़े घायल हो गए थे तो इसी जगह पे गिरे थे। गिरने के बाद कुछ टाइम के बाद ये रिकवर हो गए, रिकवर होने के बाद फिर उन्होंने उड़ान भरी और ये फिर दोबारा धम से गिर गए। कहाँ पर? केरला। अगर केरल में जाए तो केरला में एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये आधा पंख कटा हुआ वहां बना पड़ा है, तो वहां पर फिर वो गए और फिर उसके बाद वो उठ नहीं पाए।
1: और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको इसके दीवारों पर विजयनगर शैली की वास्तुकला देखने को मिलेगी। और हाँ एक और चीज, यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 70 खंभे लगे हुए हैं, जिनमें से एक ऐसा खंभा है जो रहस्यमय है, यानी वो खंभा हवा में लटका रहता है, यानी आप उसके नीचे से आर पार देख सकते हैं। आप जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचेंगे आपको सामने दिखेगा एक नंदी प्रतिमा और एक नागालिंग भी बना हुआ है जो अपने आप में एक अद्भुत कला दर्शाता है। आप यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ठीक इसके बगल में ही जटायु थीम पार्क है। यहां पर रावण और जटायु के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है और माता सीता के पद चिन्हों की उस कहानी को बयां करता है।
2: तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।
4: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करना चाहते हैं, गांव शहर सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत जगह का आप वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर। हम आपका भेजा वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
5: और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड में एक्शन हीरो के बाद अब एक्शन हीरोइंस का भी बढ़ रहा है ट्रेंड।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबाग चराजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़। सेना की जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। यूपी के सीतापुर में एनटीपीसी के सहयोग से डेवलप होगा 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बॉलीवुड में एक्शन हीरोइंस का ट्रेंड ज्यादा नजर आ रहा है। अब देखिए, अदाकारा आलिया भट्ट ही इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अल्फा में अपने रोल को लेकर काफी चर्चा में है। फिल्म यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान फिल्म है, जिसकी झलक ऋतिक रोशन की वॉर 2 में देखने को मिली थी।
16: जी हाँ, इस फिल्म की नायिका आलिया और शर्वरी एक्शन अवतार में नजर आएंगी। वहीं सलमान नयनतारा स्टारर अनटाइटल फिल्म में नयनतारा का किरदार भी एक्शन वाला ही होगा।

0: बॉलीवुड में अब नायिकाओं का एक्शन अवतार ट्रेंड कर रहा है। हाल ही में दो बड़ी फिल्में हैं जिनमें बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आने वाली हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म अल्फा का पहला टीजर बुधवार यानी कल 10 जून को रिलीज किया जा रहा है। ये टीजर एक ऐसी लड़की की ओरिजिनल स्टोरी पर बना है जिसे एक खतरनाक किलिंग मशीन बनने के लिए तैयार किया जाता है और इसका किरदार निभाते दिखेंगी आलिया भट्ट, जो उनके अब तक के किरदारों से बहुत अलग माना जा रहा है। यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की ये पहली ऐसी ओरिजिनल स्टोरी है जिसमें मुख्य किरदार एक असैसिन है। साथ ही शर्वरी भी बिल्कुल अलग और दमदार किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म के जरिए अल्फा शब्द के नए मायने जानने को मिलेंगे। अल्फा का प्रमोशन कैंपेन इस तरह से तैयार किया गया है कि लड़कियों को अल्फा होने के विचार का पर्याय बनाया जा सके। आज की लड़कियां अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं और सामाजिक दबावों या अपेक्षाओं के दायरे में बंधने से इनकार कर रही हैं। इसलिए कल टीजर रिलीज होने के बाद दर्शकों को एक मजेदार, कूल, बेबाक और एटीट्यूड से भरपूर कैंपेन देखने को मिलेगा। शिव रवेल निर्देशित फिल्म अल्फा यशराज फिल्म्स की एक भव्य थिएटर रिलीज फिल्म है। वहीं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म अनाउंसमेंट सलमान खान और नयनतारा की अनटाइटल मूवी की भी है। सलमान नयनतारा की इस अनटाइटल मूवी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है जो नयनतारा के किरदार से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि नयनतारा इस मूवी में कई एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में चेस सीन, गाड़ियों के साथ एक्शन, करीब से लड़ाई और भी बड़ी भीड़ वाले सीन होंगे जिसमें सलमान के साथ नयनतारा भी एक्शन अवतार में दिखाई देंगी। आपको बता दें कि सलमान नयनतारा स्टारर ये फिल्म साउथ के मशहूर फिल्म मेकर वामसी पेडिपली और दिल राजू की जोड़ी बना रही है जिसे काम चलाओ टाइटल SVC 63 दिया गया है। नयनतारा और आलिया के इन एक्शन रोल्स को देखने के लिए फैंस उम्मीदें लेकर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन फिल्मों में महिलाओं की बहादुरी और मिशन के साथ उन्हें गैर पारंपरिक रोल से हटकर किरदार दिए गए हैं जिसके बारे में सोचना ही दर्शकों में रोमांच पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए, करीब 21 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसने दर्शकों को हंसा हंसा का लोटपोट कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नो एंट्री की। अब इसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म के सीक्वल नो एंट्री 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
2: देखिए, लंबे समय से फिल्म की देरी और स्टारकास्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने खुद सामने आकर फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी है, एक बड़ा अपडेट दिया है।
3: साल 2005 की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म नो एंट्री सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की तिकड़ी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई। अब लगभग दो दशक बाद इसके सीक्वल नो एंट्री 2 का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से फिल्म की मेकिंग और स्टारकास्ट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही थी। इन चर्चाओं के बीच निर्माता निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ फिल्मों को बनाने में वक्त लगता है।
4: कुछ फिल्मों की कुंडली होती है, मैं मानता हूँ कि कुंडली होती है। कभी कोई फिल्म जल्दी बन जाती है, कभी देर से बनती है, लेकिन हम सब की कोशिश है कि ये फिल्म बने।
3: अनीस बज्मी ने बताया कि उन्होंने नो एंट्री 2 की कहानी काफी प्यार और मेहनत से लिखी है। उनके मुताबिक ये उनकी सबसे बेहतरीन लिखी गई फिल्मों में से एक है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जब फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। खबरें हैं कि फिल्म में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले थे, हालांकि बाद में दिलजीत की डेट्स की वजह से फिल्म से अलग होने की खबर भी सामने आई। वहीं वरुण धवन को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट और रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। फिलहाल इतना तय है कि नो एंट्री 2 का सफर भले थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन फिल्म बंद नहीं हुई है। मेकर्स इसे बड़े पर्दे तक पहुंचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और फैंस को अब अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यानी साफ है कि नो एंट्री 2 को लेकर भले ही देरी हो रही हो, लेकिन फिल्म अब भी ट्रैक पर है। फिल्म के निर्देशक अनीस बज़मी की बातों से तो फैंस यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको एक बार फिर कॉमेडी का डबल डोज मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मयूरी मित्तल की कामयाबी का सफर, जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
7: विकास की तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अगर ख्वाहिशों में पूरी शिद्दत हो और काम में पूरी लगन, तो एक दिन हर सपना जरूर होता है पूरा। कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर पहुंची भारत की मयूरी मित्तल इसकी मिसाल है। कभी साधारण जिंदगी जीने वाली मयूरी आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर रही है।
2: कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंचने का सपना मयूरी ने 28 साल पहले देखा था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने इस सपने को एक पेंटिंग की शक्ल में उकेरा था। अब कान में रेड कार्पेट पर पहुंच चुकी मयूरी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। क्या है कान फेस्टिवल में मयूरी के पहुंचने की कहानी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने उनसे बातचीत की।
9: मयूरी मित्तल जी मेरे साथ में है। 12 साल की एज में ये पेंटिंग बनी थी। ये शायद सपना था या ख्वाब था कि एक लड़की जाएगी उस रेड कार्पेट पर वॉक करेगी, कोई बड़ा इवेंट होगा। उस वक्त सोचा था कि कान सी होगा एक दिन
11: जी। मुझे अब एक्चुअली जो अभी वाली फीलिंग है मेरी, तो इट इज लाइक कि अनबिलीवेबल है। मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बचपन में मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती थी। उसमें से एक मेरी पेंटिंग ये भी होती थी जिसमें कि एक रेड कार्पेट में बनाती थी, उसमें एक लड़की चल रही होती थी। उस पेंटिंग में उस लड़की की स्कर्ट पे मैं मोर के पंख बनाती थी और खुद को इमेजिन करती थी। और उस वक्त में मुझे ये भी नहीं पता था कि रेड कार्पेट होता क्या है, क्योंकि बाद में सिनेमा में रेड कार्पेट का चलन आया कि रेड कार्पेट एक बहुत ही अच्छा माना जाता है इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि रेड कार्पेट तक पहुंचना एक उपलब्धि कह लीजिए जिसको बोलते हैं। तो मुझे तब नहीं पता था, लेकिन अभी तकरीबन 2 साल पहले ही मैं अपनी जिंदगी के लो फेज से गुजर रही थी। तो उस दौरान मुझे आर्ट का सहारा लेना पड़ा उस लो फेज से निकलने के लिए, क्योंकि मैंने ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है। अब मैं वह हॉबीज जो भी है मेरी वो मैं करूंगी। तो मैंने पेंटिंग्स बनानी शुरू करी और बहुत सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई, जिसमें से कि एक ये रेड कार्पेट पेंटिंग थी जो बनी जब कैनवस पे, और जो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन में थी, वो इमेजिनेशन से जब मैंने बड़े कैनवस पे उसको बनाया तो वो बहुत ही खूबसूरत बनकर आई, जैसे कि आप देख रहे हैं। और
9: उस बेसिकली आपने रीडिजाइन किया है, पहले आपने एक छोटी सी पेंटिंग बनाया था,
11: छोटी सी जैसे हमें,
9: फिर लगा कि उसको बड़ा बनाते
11: जी। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो कैनवस पे बनी तो मुझे भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी जितनी पेंटिंग्स थी वो उनमें से सबसे अट्रैक्टिव पेंटिंग थी। और फिर मुझे उस पेंटिंग को देखते देखते ही एक और इमेजिनेशन आया और मैं उस पेंटिंग से इन्फ्लुएंस हुई कि क्यों ना मैं एक ऐसा पेजेंट बनाऊं जिसका नाम ही रेड कार्पेट से शुरू होता हो। तो इस तरीके से मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया मिस एंड मिसेज रेड कार्पेट क्राउन ऑफ इंडिया, जो कि एक यूनिक पेजेंट है।
1: और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतरिक्ष से आई अरोरा लाइट्स की कुछ अद्भुत तस्वीरें।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
13: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
12: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
13: They score!
12: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
12: गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
2: अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया से एक तस्वीर इन दिनों खूब चर्चा में है, और इस तस्वीर को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से रिकॉर्ड किया गया है. तस्वीर से धरती के ऊपर अरोरा लाइट जगमगाती नजर आ रही है. स्पेसएक्स क्रू 12 सदस्य और नासा की एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर ने ये टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया है.
1: जी हाँ, धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न अरोरा लाइट्स दिखी, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दर्न लाइट्स दिखती हैं. धरती की चुंबकीय शक्ति और सूर्य की रोशनी के आवेशित कणों के मिलने से ये अरोरा लाइट्स जगमगाती हैं. और अब बात मशीनों की कर लेते हैं. भाई इसमें कोई शक नहीं कि मशीन्स ने इंसानों की जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट ने तो इंसानों की ही जगह ले ली है.
2: बिल्कुल, खासतौर पर चीन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर घरेलू कामकाज तक हर जगह पर आपको रोबोट्स नजर आएंगे.

0: ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर रोजमर्रा के कामों तक हर काम में आपका साथ देगा रोबोट। चाहे गेस्ट अटेंड करना हो, कॉफी बनाना हो, घरेलू कामकाज हो, डांस हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये हर काम में माहिर है और आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार। तभी तो चीन ने अपने देश में इन्हें हर मोर्चे पर उतार दिया है। ये है ह्यूमनॉइड रोबोट HJ-985 रोबोट हांगसू, जिसे झेजियांग प्रांत में एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सड़क पर तैनात किया गया है, ताकि वो ट्रैफिक मैनेज कर सके और देखे वो इस काम को कितने खूबसूरती से निभा भी रहा है। इसे मालूम है कब रुकने का इशारा करना है, कब चलने का। ये न सिर्फ इशारों में अपनी बात कहता है, बल्कि अपनी आवाज से भी लोगों को चौंकाता है। HJ-985 रोबोट हांगसू को पता है कि वो एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तैनात है। ऐसे में वो जहां एक और लोगों से बेवजह हॉर्न ना बजाने और परीक्षार्थियों को रास्ता देने की अपील कर रहा है, वहीं स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए शुभकामना देता भी नजर आए। AI और वीडियो बेस्ड इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से तैयार ये ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्त की तरह काम आ रहे हैं, जो बिना थके काम कर सकता है और आपात परिस्थितियों में उनसे तालमेल बिठाकर काम आसान कर सकता है। वहीं चीन के वुहान में तो ह्यूमनॉइड रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई इसका दीवाना है। काम जो आसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन के शिनजियांग प्रांत में खास तरह की DIY लैब डॉल इन दिनों पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
2: जी हाँ, लोग कई कई घंटों तक लाइन में लगकर इस अनोखी डॉल को खरीद रहे हैं। आखिर क्या है इसकी खासियत, चलिए आपको दिखाते हैं।
3: रंग बिरंगी और हाथों से तैयार की गई ये प्यारी लैम्प डॉल अब चीन के इस शहर की नई पहचान बन चुकी है। हर डॉल अलग है और हर डॉल के पीछे है रचनात्मकता की एक खास कहानी। लोकप्रियता का आलम ये है कि इसकी दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इस डॉल की सबसे बड़ी खासियत है इसका DIY, यानी खुद डिजाइन करो। मॉडल ग्राहक अपनी पसंद के छोटे छोटे फूलों वाले कैप, सजावटी सामान और एक्सेसरीज चुनकर अपनी डॉल को एक अलग पहचान देते हैं। इन डॉल्स को तैयार करते हैं दुकान के मालिक अब्दुल्ला एमिरिला। पिछले करीब एक साल से वो लैम्प डॉल बेच रहे हैं, जबकि DIY डॉल बनाने का काम उन्होंने 2 महीने पहले शुरू किया था।
4: मैंने पिछले साल 28 जून को अपनी दुकान शुरू की थी, तब से मैं लैम्प डॉल बेच रहा हूँ। लेकिन DIY लैम्प डॉल बनाना करीब 2 महीने पहले शुरू किया। मैं रोज सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूँ और रात 8:30 बजे तक दुकान पर ही रहता हूँ।
3: अब्दुल्ला की मेहनत के साथ साथ उनकी मिलनसार शैली भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। पर्यटक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और दुकान पर बिताया गया समय अपने सफर का खास हिस्सा मानते हैं। मुझे ये डॉल इसलिए पसंद है क्योंकि हर डॉल DIY है और बिल्कुल अलग दिखती है। दुकान के मालिक भी बहुत मजाकिया हैं। उनसे बात करके मुझे स्थानीय संस्कृति और मेहमान नवाजी को करीब से महसूस करने का मौका मिला। एक साधारण खिलौने से शुरू हुई ये कहानी अब सांस्कृतिक पर्यटन का नया ट्रेंड बन चुकी है। ये सिर्फ एक यादगार सामान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे पर्यटक अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। पारंपरिक विरासत और आधुनिक पसंद का ये मेल यहाँ की DIY लैम्प डॉल को एक नया सांस्कृतिक प्रतीक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भाई देखिए, आप 24 घंटे इंतजार करते हैं चाय पीने का। आज गीतिका आपको चाय पिलाने के लिए 9 घंटे तक रुकी है।
2: सही में मैं सुबह से आई हूँ, देखिए शाम तक रुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ
1: चाय पर चर्चा के लिए, है ना। वैसे मौसम की क्या खबर है?
2: मौसम आज मस्ताना नहीं, मौसम आज बेईमान हो रहा है।
1: बेईमान हो रहा है, मैं इंतजार कर रही हूँ बारिश का। आई एम श्योर आप भी कर रहे होंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बारिश जल्दी आए और हम सबको भिगो कर जाए। वैसे मॉनसून की रफ्तार तो ठीक ठाक चली रही है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आइएगा कल सब 5 बजे चाय पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae
10: exclusively on TuneIn.
11: This is classic hip hop
12: exclusively on TuneIn.
6: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
1: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें

0: summer hits. Blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबाग छह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देशभर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन, अयोध्या में हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों का तांता। रॉजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब आधुनिक तकनीक से बाघों की मॉनिटरिंग करने की तैयारी, जीएसएम कैमरे और सैटेलाइट की ली जाएगी मदद, एनटीसीए से अनुमति का इंतजार।

ढाबा आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटे

0: घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी के व्यापारियों के लिए राहत का पैगाम ला रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। वहीं आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी वॉक थ्रू भी मिल गया है। इतिहास रचते हुए जोजिला टनल ने अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टान की दीवार को तोड़ दिया। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से म्यांमार आपस में जुड़ गए हैं। आज गुड न्यूज टुडे आपको न केवल वंदे भारत के जरिए जम्मू टू श्रीनगर के सफर पर लिए चलेगा, बल्कि जोजिला के रास्ते आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर से सीधे लद्दाख, और वो भी 15 मिनट में।
1: हम इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। आइए लिए चलते हैं।

तो मैं इस समय जोजिला सुरंग के बिल्कुल भीतर हूँ। 13 किलोमीटर का वो रास्ता जो 3 घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जो जिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद। और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहाना आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाए गए, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल की बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ, लगभग अब कश्मीर के गांधरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है, जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद 12 महीने खुला रहेगा। चलिए लद्दाख हो गया, अब कश्मीर चलते हैं।

0: और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका दरअसल गांदरबल में है, अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी। सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये तमाम लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोजिला टनल के बाहर मनीष भिधूरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं और जोजिला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघकर कैसे पहाड़ तोड़े जाते हैं उसका उदाहरण है ये टनल, जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहां खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है, नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जैसे जॉर्जिया ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले 1.25 महीने से ये ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है, उतने ही खुश कश्मीर के लोग भी हैं, और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज़ टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहां पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है, 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नजारे हैं प्रकृति के और जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए, सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में, चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक के जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था, अब वो सफर 5 घंटों से भी कम समय में तय हो जाता है। आज इसी सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। विस्तृत सिक्योरिटी चेक के बाद आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए रवाना हो गई।
1: तो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है और ठीक 1:30 पर ये ट्रेन जो है यहाँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन यहाँ से दौड़ पड़ी है। हालांकि इस ट्रेन का समय था 1:20, लेकिन 10 मिनट ये देरी से निकली है। और जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, इसकी खास बात यही है कि 5 घंटे से भी कम अवधि में ये आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, यानी कि मात्र 4:50 में ये सफर होने जा रहा है। हम भी इसी ट्रेन में सवार हैं।
0: आपको बता दें हर हफ्ते 6 दिन 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से श्रीनगर का सफर तय करती है। इस सफर में 5 घंटे का समय लगता है। एक ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना होकर सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचती है, फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोपहर 1:20 पर जम्मू से रवाना होकर शाम 6:05 पर श्रीनगर पहुंचती है। डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलकर दोपहर 12:45 पर जम्मू तवी पहुँचती है। हमारा सफर जारी था। जम्मू से निकलने के बाद वंदे भारत का अगला स्टॉप उधमपुर था। यात्री इस आरामदायक सफर में शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे थे।
2: पर जो यात्री हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में अपनी सीट पर जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम?
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है।
2: पारुल शर्मा, कहाँ के रहने वाले?
3: मैं सर जम्मू से हूँ।
2: अच्छा, तो आप कश्मीर में काम करते हैं?
3: नहीं सर, मैं घूमने के लिए जा रहा
2: हूँ। घूमने के लिए जा रहे हैं।
3: यस यस।
2: कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस ट्रेन यात्रा का?
3: सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेलवे मंत्रालय का जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो क्योंकि देखिए जैसे लोग पहले जाते थे तो काफ़ी एक तो समय लगता था, दूसरा कई जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं थोड़ा हिली,
4: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग
3: जी हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे। एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
4: अच्छा, आपको लगता है इससे जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा?
3: हाँ जी, बढ़ावा मिलेगा।
4: लगातार यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन आ रहा है, उधमपुर में ये जो ट्रेन है 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस समय जो यात्री हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। जी आप बताइए आपका नाम?
5: शायान।
4: कहाँ के रहने वाले?
5: रामपुर के। रामपुर यूपी,
4: उत्तर प्रदेश।
5: जी
4: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
5: जी घूमने जा रहे।
4: पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
5: नहीं जा चुके,
4: पहले भी जा चुके। तो इस बार तो अनुभव अलग है, वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं।
5: फैमिली भी है साथ में।
4: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव है इस बार?
5: बढ़िया।
4: तो आपको क्या लगता है जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
5: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है,
4: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
6: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
4: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
5: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है।
4: भोजन बढ़िया है,
5: कोई कमी नहीं है।
4: और इस रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है, चंद्रभागा नदी पर, जिसको कि चिनाब नदी भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है और उसकी ऊंचाई जो है पेरिस के आईफुल टावर से भी अधिक है। तो वो एक खासा आकर्षण है इस रेल मार्ग का, और आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग उस विश्व के सबसे ऊँचे रेल पुल को देखने भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। मैडम देखिए, पहले हॉट वाटर इसमें डालेंगे, गर्म पानी, और फिर हम सूप का आनंद लेंगे। तो काफ़ी ये आकर्षक ट्रेन यात्रा है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं इस पल के।
0: वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर को काफी हद तक सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं।
4: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है, और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान ना करे किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय आप यहाँ मतलब इस प्रकार की जो पैनल से जगह जगह लगे हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सहायता भी मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, यानी कि जो फर्स्ट एड के समय जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी को कोई चोट अगर लगती है तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन में जो है ये स्पेशलाइज कमांडोज जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तैनात रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर कोच में ये तैनात रहते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही कमांडोज हैं, इनको जो है ख़ास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये रेल मार्ग काफ़ी संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, तो इसीलिए सुरक्षा भी एक चुनौती रहता है।
0: दरअसल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। इस रेल रूट की कई जगह आतंकियों के निशाने पर रही हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेन को हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ही देखती हैं। ट्रेन चलने से पहले एंटी सबोटाज टीम पूरे ट्रैक की जाँच करती है। सीसीटीवी सर्विलांस, टनल्स की मॉनिटरिंग और ट्रैक का सैनिटाइजेशन होता है। ट्रेन के अंदर और पूरे रूट पर विशेष आरपीएफ कमांडो कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी की तैनाती रहती है। ब्रिज, टनल और यूएसबीआरएल रेलवे लाइन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करते हैं। सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों का जायजा लेने के बीच ही हम उधमपुर पहुंच चुके थे।
4: ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अब सवारी बस देखिए चढ़ रहे हैं। ये उधमपुर है, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और उधमपुर में ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है, काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर। तो इसीलिए हम तुरंत ट्रेन में वापस चले जाते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
0: वंदे भारत अपनी मंजिल की तरफ फिर फराटा भर चुकी थी। आपको बता दें कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक के इस सफर में रोड ट्रिप की तुलना में 5 से 7 घंटे बचते हैं। बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी। ट्रेन अब दक्षिण कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ और खूबसूरत वादियों का कैनवस अब यूरोप की खूबसूरती को भी टक्कर दे रहा था। आखिरकार तय समय से कुछ पहले वंदे भारत ट्रेन अपनी अंतिम पड़ाव श्रीनगर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी।
1: आपके लिए कि जम्मू से श्रीनगर का सफर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा किया और आपको पल पल की जानकारी दी, पूरे ट्रेन के मार्ग की, जो रेल के मार्ग की हमने आपको जानकारी दी और आपको भी अवगत कराया इस रेल मार्ग से और इस वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
6: और जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
5: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लाल बागशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देश भर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़। रोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब आधुनिक तकनीक से बाघों की मॉनिटरिंग करने की तैयारी, DSM कैमरे और सैटेलाइट की ली जाएगी इस मदद, NTCA से अनुमति का इंतजार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: बाप्पा के करोड़ों भक्तों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। मुंबई में लाल बागशाह राजा की प्रतिमा बनाने की हुई शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। लालबाग के राजा की मूर्ति धीरे धीरे लेगी आकार, गणेश उत्सव के पहले पूरी तरह तैयार हो जाएगी भव्य प्रतिमा। इस साल 14 सितंबर से शुरू होगा गणेशोत्सव, 24 सितंबर तक कुल 10 दिनों तक मनाया जाएगा महापर्व। लालबाग के राजा को माना जाता है मन्नतों का राजा, भक्तों को है विश्वास, पूरी होती है सच्चे मन से मांगी हर मुराद। आज दिन भर तपती रही दिल्ली, गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली NCR में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना, उमस और गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर सरकार अलर्ट, CM धामी ने अधिकारियों के साथ मॉनसून की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। राजस्थान में बढ़ी गर्मी, श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर, 45.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में सबसे अधिक असर अनुमान। IMD के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून 4 जून को केरल में दे चुका है दस्तक, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में अभी लगेगा वक्त। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्से तक पहुंचा मानसून, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों को फिर मिलेगी गर्मी से राहत, 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सभी पहाड़ी राज्यों में बारिश का अनुमान। मैदानी राज्यों में दिख सकता है नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए समर कैंप का किया आयोजन, सेल्फ डिफेंस के साथ मुश्किल हालात से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। गर्मी की छुट्टियों में 12 दिन के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन, बच्चियां और महिलाएं बढ़ चढ़ कर ले रही हिस्सा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस विंग दे रही है ट्रेनिंग। आत्मविश्वास और साहस का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग में खाली हाथ से बचाव के टिप्स दिए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर रोजमर्रा की चीजों को सुरक्षा का हथियार बनाने का भी पढ़ाया जा रहा पाठ। प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन की पहल का असर, महिलाओं की सुरक्षा हुई चाक चौबंद, फोन कॉल के बुलावे पर मदद करने पहुंच जाती है पुलिस। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू, नितिन गडकरी एलजी मनोज सिन्हा ने टनल का किया निरीक्षण। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही सुजला सुरंग, 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंतरिम ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर घटकर करीब 20 मिनट होने का अनुमान। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत होगी खत्म, सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी मिलेगा लाभ। जिला सुरंग से सेना को भी होगा फायदा, सीमा क्षेत्र में सैन्य साजो सामान और रणनीतिक आवागमन में होगी आसानी। आज बड़ा मंगल पर आस्था और भक्ति का उत्सव, बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का मिला था वरदान, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, फूलों की माला और आभूषण अर्पित किए गए। छठे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, इसी दिन हनुमान जी से शक्ति साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में छठा बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज में बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा, बड़ी संख्या में भक्तों शामिल। अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों सजा मां का दरबार। नैनीताल में कैची धाम में नीम करोली धाम के स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 15 जून को लगेगा महामेला। भीड़ को नियंत्रित करने की जा रही है तैयारी, कैची धाम के आसपास बनाए जा रहे हैं विशेष ट्रैकिंग रूट और सुगम पैदल मार्ग। श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष बसें, किराया भी हुआ तय, कैची धाम में मेले में आसानी से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। उज्जैन में बड़ा मंगल पर वहां महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। काल का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शहद और फलों से रस से बने पंचामृत से किया गया पूजा। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। अयोध्या पहुंची भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय, रामलला के किए दर्शन पूजन। लखनऊ में राम भद्राचार्य जी की रामकथा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा भगवान राम सभी को जोड़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, 49 दिनों में 9,75,000 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बद्रीनाथ हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार, गेट सिस्टम के बावजूद कई जगह 7 से 8 किलोमीटर तक लग रहा जाम। पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़, इस महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 11 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन। हेमकुंड साहिब में भी उमड़ा आस्था का मेला, अब तक 65,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा बलों ने उधमपुर में किया मॉक ड्रिल। अभ्यास में जम्मू और कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर भी मॉक ड्रिल, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, रेलवे ट्रैक, क्वार्टर में तलाशी ली गई। मॉक ड्रिल में NH-44 पर भूस्खलन से लेकर आतंकवादी हमला का सीन किया गया रिक्रिएट, ऐसे हालात से निपटने की तैयारियां परखी गई। ऑक्सीजन के अलावा विशेष बलों के साथ समन्वय को भी परखा गया, लोगों को भी आपातकाल में बचाव के दिए गए टिप्स। अमृतसर के सचखंड श्री हरिदरबार साहिब में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस पर भव्य आयोजन, लोगों ने गुरुद्वारे में जलाए दीप। गुरुता गद्दी दिवस पर लोगों ने की आतिशबाजी, पवित्र सरोवर के आसपास दिखा भव्य और दिव्य नजारा। गुरुता गद्दी दिवस पर कीर्तन और प्रार्थना की गूंज से सराबोर हुआ मंदिर परिसर, स्वर्ण मंदिर परिसर में दीपमाला और रोशनी जगमगाया। गुरुता गद्दी दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, विदेश से भी हजारों श्रद्धालु अमृतसर पहुंचे। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे आंध्र प्रदेश की मंत्री एस सविता, विधि विधान से की पूजा। गोवा के बम्बोलिया में 42वें EEPC इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन, सीएम सावंत हुए शामिल। पटना में भारत की पुरुष अंडर-18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावंत कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव और खेल प्रतियोगिता का आगाज, सीएम धामिनी की शिरकत। ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों का किया रेस्क्यू, भारत ने दिया धन्यवाद। नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें साझा की, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका मीर। शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ, राज्यपाल ने प्रज्वलित कर समारोह का किया शुभारंभ। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर गायकों ने फिल्मी गीतों से बांधा समा, 5 दिन तक चलेगा शिमला समर फेस्टिवल। समारोह के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने पेश किया मनमोहक नृत्य, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर लोक कला और स्थानीय संस्कृति की भी दिखी झलक, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने किया परफॉर्म। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसर और आम लोग हुए शामिल, राज्यपाल ने पर्यटकों से नियमों के पालन की अपील की। कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से रात के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा जम्मू कश्मीर का खुशनुमा मौसम। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में बड़ी पर्यटकों की संख्या, साफ हवा, सुहाने मौसम और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे सैलानी, क्योंकि बीच छुट्टियों को यादगार बना रहे सैलानी। सोनभद्र में सैलानियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोग भी खुश, सैलानी बढ़ने से स्थानीय लोगों को मिला रोजगार और अच्छी कमाई की उम्मीद। पालघर के युवक ने दुनिया में बढ़ाया देश का मान, अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। विधीश ने पैर संतुलन प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट कौशल और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए जीता स्वर्ण पदक। प्रतियोगिता में 79 देशों के 500 से अधिक लोग योग खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। विधीश राउत ने प्रतियोगिता में अद्भुत खेल प्रतिभा का किया प्रदर्शन। विधीश की सफलता पर पूरे पालघर में खुशी का माहौल। अहमदाबाद के एका अरेना में 4 से 8 जून तक किया गया पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन। दुनिया में योग को खेल के रूप में स्थापित करने का मकसद। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था समारोह का उद्घाटन। समारोह में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और योग गुरु रामदेव भी थे शामिल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: पीएम मोदी ने देशवासियों से फॉरेन ट्रिप की बजाय स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है। हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर लगातार दिखा भी रहे हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत लेपाक्षी मंदिर लेकर चलते हैं। कहने को एक शिव मंदिर है, लेकिन इसकी एक ऐसी कहानी त्रेता युग में सीता हरण से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक ब्लॉगर की नजर से लेपाक्षी मंदिर की खूबसूरती को यहां आप भी देखिए।

0: आज मैं आपको लेकर आया हूँ आंध्र प्रदेश।
1: आज मैं आपको ऐसे रहस्यमय और पौराणिक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कहानियाँ रामायण से भी जुड़ी हैं। लिपाक्षी मंदिर। लिपाक्षी मंदिर की एक दिलचस्प कहानी भी है जो रामायण के प्रसंग से जुड़ा है। जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, लेकिन इसी जगह पर जटायु को रावण ने घायल कर दिया था। उसके बाद जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे तो उन्होंने घायल जटायु को उठाते हुए लिपाक्षी कहा। मैं आपको बता दूं कि लिपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। लेकिन फिर 16th सेंचुरी में जाकर इस मंदिर को भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र स्वामी के नाम से बनाया गया, जो आज लिपाक्षी के साथ वीरभद्र स्वामी मंदिर के नाम से वर्ल्ड फेमस है।
2: देखिए ये है वो जटायु जो हम देखने आए थे दूर से। बहुत ही बड़ा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी चट्टान है। यहाँ से तो आपको छोटा सा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है ये। बताओ टिका कैसे, ये सोचो ये टिका कैसे हो इतने सालों से। ये वही जगह है जहाँ पर रावण से युद्ध करते हुए जटायु नीचे गिर गए थे सीता माता को बचाते हुए। तो ये राम जी जब यहाँ थे उन्होंने बोला था लो पक्षी लिपाक्षी, तब इसे इसका नाम लिपाक्षी रखा गया है। और यहाँ पर सीता माता जी के बहुत बड़े पद चिन्ह भी हैं जो हमने वहां दिखाए थे, वो अंदर हनुमान जी के पद चिन्ह थे लिपाक्षी टेम्पल में।
3: फ्रेंड्स ये जो सारा है लिपाक्षी टेम्पल, नंदी महाराज और ये गरुड़ थीम पार्क, ये सारा इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल साइट के अंदर आता है। एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, आप आते हैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। सब जगह से ओपननेस, पूरा ओपन एरिया है लिपाक्षी का।
2: पीछे जो पत्थर देख रहे हैं जैसे ये नेचुरल था, वहाँ पर हुआ क्या था कि रावण से लड़ाई करते हुए कि ये थोड़े घायल हो गए थे तो इसी जगह पे गिरे थे। गिरने के बाद कुछ टाइम के बाद ये रिकवर हो गए, रिकवर होने के बाद फिर उन्होंने उड़ान भरी और ये फिर दोबारा धम से गिर गए कहाँ पर, केरला। अगर केरल में जाए तो केरला में एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये आधा पंख कटा हुआ वहां बना पड़ा है, तो वहां पर फिर वो गए और फिर उसके बाद वो उठ नहीं पाए।
1: और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको इसके दीवारों पर विजयनगर शैली की वास्तुकला देखने को मिलेगी। और हाँ एक और चीज, यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर में 70 खंभे लगे हुए हैं, जिनमें से एक ऐसा खंभा है जो रहस्यमय है, यानी वो खंभा हवे में लटका रहता है, यानी आप उसके नीचे से आर पार देख सकते हैं। आप जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचेंगे आपको सामने दिखेगा एक नंदी प्रतिमा और एक नागालिंग भी बना हुआ है जो अपने आप में एक अद्भुत कला दर्शाता है। आप यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ठीक इसके बगल में ही जटायु थीम पार्क है। यहां पर रावण और जटायु के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है और माता सीता के पद चिन्हों की उस कहानी को बयां करता है।
2: तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।
4: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए ब्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
6: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और तेज आंधी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबागचा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देशभर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। तो आज की जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो है अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा, आपको बता दें अब कुछ ही दिन अमरनाथ यात्रा में बचे हैं, ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी कड़ी में प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को परखा जा रहा है ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

0: ये तैयारी है हर खतरे से निपटने की। ये तैयारी है अमरनाथ यात्रा में अवरोध पैदा करने वाली हर साजिश को नाकाम करने की। और ये तैयारी है लाखों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा की, दुश्मनों को करारा जवाब देने की जो शांति और श्रद्धा के इस महापर्व को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अमरनाथ की ओर बढ़ने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के जोखिम नहीं लेना चाहती, जिसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां सुरक्षा बलों ने आपात परिस्थितियों से निपटने और यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। सुरक्षा और राहत एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ तुरंत कार्रवाई की। तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर ड्रिल की गई ताकि मौके पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
1: इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी एजेंसीज को बुलाया था, जैसे मैंने मेंशन किया हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी यहाँ पे, मेडिकल एड टीम थी, फिर हमने वीडीजी, ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है।
0: मॉक ड्रिल के तहत

0: मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी और रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों का परीक्षण किया जा रहा है। इस अभ्यास में पुलिस, सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और विलेज डिफेंस गार्ड्स ने हिस्सा लिया।
1: आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि आप अच्छे से आइए, अच्छे मन से आइए, आप यात्रा कंटिन्यू कीजिए, आपकी सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहेगा, उस पे हम लोग कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इसी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको वेलकम कर रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए।
0: दरअसल अमरनाथ यात्रा आस्था की वो डगर जहाँ हर कदम श्रद्धा से भरा होता है, लेकिन रास्ता चुनौतियों से कम नहीं होता। हर साल ऊंचे बर्फीले पहाड़, बदलते मौसम और दुर्गम रास्तों के बीच लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं। ऐसे में इस कठिन यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है। सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर यात्रा मार्ग तक चौकसी बढ़ा दी गई है और हर संभावित खतरे से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
2: दो तीन चीजें जो कि शेड्स बन गए नए और पीछे से प्रोटेक्शन हो गई पूरा झेलम की एरिया का। सो इसके अलावा भी लंगर परमिशंस वगैरह हमने दे दी हुई हैं। लोगों का कनेक्शन जो है वो हर साल की तरह इस बार हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है उनके साथ हो गया है।
0: कश्मीर घाटी में यात्रा की तैयारियों के साथ ही यात्रियों के स्वागत की तैयारी भी चल रही है। इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत को खास बनाने के लिए कठुआ के लखनपुर में डोगरा कला और संस्कृति पर आधारित एक भव्य 3D वॉल म्यूरल तैयार किया गया है। ये म्यूरल श्रद्धालुओं का स्वागत करने के साथ साथ जम्मू क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश करेगा।
3: कमेटी है लखनपुर की, उसके थ्रू वहाँ पे 3D कुछ पिक्चर्स भी बनाई जा रही है वहाँ पे, वो भी है जिसमें हमारी लोकल कल्चर जो है उसको शो किया जाएगा, शोकेसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारा जो एंट्रेंस गेट होंगे उनको भी हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपरली।
0: जाहिर है बाबा बर्फानी की पावन यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक, ट्रांजिट कैंप से लेकर यात्रा मार्ग तक और सांस्कृतिक स्वागत से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है, ताकि देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालु न सिर्फ सुरक्षित और सुगम यात्रा करें बल्कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति और आस्था की अनूठी छवि भी अपने साथ लेकर जाएं। जम्मू से मीर फरीद और राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अरब सागर के ऊपर आसमान में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर गरज रहे थे। नीचे समुद्र के बीचों बीच एक तेल टैंकर धधक रहा था। जहाज से काले धुएं का गुबार उठ रहा था और वहां फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स के सामने दो ही रास्ते थे, या तो आग की लपटों में गिर जाएं या समुद्र में कूद जाएं। लेकिन तभी भारतीय नौसेना ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, और वो है ओमान में 24 भारतीयों का रेस्क्यू। आपको बता दें कि ओमान में मिसाइल अटैक का शिकार बने तेल इंजन जहाज से 24 भारतीय क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि जहाज के अंदर आग तेजी से फैल रही थी, लेकिन संकट का संदेश मिलते ही हरकत में आए भारतीय नौसेना ने बिना समय गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीयों को बचाया गया। MRCC मुंबई ने ओमान की समुद्री एजेंसी OMSC के साथ कोऑर्डिनेट कर मदद की पहल की। इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से जहाज पर फंसे सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
5: पश्चिम एशिया संघर्ष को 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लगातार गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मर्चेंट वेसल सुरक्षित नहीं हैं, इन पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसा एक हमला पलाउ फ्लैग वेसल, मर्चेंट वेसल मैरिवेक्स पर हुआ, जहां पर एक मिसाइल से हमला होने के बाद 24 सी फेयरर्स की जान खतरे में पड़ गई। ये भारतीय सी फेयरर्स थे, लिहाजा भारत में MRCC को इसकी सूचना मिली, और जैसे ही इस पूरे हमले की सूचना मिली तुरंत ओमान की नेवी, ओमान की अथॉरिटीज को इसके बारे में बताया गया और एक जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना भी इस पूरे इलाके में मौजूद है, लेकिन MRCC जो मुंबई में है, जो कम्युनिकेशन के लिहाज से बेहद अहम है, उसने लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया और सुपरवाइज किया, और आखिरकार भारत के 24 सी फेयरर्स की जान बचाई गई, जिसके बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने ओमान की सरकार का धन्यवाद भी दिया। ये लगातार होने वाले हमलों में से एक बड़ा हमला था जिसमें सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया।
4: भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और बलिदान का प्रतीक करगिल विजय दिवस आने वाला है। इस साल देश 27वां करगिल विजय दिवस मनाने जा रहा है। इसी गौरवशाली मौके को यादगार बनाने के लिए भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने एक बेहद खास और रोमांचक मोटरबाइक रैली का आयोजन किया। हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। शिंकुला से द्रास तक जाबाजों की विजय रैली, हवा में लहराता तिरंगा, पहाड़ों को चीरती बाइक्स की गड़गड़ाहट और दिलों में देशभक्ति का जज्बा। 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर सेना की ये बाइक रैली शिंकुला टॉप से शुरू होकर करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंची। समुद्र तल से कम 12,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन भी कम होने लगती है, वहां 54 बाइकर्स ने जांस्कर और हिमालय की बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण घाटियों को पार किया और करगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
6: देश और भारतीय सेना अब की बार 26 जुलाई को 27वां विजय दिवस मना रही है। विजय दिवस के लिए भारतीय सेना ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया है। उन्हीं में से लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए करगिल वार मेमोरियल जो कि द्रास में है वहां तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली में देश के कई बाइक सवारों ने शिरकत की और कहीं ना कहीं उन शहीदों को याद किया जो करगिल विजय में देश की सेना को फतेह दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण थे।
4: क्या आपने कभी सोचा है कि घरों या फिर कारखानों से निकला कबाड़ जिससे कि हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो किसी शहर की सबसे खूबसूरत पहचान बन सकता है? श्रीनगर में कुछ ऐसा ही कमाल हुआ है। हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी। श्रीनगर का पहला वेस्ट टू वॉन्डर पार्क, रिसाइकिल, रीयूज और रीइमेजिन के मंत्र के साथ श्रीनगर में पहला वेस्ट टू वॉन्डर पार्क तैयार किया गया है, जहां कबाड़ और स्क्रैप हो चुके सामान को जैसे नया जीवन दे दिया गया। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में इस खास पार्क को तैयार किया गया है। स्क्रैप बन चुकी जीप हो या फिर सालों पुरानी कबाड़ हो चुकी एम्बेसडर कार, पुराने टायर हो या फिर तांगा, ये सब कबाड़ की चीजें इस पार्क की शोभा बढ़ा रहे हैं।

0: कबाड़ से कमाल कैसे होता है वो यहाँ देखिए। स्क्रैप में तब्दील हो चुकी एक पुरानी जीप, पुराने टायर, लोहे का डिब्बा बन चुका एक खराब स्कूटर और कभी सड़कों की शान माने जाने वाला तांगा। ये वो सामान है जो सालों पहले कबाड़ में बदल चुका है, लेकिन ये पुराना सामान अब इस पार्क की शोभा बढ़ा रहा है। चाहे वो पुराने लोहे के खंबे हों या फिर खस्ता हाल एम्बेसडर कार, इस पार्क को ऐसी चीजों से सजाया गया है जो इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गई थी, लेकिन अब यही बेकार सामान इस पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के मशहूर पोलो ग्राउंड पार्क की, जो अब शहर के पहले वेस्ट टू वंडर गार्डन में बदल दिया गया है।
1: इस साल हमने नया कुछ दिया कि जो हमारे पास पुराना स्टॉक था, पुराने वुड्स थे जो खराब हो रहे, जो लोग जलाने के लिए लेते हैं, तो हमने उसको चीजें उसमें बनाए हैं, प्लांटर उसमें बनाए जिसमें हम फूल उगा देंगे।
0: ये खूबसूरत पहल कश्मीर के फ्लोरिकल्चर विभाग ने की है। इस अनोखी पहल ने बेकार और कबाड़ सामान को बेहद खूबसूरत कलाकृतियों में बदल दिया गया है। इस गार्डन की थीम है रिसाइकल, रीयूज और रीइमेजिन, यानी कबाड़ को नया रूप और नई जिंदगी देना। इस इको फ्रेंडली गार्डन का मकसद सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देना भी है।
2: ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्क जो बन रहा है, ये सारा रीयूज मटेरियल हम कर रहे हैं, जो हमारे गार्डन्स में, ऑफिसेस में, फ्लोरिकल्चर के दफ्तरों में भी कुछ सामान पड़ा था उसको हमने यहाँ लाया और उसको हम यूज कर रहे हैं एज प्लांटर्स।
0: इस खास पार्क में कबाड़ हो चुकी मिट्टी और कूड़ा ढोने की गाड़ियाँ भी हैं। खराब हो चुके गमले और बच्चों की पुरानी गाड़ियों को भी एक नया रूप और रंग दिया गया है। इनोवेशन और पर्यावरण के इस अनूठे संगम ने साबित कर दिया है कि अगर सोच क्रिएटिव हो तो कचरे से भी वंडर यानी चमत्कार किया जा सकता है।
3: खाली टूरिस्ट के लिए भी नहीं, जो कश्मीर के लोकल्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर अट्रैक्शन होते हैं ये पार्क्स एंड एवरीथिंग। एंड जब ऐसे ही वेस्ट पाइल्स होते थे, वुडन लॉग्स ऐसे साइड में पड़े होते थे, सो इट वाज क्वाइट ऑड, इट लुक्ड क्वाइट ऑड, थोड़ा सा वो पार्क की जो ब्यूटी होती थी वो इससे ख़राब हो जाती थी। सो इनने जो ये इनिशिएटिव लिया है टू क्रिएट समथिंग गुड लुकिंग आउट ऑफ द वेस्ट, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज इट ओवरऑल एनहेंसेस द एस्थेटिक्स ऑफ द पार्क एंड नॉट ओनली टूरिस्ट, जो लोकल्स भी है वो भी इससे अट्रैक्ट होंगे।
1: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से जो इन्हें यूज़ किया है, लाइक इन्हें वुडन्स जो इन्हें यूज़ किया, लाइक इनको टायर्स इन्हें यूज़ किया, आपने मतलब लाइक हेरिटेज को जिंदा करने के लिए इन्हें ये चीज़ें की है, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है लाइक इन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने का, जो लोकल्स है वो भी इससे अट्रैक्ट होंगे।
0: कबाड़ से कमाल की ये तस्वीर ना सिर्फ बेकार सी चीज को खूबसूरत और उपयोगी बनाने का हुनर सिखा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये बड़े काम की पहल है। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
4: आज के समय में आत्मरक्षा सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, खास करके महिलाओं के लिए जो घर, स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस तक हर दिन सफर करती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस पाठशाला चला रही है, जहां लड़कियों और महिलाओं को न सिर्फ आत्मरक्षा की क्लास दी जा रही है बल्कि आत्मविश्वास और साहस का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है और वो है दिल्ली पुलिस के समर कैंप में सेल्फ डिफेंस पाठशाला। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए एक खास समर कैंप का आयोजन किया है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि मुश्किल हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास बात यह है कि इसमें बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक हिस्सा ले रही हैं।

0: ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस की पाठशाला नहीं बल्कि आत्मविश्वास की क्लास है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक हर कोई डर के आगे झुकना नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करना सीख रहा है। यहां सिर्फ दांव पेच नहीं सिखाए जा रहे बल्कि वो हौसला महिलाओं में भरा जा रहा है जो किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद पर भरोसा करना सिखाता है। यहाँ हर पंच, हर मूव और हर अभ्यास एक संदेश देता है कि सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच आत्मविश्वास है।
1: आजकल किसी भी इलाके में कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है तो सबसे पहले उनका हाथ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनका हाथ पकड़ा जाए तो वो कैसे खुद का बचाव कर सकती हैं और हाथ पकड़ने वाले को कैसे वो मुकम्मल जवाब दे सकती हैं।
0: दिल्ली पुलिस ने गर्मी की छुट्टियों में 12 दिन के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ने इस कैंप को सफल बना दिया है। बच्चे और महिलाएं इस समर कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
2: कैसे निकलेगा अब ये हाथ इसने पकड़ लिया, मैंने हाथ को टर्न नहीं किया है, अब मेरे को हाथ निकाल रास्ता क्या, रास्ता निकालने का देखिए हम क्या हम ऐसे खींचते हैं निकलता नहीं है, रास्ता यहाँ पे है, अब यहाँ से मेरे हाथ ऑलरेडी लॉक है एल्बो, अगर मैं सिर्फ अब हाथ छोड़ो फिर हाथ पकड़ो, अब क्या किया मैंने सिर्फ हाथ को चेंज कर लिया, अब दो हाथ ऑटोमेटिक अपने आप बाहर आएगा।
0: इन बच्चों और महिलाओं की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस विंग दे रही है ताकि समय रहते अपना बचाव किया जा सके।
1: अगर कोई हाथ पकड़ ले आपका तो क्या करेंगे आप?
3: हमें काफ़ी टेक्निक सिखाई गई है उसके अलावा, जैसे अगर हमारे दोनों हाथ से पकड़ा जाए तो हम उसे टेक्निक के थ्रू छुड़ा सकते हैं।
4: यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे मिडल हमने पंच मारना सीखा और ब्लॉक करना सीखा और अभी हम हैंड ग्रिप सीख रहे हैं।
0: वैसे दिल्ली पुलिस की ये पहल कोई नई नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में कई बार सेल्फ डिफेंस क्लास का आयोजन हो चुका है जिसके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज है। इस मिशन के तहत साल 2002 से अब तक करीब 30 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस पहल ने कई उपलब्धियां भी हासिल की है जिसमें 2017 और 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। 2022 में स्कॉट सिल्वर अवार्ड मिला जिसमें पहली बार दिल्ली पुलिस नॉमिनेट हुई। 2026 यानी इसी साल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस अभियान को जगह मिली और इसी साल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ISO सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ है। दरअसल दिल्ली पुलिस की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल शारीरिक रूप से सक्षम बनाना नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना भी है ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना बिना डरे और पूरी हिम्मत के साथ करें।
5: सर इसमें हम बेसिकली हम टेक्निक बताते हैं बच्चों को जो उसके थ्रू अपने आप को पहले तो अपने आप को बचाएगी देन उसको अटैक करेगी, मतलब लड़की घबराएगी नहीं उस कंडीशन में, हमने वो सारी टेक्निक हम लड़कियों को बता रखी उस कंडीशन में लड़की पहले अपने आप को बचाएगी उसके बाद फिर अपना अटैक करेगी सामने
1: करके देख लेते हैं सर। आवाज
5: जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कोई हमारा कपड़ा पकड़ ले, सबसे पहले अपने कपड़े को होल्ड करना है ठीक है ताकि वो खींच ना पाए आपके कपड़े फाड़ ना पाए। सेकेंड है फिर उसके हाथ में ये फर्स्ट अटैक करना है, यहीं से उसके हाथ को ये टर्न करना है ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको पीछे की तरफ आप धकेल सकते हो, अगर वेट कम है तो आप ऐसे करके उसको नीचे डाउन कर सकते हो।
0: इस समर कैंप में केवल छात्र ही नहीं बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इनमें एक महिला की उम्र तो 71 साल है जिनका कहना है कि आत्मरक्षा सीखने की कोई उम्र नहीं होती और खुद को सुरक्षित रखने का आत्मविश्वास हर महिला के लिए जरूरी है। जाहिर है दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस पाठशाला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी एक मजबूत जरिया बनकर उभर रही है, क्योंकि जब महिलाएं खुद को सुरक्षित रखना सीख जाती हैं तो उनके कदम और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों जोरदार गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर और हिमाचल से सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। शिमला भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है, लेकिन इन सैलानियों के लिए वहां खूबसूरत नजारों के साथ ही समर फेस्टिवल की रौनक भी है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है और वो है शिमला समर फेस्टिवल, संस्कृति संगीत का संगम। इस समर फेस्टिवल में कला और संस्कृति के रंग तो हैं ही, साथ ही हिमाचली स्वाद का खजाना भी है। ये समर फेस्टिवल 12 जून तक चलेगा।
7: शिमला की हसीन वादियों में शुरू हो चुका है समर फेस्टिवल। स्वाद, संस्कृति और संगीत का अद्भुत संगम। पूरे 5 दिनों तक सुबह से लेकर रात तक यहाँ लगेगा राग रंग का मेला। सोमवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस समर फेस्टिवल का धमाकेदार आगाज हुआ। शिमला समर फेस्टिवल का यह 66वां संस्करण है जो कि 12 जून तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने महोत्सव का उद्घाटन किया।
8: इस बार भी बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और निश्चय ही जिस प्रकार से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं।
7: महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है जब सैकड़ों स्थानीय महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती हैं, तो शाम को सुर और संगीत की महफिल फिजा को सुरीली बना देती है। समर फेस्टिवल के पहले दिन कवि सम्मेलन, जुम्बा डांस, छम्म नृत्य, वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो शाम को स्टार नाइट में बॉलीवुड सिंगर शबाब साबरी ने रंगारंग प्रस्तुति दी।
9: हर वर्ष की भांति जैसा आपको विदित ही है कि यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के कलाकार, पहाड़ी कलाकार एवं जो पंजाबी कलाकार वो आते हैं।
7: 10 जून को हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक और नाटी किंग कुलदीप शर्मा की हिमाचली सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। 11 जून को पंजाबी सिंगर और एक्टर गुरनाम भुल्लर लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। 12 जून को महोत्सव के आखिरी दिन जस्सी गिल और बब्बल राय की जोड़ी लाइव परफॉर्मेंस देगी। शिमला समर फेस्टिवल एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल गर्मी के मौसम में मई या जून में मनाया जाता है। 1960 में इसकी शुरुआत राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से की गई थी, तब से लेकर आज तक इसकी रौनक बढ़ती ही गई। इस 5 दिवसीय महोत्सव में दिन की रौनक डॉग शो, फैशन शो और फूड फेस्टिवल से होता है, तो शाम हिमाचली लोक नृत्य और लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट से रंगीन हो जाती है। अगर आप भी आजकल में शिमला घूमने जाने की सोच रहे हैं या फिर शिमला में हैं, तो फिर इस महोत्सव का लुत्फ उठाना ना भूलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: हिसार की एक महिला आज उन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की रोशनी जला रही है जिन्हें कभी स्कूल का रास्ता भी नसीब नहीं था। एक सरकारी स्कूल की है टीचर, स्कूल के बाद एक को नहीं बल्कि 25 बच्चों की जिंदगियों को संवारने की भरपूर कोशिश कर रही है। हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। टीचर बनी मिसाल, शिक्षा की रोशनी से बदल रही जिंदगियां। हम बात कर रहे हैं सुमन मलिक की जो कि पेशे से सरकारी स्कूल में है टीचर है। स्कूल की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुमन रोज ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के करीब 25 बच्चों को पढ़ाने पहुंचती हैं। खास बात यह है कि सुमन सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि अपने घर से बच्चों के लिए टिफिन भी लेकर आती है ताकि पढ़ाई के साथ उन्हें भरपेट भोजन भी मिल सके। शिक्षा और सेवा के इस अनूठे अभियान में अब कई लोग उनका साथ दे रहे हैं। सुमन की ये पहल समाज के लिए एक मिसाल बन गई है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
11: Swing and a foul out of play off to the left.
10: Big 12 Radio.
12: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
10: Talk Sport.
13: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
10: And more. Search sports to find the stations covering your team.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और तेज आंधी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 28 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खुलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लाल बागचा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देश भर में हनुमान मंदिर में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों की भीड़।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से उससे दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से अफवाहों की आंधी की शुरुआत होती है। तो ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, उसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड के आरोपियों का है जिन्हें पुलिस जंजीरों में बांध कर ले जा रही है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि साईं मंदिर को मिला दान मदरसे को भेजा जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ जाना गया तो क्या कुछ निकलकर सामने आ गया, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 मई को 17 वर्षीय सूर्य प्रताप की असद नाम के एक शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और इसी हत्याकांड से जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पुलिस को दो लोगों को पकड़कर ले जाते हुए देखा जा सकता है। दोनों के हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और वो लंगड़ाकर चल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड के आरोपियों का ये वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट।

0: यूपी की गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई सूर्य प्रताप चौहान नामक युवक की हत्या के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिस वाले दो युवकों को जंजीरों में बांध कर ले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये युवक सूर्य की हत्या के आरोपी हैं। वीडियो में दिख रहे दोनों युवक लंगड़ा कर चल रहे हैं। दरअसल 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य प्रताप चौहान और असद नामक युवक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद असद ने सूर्य पर चाकू से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान सूर्य की मौत हो गई। मामले का मुख्य आरोपी असद 30 और 31 मई की दरमियानी रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने मामले के तीन आरोपियों नवाब, फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इसी संदर्भ में वायरल हो रहे वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि गाजियाबाद में सूर्य पर चाकू से हमला करने वाले एक का एनकाउंटर और दो जंजीरों में जकड़े हैं।
1: सूर्य हत्याकांड से जोड़ते हुए इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: 28 मई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के 17 वर्षीय सूर्य की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के मुख्य आरोपी असद उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने हत्या में शामिल बाकी आरोपियों को भी धर दबोचा। अब इस हत्याकांड से जोड़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में पुलिस को दो लोगों को पकड़ कर ले जाते हुए देखा जा सकता है। दोनों के हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, लंगड़ा कर वो चल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि गाजियाबाद में हुए सूर्य हत्याकांड के आरोपियों का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में नजर आ रहे कई गाड़ियों के नंबर प्लेट पर मध्य प्रदेश का नंबर नजर आया, जिससे दावे की सच्चाई पर हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि सूर्य हत्याकांड के बाद गाजियाबाद पुलिस ने किसी भी आरोपी की परेड नहीं निकाली। उस दौरान ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वाकई ये एक बहुत बड़ी खबर होती। हर मीडिया आउटलेट पर यह खबर सुर्खियां बनी होती। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच और झूठ क्या है जानिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 10 अप्रैल के इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। जाहिर है कि इसका सूर्य हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। इस पोस्ट में लिखा है कि मंदसौर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 19 साल के युवक अरुण की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में थोड़ी और खोजबीन करने पर हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 6 अप्रैल की एक रिपोर्ट मिली। इसके अनुसार 5 अप्रैल की रात करीब 11 बजे मंदसौर के गांधी चौराहा क्षेत्र में चाकूबाजी की एक घटना हुई थी। नरसिंहपुरा निवासी नानावती बरगुंडा के 19 वर्षीय बेटे अरुण पर रोहित भाटी और युवराज माली नाम के दो युवकों ने हमला कर दिया था। अरुण को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के 3 दिनों के बाद मंदसौर पुलिस ने इस मामले में रोहित चौहान और युवराज माली नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो दोनों आरोपियों से खड़े होते नहीं बन रहा था और दोनों लंगड़ाते हुए नजर आए थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो अप्रैल का है और मंदसौर मध्य प्रदेश की एक दूसरी घटना से संबंधित है। इन युवकों पर एक 19 साल के युवक की हत्या का आरोप है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि शिरडी साई मंदिर का यह वीडियो है और साई मंदिर को मिला दान मदरसे को दिया जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट।
0: दान पेटी से बोरियों में पैसे इकट्ठा करते लोगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर कर दावा ये किया जा रहा है कि ये शिरडी साईं बाबा का है, साईं मंदिर को मिला दान मदरसे को दिया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि शिरडी साईं की झोली में डाली गई हिंदुओं की कमाई कहां जा रही है, खुद ही देख लो। इसको इतना वायरल करो कि देश के एक एक हिंदू तक पहुंचे जो कि आंखें होते हुए भी अंधे बने हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर दान पेटी से बोरियों में पैसे इकट्ठा करते हुए लोगों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर कर दावा यह किया जा रहा है कि शिरडी साई मंदिर का है, साई मंदिर को मिला दान मदरसे को दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो में हमें देखने को मिला कि किसी मस्जिद या मदरसे का हो सकता है, शिरडी के साईं मंदिर का ये वीडियो नहीं लग रहा था। वहीं वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि नोट भी भारतीय मुद्रा जैसे नहीं है। ऐसे में हमें वायरल वीडियो के दावे पर शक हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और जगह के पुराने वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इससे जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट बांग्लादेश वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 6 मई 2023 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो बांग्लादेश के किशोरगंज की पगला मस्जिद का है। इस मस्जिद को दान में 5,59,07,679 मिले थे। रिकॉर्ड मात्रा में धन के अलावा विदेशी मुद्रा सोना चांदी भी मिला। जांच के दौरान हमें वायरल वीडियो एक फेसबुक पेज पर मिला। इसे 6 मई 2023 को शेयर किया गया था। वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन के मुताबिक किशोरगंज की ऐतिहासिक पगला मस्जिद की 8 दान पेटियां 4 महीने बाद खोल दी गई। इस बार दान पेटियों में रिकॉर्ड 5,59,07,679 मिले। विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण भी मिले। अब एक हीरे की पोर मिली। इस पैसे को कैलकुलेट करने में करीब 13 घंटे में 200 लोगों ने काम किया। 6 मई यानी शनिवार सुबह 8 बजे दान पेटियां खोली गई। हाँ, ये बात सच है कि शिरडी साई मंदिर में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। नए साल पर शिरडी साई मंदिर को 23.29 करोड़ रुपए दान में मिले थे। इस चढ़ावे में विदेशी करेंसी, सोना चांदी और हीरे जैसी कई चीजें शामिल थी। इतना ही नहीं, हाल ही में एक भक्त ने 15 लाख रुपए मूल्य का असली हीरो से जड़ा मोरपंख आकार का सोने का ब्रोच भी मंदिर में दान किया था। साफ है कि वायरल हो रहे वीडियो के साथ गलत दावा किया गया है। इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। असल में ये वीडियो बांग्लादेश की एक मस्जिद का है जिसे अब शिरडी साई मंदिर का बताकर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, बारिश जोरदार, एक ब्लास्ट, लद्दाख जाने का रास्ता साफ। बड़ा मंगल पर मंगल करेंगे मारुति नंदन। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have. Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
10: ये बताओ अब छुट्टी पड़ जाएंगे स्कूल की, हमें तो अच्छा लगेगा नहीं, आपको लगेगा?
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो में एक मासूम बच्चे और उसके शिक्षक के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया। बच्चे का भोला अंदाज और उसकी मासूमियत लोगों को खूब पसंद आ रही है।
10: ये बताओ अब छुट्टी पड़ जाएंगे स्कूल की, हमें तो अच्छा लगेगा नहीं, आपको लगेगा?
11: हमें तो लगेगा।
10: क्यों?
11: तुम अपनी सोचो, हमें तो लगेगा, हम तो नानी घर चले जाएंगे।
2: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में छुट्टी होने वाली है और इसी दौरान मास्टर जी बच्चे से मजाक के अंदाज में पूछते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो रही है, हमारा तो मन नहीं लगेगा, तुम्हारा लगेगा? इस सवाल को सुनकर बच्चा कुछ सेकंड सोचता है, फिर बेहद क्यूट फेस बनाते हुए जवाब देता है, हमारा तो लगेगा, हम तो नानी के घर चले जाएंगे, तुम अपनी सोचो। बच्चे का ये जवाब सुनते ही सब लोग हंस पड़ते हैं। बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन और बेफिक्र अंदाज ने वीडियो को और भी खास बना दिया। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये क्लिप लाखों लोगों ने देखी है। वीडियो देखने वाले यूजर्स बच्चे की मासूमियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
11: हमें तो लगेगा।
10: क्यों?
11: तुम अपनी सोचो, हमें तो लगेगा, हम तो नानी घर चले जाएंगे।
12: आप बहुत अच्छे लगते और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट। आप इतने अच्छे लगते हो।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से जिस मासूमियत और प्यार भरे अंदाज में बात करता है, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। बच्चे की बातें सुनकर न सिर्फ उसकी माँ मुस्कुराने लगती है, बल्कि वीडियो देखने वाले लोग भी भावुक हो जाते हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी माँ के प्रति अपना प्यार बेहद सादगी और मासूमियत के साथ जाहिर करता है। उसकी बातों से साफ महसूस होता है कि उसके लिए उसकी माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। बच्चे के चेहरे के भाव और बोलने का तरीका इतना स्वाभाविक
0: स्वाभाविक है कि वीडियो देखने वाले लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं।
12: आप बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट। आप इतने अच्छे लगते हो, आप इतने सुंदर लगते हो, मुझे पूछो मत, मतलब उसके बारे में और पूछो ही मत कुछ।
9: कितनी सुंदर लगती है
12: आप, ऐसे वाले सुंदर लगते।
9: अच्छा मम्मा कितनी सुंदर लगती है,
12: तो बादल जितने सुंदर लगते हैं।
9: बादल जितनी सुंदर लगती हूँ मैं आपको? वाह वाह वाह, थैंक यू। मैं आपको गुस्सा करती हूँ तो भी आप मम्मी मम्मी करते हो, ऐसे क्यों?
12: मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को बुलाना पड़ता है। मम्मी मैं तो खाना कोई नहीं बनाता।
0: वीडियो में बच्चे की माँ भी शांत और प्यार भरे अंदाज में उसकी बातें सुनती नजर आती है। माँ बेटे के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
9: कितनी सुंदर लगती है
12: ऐसे वाले सुंदर लगते।
9: अच्छा मम्मा कितनी सुंदर लगती है,
12: तो बादल जितने सुंदर लगते हैं।
9: बादल जितने सुंदर लगती हूँ मैं आपको? वाह वाह वाह।
13: Violet gets here, let me show you what books they have like for kids. This is quantum entanglement for babies. We have generative AI. We have electromagnetism. Like, I mean, that's okay. Then rocket science. This is amazing. This guy here is general relativity for babies.
0: चीन से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक महिला जब सुबह सुबह अपने लिए कॉफी खरीदने कैफे में चली गई, तो वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कैफे में बच्चों के पढ़ने के लिए एक छोटा सा बुक शेल्फ बना है, लेकिन वहाँ पर चंदा मामा या परियों की कहानियाँ नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे कठिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की किताबें रखी हुई हैं। महिला ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
13: Dude, oh my god, Newtonian physics, quantum physics. So in here is machine learning for babies. Guys, this is like they're literally showing babies how to do data processing and how to clean the data.
0: सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक ट्रैक पर एक भैंस खड़ी है, वहीं पास भी दो भैंसें नजर आ रही हैं। अब बात ये है कि इन जानवरों को देखते ही लोको पायलट ट्रेन को रोक लेता है। इनकी जान बचाने के लिए वो ट्रेन रोकता है और नीचे उतरता है और उन जानवरों को भगाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो भैंस की जान चली जाती और लोको पायलट ने उसकी जान बचा ली। इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वीडियो कब का है और कहाँ का है। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना किसी जंग जीतने जैसा है। धक्का मुक्की और भारी भीड़, पैर रखने तक की जगह न होना, यही यहाँ की रोज की कहानी है। लेकिन सोचिए अगर कोई इस खचाखच भरी ट्रेन में पानी से लबालब भरा गिलास लेकर चढ़ जाए तो क्या होगा?
14: किसी को छूने नहीं दूंगा मैं। अभी घी खत्म होने वाला है, सॉरी पानी खत्म होने वाला है।
0: यकीनन आप कहेंगे कि पानी पहले ही सेकंड में गिर जाएगा, लेकिन मुंबई के एक लड़के ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। दरअसल मुंबई के प्रणय जोशी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद अजीबोगरीब चैलेंज शेयर किया है। उन्होंने चर्च गेट से विरार तक करीब 60 किलोमीटर तक का सफर लोकल ट्रेन में पानी से भरा गिलास बिना गिराए ले जाने की चुनौती दी है। वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत में प्रणय प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक कांच के गिलास में ऊपर तक पानी भरते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली इम्तिहान। जैसे ही ट्रेन आती है, वो भारी भीड़ के बीच खुद को और उस गिलास को संभालते हुए डिब्बे के अंदर दाखिल होते हैं। चर्च गेट से विरार का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ा, प्रणय की मुश्किलें बढ़ती चली गई, क्योंकि हर स्टेशन पर यात्री चढ़ते उतरते रहे और धक्का मुक्की होती रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रणय कभी ट्रेन के कोने से सटकर खड़े होते हैं, कभी भीड़ के बीच हाथ ऊपर करके गिलास को बचाते हैं, और जब ट्रेन विरार स्टेशन पहुंचती है तो जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इतनी भीड़ और धक्का मुक्की के बावजूद गिलास का पानी सुरक्षित था। प्रणय ने कैमरे के सामने थम्स अप दिखाकर अपनी जीत का जश्न मनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
15: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
16: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
15: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
16: They score!
15: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह।

0: को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में मॉनसून की रफ्तार की डिटेल आज आपको देंगे। जानिए आपके शहर में कब तक पहुंच रहा है मॉनसून। 3 घंटे का सफर 15 मिनट में, 365 दिन लद्दाख तक का सफर होगा जारी। जॉर्जला सुरंग ने कैसे बदली लद्दाख की तस्वीर आगे दिखाएंगे। और अधिक मास के आखिरी बड़ा मंगल पर मारुति नंदन के दर्शन के लिए कैसे उमड़ा आस्था का सैलाब, तस्वीरों में देखिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट।

जॉर्जलैंड टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह। फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य।

अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबाग चौराहे की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। देश भर में हनुमान मंदिरों में लगा आस्था का मेला, बड़े मंगल पर श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी दरबार में भक्तों का तांता। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले मानसून की करते हैं, क्योंकि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही देरी से पहुंचा हो लेकिन अब यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। महज 5 दिनों के भीतर ही ये 13 राज्यों में दस्तक दे चुका है, कवर कर चुका है 13 राज्यों को। अब खबर यह आई है कि महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मानसून अगले 48 घंटों में मुंबई में दस्तक दे सकता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री जून के आखिरी हफ्ते तक हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 25 से लेकर 30 जून के बीच मानसून पहुंचने के आसार है। हालांकि इसके पहले उत्तर भारत में एक बार फिर से 11 और 12 जून को प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। इस बीच ये भी खबर देते चलें कि शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में तेज आंधी का दौर भी शुरू हो चुका है।

0: दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही 3 दिन की देरी से पहुंचा, मगर अब मानसून पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अपनी इसी रफ्तार की वजह से सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही मानसून 13 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। इन 13 राज्यों में ज्यादातर पूर्वोत्तर शामिल है। वहीं दक्षिण भारत के 5 राज्यों जबकि पश्चिम भारत के गोवा और महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। IMD की ओर से जारी इस मैप में मानसून की मौजूदा रफ्तार को दिखाया गया है। मानसून की मौजूदा चाल को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में ये मुंबई में भी दस्तक दे सकता है।
1: जैसे कि इस मैप में भी आप देख पा रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो केरल में जो है मानसून ने दस्तक दी थी, इसके बाद से लगातार जो इसकी जो है एडवांसमेंट देखा जा रहा है। और अभी ये केरल के साथ साथ में कर्नाटका का जो हिस्सा है काफी उसको कवर कर चुका है, जो महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग है उसके हिस्से कुछ कवर कर चुका है, तमिलनाडु की ज्यादातर से कवर कर चुका है।

0: है, वहीं रायलसीमा का भी कुछ दक्षिणी भाग जो है उसको कवर कर चुका है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को कवर कर चुका है, त्रिपुरा का थोड़ा भाग कवर बचा हुआ है, बाकी ज्यादा हिस्सा कवर कर चुका है। वहीं असम का और अरुणाचल प्रदेश का भी काफी हिस्सा मानसून जो है वो कवर कर चुका है।
1: पश्चिमी तट पर मानसून मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले 48 घंटों में मुंबई में इसके आने की संभावना है। सामान्य तारीख बारिश की मुंबई में 10 जून है।
2: जिन राज्यों को मानसून कवर कर चुका है वहां बादल जमकर बरस रहे हैं। ये दो तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की है, जहां बेलागावी और चित्रदुर्ग जैसे जिलों में झमाझम बारिश से सड़कें और खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं। बेलागावी में तो कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी तस्वीर असम के नॉर्थ लखीमपुर की है, जहां बीते 8 घंटों से बारिश का सिलसिला थमा ही नहीं। मौसम विभाग की ओर से इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
0: जी देखिए, भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जो है असम मेघालय को जारी की गई है। वहीं दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो मुख्य रूप से भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी कर्नाटक, केरल के लिए जारी की गई है। मुख्य रूप से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी भी 20 सेंटीमीटर जो वर्षा की चेतावनी जो है वो तटीय कर्नाटक के लिए भी जो जारी की गई है।
2: बात अगर उत्तर भारत की करें तो यहां के ज्यादातर राज्यों में फिर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में पारा 40 को पार कर गया है। नौबत यह है कि दिन ही नहीं रातें भी गर्म है। राजस्थान में तो मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों दिल्ली NCR का भी है। सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है।
3: से एक बार टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखी गई है और सूरज की जो तपिश है वो बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में ये टेम्परेचर्स 2 से 3 डिग्री बढ़े हैं और खास करके जोधपुर बीकानेर संभाग में जो टेम्परेचर्स हैं उनमें खास बढ़ोतरी देखी गई है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में हाईएस्ट टेम्परेचर इस वक्त का 45.6 डिग्री सेल्सियस है, जो कि श्री गंगानगर में दर्ज किया गया है। 11 जून तक का ये जो अलर्ट है, ऐसे में कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनियां दी जा रही है कि इस समय वापस से वो दौर आ चुका है जब धूप से और लू से बचने का समय है और खुद का इस समय पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
4: अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश भी रिपोर्ट हुई है। अभी भी अगले 2-3 दिन राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा यदि देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान में यानी बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान दिन में तेज धूल भरी सतही हवाएं भी प्रभावी रहेंगी, यानी कि दिन में लू की परिस्थिति भी ज्यादातर स्थानों पर बनी रहेगी।
2: उत्तर पश्चिम भारत में इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 जून को एक बार फिर आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके चलते मौसम का मिजाज बदलेगा और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।
5: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के सभी इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग जो है चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान है। लेकिन इसी बीच IMD ने राहत की खबर दी है और ये कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा, जिसकी वजह से बारिश हो सकती है और तापमान में भी गिरावट जो है वो देखी जाएगी। लेकिन कनॉट प्लेस की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और मौसम पूरी तरीके से जो है इस वक्त बदल गया है। हालांकि कुछ देर पहले की बात करें तो तेज धूप ने लोगों को परेशान किया हुआ था। लोग जो है गर्मी से बचना चाह रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। वहीं अब की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो एकदम हवाएं जो है वो शुरू हो गई है। धूल भरी आंधी जो है इस वक्त देखी जा रही।
2: हालांकि अभी उत्तर भारत के राज्यों में मानसून के आने में थोड़ा वक्त बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में मानसून की एंट्री जून के आखिरी हफ्ते में हो सकती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिल्ली से मनीषा लड्डा और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आगे बढ़ते हैं। आज का दिन बुनियादी ढांचे के लिहाज से भारत की बढ़ती ताकत और मजबूत इच्छा शक्ति की किताब में सबसे अहम पन्ने की तरह जुड़ गया है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची जॉर्जिला टनल के ब्रेक थ्रू पॉइंट को हासिल कर लिया। अगर 2 साल के भीतर ही यह टनल आम लोगों के लिए आगे खोल दी जाएगी और तब कश्मीर से लद्दाख का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। कश्मीर से लद्दाख जाने वाले लोगों के लिए आज जॉर्जिला दर्रे के पार करने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन टनल चालू हो जाने के बाद ये दूरी महज 15 मिनट में सिमट जाएगी।

0: सुरंग के अंदर हुए इस ब्लास्ट की धमक से पड़ोसी चीन और पाकिस्तान समेत समूची दुनिया हक्का बक्का है, क्योंकि ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तकनीकी और सामरिक रूप से बढ़ती ताकत की वैश्विक मुनादी है। इस ब्लास्ट के साथ ही हिंदुस्तान 11,578 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल बनाने के ब्रेक थ्रू प्वाइंट पर पहुंच गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचकर रिमोट टैग बटन प्रेस कर जोजिला सुरंग के दोनों छोरों को आपस में मिलाने वाला धमाका कर दिया।
1: आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर एक पर जाएगा।
0: साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढके रहने वाले जोजिला दर्रे के नीचे से होकर जाने वाली ये टनल भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ते आत्मविश्वास का अद्भुत प्रमाण है। 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के लोगों के साथ ही नॉर्दर्न फ्रंट पर तैनात सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी। साल 2028 में चालू होने के बाद ये कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाली ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल हो जाएगी। दरअसल बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए नितिन गडकरी जब पहली बार लद्दाख आए थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि सर्दी के दिनों में भारी हिमपात की वजह से लद्दाख का कनेक्शन 6-6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाता है। तभी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि स्थानीय लोगों की इस परेशानी को वो दूर करेंगे।
1: तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती, वो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है यह बात मेरे ध्यान में आई। और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई। और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला।
0: जिन लोगों ने सोनमर्ग से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रे को पार किया है वो इस टनल की अहमियत को शिद्दत से समझ सकते हैं। सर्दियों में इस इलाके का तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। 6 महीने तक तो इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह ठप हो जाती है, लेकिन जब तापमान कम भी हो जाता है तब भी जोजिला दर्रे को पार करना आसान नहीं होता। जोजिला करीब 11,650 फीट की ऊंचाई पर है, जहां सड़क नहीं बल्कि बर्फीली ढलानों के बीच से तंग पगडंडियां गुजरती हैं। सामान्य दिनों में भी इस चढ़ाई को पार पाने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन टनल चालू होने के बाद यही दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी।
2: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है। हम जब पैदा हुए थे, जब से हमें होश संभाला तब से हमें पता है जोजिला टनल की हम डिमांड कर रहे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की वसादत से जो है हमारी देरेना मांग पूरा हो गया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं।
3: मुश्किलें याद आती हैं जब इस रास्ते आप लोग कश्मीर से ठंड में आते आइए बताइए
2: सर, मत पूछिए क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब जो ही रास्ता ओपन होता है और क्लोजिंग के टाइम में पेशेंट्स हर किसी को कितने कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है अल्लाह बेहतर जानता है।
3: लद्दाख वालों को कारगिल वालों को कितना फायदा होगा इससे?
2: ये 100% फायदा है, इससे नुकसान कहाँ होगा?
3: किस तरह का फायदा होगा?
2: ट्रांसपोर्ट लाइन में आने जाने के लिए, राशन पानी के लिए 6 महीने के लिए कटअप रहता है। आप खुद समझदार है, आप अंदाजा लगाओ 6 महीने के लिए कटअप रहता है। हर चीज का शॉर्टेज रहता है, हर सब्जी हो चावल हर चीज का शॉर्टेज रहता है।
0: सिर्फ स्थानीय लोगों और सैलानियों की परेशानियों को दूर करने के लिहाज से ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये टनल वर्ल्ड क्लास है। इस वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है, जो मुश्किल हालात में सुरक्षा मानकों को लेकर बेहद कारगर रही है। ये टनल पश्चिमी पोर्टल में बालटाल से शुरू होकर लद्दाख के मीना मार्ग पर खत्म होती है। टनल की चौड़ाई 9.5 मीटर और ऊंचाई 7.57 मीटर है। मुख्य टनल के साथ एक स्कैप टनल भी बनाई जा रही है, जो आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रास्ता देगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से ये टनल मील का पत्थर साबित होने जा रही है।
3: जोजिला टनल की सुरक्षा के लिए कई सारी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद खास बनाती है। मसलन आप अगर अटल टनल में गए, रोहतांग टनल में, तो जमीन के नीचे वहां एक स्केप टनल बनाई गई है। अब इस 13 किलोमीटर के शाफ्ट में कई जगह, मान लीजिए अगर कोई हादसा होता है, रेस्क्यू इवैक ऑपरेशन हो, तो 3 ऐसी जगहों पर शाफ्ट बनाए गए हैं, इवैक पॉइंट बनाया गया है, जहां से लोगों को निकाला जा सके। लेकिन अगर कोई गाड़ी पलट जाती है, किसी तरह के आग लग जाती है, कोई रेस्क्यू इमरजेंसी स्थिति होती है, तो इवैक टनल कहां होगा? ये चूंकि सिंगल क्यूब है, एक सिंगल टनल है, और इस सुरंग में आगे ऐसे 2 लेन का रास्ता है। लेकिन यहां पर इवैक टनल सड़क के नीचे ना होकर के आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है टनल में, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ये बहुत ज्यादा है, व्यास जो सुरंग का है, तो ऐसे में ये पहली टनल होगी जिसमें इवैक्यूएशन पॉइंट दरअसल जमीन के ऊपर, यानी जो छत का हिसाब देख रहे हैं निर्माणकार। तो जैसे ही टनल की खुदाई चुकी पूरी हुई है, अब ये 13 किलोमीटर एक छत इसके ऊपर बनेगी, यानी नीचे से 2 लेन की गाड़ियां जाएंगी और इसके ऊपर 13 किलोमीटर इसके साथ एक छत चलेगी। और इसी छत के ऊपर दरअसल 2 हिस्से बनाए जाएंगे, एक होगा इवैक्यूएशन पॉइंट और दूसरी तरफ ये कोशिश की जाएगी कि वेंटिलेशन हो, क्योंकि 13 किलोमीटर लंबा है, ऐसे में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रहे, बाधित ना हो, तो 3 ऐसे मेजर जगह होंगे जहां से वेंटिलेशन पॉइंट बनाया जाएगा। और अगर मैं आपको आगे लेकर के आऊं तो आप देखेंगे कि जो छत का निर्माण कार्य है उसकी जब शुरुआत होगी तो इन्हीं ढांचों के साथ 13 किलोमीटर ऐसी लंबी छत होगी जहां पर इवैक्यूएशन पॉइंट जो होगा वो इसके ऊपर होगा। अगर कोई हादसा होता है तो सड़क के किनारे 750 मीटर पर, हर 750 मीटर पर एक ऐसी एग्जिट पॉइंट बनाए होंगे जहां से अगर कोई हादसा होता है, कोई गाड़ी पलट जाती है, आग लग जाती है, तो उन्हें ऊपर ले जाया जा सके और इसके ऊपर जो इवैक टनल है वहां ले जा सके। और हादसे की जगह पार करने के बाद, चूंकि आगे की पूरी टनल खुली होगी, और ऐसे में राहत बचाव कार्य अभियान जो है वो पूरा किया जा सके।
0: जोजिला टनल की मांग तो स्थानीय लोग पिछले 4-5 दशकों से कर रहे थे, लेकिन 19 मई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया। तब इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। टनल के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी पहले ILFS कंपनी को दी गई, लेकिन काम शुरू करने के बाद ये कंपनी खुद ही आर्थिक संकट में फंस गई, लिहाजा काम ठप हो गया। साफ है कि 2 साल यूं ही बर्बाद हो गए। साल 2020 में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इस बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने का बीड़ा उठाया और आखिरकार 9 जून 2026 को उसने मेजर ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया।
3: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के 12 महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है। और इसीलिए इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हर कोई मौजूद था। लेकिन उसी के साथ साथ कारगिल, द्रास, लद्दाख के वो सैकड़ों लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इस इतिहास को अपने हाथ के सामने पूरा होते आकार लेते देखा।
0: 11,000 फीट की ऊंचाई पर चट्टानों को काटना कितना मुश्किल रहा होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सोचिए जरा कि टनल का मैक्सिमम ओवरबर्डन यानी सुरंग के ऊपर पहाड़ की मोटाई 1,000 मीटर तक है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी स्थिति में पहाड़ को काटना न सिर्फ मुश्किल बल्कि जोखिम भरा भी रहा होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हैवी मशीनें इतनी ऊंचाई पर ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। इतना ही नहीं, टेम्परेचर भी -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इन सब के बीच 12 महीने रात दिन काम जारी रहा। जोजिला टनल से आशुतोष मिश्रा के साथ वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अगली खबर बड़ा मंगल से जुड़ी हुई। आज ज्येष्ठ महीने का 6ठा बड़ा मंगल है, तो ऐसे में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। दिल्ली से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक हनुमान मंदिरों में आस्था का मेला दिन भर दिखा और इस मौके पर कई जगहों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया। मान्यता ये है कि इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है।

0: जो है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जो है संकट मोचन। जो है चिरंजीवी और जो है प्रभु श्री राम के परम भक्त। उन हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिरों में आस्था और भक्ति का ये सैलाब उमड़ा। ज्येष्ठ महीने का आज छठा और अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल है। ऐसे में सुबह से तमाम हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। ऐसी ही एक तस्वीर राजधानी दिल्ली के मरघट वाले प्राचीन हनुमान मंदिर से सामने आई, जहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे भक्तों की लंबी लंबी कतार दिन भर लगी रही।
1: मरघट वाले हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ जाएगी। लंबी लंबी लाइनें जो है मंदिर के बाहर आपको नजर आ जाएगी। और हिंदू मान्यता के अनुसार ये दिन जो है वो हनुमान जी और भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए सबसे शक्तिशाली जो है वो माना जाता है। और उसी कारण ये भक्तों की जो भीड़ देख रहे हैं आपको वो चीज दर्शाती है कि किस तरीके से हनुमान जी के जो प्रति प्यार है वो भक्तों के अंदर जो है वो नजर आता है। और सुबह से चाहे कितनी भी गर्मी होने के बावजूद जो है आपको लंबी लंबी लाइनों में भक्त जो है इंतजार करते हुए नजर आएंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पर जो है कर्मी नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो है भीड़ ना लगे, उस चीज का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन व्यवस्था है, क्या चढ़ाया आज भगवान जी को?
2: आज मैंने पेड़े चढ़ाए हैं, ये दिखा भी देता हूँ मैं। पेड़े चढ़ाए आज और लड्डू का भोग बड़ा पसंद आता है, मैं लड्डू चढ़ाता था। आज मैंने अलग चढ़ाया कि
1: भोग जो है वो आप जो है चढ़ाना पसंद करते हैं। अच्छा, व्रत भी रखते हैं आप?
3: हाँ, मंगलवार का व्रत रखते हैं।
0: बड़ा मंगल का ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में खास तौर पर मनाया जाता है। यही वजह है कि आज यूपी के तमाम बड़े और प्राचीन मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया, भोग लगा और पूजा पाठ की गयी। पूरे दिन मंदिरों में बजरंगबली के जयकारे, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और भजन गूंजते रहे। आस्था और भक्ति से सराबोर ऐसी ही तस्वीर अयोध्या के प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर से भी आई, जहां बड़ा मंगल के इस खास मौके पर मंदिर के अंदर और बाहर मौजूद हनुमान भक्तों ने अपने जोश और उत्साह से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। हनुमान गढ़ी पहुंचे इन भक्तों में कोई चढ़ाने के लिए सिंदूर और चोला लेकर आया है और कोई फूलों की माला और लड्डू लेकर आया है।
4: इस वक्त हम खड़े हैं हनुमान गढ़ी अयोध्या पर और आप जो सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब है और गर्मी को तोड़ते हुए श्रद्धा का भरपूर मजा लेते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए हुए, लेकिन पसीने पे कहीं ना कहीं तरबतर भी लोग हैं और जो इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है वो अपने बजरंग बली से मिलने के लिए आतुर है। तो लगातार यहाँ पे जो भीड़ है, जो सैलाब है, जो सुबह 3 बजे से जो नजरें हैं वो सिर्फ बजरंग बली के द्वार पे खड़ी नजर आ रही है। जो श्रद्धालु को भीड़ है, काफी भरमार है, वो आप ये जो लाइन है, ये पूरा रो है वो पूरा भरा हुआ नजर आएगा। पीछे तक जहाँ तक निकाल दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। काफी खासा गर्मी के बाद भी जो आस्था है वो गर्मी पर काफी भारी नजर आ रही है।
5: मैं सरयू स्नान करके 8:30 बजे से बड़े मंगलवार के उपलक्ष में आके लाइन में लगा हूँ, जो कि 2 घंटे बाद मुझे प्रभु के अपने संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन हुए हैं और जो भी दर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ है।
6: इतनी भीड़ है, हम लोगों ने पहली बार इतनी भीड़ देखी है। यहाँ पे दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने स्नान किए है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ महिमा देख के हम लोग बिल्कुल अपने जन्मों जन्मों के हम लोग उद्धार हो गए हैं।
7: फिर जब भगवान जी के दर्शन किए तो सारी थकावट दूर हो गई और अब बस यही कहना करता कि हमेशा ऐसे ही आते रहे यहाँ पे और बस यही एनर्जी आती रहती है, भगवान जी पर आस्था ऐसे बढ़ती रहती है लोगों की।
0: अयोध्या जैसा ही भक्तिमय माहौल प्रयागराज के संगम तट पर लेटे हनुमान मंदिर में भी देखने को मिला। इस खास मौके पर मंदिर को फूलों और फलों से सजाया गया और श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए मंदिर परिसर में ग्रीन नेट भी लगाया गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। ऐसे में भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला ताकि श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की से बचाया जा सके।
8: आज ज्येष्ठ माह का छठवां बड़ा मंगल है और हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में, आप देख सकते हैं सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगी हुई है। भक्त बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। बजरंगबली यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में भक्तों को दर्शन देते हैं।
9: श्री बड़े हनुमान मंदिर में 1.5 क्विंटल लीची से, पुष्पों से और फलों से भगवान हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। साथ ही साथ में श्री सुंदरकांड का पाठ किया गया, रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा और भक्तों के लिए भंडारे का दिन में पारी कार्यक्रम की विशेषताएं रखी गई।
0: पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में ज्येष्ठ महीने में मंगलवार के दिन ही भगवान राम की उनके परम भक्त हनुमान से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में आने वाले हर मंगलवार को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग बड़ा मंगल पर हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है।
9: विशेषकर आज सभी भक्तों को यही कहूंगा कि ये पुरुषोत्तम मास है, इस मास में तो एक अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो 1000 दीपकों का महत्व है, तो अगर आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो 1000 हनुमान चालीसा का पाठ का महत्व है। तो पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से आज के मंगल का जो अंतिम मंगल है, इस मंगल को श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करें। ओम नमो नारायण, जय श्री राम।
0: पिछले 5 बड़े मंगल की तरह ही इस छठे बड़ा मंगल पर भी कई जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधवा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
13: Third period comes to an end. Game 2 headed to overtime.
12: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
13: They score!
12: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत के विधान की। मंगलवार का व्रत क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है और इसको रखने के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:21 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगलवार के व्रत की। क्या महत्व है मंगलवार के व्रत का, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए रखा जाता है और इस व्रत को हनुमान जी के भक्त भी रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मंगल की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चूंकि मंगल की समस्या दूर होती है तो मंगलवार का व्रत रखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और गलत कामों से बचाव होता है। अगर जीवन में कोई बुरी घटना या दुर्घटना घटने वाली है, अगर कोई अमंगल होने वाला है तो मंगलवार का व्रत करने से अमंगल टल जाता है और जीवन में मंगल ही मंगल अवश्य होता है। मंगलवार के व्रत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, धन के निवेश में सावधानी रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मंगलवार के व्रत के लाभ आपने जान लिए, कौन से लोग हैं जिनको मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिनको मंगलवार का व्रत रखने से लाभ होगा। जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा हो, निगेटिव परिणाम दे रहा हो, ऐसे लोगों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपका स्वभाव उग्र हो, चिड़चिड़ा हो या हिंसात्मक स्वभाव हो, छोटी छोटी बात पर आपको क्रोध आ जाता हो, आप हमेशा क्रोध में या इरिटेशन में रहते हो, तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है, मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह हो गया है और समस्या हो रही है, तो भी मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपको पेट की समस्या रहती है या रक्त की, ब्लड की समस्या रहती है, तो भी मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आपके घर में लंबे समय से कोई शुभ काम, कोई मंगल काम, कोई पूजा उपासना नहीं हो पा रही है, तो घर में शुभता आए, घर में पवित्रता आए, इसके लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि मंगल की समस्या को अगर आपको दूर करना है, मंगल की समस्याओं से अगर मुक्ति पानी है तो मंगलवार का व्रत कैसे रखेंगे। व्रत रखने के उद्देश्य और संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करिए कि मैं अपनी कुंडली के मंगल को बेहतर करने के लिए आज व्रत रखूंगा या रखूंगी। प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, या कंधे पर लाल रुमाल या लाल दुपट्टा ले लें। पहले हनुमान जी की उपासना करें और इसके बाद मंगल के मंत्र का जप करें। पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, इसके बाद मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। शाम के समय हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद फिर से मंगल के मंत्रों का जप करें 108 बार कम से कम, और इसके बाद हनुमान जी की आरती करिएगा। अगर आप इस तरीके से मंगलवार का व्रत रखें हनुमान जी की पूजा के साथ, मंगल ग्रह की पूजा करें तो हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी और मंगल ग्रह से संबंधित समस्या दूर भी होगी। अब ये जानते हैं कि मंगलवार के व्रत की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जहां तक हो सके इस व्रत में जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। अगर एक समय आपको आहार ग्रहण करना है तो नमक का सेवन मत करिएगा। बहुत सारे लोग मंगलवार को शाम को पूजा के बाद मीठी चीज खाते हैं, हलवा पूड़ी, दूध रोटी, गुड़ रोटी, ये भी लोग खाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन नमक का सेवन मत करिएगा। इस दिन घर में भी सात्विकता बनाए रखें। अगर आपके घर में कोई एक आदमी भी मंगलवार का व्रत रख रहा है तो मंगलवार को घर में प्याज लहसुन आदि मत बनाइए। रात को सोने के पहले हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने बात की मंगलवार के व्रत के महिमा की और इसके नियमों की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए एक लकी टिप। देखिए, सामान्यतः खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन तंत्र गड़बड़ होता है और ऐसा लोगों का मानना है कि घुटने खराब होते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: इसमें कोई शक नहीं कि मशीनों ने इंसानों की जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने तो इंसानों की ही जगह ले ली है। खास तौर से चीन में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जहां ट्रैफिक पुलिस से लेकर घरेलू कामकाज तक हर जगह पर ये नजर आते हैं।

0: ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर रोजमर्रा के कामों तक हर काम में आपका साथ देगा रोबोट। चाहे गेस्ट अटेंड करना हो, कॉफी बनाना हो, घरेलू कामकाज हो, डांस हो या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये हर काम में माहिर है और आपका साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार। तभी तो चीन ने अपने देश में इन्हें हर मोर्चे पर उतार दिया है। ये है ह्यूमनॉइड रोबोट HJ-985 रोबोट हांगसू, जिसे झेजियांग प्रांत में एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सड़क पर तैनात किया गया है, ताकि वो ट्रैफिक मैनेज कर सके और देखे वो इस काम को कितनी खूबसूरती से निभा भी रहा है। इसे मालूम है कब रुकने का इशारा करना है, कब चलने का। ये न सिर्फ इशारों में अपनी बात कहता है, बल्कि अपनी आवाज से भी लोगों को चौंकाता है। HJ-985 रोबोट हांगसू को पता है कि वो एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तैनात है। ऐसे में वो जहां एक और लोगों से बेवजह हॉर्न ना बजाने और परीक्षार्थियों को रास्ता देने की अपील कर रहा है, वहीं स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए शुभकामना देता भी नजर आए। AI और वीडियो बेस्ड इंटेलिजेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से तैयार ये ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्त की तरह काम आ रहे हैं, जो बिना थके काम कर सकता है और आपात परिस्थितियों में उनसे तालमेल बिठाकर काम आसान कर सकता है। वहीं चीन के वुहान में तो ह्यूमनॉइड रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई इसका दीवाना है। काम जो आसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।

0: राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा छठे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़ की भी।
1: ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ा मंगल के इस शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में प्रसाद और हनुमान जी के लिए भेंट लेकर पहुंचे भक्तों की लंबी कतारें लग गई और फिर बारी आने पर वो हनुमान जी के दर्शन पूजन कर भक्ति भाव से सराबोर दिखे। हनुमान गढ़ी में छठे बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली को विशेष रूप से मालपुआ का प्रसाद अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था दिखी। उधर प्रयागराज में भी छठे बड़ा मंगलवार पर संगम के तट पर लेटे हनुमान जी दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर के लिए फूल पत्तियों के साथ ही लीची और केले से मंदिर की भव्य सजावट की गई। इन सब के बीच मंदिर पहुंचने वाले भक्त दर्शन पूजन के साथ ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में भगवान शिव से लेकर माता रानी के दरबार में भी आस्था का मेला लग रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है जहां पुरुषोत्तम मास के मंगलवार पर श्रद्धालुओं को दिव्य छठा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विशेष अवसर पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती में डमरू की ताल पर तालियों की ताल मिलाते हुए श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन का लाभ लिया। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के शुभ अवसर पर माता सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और इस विशेष अवसर पर माता का फूलों से आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला श्रृंगार किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बांदीपुरा में प्रशासन की टीम भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। सुंबल ट्रांजिट कैंप पहुंचकर उपायुक्त ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुंबल ट्रांजिट कैंप के तैयार होने के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियों को परखने का काम चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हथियारों से लैस जवान जहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को लेकर तेजी दिखाते नजर आए तो वहीं उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं जहां 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। 12 जून तक चलने वाले इस समारोह का राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है जिसमें महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती है तो शाम को सुर और संगीत की महफिल सजती है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 1960 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी जो आज भी बदस्तूर जारी है। पर्यटक भी इस फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। लाहौल में एक ऐसा ही पर्यटक चंद्रा नदी के किनारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के बीच जा फंसा। खुद को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाए रखने की जद्दोजहद करते हुए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पर्यटक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और फिर रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में फंसे युवकों को बाहर निकाल

0: अली की कवायद में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
1: और अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी एक मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि देश की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और इसके बाद ये सुरंग दोनों छोर से मिल गई और आर पार खुल गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। यही नहीं, ये टनल पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: जोजिला टनल में हुए इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस टनल ने तरक्की की नई इबारत लिख दी। जोजिला टनल का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सालों का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना ये जोजिला सुरंग आज इसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पटल को जोड़ दिया गया है और इसी के साथ कश्मीर से लद्दाख को 12 महीने खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अब इसे जल्दी ही देश को सुपुर्द करने की तैयारी है।
0: सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है।
1: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के 12 महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है।
0: बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीरकर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सुरंग के बनने से उनका सालों पुराना सपना सच होने जा रहा है।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों को?
2: बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, ये बन जाने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमको बढ़िया हो गया जी ना, आसान हो गया बिल्कुल। बरफ में बहुत दिक्कत होता है ना, हमको गाड़ी स्लिप करते हैं, बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते?
2: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम है सर, पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा पानी जम जाता है, बहुत बर्फ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट वेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए, हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहेंगे कश्मीर से लद्दाख, कितना अनुभव आपने, कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
3: हैरान कुन देखा, हैरान कुन, बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
4: कारगिल से है जी।
1: कारगिल से, हाँ। कारगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
4: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है।
1: एक ऐसा जोजिला पास जिसके चलते दो बड़े शहर, न कहले अब तो दो केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे। एक 13 किलोमीटर की टनल, कुछ सालों की मेहनत, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत वो असंभव हो गया जिसके बारे में सालों पहले शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए कारगिल, लद्दाख, द्रास के लोग जो हैं उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है कि अब कितनी भी मुसीबत हो जाए कम से कम रास्ता तो खुलेगा।
0: लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क इस सुरंग के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही भारतीय सेना और आम नागरिकों को लद्दाख तक हर मौसम में सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। बर्फबारी के कारण लद्दाख का कई माह तक देश से सड़क संपर्क कट जाता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के सोनमर्ग के पास जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो जिला सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो जिला दर्रे को पार करने में पहले जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा।
5: इस वक्त हम जोजिला टनल के बिल्कुल बीचों बीच हैं और हमारी मंजिल है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस, और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे, ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए, टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां की तरफ आना चाहते हैं तो आप जोजीला को आपको पास नहीं करना है, इस टनल के बीच से आपका जो ट्रेवल टाइम है जोजीला पास करते हुए 3.5 घंटे लग जाते थे, और जो रस्ते का खतरा वो अलग, और वही समय अब कम होके केवल जो 15 से 20 मिनट में आप यहां से सोनमर्ग साइड से वेस्टर्न पोर्टल से अगर आप आते हैं तो मिनमर्ग जो कि द्रास लद्दाख के काफी करीब है वहां तक पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी। जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जोजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जोजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान, रसद, हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फबारी हो, ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
0: जोजिला टनल का ये ब्रेक थ्रू आखिरी मंजिल नहीं है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद ही पहली गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के लोग जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो गया है। यानी ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही बल्कि ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: सुरक्षित बचाए गए ओमान के तट पर जहाज में फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मोचन टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर 2 बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी

0: भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मर्चेंट टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर दो बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओएमएससी ओमान ने इसकी पुष्टि करते हुए सभी सदस्यों के अब सुरक्षित होने की जानकारी दी। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मोटोकिन्स एडवेंचर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 महिला बाइकर्स का दल बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा। रायपुर से शुरू हुई इस विशेष अभियान के जरिए महिला जिम्मेदार पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात का संदेश दे रही हैं। इन महिला बाइकर्स को और बाइकर्स कम्युनिटी का सहयोग भी मिल रहा है। ये प्रदेश का पहला महिला बाइकर्स समूह है जो एडवेंचर गतिविधियों के साथ साथ सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चला रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उनके चरण बनाकर उनकी पूजा की गई। इस मंदिर के भीतर लालबाग के राजा के चरण रखे गए हैं। इसके साथ ही मुंबई के इस सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से यहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव की छटा देखने को मिलेगी और उसी को लेकर यहां गणेश प्रतिमा बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 साल पुराने एक स्कूल की। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 साल पुराने स्कूल के छात्र छात्राओं को उनका विद्यालय वापस मिलेगा। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS ने एडीएम कोर्ट में सबूत पेश किए। इसके बाद एडीएम ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में दिया गया अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। आदेश की कॉपी मिलते ही स्कूल की प्रबंधक विद्यालय का ताला खुलवाने पहुंची। उन्होंने उसी पुलिस से मदद मांगी जिसने पहले दिन विपक्षियों को कब्जा दिलाया था, लेकिन मौके पर स्कूल प्रबंधन को पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।

0: ये बहुत गलत चीज है, ये गुंडागर्दी यहाँ पे स्कूल।
1: बोर्ड पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90 वर्ष पुराना स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ। लेकिन लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र छात्राओं की किस्मत पर ही ताला लगा दिया। 90 वर्ष पुराने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं प्रशासन और यूपी सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है।
2: ताला खोलो, ताला खोलो,
3: ताला खोलो,
4: ताला खोलो, ताला खोलो,
5: ताला खोलो, ताला खोलो।
1: लखनऊ में हजरतगंज के नरही इलाके में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग में ताला लगाए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। विद्यालय के बाहर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने नारेबाजी की और 90 वर्ष पुराने इस विद्यालय को बचाने की अपील की।
0: बहुत नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही थी, उस बीच में आकर ये लोग ने गुंडागर्दी करके ताला लगा के चले गए। हम लोग के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है सब फेंक फाक दिए हैं, और जितने भी सारी ट्रॉफी वगैरह हम लोग ने मेहनत करके जीती थी वो सारे फेंक दिए गए और सब पानी में सब भीग गए। बहुत नुकसान हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से हम लोग का हक ना छीने और हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को प्लीज हम लोग का स्कूल खोल दें।
1: 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का ये दर्द है कि उसका हक न छीना जाए, क्योंकि इस स्कूल में इन मजलूमों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे इनका पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इसमें ताला जड़ जाने से इनके सपने भी बिखर गए।
0: स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरा हक ना छीने, प्लीज ये इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और मेरा स्कूल मुझे वापस दिला दिया जाए।
1: 90 वर्ष पुराने इस सरकारी स्कूल की प्रबंधिका बताती हैं

0: यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दबंगों ने इनके सपनों पर हथौड़ा चला दिया।
1: सरकारी स्कूल है और ये 90 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निशुल्क है। 9-10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है, वही ली जाती है। 100% रिजल्ट आता है, इंस्पायर अवार्ड में बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की हैं। और 4 तारीख को ADM के एक आदेश के तहत, जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है। उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस मरई चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोछे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला।
0: स्कूल की प्रबंधिका कहती हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ तो स्कूल ही नहीं बच पा रहा है।
1: सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं, बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की। कंप्यूटर सारे तोड़े हैं, लैपटॉप तोड़े हैं, हमारे दस्तावेज जो सरकारी हैं वो सब मैदान में ढेर कर दिए हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें सब मैदान में ढेर हैं, और इतनी बर्बादी की है जिसका हम कह नहीं सकते आपसे कि इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा। हम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई है।
0: आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। विद्यालय की प्रबंधक संतोष रस्तोगी के मुताबिक, करीब 100 साल पहले विद्यालय की भूमि शिक्षा के उद्देश्य से दान में मिली थी। भूमिदाता के निधन के बाद कुछ लोग कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कागजों पर SDM कोर्ट ने विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। 4 जून को विद्यालय में पुलिस की मौजूदगी में ताला लगा दिया गया। आदेश के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनकी आपत्तियों को सुना गया, लिहाजा ADM कोर्ट के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। स्कूल पर ताला लगने से यहां पढ़ाई कर रहे लगभग 250 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है, लिहाजा विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी से दखल देने की मांग की है और कहा है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो उनके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज फुट पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव थमने के कारण कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 394 अंक चढ़कर 73,918 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 119 अंकों की बढ़त के साथ 23,242 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने के बीच मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1,500 रुपए बढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,55,700 रुपए ही रही। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और अमेरिका ईरान के बीच तनाव रुकने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 95.36 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। रोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाया है। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ मुस्कुराने पर।
4: माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और फिलीपींस से सामने आया ये वीडियो इसकी मिसाल बन गया है। तेज भूकंप के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, तब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर अपने शरीर से ढक लिया और हर खतरे को खुद झेलने के लिए तैयार हो गई। माँ की इस साहस और ममता ने लोगों का दिल जीत लिया है। कहते हैं कि अगर भरोसा मजबूत हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसने अपने पिता को पहचानते हुए सीधे उनकी ओर एक बंडल उछाल दिया। खास बात यह है कि बंडल बिना कहीं भटके सीधे पिता के कंधों पर पहुंच गया और उन्होंने भी शानदार अंदाज में कैच पकड़ लिया। महिला का आत्मविश्वास और पिता पुत्री की समझदारी लोगों को खूब भा रही है। भारतीयों की जुगाड़ के किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं और ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। ट्रेन में सीट ना मिलने पर एक यात्री ने आराम से सोने का अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने सीट के नीचे रस्सियों की मदद से झूले जैसा अस्थायी बिस्तर तैयार कर लिया और उसी पर आराम से सो भी गया। इस अनोखे जुगाड़ को देखकर आसपास बैठे यात्री भी हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यस्त सड़कों पर अक्सर लोग अपनी जल्दी में दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन इस वीडियो ने मानवता की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। सड़क पार करने की कोशिश कर रहे एक कुत्ते का एक पैर नहीं था, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी एक शख्स आगे आया और उसने ट्रैफिक को रोककर कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराई। इस संवेदनशील और दयालु व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। मासूमियत से भरी ये प्यारी बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। उसकी चंचल हरकतें, खिलखिलाती हंसी और मासूम चेहरे के भाव हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। कभी वो दौड़ते हुए शरारत करती नजर आती है तो कभी अचानक चौंकने की एक्टिंग कर लोगों को हंसा देती है। उसकी एक एक अदा से बच्चों की सादगी और खुशी झलकती है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसे बार बार देखना पसंद भी कर रहे हैं।
2: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कर्नाटक सरकार के एक बड़े कदम की। ये फैसला नाबालिगों के बीच बढ़ती शराब और तंबाकू की लत को देखते हुए उठाया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में अब पब, बार और क्लब जैसी शराब परोसे जाने वाली जगहों पर नाबालिगों को एंट्री नहीं मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने नाबालिगों के शराब सेवन पर रोक लगाने के लिए पब, बार और क्लब में उम्र की जांच अनिवार्य कर दी है। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने पब, बार और क्लब में बिना आईडी कार्ड के एंट्री और शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शराब परोसने वाले सभी पब और बार को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। इस फैसले का मकसद युवाओं को नशे की लत से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। नए निर्देशों के तहत पब, बार, क्लब और शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट में किसी भी व्यक्ति को शराब परोसने या फिर परिसर में प्रवेश देने से पहले सरकारी पहचान पत्र देखना अनिवार्य होगा। कर्नाटक सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हाल ही में 4000 से ज्यादा युवाओं पर हुई रिसर्च में चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। स्टडी में पाया गया है कि हर 3 में से एक नाबालिग को शराब या फिर तंबाकू की लत लगने का खतरा है। स्टडी के मुताबिक करीब 33% नाबालिगों ने माना कि वो शराब पीते हैं, जबकि लगभग 18% तंबाकू के आदि थे। सबसे डरावनी बात ये सामने आई कि जिन बच्चों ने शराब पीना शुरू किया उनकी औसत उम्र 17 साल थी। कर्नाटक में फिलहाल शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल है। 2023 में इसे घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव चर्चा में आया था, लेकिन सार्वजनिक विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। कर्नाटक में अब नए आदेश के तहत प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया। अगर किसी जगह पर नाबालिगों को शराब परोसने या फिर एंट्री देने की शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है। कर्नाटक सरकार का ये कदम दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण पेश कर सकता है। देश के दूसरे राज्यों में नाबालिगों के बीच नशे की लत पड़ रही। कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
5: लगता है क्लब में माइनर्स के लिए 18 से जो कम के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, उन्हें एंट्री बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और ये ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाई होना चाहिए। रीज़न भी इनके, मैं भी जैसे बहुत बार क्लब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये माइनर्स आते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो कि यूथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिकॉज इंडिया का अगर फ्यूचर की बात करें तो यूथ ही हमारा फ्यूचर है जो कि हमें आगे लेके जा सकता है और जो विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं वो विश्व गुरु हमें बना सकता है। तो इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए जिससे किसी भी माइनर को और या फिर 18 साल से किसी भी बच्चे की उम्र अगर कम है तो उसे क्लब में एंट्री ना मिले, और अगर ऐसा कोई भी बच्चा जाता है तो उसे किसी ना किसी तरह का दंड दिया जाए या फिर मतलब कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं।
6: ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हो रहा, मुझे लगता है हमारे शहर जयपुर में भी हो रहा होगा। और एक चीज़ मुझे और लगती है इसके साथ में, चलो क्लब्स तो हो ही गए वहाँ पर तो चेक नहीं किया जा रहा है, बट बहुत सारे लीकर शॉप ऐसे आए गए जयपुर की जहाँ पर अगर कोई नाबालिग जो है अगर लीकर लेने जा रहा है तो उससे पूछा नहीं जा रहा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कितने साल के, वहाँ पे भी मतलब पैसे दिए और दे दिया जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लब्स में भी बहुत हो रही है और जितने भी वाइन शॉप है हमारे शहर के अंदर वहाँ पर भी ये चीज़ आपको नजर आएगी।
7: ये डिसीजन तो अच्छा है वैसे और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, पर डिपेंड ये करता है कि वो क्या गवर्नमेंट लागू करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, क्योंकि चीज़ें वही होती है कि पॉलिसी आ तो जाती है लेकिन मतलब धरातल पे वो नहीं होती है। पर अच्छा डिसीजन है क्योंकि जितने भी पब और बार और ये सब होते हैं इनमें बिना आईडी के जो 18 से नीचे है जो युवा है वो एंट्री कर चुके होते हैं, कर लेते हैं एंट्री और नशा उनको अपने करियर से दूर लेके जाता है, तो मेरे सबसे अच्छा डिसीजन है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो केसेस हैं वो भी इससे बहुत कम होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो नशे के बाद में वो क्या कर रहे होते हैं। और सिर्फ गवर्नमेंट और पुलिस नहीं, इसमें अगर उनके परिवार वाले भी उनको रोकेंगे इन चीज़ों से तब ये ज़्यादा चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी।
8: तो जो ये रूल बनाया है अभी बेंगलोर में ये बहुत सही रूल है। एक्चुअली 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी है अगर ये किसी भी इस तरह की कोई भी चीज़ कंज्यूम की जा रही है तो कोई भी क्लब है या कोई भी लिकर शॉप है वहाँ पर पहले आइडेंटिटी चेक होनी बहुत ज़रूरी है कि 18 प्लस है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जैसा देख रहे हैं जेंजीज का पता भी नहीं चलता है कि कौन 18 प्लस है कौन 18 प्लस नहीं है। तो अगर इसके बिना अगर एंट्री दे दी जाती है किसी भी क्लब में या उनको लिकर प्रोवाइड करा दी जाती है किसी भी लिकर शॉप से तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है। अगर हम देखें ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल के टाइम पे, और बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी आता है कि बिना आइडेंटिटी चेक के ये एंट्रीज दे दी जाती हैं और भी चीज़ें इस तरह की होती आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है और अच्छा होगा ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया स्पेशली जयपुर में भी ये चीज़ें लागू हो जाए।
2: 12 जून को कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
9: बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर और लक्ष्य पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। धर्मा प्रोडक्शन की नई एक्शन एंटरटेनर फिल्म लग जा गले की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। राज मेहता के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। 3 सितारों की फ्रेश जोड़ी और दमदार एक्शन को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्साह बना हुआ था। अब रिलीज डेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा और तेज हो गई है। मैडॉक फिल्म्स और राजकुमार राव एक बार फिर दर्शकों के लिए दमदार कहानी लेकर आ रहे हैं। बायोग्राफिकल ड्रामा प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश के प्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम के जीवन से प्रेरित इस फिल्म में राजकुमार राव मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। किरदार को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने वजन भी बढ़ाया है। फिल्म में वामिका गब्बी, सिकंदर खेर और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर की नई बायोपिक ड्रामा फिल्म ईथा की रिलीज डेट तय हो गई है। छावा की सफलता के बाद निर्माता दिनेश विजयन और निर्देशक लक्ष्मण उतेकर एक बार फिर साथ आए हैं। ये बोल्ड और इमोशनल फिल्म 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में श्रद्धा कपूर एक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली किरदार निभाती नजर आएंगी। उनके साथ रणदीप हुडा और मोहम्मद जिशान अयूब भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। अर्शद वारसी की आगामी क्राइम कॉमेडी थ्रिलर जीवन बीमा योजना का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है।
10: दीवानी है कौन?
11: हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
10: इसकी लाश को घर क्यों लेकर आ गए?
12: मृतक का नाम
13: जीवन कपूर।
9: अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अर्शद वारसी पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। वो फिल्म में जीवन और भीमा नाम के दो किरदार निभा रहे हैं। कहानी एक कर्ज में डूबे दंपति और बीमा घोटाले से जुड़ी खतरनाक साजिश के इर्द गिर्द घूमती है। स्टार बीम वेंचर्स लिमिटेड के बैनर तले बनी ये फिल्म इस साल के मॉनसून सीजन में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत की आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के नए प्रमोशनल वीडियो में कंगना ने समाज के उन गुमनाम नायकों को सलाम किया है, जो बिना किसी पहचान या सम्मान की उम्मीद के बिना अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। फिल्म में कंगना एक बहादुर नर्स की भूमिका में नजर आएंगी। मनोज टापाडिया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का वितरण पेन मारुधर करेगा। कंगना के अनुसार ये कहानी उन लोगों के साहस और समर्पण को सम्मान देने का प्रयास है, जो संकट में भी डटे रहते हैं।
14: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बेकार पड़ी चीजों का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसकी मिसाल देखनी हो तो आपको श्रीनगर जाना होगा। यहाँ के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पार्क को कबाड़ का इस्तेमाल करके एक नया रूप देने की पहल की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी अच्छा है और देखने में तो आकर्षक लग रहा है।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ हर किसी को लुभाती हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की हसरत यहाँ के प्राकृतिक नजारों के दीदार करने की होती है। श्रीनगर की इन हरी भरी वादियों में अब पहले वेस्ट टू वॉन्डर गार्डन का दीदार करने का मौका भी मिलेगा, जो खूबसूरती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी एक मिसाल है। यहाँ के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पार्क को फ्लोरिकल्चर विभाग ने बेकार चीजों का इस्तेमाल करके एक हरा भरा आकर्षण तैयार किया है, यानी इस पार्क को एक वॉन्डर गार्डन में बदला जा रहा है।
1: आइडिया हमारा इसमें यही है, हाउ टू रीयूज योर मटेरियल जिसे आप डिस्कार्ड करते हैं। गाड़ियों के टायर्स हैं, हमारे पुराने फटे व्हीलबरोज हैं, कुछ पोल्स। हमें बहुत साल पहले यहाँ पे लाइटिंग का एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें कुछ पोल बचे थे, दे वर लाइंग देयर, हमने उनका यूज कर दिया। बैम्बू यूज किया, अपने सीड बिन्स यूज किए, ये सारा स्टफ जो हमारे पास था और कुछ लोगों ने जो घर से भी डोनेट किया उसको भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
0: इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सजाने के लिए बाजार से एक भी नया सामान नहीं खरीदा गया, बल्कि पार्क में दिखने वाली हर कलाकृति और इंस्टॉलेशन को बगीचों और सरकारी दफ्तरों से निकले बेकार और रिजेक्टेड सामानों को रिसाइकल करके बनाया गया है। लकड़ी की ट्रे, टायरों के गमले, स्कल्पचर्स, सभी यहाँ बेहद आकर्षक लग रहे हैं। चाहे गाड़ियाँ हो या फिर टांगा, सभी बेकार पड़ी चीजें अब इस पार्क की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रही हैं।
1: हमारे फॉलन ट्रीज थे डिफरेंट गार्डन्स में, उसको हमने यहाँ लाया, आदों की ट्रेन बनाई, आदों के प्लांटर्स बनाए। आदों का आप देखेंगे कि उनको इंसानी आकार दिया जाएगा और उसमें फूल उगाए जाएंगे, बट दिस इज ऑल डिस्कार्डेड एंड दिस इज ऑल डेडवुड। जो डेडवुड हमारे जो दरख्त गिरे पड़े थे, हमने कोई दरख्त नहीं काटा कहीं, हमने कोई वेस्टेज के अलावा यूज नहीं की कोई चीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई हमारा एक्सपर्ट नहीं है जिसको हमने पैसे दिए हैं।
0: इस पार्क को वेस्ट टू ब्यूटी यानी कबाड़ से कंचन बनाने की थीम पर तैयार किया जा रहा है। गिरे हुए पेड़ जो बेकार पड़े थे उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। खराब पड़ी गाड़ियां जो कहीं धूल फांक रही थी, सभी अब इस पार्क की शोभा बढ़ाती नजर आ रही है, जिनमें फूल खिलाने की तैयारी भी है। यहाँ 1980 के दशक के पुराने लोहे के खंबे, कबाड़ हो चुके ठेले और पुराना बेकार पड़ा एक ट्रैक्टर भी नए रंग रूप के साथ इस पार्क की शान बढ़ा रहा है।
2: जो हमारे पास पुराना स्टॉक था, पुराने वुड्स थे जो खराब हो रहे, जो लोग जलाने के लिए लेते हैं, तो हमने उसको चीजें उसमें बनाए हैं, प्लांटर उसमें बनाए जिसमें हम फूल उगा देंगे, उसमें फूल्स लगाएंगे। हमने ट्रेन एक बनाई उसी वुडन से, उसमें जो वुडन का है उसका टायर भी वुडन का ही है, सो जो ऊपर का है हिस्सा है वो भी वुडन का ही है, उसमें फूल उग जाएंगे। अभी हमने शुरुआत ही की इसके, धीरे धीरे तो ये बढ़ जाएगा। ये टूरिस्ट के लिए भी हमने बनाए दिए, यहाँ के लोगों के लिए भी बनाया कि मैन यहाँ सिटी में हमने बनाया कि जितने यहाँ सिटीज के डाउन टाउन के लोग हैं, जितने कि ये स्पेस उनके लिए बेटर है कि जहाँ निषाद उनका दूर है, जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लुत्फ उठा सकते हैं, इसीलिए हम नए नए नई चीज दे सकते हैं।
0: यहाँ आने वाले हर उम्र के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, उनके हिसाब से यहाँ चीजें सजाई जा रही हैं। बच्चों को यहाँ रखे सामानों के जरिए बीते समय में उनके इस्तेमाल होने के बारे में पता चलेगा, तो कई चीजें बुजुर्गों को अपने बीते दिनों की याद दिलाएंगी।
1: इसमें हमने हर एज ग्रुप का एक वो कंसिडर किया है। हमने हमारे कमिश्नर साहब ने हमें कुछ गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दिलवा दी, मोटर गैराज से दिलवा दिए, क्योंकि अपने ट्रैश के अलावा हमें लगा कि जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक दो गाड़ियाँ भी है, ये पुरानी जीप है जिसमें शायद कोई बच्चा कभी बैठा हो, और कुछ बच्चों ने ये वाली जीप देखी भी नहीं होगी, तो उनके लिए एक अट्रैक्शन है। यहाँ पे हमने टांगा लाया। अक्सर इस पार्क में आप देखते हैं कि सीनियर सिटीजन आते हैं, तो आपस में बहुत बातें बातें भी वो करते हैं मॉर्निंग वॉक के बाद, उनको भी एक वो रिफ्रेश हो जाएगी उनकी मेमोरी की टांगे भी कभी चलते थे। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि ट्रैश यूज करें और एक खूबसूरत सा पार्क लोगों को देखने को मिले इंशाल्लाह।
0: अब कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों को ये वेज टू वंडर गार्डन आकर्षित करेगा ही, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तभी तो सभी फ्लोरिकल्चर विभाग की इस पहल को लेकर अपनी खुशी जता रहे हैं।
3: बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव इनकी तरफ से जो इनने यूज किया है, लाइक इनने वुडन्स जो इनने यूज किया, लाइक इनको टायर्स इनने यूज किया, आपने मतलब लाइक हेरिटेज को जिंदा करने के लिए इनने ये चीजें की है, तो एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है। लाइक इन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने का, जो लोकल से वो भी इससे अट्रैक्ट होंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जो हमारा वेस्टेज मटीरियल्स इनके पास है वो भी यूज हो रहा है सर, लाइक उसमें फ्लावर्स बेड से बना रहे हैं, बाकी चीजें बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनकी तरफ से।
4: जब ऐसी वेस्ट पाइल्स होते थे, वुडन लॉग्स ऐसे साइड में पड़े होते थे, सो इट वॉज क्वाइट ऑड, इट लुक्ड क्वाइट, और थोड़ा सा वो पार्क की जो ब्यूटी होती थी वो उसे खराब हो जाती थी। सो इन्हें जो ये इनिशिएटिव लिया है टू क्रिएट समथिंग गुड लुकिंग आउट ऑफ द वेस्ट, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव।
0: कचरे से सौंदर्य के निर्माण करने की पहल के तहत तैयार किया जा रहा ये पोलो ग्राउंड पार्क अब वंडर गार्डन के रूप में फिर से खुलने के लिए तैयार हो रहा है। इसके इसी साल जुलाई या अगस्त महीने की शुरुआत में जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोबोट कहां संभाल रहे हैं ट्रैफिक? जी आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: मेक्सिको के प्रसिद्ध तटीय शहर अकापुल्को पर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का खतरा मंडरा रहा है। शक्तिशाली तूफान बोरिस के तट से टकराने की आशंका के चलते प्रशासन ने व्यापक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ और समुद्र में करीब 5 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। नदियों के उफान पर आने और भूस्खलन की आशंका भी जताई गई। पिछले विनाशकारी तूफानों को देखते हुए लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब इंसानों के साथ रोबोट भी रोजमर्रा के कामों में नजर आएंगे। चीन के हांगजू शहर में HJ985 नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट परीक्षा केंद्र के बाहर ट्रैफिक संभालते हुए चर्चा में है। ये रोबोट लोगों को रुकने और चलने के संकेत देने के साथ साथ आवाज के जरिए भी निर्देश देता है। इतना ही नहीं, ये परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं भी देता है और लोगों से बेवजह हॉर्न न बजाने की अपील भी करता है। AI टेक्निक से लैस ये रोबोट ट्रैफिक पुलिस की मदद पर काम को आसान बना रहा है। चीन के एक शहर में हाथों से बनाई गई रंग बिरंगी लैम्प डॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इन डॉल्स की खासियत ये है कि ग्राहक इन्हें अपनी पसंद के अनुसार खुद डिजाइन कर सकते हैं। फूलों वाली टोपी, छोटे सजावटी सामान और अलग अलग एक्सेसरीज लगाकर यह डॉल को नया रूप दिया जाता है। दुकान के मालिक अब्दुल्ला एमिरिला की रचनात्मक सोच और मिलनसार व्यवहार भी लोगों को खूब भा रहा है। पर्यटक यहाँ सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव लेने भी पहुँच रहे हैं। अंतरिक्ष से धरती का नजारा हमेशा खास होता है, लेकिन हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने जो दृश्य साझा किया उसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से रिकॉर्ड किए गए टाइम लैप्स वीडियो में दक्षिणी रोशनी यानी अरोरा ऑस्ट्रालिस आसमान में लहराती हुई दिखाई दे रही है। जेसिका मीर ने इसे बेहद भावुक और अद्भुत अनुभव बताया। ये रोशनी सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर बनती है। अंतरिक्ष से दिखने वाला ये नजारा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता।
6: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
8: Jack FM now playing what we want commercial free on TuneIn Premium.
9: What you got for me, Jack?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के।
1: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के रोहित और हार्दिक फिट घोषित। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। दोनों ही खिलाड़ियों को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस मिल गई है और वो जल्दी ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। रोहित और हार्दिक दोनों के वही टीम के साथ जुड़ने की संभावना है। श्रीलंका के दाम्बुला में वनडे ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को हरा दिया। इस मुकाबले में भारत ने श्रीलंका पर 8 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के साथ भारत ए ने 6 विकेट खोकर 277 रन बनाए। 278 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी श्रीलंका ए की पूरी टीम 7 गेंद रहते ही 269 रनों पर सिमट गयी। भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इंडिया ए की ओर से अर्शद खान, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी और विपराज निगम ने 2-2 विकेट झटके। भारत के अंडर 18 हॉकी टीम के गोलकीपर सावन कुमार के जापान से लौटने पर पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। जापान में एशियन हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल जीत कर लौटे सावन का पटना एयरपोर्ट पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जहां बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद थी।
1: आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं ब्लॉग और हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें। हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
6: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1,00,000 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबागशा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।

0: नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके लिए जम्मू से लेकर पहलगाम और बालटाल तक अवैध सुरक्षा चक्र तैयार हो रहा है। यात्रा के हर पड़ाव, हर रास्ते पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जा रहे हैं। अगर यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस और कमांडो टीम कैसे एक्शन में आएगी, आज आपको उसकी एक झलक दिखाएंगे। इसके बाद बात होगी यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों की। आज आपको जम्मू और दूसरे इलाकों में यात्री निवासों की रौनक दिखाएंगे। और आखिर में बात होगी शिव भक्तों को मिली बड़ी सौगात की। अब जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो गई है, यानी जो यात्री रेल मार्ग से सीधे श्रीनगर और वहां से बालटाल जाना चाहेंगे, उनके लिए सफर आसान हो गया है। आज आपको श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन के सफर पर ले चलेंगे। शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए अवैध सुरक्षा चक्र से। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। उधमपुर के रामबन में रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर के आसपास मॉक ड्रिल करके सुरक्षा तैयारियों को जायजा लिया गया है, जिसमें कमांडो, बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने तालमेल बनाकर आतंकी खतरे से निपटने का अभ्यास किया। अमरनाथ यात्रा में इस बार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पहली बार पहचान मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल होगा। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: रेलवे ट्रैक के करीब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, ट्रेन का इंतजार और तभी एक जोरदार धमाका। दो संदिग्ध जमीन पर गिर जाते हैं और फिर सन्नाटा। लेकिन पलक झपकते ही पुलिस की टीम इस जगह को चारों तरफ से घेर लेती है। चंद सेकंड बाद ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन यहां से गुजर जाती है और उसके जाते ही कमांडो एक्शन में आ जाते हैं। किसी भी संभावित खतरे को लेकर मुस्तैद, उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर और नजर दूसरे संदिग्धों की तलाश में। थोड़ी ही देर में बम निरोधी दस्ता पहुंचता है और डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी शुरू होती है। इनके ठीक पीछे पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाल लेती है और संदिग्धों की डेड बॉडी को हटा दिया जाता है।

0: उधर कमांडोज के साथ बम निरोधी दस्ता ऑपरेशन में जुटा है। हर संदिग्ध चीज की छानबीन की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई दूसरा बम वहां मौजूद न हो। पुलिस और सुरक्षा बल के साथ एसडीआरएफ का ये मिला जुला ऑपरेशन ऐसे संभावित खतरों से निपटने के लिए है जो अमरनाथ यात्रा के दौरान सामने आ सकते हैं। उधमपुर के रामबन में ये मॉक ड्रिल बताती है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है।
1: तो जैसे मैंने मेंशन किया, हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी यहाँ पे, मेडिकल एड टीम थी, फिर हमने VDG, ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज को यहाँ पे बुलाया था क्योंकि इससे हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है। RPF और GRP ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टेशन पे, तो उसके अलावा हमने इन सारी एजेंसी जो मैंने अभी जस्ट मेंशन की उनको भी हमने कम्युनिकेट किया था।
0: पिछले साल श्री भक्तों ने अमरनाथ यात्रा में आस्था का रिकॉर्ड बनाया था, इस साल भी कुछ वैसा ही जोश है। और उधर प्रशासन की भी तैयारी पुख्ता है। NDRF, SDRF, रेलवे पुलिस और पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान तालमेल बनाकर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस तरह न सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास हुए अचानक हमले को नाकाम कर दिया गया बल्कि प्लेटफॉर्म पर एक बेंच की आड़ में छिपे दुश्मनों को ढेर भी कर दिया गया। खतरा सिर्फ रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक पर ही नहीं बल्कि उसके आसपास जंगल के इलाकों में भी हो सकता है, इसीलिए अलग अलग एजेंसियों से जुड़े जवानों ने तालमेल के साथ उसकी सघन तलाशी ली। दुश्मन की घेराबंदी के साथ बम को डिफ्यूज किया गया। अमरनाथ की यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसीलिए यात्रा के दोनों रूट्स पर हर दिन सुरक्षा को और पुख्ता बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में भी यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया है जिसके पास एक घना जंगल है और इस जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान इस जंगल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नए पिकेट्स और बंकर्स बनाने की भी तैयारी है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके।
2: पूरा इसको अच्छे से हम अपने क्यूआरटी टीम्स और अपने बंकर्स इस पूरे एरिया में डालेंगे। साथ ही साथ हमने फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट की है कि ये जितना भी बुश वाला एरिया है जिसकी वजह से पिटी लो हुई उसको थोड़ा क्लियर करें।
0: अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा के लिहाज से फुल प्रूफ बनाने के लिए पहली बार मोबाइल ऐप पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐप मौके पर ही सर्विस प्रोवाइडर यानी घोड़े खच्चरों के चालकों या फिर कैब ड्राइवर्स की पहचान और सत्यापन करेगा।
3: देखिए 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आगाज हो रहा है और हर साल की तरह जे एंड के पुलिस ने पूरे जिले में और यात्रा रूट पे होली केव तक जो है चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम कायम किए हुए हैं। इस साल हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने पहचान ऐप नाम की एक सुविधा जारी की हुई है जिसका मकसद यह है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स यात्रा में सहभाग लेते हैं जैसे कि पोनी पिट्टू राइडर्स हो या फिर टैक्सी ड्राइवर्स हो, इन सब की वेरिफिकेशन करके इनको एक QR कोड दिया गया है। ये QR कोड सर्विस प्रोवाइडर्स अपने साथ कैरी करते हैं और कोई भी यात्री, टूरिस्ट या फिर सिक्योरिटी अमले का कोई भी जवान या अफसर जो है इस QR कोड को स्कैन करके ये मुतमिन हो सकता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर एक वेरीफाइड सर्विस प्रोवाइडर है और ये एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है।
0: आस्था के इस मार्ग पर किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पिछले साल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इस बार ऐसे CCTV कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई है। इस सिस्टम की मदद से बिना वक्त गवाए आतंकियों या संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए आंख की रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के आधार पर संदिग्धों की पहचान तुरंत हो जाएगी। इसके अलावा पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 25 एलिवेटेड वॉच टावर्स भी बनाए जा रहे हैं।
3: साथ साथ ही जो है CCTVs की तादाद हमने बढ़ाई है। नुनवन बेस कैंप को पूरी तरीके से जो है CCTV ग्रिड में शामिल किया गया है जिसका कंट्रोल रूम पुलिस पोस्ट नुनवन में एस्टेब्लिश किया गया है। एलिवेटेड वॉच टावर्स की एक नई पहल हमने की हुई है जहां से हाइटेंड सर्विलेंस के लिए हमने पूरे यात्रा रूट में 25 से ज्यादा एलिवेटेड टावर्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। OGWs या टेरर सपोर्टर्स ऐसे अनवांटेड और इलीगल एलिमेंट्स यात्रा परिसर में ना आए और उन पे सर्विलेंस बना रहे उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 140 से ज्यादा सीआरपीएफ, सीएपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ की कंपनीज जो है वो जिले में ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है और इनको जो है पुलिस डिप्लॉय करेगी चप्पे चप्पे पे ताकि यात्रा की सुरक्षा में जो है इजाफा हो सके। साथ ही साथ इस सारी डिप्लॉयमेंट को लाइव चेकिंग करने के लिए हमने एक ऐप डेवलप की हुई है और उसकी मदद से हम पूरी डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल रूम में बैठकर जो है चेक कर सकते हैं। आरएफआईडी की सुविधा भी जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से मुहैया की गई है। साथ ही साथ जेएनके पुलिस की कुछ खास स्पेशलाइज्ड टीम्स जैसे कि मारखोर, स्नो लेपर्ड्स, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, ड्रोन सर्विलेंस टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, केनाइन स्क्वाड्स और एंटी सेबोटाज चेक टीम्स का भी जो है गठन करके इनको ऑलरेडी यात्रा रूट पर तैनात किया गया है। और इस सारी डिप्लॉयमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने मॉक ड्रिल्स और कॉरिडोर प्रोटेक्शन की जो है सुविधा उसको भी अपनाया हुआ है।
0: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक की तैयारी है। खबर है कि गृह मंत्री दिल्ली में 12 जून को एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक भी करेंगे जिसमें सुरक्षा के साथ स्वच्छता, आवास, संचार और मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा होगी। 3 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा के लिए अर्धसैनिक बल की 670 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातार यात्रा के रास्तों का मुआयना कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, आवास, परिवहन और दूसरी सुविधाओं का पहले से बेहतर इंतजाम किया जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: यात्रा शुरू होने से पहले शिव भक्तों को रेलवे से बड़ी सौगात मिल गई है। श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक की जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था अब वो सफर 5 घंटों से भी कम वक्त में तय हो जाता है। जाहिर है कि श्रीनगर से अमरनाथ की यात्रा को ये ट्रेन आसान बनाएगी, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वंदे भारत के सफर पर।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन की आस, आस्था से भरे कदम और अब सफर में पहले से कहीं ज्यादा सुविधा। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों, लंबी दूरी और मौसम की चुनौतियों के बीच अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जम्मू और श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ने बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए यात्रा को नई रफ्तार दे दी। अब रास्ता छोटा लगेगा, समय बचेगा और सफर का रोमांच भी कई गुना बढ़ जाएगा।
1: इस समय हम निकल पड़े हैं श्रीनगर की ओर और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जो श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जाती है वो लग चुकी है। हम भी इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको इस पूरे रेल मार्ग के बारे में जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि वंदे भारत ट्रेन सेवा से किस प्रकार से जम्मू और श्रीनगर के बीच जो दूरी है वो कम हुई है। किसी को अगर श्रीनगर से जम्मू आना हो या जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो अब वंदे भारत ट्रेन को ही पहली प्राथमिकता रखते हैं सभी लोग। तो अब हम इस ट्रेन में सवार होते हैं और इस ट्रेन यात्रा का अनुभव करेंगे हम और साथ ही में यात्रियों से भी हम बात करेंगे।
0: 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस बार श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी राहत वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर आई है। अब जम्मू से श्रीनगर तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा। पहले सड़क के रास्ते लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 10 घंटे का वक्त लगता था। इसके बाद श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते में भी कई घंटे लग जाते थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं।
1: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं।
2: श्रीनगर जा,
1: तो पहली बार वंदे भारत ट्रेन में जा रहे हैं?
2: पहले भी गए हैं।
1: तो कैसा रहा अभी तक आपका अनुभव इस ट्रेन का?
2: अच्छा है, बढ़िया है।
1: तो क्या लगता है इससे जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है?
2: इसमें समय का काफी क्लोज है कि 4 घंटे में लगभग जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाता है और थोड़ा सस्ते में भी हो जाएगा।
1: सस्ते में भी हो, पहले काफी समय लगता?
2: समय तो लगता ही था।
0: वंदे भारत एक्सप्रेस ने जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को समय के लिहाज से काफी कम कर दिया है। ट्रेन में बैठकर यात्री आराम से सफर करते हुए घाटी तक पहुंच सकते हैं। सफर के दौरान खाने पीने की सुविधा के साथ आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सेवा बेहद उपयोगी साबित होगी।
3: क्योंकि देखिए, जैसे लोग पहले जाते थे तो काफी, एक तो समय लगता था, दूसरा कि जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं थोड़ा हिली,
1: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग,
3: जी हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे। एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे यात्रा, इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
0: पहले बड़ी संख्या में लोग फ्लाइट से सीधे श्रीनगर पहुंचते थे, अब देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्री जम्मू पहुंचकर वंदे भारत के जरिए सीधे श्रीनगर जा सकते हैं। अमरनाथ तक जाने के लिए श्रीनगर से रास्ता सीधे सोनमर्ग से जाता है। सड़क मार्ग से ये दूरी 100 किलोमीटर है। सोनमर्ग से बालटाल की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, जहाँ से अमरनाथ गुफा का छोटा रूट है, इसीलिए ज्यादातर यात्री इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।
1: जम्मू से श्रीनगर पहुंचना अब काफ़ी आसान हो गया है। अब अगर हम बात करें तो जम्मू से सीधा श्रीनगर की तरफ जो है वंदे भारत ट्रेन जाती है और 5 घंटे से भी कम अवधि में श्रीनगर पहुंचा जा सकता है। जो श्रद्धालु बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के इच्छुक हैं तो वो जम्मू से वंदे भारत ट्रेन में जो है श्रीनगर पहुँच सकते हैं और फिर श्रीनगर से आगे बालटाल जा सकते हैं। तो उनके लिए काफ़ी ये सुविधाजनक होने जा रहा है कि वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो उनको जो है काफी सुविधा होगी और उनको काफी आसानी होगी इस यात्रा में, क्योंकि सड़क मार्ग से ही अमूमन जो है श्रद्धालु आते हैं जम्मू से श्रीनगर, अगर वो बालटाल मार्ग की तरफ से यात्रा करना चाहते हैं, या जो पारंपरिक पहलगाम जो यात्रा मार्ग है तो उनको पहले अनंतनाग से होके वो फिर पहलगाम जाते हैं और वहां से फिर पारंपरिक पहलगाम का जो यात्रा मार्ग है वहां से वो यात्रा करते हैं। लेकिन जो श्रद्धालु बालतल मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो वो जम्मू से सीधा श्रीनगर जो है 5 घंटे से भी कम अवधि में वंदे भारत ट्रेन में पहुंच सकते हैं और फिर यहाँ श्रीनगर से सड़क मार्ग से वो बालतल पहुँच सकते हैं।
0: वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और खासियत ये भी है कि पूरे रास्ते में यात्रियों को भूस्खलन, ट्रैफिक जाम या फिर खराब मौसम की वजह से सड़क मार्ग पर होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय उन्हें कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच आरामदायक सफर का अनुभव होगा। इस रेल मार्ग का सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज है। रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना ये पुल इंजीनियरिंग का शानदार नमूना माना जाता है। नदी की सतह से 359 मीटर ऊंचा ये पुल आइफल टावर से भी अधिक ऊंचाई रखता है। इस पुल से गुजरते समय यात्रियों को रोमांच का अनुभव होगा।
1: कहाँ के रहने वाले?
4: रामपुर के। रामपुर यूपी,
1: उत्तर प्रदेश।
4: जी,
1: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
4: जी घूमने जा
1: रहे। पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
4: नहीं, जा चुके हैं।
1: पहले भी जा चुके हैं तो इस बार तो अनुभव अलग है। वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं?
4: फैमिली भी है साथ में। फैमिली भी है साथ में।
1: अच्छा, परिवार के साथ है तो कैसा अनुभव है इस बार?
4: बढ़िया।
1: तो आपको क्या लगता है, जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
4: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है?
1: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
5: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
1: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
4: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है।
1: भोजन बढ़िया है,
4: कोई कमी नहीं है।
0: इस पुल से गुजरते समय यात्रियों को रोमांचक अनुभव होगा। ट्रेन के संचालन से एक बार में बड़ी संख्या में लोग सफर कर पाएंगे। सुबह और दोपहर में दोनों दिशाओं से चलने वाली ट्रेन सेवाओं के जरिए हजारों यात्री जम्मू और श्रीनगर के बीच आवाजाही करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेमी हाई स्पीड और हर मौसम में चलने वाली ये ट्रेन क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ लोगों की आवाजाही भी आसान हुई है, जिसका लाभ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। अमरनाथ यात्रा हमेशा से श्रद्धा, समर्पण और कठिन तपस्या का प्रतीक रही है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु हर साल कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक होने जा रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: अमरनाथ यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को कर्ज में फंसा देते हैं? कौन सी स्थितियों में व्यक्ति कर्ज कभी चुका नहीं पाता? और कौन से उपाय करने पर बड़े से बड़ा कर्ज शांत हो जाता है? कर्ज का ज्योतिष में क्या है मामला, क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: Good news today.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। जून को नैनीताल के कैची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। मुंबई में लाल बागचा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत। आज हुई चरणों की पूजा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: उत्तराखंड में पूरे धूमधाम के साथ जारी है चारधाम यात्रा। तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़कर हुई 32 लाख के पार। केदारनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़। अब तक 11 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे 22,635 श्रद्धालु। अब तक 9,97,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी यात्रियों से गुजार। अब तक 11 लाख से अधिक भक्तों ने किया मां का दर्शन, लिया आशीर्वाद। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में आज 4,020 यात्री पहुंचे। इस साल अब तक 69,860 श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में टेक चुके हैं मत्था। बापा के करोड़ों भक्तों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। मुंबई में लाल बागचा राजा की प्रतिमा बनाने की हुई शुरुआत। आज हुई चरणों की पूजा। लाल बाग के राजा की मूर्ति धीरे धीरे लेगी आकार। गणेश उत्सव के पहले पूरी तरह तैयार हो जाएगी भव्य प्रतिमा। इस साल 14 सितंबर को शुरू होगा गणेश उत्सव। 24 सितंबर तक कुल 10 दिन तक मनाया जाएगा महापर्व। लालबाग के राजा को माना जाता है मन्नतों का राजा। भक्तों को है विश्वास, पूरी होती है सच्चे मन से मांगी हर मुराद। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी। दिल्ली में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना। उमस और गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। उत्तराखंड में मानसून को लेकर सरकार अलर्ट। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। राजस्थान में बढ़ी गर्मी। श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर। 45.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान के 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के संभाग में सबसे अधिक असर। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून को केरल में दे सकता है दस्तक। दे चुका है दस्तक, लेकिन उत्तर भारत पहुंचने में अभी लगेगा समय। मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना। केरल के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े हिस्सों तक पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है मानसून। देश के पहाड़ी राज्यों को फिर मिलेगी गर्मी से राहत। 11 जून से सक्रिय होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पहाड़ों और मैदान में दिखेगा असर। हैदराबाद में हुआ मूसलाधार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए समर कैंप का किया आयोजन। सेल्फ डिफेंस के साथ मुश्किल हालात से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। गर्मी की छुट्टियों में 12 दिन के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन। बच्चियों और महिलाएं बढ़ चढ़ कर ले रही हिस्सा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट वॉर फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस विंग को दे रही है ट्रेनिंग। आत्मविश्वास और साहस का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग में खाली हाथ से बचाव के टिप्स दिए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर रोजमर्रा की चीजों को सुरक्षा के हथियार बनाने का पढ़ाया जा रहा पाठ। प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन की पहल का असर। महिलाओं की सुरक्षा हुई चाकचौबंद। फोन कॉल के बुलावे पर मदद करने पहुंच जाती है पुलिस। गृहमंत्री अमित शाह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लैंड पॉट मैनेजमेंट सिस्टम किया लॉन्च। लैंड पॉट्स पर कामकाज को आधुनिक और बेहतर बनाना मकसद। तमिलनाडु सरकार की शानदार पहल। सीएम विजय ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंगापैन स्पेशल टास्क फोर्स का किया उद्घाटन। गुवाहाटी पहुंचा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डेलीगेशन से की मुलाकात। यूपी में मुरादाबाद के डीएम कलेक्ट्रेट सभागार में कुर्सी पर बैठे बैठे योग करते देखे, 5 मिनट के योग ब्रेक का दिया गया संदेश। डीएम के साथ अधिकारी और योग संस्थाओं के प्रतिनिधि भी योग करते नजर आए, 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे तिरुपति, तिरुमाला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। गाजियाबाद में 5 साल बाद अपने घर की चौखट पर लौटा मालिक, भूमाफिया के कब्जे से मकान छुड़ाकर डीएम ने सौंपी चाबी। रोहित शर्मा को फिटनेस मंजूरी मिली, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चयन के लिए हुए उपलब्ध। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम के कप्तान केतन कुशवाहा का झांसी में पहुंचने पर शानदार स्वागत, लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। जापान में आयोजित एशिया कप में केतन कुशवाहा ने शानदार कप्तानी और दमदार प्रदर्शन से भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। आज दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोशीला टनल का सफल ब्रेक थ्रू, नितिन गडकरी एलजी मनोज सिन्हा ने टनल का किया निरीक्षण। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही जोशीला सुरंग, 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंतिम ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर घटकर करीब 20 मिनट होने का अनुमान। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत होगी खत्म, में सुरंग बनने के से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी मिलेगा लाभ। जोजिला सुरंग से सेना को भी होगा फायदा, सीमा क्षेत्र में सैन्य साजो सामान और रणनीतिक आवागमन में होगी आसानी। आज बड़ा मंगल पर आस्था और भक्ति का उत्सव, बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को हुई थी भगवान श्री राम और बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के लिए कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए गए अर्पित। छठे बड़े मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, फूलों की माला और आभूषण अर्पित किए गए। छठे बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में छठा बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी को दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्तों शामिल। अष्टमी पर मां सिद्धिदात्री का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों सजा मां का दरबार। नैनीताल के कैंची धाम में नीम करौली बाल धाम की स्थापना दिवस की तैयारियां तेज, 15 जून को लगेगा महामेला। भीड़ को नियंत्रित करने की जा रही तैयारियां, कैची धाम के आसपास बनाए जा रहे विशेष ट्रैकिंग रूट और सुगम पैदल मार्ग। श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष बसें, किराया भी हुआ तय, कैची धाम मेले में आसानी से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। उज्जैन में बड़ा मंगल पर भाव अकाल उतार गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त शामिल। का हरिओम जल से किया गया अभिषेक, दूध दही घी शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया पूजा। महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। अयोध्या पहुंची भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय, रामदारा के किए दर्शन पूजन। लखनऊ में श्री रामभद्राचार्य जी की रामकथा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा भगवान राम सभी को जोड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा बलों ने उधमपुर में किया मॉक ड्रिल। अभ्यास में जम्मू और कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड के समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन पर भी मॉक ड्रिल, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, रेलवे ट्रैक, क्वार्टर में तलाशी ली गई। ड्रिल में एनएच 44 पर भूस्खलन से लेकर आतंकवादी हमले का सीन किया गया रिक्रिएट, ऐसे हालात से निपटने की तैयारियां परखी गई। ड्रिल के अलावा विशेष बलों के साथ समन्वय को भी परखा गया, लोगों को भी आपातकाल में बचाव के दिए गए टिप्स। अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस पर भव्य आयोजन, लोगों ने गुरुद्वार में जलाई दी। गद्य दिवस पर लोगों ने की आतिशबाजी, पवित्र सरोवर के आसपास दिखा भव्य और दिव्य नजारा। गुरुता गद्य दिवस पर कीर्तन और प्रार्थना की गूंज से सराबोर हुआ मंदिर परिसर, स्वर्ण मंदिर परिसर दीपमाला और रोशनी जगमगाया। गुरुता गद्य दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, विदेश से भी हजारों संख्या में आए श्रद्धालु। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंची आंध्र प्रदेश की मंत्री एस सविता, विधि विधान से की पूजा पाठ। गोवा के बंबोलिया में 42वें ईईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन, सीएम सावंत हुए शामिल। पटना में भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावंत कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव और खेल प्रतियोगिता का आगाज, सीएम धामिनी की शिरकत। ओमान तट के पास टैंकर और मिसाइल पर हमले के बाद ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों का किया रेस्क्यू, भारत ने दिया धन्यवाद। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान के अंदर से सदर्न लाइट्स की अद्भुत तस्वीरें साझा की, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है जेसिका मीर। शिमला में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ, राज्यपाल ने दीप जलाकर किया समारोह का शुभारंभ। शिमला समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर गायकों ने फिल्मी गीतों से बांधा समा, 5 दिन तक चलेगा शिमला समर फेस्टिवल। समारोह के उद्घाटन समारोह में कलाकारों ने पेश किया मनमोहक नृत्य, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। समर फेस्टिवल के शुभारंभ के मौके पर लोक कला और स्थानीय संस्कृति की भी दिखी झलक, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने किया परफॉर्म। मुजफ्फरपुर की माहिरा और संध्या ने आर्थिक तंगी को मात देकर राज्य स्तरीय विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, राष्ट्र प्रतियोगिता में करेंगी बिहार का प्रतिनिधित्व। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के बीच केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ान रोकी गई। प्रशासन ने ऑपरेटरों को मौसम से जुड़ी चेतावनी का पूरा तरह से पालन करने का दिया निर्देश, कहा हम खराब मौसम की सूचना एडवांस में देकर लोगों को सुरक्षित रखें। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत बनी सबकी पहली पसंद, 1 महीने में लाखों यात्रियों ने किया सफर, मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानी शिकार राइड का ले रहे आनंद। लखनऊ में बनेगा यूनिक कल्चरल म्यूजियम, 3D तकनीक और इंटरेक्टिव गैलरियों में दिखेगी भारतीय जीवन यात्रा की अद्भुत झलक। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी बाग स्टारर फिल्म अल्फा का टीजर, 3 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। रिलीज से पहले ही फिल्म वेलकम टू द जंगल का जलवा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म ने सैटेलाइट पर ओटीटी राइट से कमाए 120 करोड़। 15 साल बाद अक्षय और अनीस बजमी आए एक साथ मुंबई में चल रही फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना की मुख्य भूमिका। फिल्म नो एंट्री के स्वीकर पर बड़ा अपडेट, निर्देशक अनीस बजमी ने दी जानकारी। फिल्म नो एंट्री 2 पर काम शुरू। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी। फिल्म में डबल रोल में दिखेंगे अरशद वारसी। मैक्सिको के अकापुल्को शहर में तूफान बोरिस के तट से टकराने की आशंका। लोगों से जरूरी सामान जमा करके घरों में रहने की अपील। मैक्सिको के मौसम विभाग ने के मुताबिक तूफान की हवाएं 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच रही। प्रशासन ने तटीय इलाकों में सावधानी बढ़ाई। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी। समुद्र में 5 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान। नदियों के उफान पर आने की भी जताई गई आशंका। कई राज्यों में भूस्खलन की भी संभावना। बारिश के खतरे को देखते हुए लोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। पिछले तूफानों ओटिस और जॉन से हुआ था भारी नुकसान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। हियर फ्रॉम द टॉप स्टेशंस लाइक टुडेज हिट्स, क्लासिक रॉक, कॉफी हाउस एंड मोर। Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: चीन के शिनजियांग प्रांत में खास तरह की DIY लैब डॉल इन दिनों पर्यटकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हो रही है। लोग कई कई घंटों तक लाइन में लगकर इस अनोखी डॉल को खरीद रहे हैं। आखिर क्या है इसकी खासियत, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
2: रंग बिरंगी और हाथों से तैयार की गई ये प्यारी लैम्प डॉल अब चीन के इस शहर की नई पहचान बन चुकी है। हर डॉल अलग है और हर डॉल के पीछे है रचनात्मकता की एक खास कहानी। लोकप्रियता का आलम ये है कि इसकी दुकान पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। इस डॉल की सबसे बड़ी खासियत है इसका DIY यानी खुद डिजाइन करो मॉडल। ग्राहक अपनी पसंद के छोटे छोटे फूलों वाले कैप, सजावटी सामान और एक्सेसरीज चुनकर अपनी डॉल को एक अलग पहचान देते हैं। इन डॉल्स को तैयार करते हैं दुकान के मालिक अब्दुल्ला एमिरिला। पिछले करीब एक साल से वो लैम्प डॉल बेच रहे हैं, जबकि DIY डॉल बनाने का काम उन्होंने 2 महीने पहले शुरू किया था।
3: मैंने पिछले साल 28 जून को अपनी दुकान शुरू की थी, तब से मैं लैम्प डॉल बेच रहा हूँ। लेकिन DIY लैम्प डॉल बनाना करीब 2 महीने पहले शुरू किया। मैं रोज सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूँ और रात 8:30 बजे तक दुकान पर ही रहता हूँ।
2: अब्दुल्ला की मेहनत के साथ साथ उनकी मिलनसार शैली भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। पर्यटक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और दुकान पर बिताया गया समय अपने सफर का खास हिस्सा मानते हैं। मुझे ये डॉल इसलिए पसंद है क्योंकि हर डॉल DIY है और बिल्कुल अलग दिखती है। दुकान के मालिक भी बहुत मजाकिया हैं। उनसे बात करके मुझे स्थानीय संस्कृति और मेहमान नवाजी को करीब से महसूस करने का मौका मिला। एक साधारण खिलौने से शुरू हुई ये कहानी अब सांस्कृतिक पर्यटन का नया ट्रेंड बन चुकी है। ये सिर्फ एक यादगार सामान नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे पर्यटक अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। पारंपरिक विरासत और आधुनिक पसंद का ये मेल यहाँ की DIY लैम्प डॉल को एक नया सांस्कृतिक प्रतीक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को। खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
1: दिल्ली समेत NCR में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। गोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह। फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबागशा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्ज की समस्या के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम पर कोई ना कोई कर्ज चढ़ जाता है, हम किसी ना किसी कर्ज में फंस जाते हैं। तो उस कर्ज की समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये हम जानेंगे पंडित जी से विस्तार में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं, आपको आवश्यकता है, तो मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज मत लीजिएगा। हालांकि मंगलवार को अगर आप कर्ज चुकाते हैं, कर्ज का भुगतान करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 10 जून 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:21 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
1: आज हम आपको कर्ज के बारे में बता रहे हैं कि कर्ज आदमी लेता कब है, कर्ज के चक्कर में कब फंस जाता है और कर्ज चुकाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि कौन से ग्रह, कौन सी कुंडली की स्थितियां कर्ज के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए, कुंडली के छठवें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, 6, 11 और 12 इन भावों से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। अगर इन भाव के स्वामी कमजोर हो जाएं या इन भावों में शुभ ग्रह आ जाएं तो कर्जों की स्थिति जीवन में बन जाती है। कुंडली का 12वां भाव अगर ज्यादा मजबूत है, व्यय भाव ज्यादा मजबूत है, तो व्यक्ति सुख सुविधा के लिए कर्ज लेता है। और अगर आयु भाव ज्यादा

0: लिए कर्जा लेता है। जो इनकम का स्वामी है, अगर वो वायु राशि में है या अग्नि राशि में है, तो व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के भी कर्जा लेता है। देखिए, कर्ज लेना आजकल जरूरत है, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास भी नहीं है। तो कर्ज लेके लोग घर बनवाते हैं, वाहन खरीदते हैं, इलाज करवाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हम कर्ज को नकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो मौज मजे के लिए बिना किसी ठोस कारण के कर्जा लेते हैं और बाद में कर्जे में फंसकर उनका जीवन चौपट हो जाता है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव आपको हो सकता है, नए नए दायित्व आपके बढ़ेंगे, धन के निवेश में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, अनाज का दान अगर कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता।
0: देखिए, जरूरत पड़ने पे बहुत सारे लोग कर्ज लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कर्जा पूरी तरह चुक जाता है, कभी कर्जा चुक ही नहीं पाता कभी, और कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता है। क्या स्थितियां होती हैं? दायित्व भाव पर कुंडली का दायित्व होता है छठे स्थान में, कुछ मामलों में सेकंड हाउस में भी होता है, लेकिन होता है मुख्यतः छठवें भाव में। तो दायित्व भाव पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र, अगर इनका शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव दायित्व से अगर संबंध रखे तो कर्जा आसानी से चुक जाता है। मंगल का अगर कर्ज के भाव पर, कर्जों पर प्रभाव हो तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा पाने में काफी कठिनाई होती है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

0: अगर शनि और मंगल दोनों का कर्ज पर प्रभाव हो गया तो एक तो आप कर्जा लेंगे और दूसरे कर्जा चुकाना एक चुनौती होगी, कर्ज नहीं चुक पाएगा। राहु केतु या खराब बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति खूब कर्जे लेता है लेकिन कभी कर्जा चुकाना नहीं चाहता। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इधर का उधर घुमाता रहेगा, कर्जा लेता रहेगा, जीवन बिता देगा। शनि और मंगल का एक साथ अगर कर्ज पर प्रभाव पड़े तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है और कभी कभी ऐसी स्थिति में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। हालांकि देखिए, ऐसी स्थिति के बड़े सारे और कॉम्बिनेशन भी होते हैं, लेकिन होता यह है कि आदमी कर्ज के दलदल में डूब जाता है, चाहता है कर्जा चुकाना लेकिन चुका नहीं पाता, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके प्रयास सफल नहीं होते।
1: और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कारोबार की समस्या हल होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का, और जिसके जवाब पंडित जी उन्हें देते हैं, तो अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का। तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल उनको किसने भेजा है।
0: जी,

0: आशीष तोमर ने हमें लिखा है, नोएडा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1980, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करता हूं लेकिन मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा। आशीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति में अभी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। साल 2027 के अंत तक जा करके आप कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। व्यापार में सुधार का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि अगस्त 2026 के बाद से आपके व्यापार में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को धारण करेंगे तो लाभ होगा।
1: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न हमें अंजलि जी ने लिखा है और अंजलि जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 फरवरी 1989। जन्म का समय सुबह के 7:52, जन्म स्थान है इंदौर। अंजलि जी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके टूट चुका है, क्या भविष्य में मेरे दूसरे विवाह की संभावना बनती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अंजलि जी,

0: व्यक्ति के साथ और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं कि आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक होता जा रहा है, और ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन में हमें क्या सावधानी है जो बरतनी चाहिए।
0: देखिए, अभी के समय में मकान लेना है आपको, गाड़ी खरीदनी है, पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो भी ऐसी स्थितियों में कर्जा लेना पड़ सकता है। तो क्या सावधानी रखें कर्ज के लेन देन में कि कर्ज आसानी से मिले और आसानी से हम कर्ज चुका सकें। देखिए, अपनी कुंडली या हस्त रेखा की जांच पड़ताल करवाइए किसी ज्योतिषी से और तब कर्ज में हाथ डालिएगा। शनिवार और मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए। महीने की 8, 17 या 26 तारीख को भी कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज के पेपर साइन मत करिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्ज के पेपर साइन किए जाएं और कर्ज लिया जाए। कर्ज के पेपर को काले कलम से मत भरिए और कर्ज के पेपर पर आप साइन करने जा रहे हैं, बहुत सारे कागजों पर साइन करना होता है, तो जब साइन की शुरुआत करने जा रहे हैं उस समय मन में 3 बार बोलिए, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, हे प्रभु, तुम्हारी वस्तु है, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। जब कर्ज भी प्रभु का, समर्पण भी प्रभु को, तो कर्ज मिलेगा भी आसानी से और कर्ज चुकेगा भी आसानी से।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: आएं समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कर्ज के बारे में। तो अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज है, हमें किसी का कर्ज चुकाना है, तो इस कर्ज को जल्दी चुकाने के उपाय क्या है, आइए जानते हैं।
0: देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपने जरूरत के लिए कर्ज लिया हो, लेकिन आप कर्जों में फंस गए हो, प्रयास कर रहे हो लेकिन कर्ज न चुक पा रहा हो, तो क्या उपाय करें जिससे जल्दी से जल्दी आप कर्जा चुका सकें? एक नारियल का गोला ले लें, सूखा हुआ नारियल, उसको ऊपर से ढक्कन की तरह काट लें, अंदर चीनी भरें, नारियल का जो टुकड़ा बाहर निकाला था उसको ढक्कन की तरह लगा दें और इसके बाद किसी पेड़ के नीचे जमीन में दबा देंगे शनिवार को किसी भी समय 6 महीने में एक बार ये उपाय कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र या तो पढ़िए रोज शाम के समय, या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़िए सुबह और शाम दोनों समय। हनुमान जी की जिस मूर्ति का चेहरा या मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी दक्षिण मुखी हनुमान जी हो, तो मंगलवार को उनको सिंदूर अर्पित करिए, या अगर आप महिला हैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी को मंगलवार को लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे घर में पूजा के बाद 3 बार शंख बजाइएगा। मोती या ओपल सलाह लेकर धारण करिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्ज के मामले में हनुमान जी की पूजा, मंगल का दान और सात्विक तरीके से रहना, ये विशेष फायदा पहुंचाता है, ऐसा देखा गया है।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, उनका क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण काम में मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना

0: सफलता के योग हैं, घर में शुभ कार्य हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक संबंधों में आपके सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न शांति देवी ने हमें लिखा है और शांति देवी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 11 मार्च 1996, 1996। जन्म का समय शाम के 4:12, जन्म स्थान है गोरखपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शांति जी, आपके पुत्र के विवाह होने का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनका विवाह होगा और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुलाकर मध्यम रहेगा। जब भी विवाह करें कुंडली में संतान पक्ष पर जरूर विचार कर लें, क्योंकि आपके पुत्र की कुंडली में संतान वाले मामले में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने बेटे को एक मोती बनवा करके पहनाएं, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाना बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज के अंतिम सवाल के बारे में, तो पंडित जी आज का चौथा और अंतिम सवाल आप किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न स्नेह लता जी ने हमें लिखा है और स्नेह लता जी हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त 1982, जन्म का समय सुबह के 6:30, जन्म स्थान है बेगूसराय बिहार। ये पूछ रही हैं कि मैं अपना शिक्षा का काम करती हूं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूं, क्या आगे चल करके मैं अपना कोई स्कूल खोल पाऊंगी या अपने काम को बेहतर बना सकूंगी। स्नेहलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से विद्यालय खोलने की संभावना जरूर बनती है, लेकिन उसमें अभी समय है। कुंडली के हिसाब से ज्यादातर संभावना ये बनती है कि अभी आप अपने ट्यूशन के काम को बढ़ाएंगी और बेहतर करेंगी और भविष्य में आप अपना विद्यालय 2028 के बाद खोल पाएंगी। शिक्षा संबंधी काम करना आपकी कुंडली के लिए बिल्कुल बेहतर है। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हमें कर्ज चुकाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन आज की जैसी लाइफ स्टाइल हो गई लोगों की, तो अगर हमें कोई EMI लेना है तो उसे लेने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए?
0: जी देखिए, कर्ज मिलना भी इतना आसान नहीं है कि आप चाहेंगे जब आपको तब कर्ज मिल जाएगा। कर्ज पाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के कर्ज आपको मिलता है। आप फंसे ना फंसे वो बात की बात है। अगर आपकी जेन्युइन जरूरत है, बच्चे की पढ़ाई है, घर का निर्माण है, कोई मेडिकल इशू है और उसके लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपको वास्तव में कर्ज लेने की आवश्यकता है लेकिन कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हर मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। अगर संभव हो तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर या मंदिर में कहीं भी बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और जब पाठ समाप्त हो जाए तब आप प्रार्थना करें कि आपको कर्ज मिल जाए और जो कर्ज मिले वो समय से चुक जाए। लगातार 3 से 5 मंगलवार ये उपाय करिए, आपको कर्ज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
1: जिनका जन्मदिन 10 जून का है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 10 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी, करियर की तमाम रुकावटें दूर होती जाएंगी, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपका दूर स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
1: और वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या हनुमान जी की नियमित पूजा उपासना करने से कर्ज उतर जाता है? देखिए, हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, उनकी उपासना से हर तरह के विघ्न को, हर तरह की बाधा को दूर किया जा सकता है। कर्ज मुक्ति के लिए अगर नियमों के साथ ईमानदारी से हनुमान जी की पूजा की जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है, निश्चित रूप से लाभ होता है।
1: और चलिए जान लेते हैं 10 जून 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 10 जून 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है 7:30 से रात के 9 बजे तक इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 10 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में हम जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा कैसी होती है। आज की गुडलक राशि है कर्क। ये कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उन पढ़ाइयों से लाभ नहीं होता, बाद में अपना काम करने की तरफ जाते हैं। इनको नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ताकि इनको शिक्षा में सफलता मिले।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका खुद का फंसा हुआ धन, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें और रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिले, इसको प्राप्त करने की प्रार्थना करें। और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाइएगा। आपका फंसा हुआ, रुका हुआ, डूबा हुआ धन आपको मिल जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: रंधावा आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी के व्यापारियों के लिए राहत का पैगाम ला रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। वहीं आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी वॉक थ्रू भी मिल गया है। इतिहास रचते हुए जोजिला टनल ने अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टान की दीवार को तोड़ दिया। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से म्यांमार आपस में जुड़ गए हैं। आज गुड न्यूज टुडे आपको न केवल वंदे भारत के जरिए जम्मू टू श्रीनगर के सफर पर लिए चलेगा, बल्कि जोजिला के रास्ते आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर से सीधे लद्दाख, और वो भी 15 मिनट में।
1: इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। आइए लिए चलते हैं।

घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जो जिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद, और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहान आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाई गई, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल की बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ, लगभग अब कश्मीर के गांधरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है, जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद 12 महीने खुला रहेगा। चलिए लद्दाख हो गया, अब कश्मीर चलते हैं।

0: और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका दरअसल गांदरबल में है। अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी। सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी तैयार हो जाएगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोजिला टनल के बाहर मनीष भिधुरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं और जोजिला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघकर कैसे पहाड़ तोड़े जाते हैं उसका उदाहरण है ये टनल जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता

0: तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहाँ खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है, नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आई, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ विला रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जैसे जोजिला ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले सवा महीने से ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है, उतने ही खुश कश्मीर के लोग हैं। और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहाँ पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है, 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। यह संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नज़ारे हैं प्रकृति के और जम्मू से श्रीनगर जाना काफ़ी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज़्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए, श्रीनगर जाना काफ़ी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज़्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए, सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में, चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें, वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक के जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था, अब वो सफर 5 घंटों से भी कम समय में तय हो जाता है। आज इसी सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। विस्तृत सिक्योरिटी चेक के बाद आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए रवाना हो गयी।
1: तो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है और ठीक 1:30 पर ये ट्रेन जो है यहाँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन यहाँ से दौड़ पड़ी है। हालांकि इस ट्रेन का समय था 1:20, लेकिन 10 मिनट ये देरी से निकली है। और जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, इसकी खास बात यही है कि 5 घंटे से भी कम अवधि में ये आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, यानी कि मात्र 4:50 में ये सफर होने जा रहा है। हम भी इसी ट्रेन में सवार हैं।
0: आपको बता दें, हर हफ्ते 6 दिन 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से श्रीनगर का सफर तय करती है। इस सफर में 5 घंटे का समय लगता है। एक ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना होकर सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचती है, फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोपहर 1:20 पर जम्मू से रवाना होकर शाम 6:05 पर श्रीनगर पहुंचती है। डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलकर दोपहर 12:45 पर जम्मू तवी पहुँचती है। हमारा सफर जारी था। जम्मू से निकलने के बाद वंदे भारत का अगला स्टॉप उधमपुर था। यात्री इस आरामदायक सफर में शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे थे।
2: पर जो यात्री हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में अपनी सीट पर जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम?
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है।
4: पारुल शर्मा कहाँ के रहने वाले?
3: मैं सर जम्मू से हूँ।
4: अच्छा, तो आप कश्मीर में काम करते हैं?
3: नहीं सर, मैं घूमने के लिए जा रहा
4: हूँ। घूमने के लिए जा रहे हैं?
3: यस यस।
4: कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस ट्रेन यात्रा का?
3: सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेलवे मंत्रालय का जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो क्योंकि देखिए जैसे लोग पहले जाते थे तो काफ़ी एक तो समय लगता था, दूसरा कई जो रास्ता है पुराना जो बसेस जहाँ से जाती हैं थोड़ा हिली,
4: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग
3: जी हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे। एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
4: अच्छा, आपको लगता है इससे जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा?
3: हाँ जी, बढ़ावा मिलेगा।
4: लगातार यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन आ रहा है, उधमपुर में ये जो ट्रेन है 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस समय जो यात्री हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। जी आप बताइए, आपका नाम?
5: शायान।
4: कहाँ के रहने वाले?
5: रामपुर के। रामपुर यूपी,
4: उत्तर प्रदेश।
5: जी
4: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
5: जी घूमने जा।
4: पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
5: नहीं जा चुके,
4: पहले भी जा चुके। तो इस बार तो अनुभव अलग है, वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं।
5: फैमिली भी है साथ में? फैमिली भी है साथ में।
4: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव है इस बार?
5: बढ़िया।
4: तो आपको क्या लगता है जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
5: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है,
4: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
6: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
4: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
5: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है।
4: भोजन बढ़िया है,
5: कोई कमी नहीं है।
4: और इस रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है, चंद्रभागा नदी पर, जिसको कि चनाब नदी भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है और उसकी ऊंचाई जो है पेरिस के आइफल टावर से भी अधिक है। तो वो एक खासा आकर्षण है इस रेल मार्ग का, और आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग उस विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को देखने भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। मैडम देखिए, पहले हॉट वाटर इसमें डालेंगे, गर्म पानी, और फिर हम सूप का आनंद लेंगे। तो काफ़ी ये आकर्षक ट्रेन यात्रा है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं इस पल के।
7: वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर को काफी हद तक सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं।
4: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है, और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान ना करे किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय आप यहाँ मतलब इस प्रकार की जो पैनल से जगह जगह लगे हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सहायता भी मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, यानी कि जो फर्स्ट एड के समय जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी को कोई चोट अगर लगती है तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन में जो है ये स्पेशलाइज कमांडोज जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तैनात रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर कोच में ये तैनात रहते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही कमांडोज हैं, इनको जो है ख़ास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये रेल मार्ग काफ़ी संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, तो इसीलिए सुरक्षा भी एक चुनौती रहता है।
7: दरअसल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। इस रेल रूट की कई जगह आतंकियों के निशाने पर रही हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेन को हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ही देखती हैं। ट्रेन चलने से पहले एंटी सबोटाज टीम पूरे ट्रैक की जांच करती है। सीसीटीवी सर्विलांस, टनल्स की मॉनिटरिंग और ट्रैक का सैनिटाइजेशन होता है। ट्रेन के अंदर और पूरे रूट पर विशेष आरपीएफ कमांडो कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी की तैनाती रहती है। ब्रिज टनल और USBRL रेलवे लाइन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करते हैं। सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों का जायजा लेने के बीच ही हम उधमपुर पहुंच चुके थे।
4: ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अब सवारी बस देखिए चढ़ रहे हैं। ये उधमपुर है, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला, और उधमपुर में ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है, काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर। तो इसीलिए हम तुरंत ट्रेन में वापस चले जाते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
7: वंदे भारत अपनी मंजिल की तरफ फिर फर्राटा भर चुकी थी। आपको बता दें कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक के इस सफर में रोड ट्रिप की तुलना में 5 से 7 घंटे बचते हैं। बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी।
4: ये देखिए, चंद्रभागा नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए इसकी ऊंचाई रिवर बेड से अगर हम बात करें तो 359 मीटर है, यानी कि पेरिस के आइकॉनिक आइफिल टावर से भी ये ऊंचा रेल पुल है। और यहाँ पर आप मनमोहक दृश्य भी देखिए, ये देखिए, देखिए शानदार तस्वीरें, ये देखिए। यहाँ पर जो तमाम जो यात्रीगण हैं वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। और वहां पर देखिए आप, ये चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, जो कि जम्मू संभाग के यहाँ रियासी जिले में ये जो नदी है, इस समय इसके ऊपर जो ये पुल बना है, यही पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और ये खासा आकर्षण है इस पूरे रेल मार्ग का। जब ये पुल बन रहा था, कई बार हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि बड़ी ही परिश्रम के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने रात दिन यहाँ पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें देखिए, कि नए भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे देश में है। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यात्रीगण हैं, इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है।
7: एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है।
4: भाई साहब, आपने तो अपनी सीट ही मोड़ दी ब्रिज का।
6: हम तो देखने ही आए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये रिवॉल्विंग सीट को एंजॉय करने के लिए ब्रिज देखने।
8: ये जो ब्रिज बना है जो चिनाब रिवर के ऊपर, इसको हम देखने आते हैं। इससे मतलब बाय एयर जाते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं सिर्फ इस चीज को देखने के लिए।
4: कितनी प्रसन्नता है कि आपने इस ब्रिज को
8: देखा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
7: जम्मू तवी से चलकर पहले उधमपुर, फिर कटरा और रियासी होते हुए वंदे भारत अपने अंतिम हाल्ट बनिहाल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, नजारे और बेहतर होते जा रहे थे।
4: जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन आज दोपहर को 1:30 पर निकली थी, अब वो इस समय बनिहाल पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है, और यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट के लिए रुकेगी। और अगर हम इस ट्रेन सेवा की बात करें तो ये जो बनिहाल रेलवे स्टेशन है, ये आखिरी रेलवे स्टेशन होगा जम्मू संभाग का, क्योंकि बनिहाल जो है वो जम्मू संभाग के रामबन ज़िले में आता है। तो ये आखिरी ये रेलवे स्टेशन है और ये आखिरी कस्बा है जम्मू संभाग का। इसके बाद बनिहाल को पार करके फिर कश्मीर घाटी ये ट्रेन प्रवेश कर जाएगी। अब तो आप सीधा वंदे भारत ट्रेन से जम्मू से सीधा श्रीनगर जा सकते हैं, और वो भी मात्र 5 घंटे से भी कम अवधि में। तो क्या क्या कहेंगे?
9: बहुत अच्छी सेवा है सर, ये
8: आम नागरिकों के लिए अच्छी है, आम नागरिकों के लिए तो अच्छी है। मतलब एक सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है, और फिर वो हम जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो दैट्स गुड।
4: अब हम बिल्कुल बस कुछ ही मिनटों बाद कश्मीर घाटी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इस रेल मार्ग से कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ चुका है।
8: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जम्मू से आई वाज एक्साइटेड, और ये व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन से।
7: ट्रेन अब दक्षिण कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ और खूबसूरत वादियों का कैनवस अब यूरोप की खूबसूरती को भी टक्कर दे रहा था। आखिरकार तय समय से कुछ पहले वंदे भारत ट्रेन अपनी अंतिम पड़ाव श्रीनगर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी।
4: इस समय लगभग 6 बज रहा है, यानी कि मात्र 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर हम पहुंच गए। जरा आप कल्पना कीजिए कि जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम जाते हैं, जो खासतौर पर रामबन जिले का जो स्ट्रेच है, वहां पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, पत्थर गिरते हैं। सर्दियों के समय में जब हिमपात भी होता है राजमार्ग पर कई स्थानों पर, कश्मीर घाटी में भी, जम्मू संभाग में भी, तो जो यात्री सड़क मार्ग से जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घंटों उनको प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन अब इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में पहुंचा जाता है। लेकिन ये समय से पहले पहुंच चुकी है ट्रेन, मात्र 4.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुंचे हैं। इस प्रकार से नए भारत की नई तस्वीर उभर रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी हमने आपको दिखाया। तो एक स्पेशल ये कार्यक्रम था, ये एक हमारी तरफ से खास ये प्रस्तुति थी आपके लिए कि जम्मू से श्रीनगर का सफर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा किया और आपको पल पल की जानकारी दी, पूरे ट्रेन के मार्ग की, जो रेल के मार्ग की हमने आपको जानकारी दी और आपको भी अवगत कराया इस रेल मार्ग से और इस वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
10: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
11: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। गोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लाल बागशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा छठे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़ की भी।
21: ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ा मंगल के इस शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में प्रसाद और हनुमान जी के लिए भेंट लेकर पहुंचे भक्तों की लंबी कतारें लग गई और फिर बारी आने पर वो हनुमान जी के दर्शन पूजन कर भक्ति भाव से सराबोर दिखे। हनुमान गढ़ी में छठे बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली को विशेष रूप से मालपुआ का प्रसाद अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था दिखी। उधर प्रयागराज में भी छठे बड़ा मंगलवार पर संगम के तट पर लेटे हनुमान जी दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर के लिए फूल पत्तियों के साथ ही लीची और केले से मंदिर की भव्य सजावट की गयी। इन सब के बीच मंदिर पहुंचने वाले भक्त दर्शन पूजन के साथ ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में भगवान शिव से लेकर माता रानी के दरबार में भी आस्था का मेला लग रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है जहां पुरुषोत्तम मास के मंगलवार पर श्रद्धालुओं को दिव्य छठा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विशेष अवसर पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती में डमरू की ताल पर तालियों की ताल मिलाते हुए श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन का लाभ लिया। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के शुभ अवसर पर माता सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और इस विशेष अवसर पर माता का फूलों से आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला श्रृंगार किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बांदीपुरा में प्रशासन की टीम भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। सुंबल ट्रांजिट कैंप पहुंचकर उपायुक्त ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुंबल ट्रांजिट कैंप के तैयार होने के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियों को परखने का काम चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हथियारों से लैस जवान जहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को लेकर तेजी दिखाते नजर आए तो वहीं उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं जहां 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। 12 जून तक चलने वाले इस समारोह का राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है जिसमें महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती है तो शाम को सुर और संगीत की महफिल सजती है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 1960 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी जो आज भी बदस्तूर जारी है। पर्यटक भी इस फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। लाहौल में एक ऐसा ही पर्यटक चंद्रा नदी के किनारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के बीच जा फंसा। खुद को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाए रखने की जद्दोजहद करते हुए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पर्यटक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और फिर रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कवायद में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
1: और अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी एक मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि देश की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और इसके बाद ये सुरंग दोनों छोर से मिल गई और आर पार खुल गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। यही नहीं, ये टनल पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: जोजिला टनल में हुए इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस टनल ने तरक्की की नई इबारत लिख दी। जोजिला टनल का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सालों का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना ये जोजिला सुरंग आज इसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पटल को जोड़ दिया गया और इसी के साथ कश्मीर से लद्दाख को 12 महीने खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अब इसे जल्दी ही देश को सुपुर्द करने की तैयारी है।
0: सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है।
1: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के 12 महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है।
0: बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीरकर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सुरंग के बनने से उनका सालों पुराना सपना सच होने जा रहा है।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों?
2: बहुत बढ़िया जगह सर, ये बन जाने से बहुत बढ़िया जगह, हमको बढ़िया हो गया जना, आसान हो गया बिल्कुल। बर्फ में बहुत दिक्कत होता है ना, हमको गाड़ी स्लिप करते हैं, बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते हुए?
2: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम है सर, पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा पानी जम जाता है, बहुत बर्फ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए, हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहे होंगे कश्मीर से लद्दाख, कितना अनुभव आपने, कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
3: हैरान कुन देखा, हैरान कुन, बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
4: कारगिल से।
1: कारगिल से, हाँ। कारगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
4: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है।
1: एक ऐसा जोजिला पास जिसके चलते दो बड़े शहर, न कह लिए अब तो दो केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे। एक 13 किलोमीटर की टनल, कुछ सालों की मेहनत, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत वो असंभव हो गया जिसके बारे में सालों पहले शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए कारगिल, लद्दाख, द्रास के लोग जो हैं उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है कि अब कितनी भी मुसीबत हो जाए कम से कम रास्ता तो खुलेगा।
0: लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क इस सुरंग के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही भारतीय सेना और आम नागरिकों को लद्दाख तक हर मौसम में सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। बर्फबारी के कारण लद्दाख का कई माह तक देश से सड़क संपर्क कट जाता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के सोनमर्ग के पास जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में जोजिला सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जोजिला दर्रे को पार करने में पहले जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा।
5: इस वक्त हम जोजिला टनल के बिल्कुल बीचों बीच हैं और हमारी मंजिल है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे, ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए, टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां की तरफ आना चाहते हैं तो आप जोजीला को आपको पास नहीं करना है, इस टनल के बीच से आपका जो ट्रेवल टाइम है जोजीला पास करते हुए 3.5 घंटे लग जाते थे, और जो रस्ते का खतरा वो अलग, और वही समय अब कम होके केवल जो 15 से 20 मिनट में आप यहां से सोनमर्ग साइड से वेस्टर्न पोर्टल से अगर आप आते हैं तो मिनमर्ग जो कि द्रास लद्दाख के काफी करीब है वहां तक पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी। जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जोजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जोजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान, रसद, हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फबारी हो, ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
0: जोजिला टनल का ये ब्रेक थ्रू आखिरी मंजिल नहीं है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद ही पहली गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के लोग जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो गया है। यानी ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही बल्कि ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: सुरक्षित बचाए गए ओमान के तट पर जहाज में फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मर्चेंट टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर 2 बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओएमएससी ओमान ने इसकी पुष्टि करते हुए सभी सदस्यों के अब सुरक्षित होने की जानकारी दी है। 27वें कारगिल विजय दिवस को मनाने को लेकर भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने 4 दिवसीय मोटरबाइक रैली आयोजित की जिसमें 54 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। श्रृंखला से द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल तक आयोजित ये मोटरबाइक रैली जांस्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के मुश्किल रास्तों से होते हुए 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित करीब 572 किलोमीटर की दूरी तय करती है। श्रृंखला से शुरू हुई ये रैली पदुम, कुंभथांग, कारगिल और द्रास से गुजरी और इसका समापन द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मोटोकिन्स एडवेंचर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 महिला बाइकर्स का दल बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा। रायपुर से शुरू हुई इस विशेष अभियान के जरिए महिला जिम्मेदार पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात का संदेश दे रही हैं। इन महिला बाइकर्स को और बाइकर्स कम्युनिटी का सहयोग भी मिल रहा है। ये प्रदेश का पहला महिला बाइकर्स समूह है जो एडवेंचर गतिविधियों के साथ साथ सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चला रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उनके चरण बनाकर उनकी पूजा की गई। इस मंदिर के भीतर लालबाग के राजा के चरण रखे गए हैं। इसके साथ ही मुंबई के इस सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से यहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव की छटा देखने को मिलेगी और उसी को लेकर यहाँ गणेश प्रतिमा बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।
6: और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 साल पुराने एक स्कूल की। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 साल पुराने स्कूल के छात्र छात्राओं को उनका विद्यालय वापस मिलेगा। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षण यानी कि DIOS ने AGM कोर्ट में सबूत पेश किए। इसके बाद AGM ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में दिया गया अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। आदेश की कॉपी मिलते ही स्कूल की प्रबंधक विद्यालय का ताला खुलवाने पहुंची। उन्होंने उसी पुलिस से मदद मांगी जिसने पहले दिन विपक्षियों को कब्जा दिलाया था, लेकिन मौके पर स्कूल प्रबंधन को पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।

0: कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत चीज है, ये गुंडागर्दी यहाँ पे स्कूल में मत दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: हम आपको लिस्ट दे सकते हैं कितनी हमने इंजीनियर बनाई है, कितने हमने डॉक्टर बनाए हैं हिंदी मीडियम होने के बाद, लिस्ट है उन बच्चों की मेरे पास।
2: स्कूल में लगे इस बोर्ड पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90 वर्ष पुराना स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ। लेकिन लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र छात्राओं की किस्मत पर ही ताला लगा दिया। 90 वर्ष पुराने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं प्रशासन और यूपी सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। लखनऊ में हजरतगंज के नरही इलाके में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग में ताला लगाए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। विद्यालय के बाहर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने नारेबाजी की और 90 वर्ष पुराने इस विद्यालय को बचाने की अपील की।
0: बहुत नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही थी, उस बीच में आकर ये लोग ने गुंडागर्दी करके ताला लगा के चले गए। हम लोग के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है सब फेंक फाक दिए हैं, और जितने भी सारी ट्रॉफी वगैरह हम लोग ने मेहनत करके जीती थी वो सारे फेंक दिए गए और सब पानी में सब भीग गए। बहुत नुकसान हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से हम लोग का हक ना छीने और हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को प्लीज हम लोग का स्कूल खोल दें।
2: 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का ये दर्द है कि उसका हक न छीना जाए, क्योंकि इस स्कूल में इन मजलूमों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे इनका पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इसमें ताला जड़ जाने से इनके सपने भी बिखर गए।
0: स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीन। सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरा हक ना छीन, प्लीज ये इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और मेरा स्कूल मुझे वापस दिला दिया जाए।
2: 90 वर्ष पुराने इस सरकारी स्कूल की प्रबंधिका बताती हैं कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दबंगों ने इनके सपनों पर हथौड़ा चला दिया।
3: सरकारी स्कूल है और ये 90 वर्षों से चल रहा है, यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निशुल्क है, 9, 10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वही ली जाती है, 100% रिजल्ट आता है, इंस्पायर अवार्ड ने बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की है और 4 तारीख को एडीएम के एक आदेश के तहत जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है, उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस नरही चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोछे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला।
2: स्कूल की प्रबंधिका कहती हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और यहाँ तो स्कूल ही नहीं बच पा रहा है,
3: सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं, बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की, कंप्यूटर सारे तोड़े हैं, लैपटॉप तोड़े हैं, हमारे दस्तावेज जो सरकारी हैं वो सब मैदान में ढेर कर दिए हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें सब मैदान में ढेर हैं और इतनी बर्बादी की है जिसका हम कह नहीं सकते आपसे कि इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा, हम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई।
2: आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। विद्यालय की प्रबंधक संतोष रस्तोगी के मुताबिक करीब 100 साल पहले विद्यालय की भूमि शिक्षा के उद्देश्य से दान में मिली थी। भूमिदाता के निधन के बाद कुछ लोग कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कागजों पर एसडीएम कोर्ट ने विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। 4 जून को विद्यालय में पुलिस की मौजूदगी में ताला लगा दिया गया। आदेश के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनकी आपत्तियों को सुना गया, लिहाजा एडीएम कोर्ट के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। स्कूल पर ताला लगने से यहां पढ़ाई कर रहे लगभग 250 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है, लिहाजा विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी से दखल देने की मांग की है और कहा है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो उनके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ मुस्कुराने पर।
5: माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और फिलीपींस से सामने आया ये वीडियो इसकी मिसाल बन गया है। तेज भूकंप के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, तब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर अपने शरीर से ढक लिया और हर खतरे को खुद झेलने के लिए तैयार हो गई। माँ की इस साहस और ममता ने लोगों का दिल जीत लिया है। कहते हैं कि अगर भरोसा मजबूत हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसने अपने पिता को पहचानते हुए सीधे उनकी ओर एक बंडल उछाल दिया। खास बात यह है कि बंडल बिना कहीं भटके सीधे पिता के कंधों पर पहुंच गया और उन्होंने भी शानदार अंदाज में कैच पकड़ लिया। महिला का आत्मविश्वास और पिता पुत्री की समझदारी लोगों को खूब भा रही है। भारतीयों की जुगाड़ के किस्से अक्सर चर्चा पे रहते हैं और ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। ट्रेन में सीट ना मिलने पर एक यात्री ने आराम से सोने का अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने सीट के नीचे रस्सियों की मदद से झूले जैसा अस्थायी बिस्तर तैयार कर लिया और उसी पर आराम से सो भी गया। इस अनोखे जुगाड़ को देखकर आसपास बैठे यात्री भी हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यस्त सड़कों पर अक्सर लोग अपनी जल्दी में दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन इस वीडियो ने मानवता की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। सड़क पार करने की कोशिश कर रहे एक कुत्ते का एक पैर नहीं था, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी एक शख्स आगे आया और उसने ट्रैफिक को रोककर कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराई। इस संवेदनशील और दयालु व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। मासूमियत से भरी ये प्यारी बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। उसकी चंचल हरकतें, खिलखिलाती हंसी और मासूम चेहरे के भाव हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। कभी वो दौड़ते हुए शरारत करती नजर आती है तो कभी अचानक चौंकने की एक्टिंग कर लोगों को हंसा देती है। उसकी एक एक अदा से बच्चों की सादगी और खुशी झलकती है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसे बार बार देखना पसंद भी कर रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
7: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
12: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1,00,000 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लाल बादशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।

ढाबा आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी

तो मैं इस समय जोजिला सुरंग के बिल्कुल भीतर हूँ। 13 किलोमीटर का वो रास्ता जो 3 घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जो जिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास से यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद। और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहाना आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाई गई, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल के बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांधरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है, जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद 12 महीने खुला रहेगा। चलिए लद्दाख हो गया, अब कश्मीर चलते हैं।

0: और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका दरअसल गांदरबल में है। अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी। सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मावल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये तमाम लोगों के लिए भी तैयार हो जाएगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोजिला टनल के बाहर मनीष भिदुरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं और जोजिला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघ करके से पहाड़ तोड़े जाते हैं उसका उदाहरण है ये टनल जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहां खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है, नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जैसे जोजिला ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले सवा महीने से ये ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है उतने ही खुश कश्मीर के लोग भी हैं, और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहां पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है, 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नजारे हैं प्रकृति के और जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में, चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक के जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था अब वो सफर 5 घंटों से भी कम समय में तय हो जाता है। आज इसी सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। विस्तृत सिक्योरिटी चेक के बाद आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए रवाना हो गई।
1: तो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है यहां से रवाना हो चुकी है और ठीक 1:30 पर ये ट्रेन जो है यहां जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन यहां से दौड़ पड़ी है। हालांकि इस ट्रेन का समय था 1:20 लेकिन 10 मिनट ये देरी से निकली है। और जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है इसकी खास बात यही है कि 5 घंटे से भी कम अवधि में ये आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, यानी कि मात्र 4:50 में ये सफर होने जा रहा है। हम भी इसी ट्रेन में सवार हैं।
0: आपको बता दें हर हफ्ते 6 दिन 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से श्रीनगर का सफर तय करती है। इस सफर में 5 घंटे का समय लगता है। एक ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना होकर 11:10 पर श्रीनगर पहुंचती है, फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोपहर 1:20 पर जम्मू से रवाना होकर 6:05 पर श्रीनगर पहुंचती है। डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलकर दोपहर 12:45 पर जम्मू तवी पहुंचती है। हमारा सफर जारी था। जम्मू से निकलने के बाद वंदे भारत का अगला स्टॉप उधमपुर था। यात्री इस आरामदायक सफर में शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे थे।
2: पर जो यात्री हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में अपनी सीट पर जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम?
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है।
2: पारुल शर्मा
3: कहाँ के रहने वाले?
2: मैं सर जम्मू से हूँ।
3: अच्छा, तो आप कश्मीर में काम करते हैं?
2: नहीं सर, मैं घूमने के लिए जा रहा
3: हूँ। घूमने के लिए जा रहे हैं?
2: यस यस।
3: कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस ट्रेन यात्रा का?
2: सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेलवे मंत्रालय का जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो क्योंकि देखिए जैसे लोग पहले जाते थे तो काफी एक तो समय लगता था दूसरा कई जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं थोड़ा हिली,
3: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग,
2: जी जी जी जी हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे, एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे यात्रा, इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
3: अच्छा, आपको लगता है इससे जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा?
2: हाँ जी, बढ़ावा मिलेगा।
3: लगातार यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन आ रहा है, उधमपुर में ये जो ट्रेन है 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस समय जो यात्री हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। जी आप बताइए आपका नाम?
4: शायान।
3: कहाँ के रहने वाले?
4: रामपुर के। रामपुर, रामपुर यूपी,
3: उत्तर प्रदेश।
4: जी
3: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
4: जी जी घूमने जा
3: रहे। पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
4: नहीं जा चुके,
3: पहले भी जा चुके। तो इस बार तो अनुभव अलग है, वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं।
4: फैमिली भी है साथ में? फैमिली भी है साथ में।
3: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव है इस बार?
4: बढ़िया।
3: तो आपको क्या लगता है जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
4: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है,
3: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
5: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
3: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
4: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है,
3: भोजन बढ़िया है,
4: कोई कमी नहीं है।
3: और इस रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है, चंद्रभागा नदी पर, जिसको कि चिनाब नदी भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है और उसकी ऊंचाई जो है पेरिस के आइफल टावर से भी अधिक है, तो वो एक खासा आकर्षण है इस रेल मार्ग का। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग उस विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को देखने भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। मैडम देखिए, पहले हॉट वाटर इसमें डालेंगे, गर्म पानी, और फिर हम सूप का आनंद लेंगे। तो काफ़ी ये आकर्षक ट्रेन यात्रा है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं इस पल के।
6: वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर को काफी हद तक सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं।
3: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है, और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान ना करे किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय आप यहाँ मतलब इस प्रकार की जो पैनल से जगह जगह लगे हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सहायता भी मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, यानी कि जो फर्स्ट एड के समय जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी को कोई चोट अगर लगती है तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन में जो है ये स्पेशलाइज कमांडोज जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तैनात रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर कोच में ये तैनात रहते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही कमांडोज हैं, इनको जो है ख़ास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये रेल मार्ग काफ़ी संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, तो इसीलिए सुरक्षा भी एक चुनौती रहता है।
6: दरअसल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। इस रेल रूट की कई जगह आतंकियों के निशाने पर रही हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेन को हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ही देखती हैं। ट्रेन चलने से पहले एंटी सबोटाज टीम पूरे ट्रैक की जांच करती है। सीसीटीवी सर्विलांस, टनल्स की मॉनिटरिंग और ट्रैक का सैनिटाइजेशन होता है। ट्रेन के अंदर और पूरे रूट पर विशेष आरपीएफ कमांडो कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी की तैनाती रहती है। ब्रिज, टनल और यूएसबीआरएल रेलवे लाइन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करते हैं। सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों का जायजा लेने के बीच ही हम उधमपुर पहुंच चुके थे।
3: ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अब सवारी बस देखिए चढ़ रहे हैं। ये उधमपुर है, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और उधमपुर में ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है, काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर, तो इसीलिए हम तुरंत ट्रेन में वापस चले जाते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
6: वंदे भारत अपनी मंजिल की तरफ फिर फराटा भर चुकी थी। आपको बता दें कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक के इस सफर में रोड ट्रिप की तुलना में 5 से 7 घंटे बचते हैं। बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी।
3: ये देखिए, चंद्रभागा नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए इसकी ऊंचाई रिवर बेड से अगर हम बात करें तो 359 मीटर है, यानी कि पेरिस के आइकॉनिक आइफिल टावर से भी ये ऊंचा रेल पुल है। और यहाँ पर आप मनमोहक दृश्य भी देखिए, ये देखिए, देखिए शानदार तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो यात्रीगण हैं वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। और वहां पर देखिए आप, ये चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, जो कि जम्मू संभाग के यहाँ रियासी जिले में ये जो नदी है इस समय इसके ऊपर जो ये पुल बना है, यही पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और ये खासा आकर्षण है इस पूरे रेल मार्ग का। जब ये पुल बन रहा था, कई बार हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि बड़ी ही परिश्रम के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने रात दिन यहाँ पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें देखिए कि नए भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे देश में है। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यात्रीगण हैं इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है।
6: एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है।
3: भाई साहब आपने तो अपनी सीट ही मोड़ दी ब्रिज का।
5: हम तो देखने ही आए हैं यहाँ।
7: अच्छा।
5: हाँ हाँ, सिर्फ ये रिवॉल्विंग सीट को एंजॉय करने के लिए ब्रिज देखने।
8: ये जो ब्रिज बना है जो चिनाब रिवर के ऊपर, इसको हम देखने आते हैं। इससे मतलब बाय एयर जाते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं सिर्फ इस।
9: Oh, hey, Watson.
10: Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
11: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
12: Learn more at APGE.com.
13: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
14: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
15: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। मुंबई में लाल बाग शाहराजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत। आज हुई चरणों की पूजा।
15: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा छठे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़ की भी।
9: ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ा मंगल के इस शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में प्रसाद और हनुमान जी के लिए भेंट लेकर पहुंचे भक्तों की लंबी कतारें लग गई, और फिर बारी आने पर वो हनुमान जी के दर्शन पूजन कर भक्ति भाव से सराबोर दिखे। हनुमान गढ़ी में छठे बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली को विशेष रूप से मालपुआ का प्रसाद अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था दिखी। उधर प्रयागराज में भी छठे बड़ा मंगलवार पर संगम के तट पर लेटे हनुमान जी दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर के लिए फूल पत्तियों के साथ ही लीची और केले से मंदिर की भव्य सजावट की गई। इन सब के बीच मंदिर पहुंचने वाले भक्त दर्शन पूजन के साथ ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में भगवान शिव से लेकर माता रानी के दरबार में भी आस्था का मेला लग रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पुरुषोत्तम मास के मंगलवार पर श्रद्धालुओं को दिव्य छठा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विशेष अवसर पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती में डमरू की ताल पर तालियों की ताल मिलाते हुए श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन का लाभ लिया। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के शुभ अवसर पर माता सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, और इस विशेष अवसर पर माता का फूलों से आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला श्रृंगार किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बांदीपुरा में प्रशासन की टीम भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। सुंबल ट्रांजिट कैंप पहुंचकर उपायुक्त ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुंबल ट्रांजिट कैंप के तैयार होने के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियों को परखने का काम चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हथियारों से लैस जवान जहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को लेकर तेजी दिखाते नजर आए, तो वहीं उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। 12 जून तक चलने वाले इस समारोह का राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती है, तो शाम को सुर और संगीत की महफिल सजती है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 1960 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। पर्यटक भी इस फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। लाहौल में एक ऐसा ही पर्यटक चंद्रा नदी के किनारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था, और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के बीच जा फंसा। खुद को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाए रखने की जद्दोजहद करते हुए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पर्यटक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और फिर रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कवायद में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
7: और अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी एक मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि देश की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और इसके बाद ये सुरंग दोनों छोर से मिल गई और आर पार खुल गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। यही नहीं, ये टनल पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: जोजिला टनल में हुए इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस टनल ने तरक्की की नई इबारत लिख दी। जोजिला टनल का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सालों का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना ये जोजिला सुरंग आज इसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पटल को जोड़ दिया गया और इसी के साथ कश्मीर से लद्दाख को 12 महीने खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अब इसे जल्दी ही देश को सुपुर्द करने की तैयारी है।
0: सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है।
1: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के 12 महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है।
0: बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीरकर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सुरंग के बनने से उनका सालों पुराना सपना सच होने जा रहा है।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों को?
2: बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, ये बन जाने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमको बढ़िया हो गया जना, आसान हो गया बिल्कुल। बर्फ में बहुत दिक्कत होता है ना हमको, गाड़ी स्लिप करते हैं, बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते हुए?
2: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम रहता है सर, पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा पानी जम जाता है, बहुत बर्फ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट वेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए, हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहेंगे कश्मीर से लद्दाख, कितना अनुभव आपने, कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
3: हैरान कुन देखा, हैरान कुन, बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
4: कारगिल से जी।
1: कारगिल से, हाँ। कारगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
4: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है।
1: एक ऐसा जोजिला पास जिसके चलते दो बड़े शहर, न कह लिए अब तो दो केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे। एक 13 किलोमीटर की टनल, कुछ सालों की मेहनत, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत वो असंभव हो गया जिसके बारे में सालों पहले शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए कारगिल, लद्दाख, द्रास के लोग जो हैं उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है कि अब कितनी भी मुसीबत हो जाए कम से कम रास्ता तो खुलेगा।
0: लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क इस सुरंग के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही भारतीय सेना और आम नागरिकों को लद्दाख तक हर मौसम में सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। बर्फबारी के कारण लद्दाख का कई माह तक देश से सड़क संपर्क कट जाता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के सोनमर्ग के पास जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में जोजिला सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो जिला दर्रे को पार करने में पहले जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा।
5: इस वक्त हम जोजिला टनल के बिल्कुल बीचों बीच हैं और हमारी मंजिल है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे, ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए, टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां की तरफ आना चाहते हैं तो आप जोजीला को आपको पास नहीं करना है, इस टनल के बीच से आपका जो ट्रेवल टाइम है जोजीला पास करते हुए 3.5 घंटे लग जाते थे, और जो रस्ते का खतरा वो अलग, और वही समय अब कम होके केवल जो 15 से 20 मिनट में आप यहां से सोनमर्ग साइड से वेस्टर्न पोर्टल से अगर आप आते हैं तो मिनमर्ग जो कि द्रास लद्दाख के काफी करीब है वहां तक पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी। जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जोजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जोजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान, रसद, हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फबारी हो, ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
0: जोजिला टनल का ये ब्रेक थ्रू आखिरी मंजिल नहीं है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद ही पहली गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के लोग जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो गया है। यानी ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही बल्कि ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: सुरक्षित बचाए गए ओमान के तट पर जहाज में फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मर्चेंट टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर 2 बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओएमएससी ओमान ने इसकी पुष्टि करते हुए सभी सदस्यों के अब सुरक्षित होने की जानकारी दी है। 27वें कारगिल विजय दिवस को मनाने को लेकर भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने 4 दिवसीय मोटरबाइक रैली आयोजित की जिसमें 54 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। श्रृंखला से द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल तक आयोजित ये मोटरबाइक रैली जांस्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के मुश्किल रास्तों से होते हुए 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित करीब 572 किलोमीटर की दूरी तय करती है। श्रृंखला से शुरू हुई ये रैली पदुम, कुंभथांग, कारगिल और द्रास से गुजरी और इसका समापन द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मोटोकिन्स एडवेंचर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 महिला बाइकर्स का दल बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा। रायपुर से शुरू हुई इस विशेष अभियान के जरिए महिला जिम्मेदार पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात का संदेश दे रही हैं। इन महिला बाइकर्स को और बाइकर्स कम्युनिटी का सहयोग भी मिल रहा है। ये प्रदेश का पहला महिला बाइकर्स समूह है जो एडवेंचर गतिविधियों के साथ साथ सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चला रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उनके चरण बनाकर उनकी पूजा की गई। इस मंदिर के भीतर लालबाग के राजा के चरण रखे गए हैं। इसके साथ ही मुंबई के इस सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से यहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव की छटा देखने को मिलेगी और उसी को लेकर यहाँ गणेश प्रतिमा बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।
6: और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 साल पुराने एक स्कूल की। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 साल पुराने स्कूल के छात्र छात्राओं को उनका विद्यालय वापस मिलेगा। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS ने AGM कोर्ट में सबूत पेश किए। इसके बाद AGM ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में दिया गया अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। आदेश की कॉपी मिलते ही स्कूल की प्रबंधक विद्यालय का ताला खुलवाने पहुंची। उन्होंने उसी पुलिस से मदद मांगी जिसने पहले दिन विपक्षियों को कब्जा दिलाया था, लेकिन मौके पर स्कूल प्रबंधन को पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।

0: एग्जाम में ये बहुत गलत चीज है, ये गुंडागर्दी यहाँ पे स्कूल में मत दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: हम आपको लिस्ट दे सकते हैं कितनी हमने इंजीनियर बनाई है, कितने हमने डॉक्टर बनाए हैं हिंदी मीडियम होने के बाद, लिस्ट है उन बच्चों की मेरे पास।
2: स्कूल में लगे इस बोर्ड पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90 वर्ष पुराना स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ। लेकिन लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र छात्राओं की किस्मत पर ही ताला लगा दिया। 90 वर्ष पुराने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं प्रशासन और यूपी सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है।
3: ताला खोलो, ताला खोलो,
4: ताला खोलो, ताला खोलो,
5: ताला खोलो, ताला खोलो।
2: लखनऊ में हजरतगंज के नरही इलाके में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग में ताला लगाए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। विद्यालय के बाहर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने नारेबाजी की और 90 वर्ष पुराने इस विद्यालय को बचाने की अपील की।
0: बहुत नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही थी, उस बीच में आकर ये लोग ने गुंडागर्दी करके ताला लगा के चले गए। हम लोग के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है सब फेंक फाक दिए हैं, और जितने भी सारी ट्रॉफी वगैरह हम लोग ने मेहनत करके जीती थी वो सारे फेंक दिए गए हैं, और सब पानी में सब भीग गए। बहुत नुकसान हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से हम लोग का हक ना छीने और हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को प्लीज हम लोग का स्कूल खोल दें।
2: 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का ये दर्द है कि उसका हक न छीना जाए, क्योंकि इस स्कूल में इन मजलूमों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे इनका पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इसमें ताला जड़ जाने से इनके सपने भी बिखर गए।
0: स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरा हक ना छीने, प्लीज ये इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और मेरा स्कूल मुझे वापस दिला दिया जाए।
2: 90 वर्ष पुराने इस सरकारी स्कूल की प्रबंधिका बताती हैं कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दबंगों ने इनके सपनों पर हथौड़ा चला दिया।
6: सरकारी स्कूल है और ये 90 वर्षों से चल रहा है, यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निशुल्क है, 9, 10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वही ली जाती है, 100% रिजल्ट आता है, इंस्पायर अवार्ड ने बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की है, और 4 तारीख को ADM के एक आदेश के तहत जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है, उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस नरही चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोछे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला।
2: स्कूल की प्रबंधिका कहती हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ तो स्कूल ही नहीं बच पा रहा है,
6: सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं, बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की, कंप्यूटर सारे तोड़े हैं, लैपटॉप तोड़े हैं, हमारे दस्तावेज जो सरकारी हैं वो सब मैदान में ढेर कर दिए हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें सब मैदान में ढेर हैं, और इतनी बर्बादी की है जिसका हम कह नहीं सकते आपसे कि इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा, हम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई।
2: आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। विद्यालय की प्रबंधक संतोष रस्तोगी के मुताबिक करीब 100 साल पहले विद्यालय की भूमि शिक्षा के उद्देश्य से दान में मिली थी। भूमिदाता के निधन के बाद कुछ लोग कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कागजों पर SDM कोर्ट ने विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। 4 जून को विद्यालय में पुलिस की मौजूदगी में ताला लगा दिया गया। आदेश के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनकी आपत्तियों को सुना गया, लिहाजा ADM कोर्ट के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। स्कूल पर ताला लगने से यहाँ पढ़ाई कर रहे लगभग 250 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है, लिहाजा विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी से दखल देने की मांग की है और कहा है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो उनके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाया है। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ मुस्कुराने पर।
4: माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और फिलीपींस से सामने आया ये वीडियो इसकी मिसाल बन गया है। तेज भूकंप के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, तब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर अपने शरीर से ढक लिया और हर खतरे को खुद झेलने के लिए तैयार हो गई। माँ की इस साहस और ममता ने लोगों का दिल जीत लिया है। कहते हैं कि अगर भरोसा मजबूत हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसने अपने पिता को पहचानते हुए सीधे उनकी ओर एक बंडल उछाल दिया। खास बात यह है कि बंडल बिना कहीं भटके सीधे पिता के कंधों पर पहुंच गया और उन्होंने भी शानदार अंदाज में कैच पकड़ लिया। महिला का आत्मविश्वास और पिता पुत्री की समझदारी लोगों को खूब भा रही है। भारतीयों की जुगाड़ के किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं और ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। ट्रेन में सीट ना मिलने पर एक यात्री ने आराम से सोने का अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने सीट के नीचे रस्सियों की मदद से झूले जैसा अस्थायी बिस्तर तैयार कर लिया और उसी पर आराम से सो भी गया। इस अनोखे जुगाड़ को देखकर आसपास बैठे यात्री भी हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यस्त सड़कों पर अक्सर लोग अपनी जल्दी में दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन इस वीडियो ने मानवता की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। सड़क पार करने की कोशिश कर रहे एक कुत्ते का एक पैर नहीं था, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी एक शख्स आगे आया और उसने ट्रैफिक को रोककर कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराई। इस संवेदनशील और दयालु व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। मासूमियत से भरी ये प्यारी बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। उसकी चंचल हरकतें, खिलखिलाती हंसी और मासूम चेहरे के भाव हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। कभी वो दौड़ते हुए शरारत करती नजर आती है तो कभी अचानक चौंकने की एक्टिंग कर लोगों को हंसा देती है। उसकी एक एक अदा से बच्चों की सादगी और खुशी झलकती है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसे बार बार देखना पसंद भी कर रहे हैं।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
8: 48, 49, 50.
9: What you doing?
8: Oh, hey Watson, just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
9: No Buzz, we get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
8: More expensive when we're needed most? Weird flex.
9: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
10: Learn more at APGE.com.
11: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
12: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
11: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
12: They score!
11: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
15: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव

0: अलावा आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल, और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी के व्यापारियों के लिए राहत का पैगाम ला रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। वहीं आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी वॉक थ्रू भी मिल गया है। इतिहास रचते हुए जोजिला टनल ने अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टान की दीवार को तोड़ दिया। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मेनमार्ग आपस में जुड़ गए हैं। आज गुड न्यूज टुडे आपको न केवल वंदे भारत के जरिए जम्मू टू श्रीनगर के सफर पर लिए चलेगा, बल्कि जोजिला के रास्ते आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर से सीधे लद्दाख, और वो भी 15 मिनट में।
1: इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। आइए लिए चलते हैं।

तो मैं इस समय जोजिला सुरंग के बिल्कुल भीतर हूँ। 13 किलोमीटर का वो रास्ता जो 3 घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जो जिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद। और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहाना आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाई गई, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल के बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांदरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे,

0: ये बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी तैयार हो जाएगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोशीला टनल के बाहर मनीष भिधुरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं, और जोशीला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघकर कैसे पहाड़ तोड़े जाते हैं, उसका उदाहरण है ये टनल जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहां खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है वो लॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य

0: के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है, नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आई, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ विला रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जैसे जोजिला ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले सवा महीने से ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है, उतने ही खुश कश्मीर के लोग हैं। और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहां पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है। 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नजारे हैं प्रकृति के। और जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में। चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी

0: सात घंटे बचते हैं।
1: बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी।
2: ये देखिए, चंद्रभागा नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए इसकी ऊंचाई रिवर बेड से अगर हम बात करें तो 359 मीटर है, यानी कि पेरिस के आइकॉनिक आइफल टावर से भी ये ऊंचा रेल पुल है। और यहाँ पर आप मनमोहक दृश्य भी देखिए, ये देखिए, देखिए शानदार तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो यात्रीगण हैं वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। और वहां पर देखिए आप, ये चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, जो कि जम्मू संभाग के यहाँ रियासी जिले में ये जो नदी है इस समय इसके ऊपर जो ये पुल बना है, यही पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और ये खासा आकर्षण है इस पूरे रेल मार्ग का। जब ये पुल बन रहा था कई बार हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि बड़ी ही परिश्रम के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने रात दिन यहाँ पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें देखिए कि नए भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे देश में है। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यात्रीगण हैं इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है।
1: एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है।
2: भाई साहब आपने तो अपनी सीट ही मोड़ दी ब्रिज का।
3: हम तो देखने ही आए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ हाँ, सिर्फ ये रिवॉल्विंग सीट को एंजॉय करने के लिए ब्रिज देखने।
4: ये जो ब्रिज बना है जो चिनाब रिवर के ऊपर, इसको हम देखने आते हैं। इससे मतलब बाय एयर जाते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं सिर्फ इस चीज को देखने के लिए।
2: कितनी प्रसन्नता है कि आपने इस ब्रिज को
4: देखा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: जम्मू तवी से चलकर पहले उधमपुर, फिर कटरा और रियासी होते हुए वंदे भारत अपने अंतिम हाल्ट बनिहाल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, नजारे और बेहतर होते जा रहे थे।
2: जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन आज दोपहर को 1:30 पर निकली थी, अब वो इस समय बनिहाल पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट के लिए रुकेगी। और अगर हम इस ट्रेन सेवा की बात करें तो ये जो बनिहाल रेलवे स्टेशन है ये आखिरी रेलवे स्टेशन होगा जम्मू संभाग का, क्योंकि बनिहाल जो है वो जम्मू संभाग के रामबन ज़िले में आता है। तो ये आखिरी ये रेलवे स्टेशन है और ये आखिरी कस्बा है जम्मू संभाग का। इसके बाद बनिहाल को पार करके फिर कश्मीर घाटी ये ट्रेन प्रवेश कर जाएगी। अब तो आप सीधा वंदे भारत ट्रेन से जम्मू से सीधा श्रीनगर जा सकते हैं और वो भी मात्र 5 घंटे से भी कम अवधि में। तो क्या क्या कहेंगे?
5: बहुत अच्छी सेवा है सर, ये अच्छी है आम नागरिकों के लिए, तो अच्छी है। मतलब एक सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है और फिर वो हम जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो दैट्स गुड।
2: अब हम बिल्कुल बस कुछ ही मिनटों बाद कश्मीर घाटी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इस रेल मार्ग से कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ चुका है।
5: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जम्मू से आई वाज एक्साइटेड। और ये व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन से।
1: ट्रेन अब दक्षिण कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ और खूबसूरत वादियों का कैनवास अब यूरोप की खूबसूरती को भी टक्कर दे रहा था। आखिरकार तय समय से कुछ पहले वंदे भारत ट्रेन अपनी अंतिम पड़ाव श्रीनगर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी।
2: इस समय लगभग 6 बज रहा है, यानी कि मात्र 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर हम पहुंच गए। जरा आप कल्पना कीजिए कि जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम जाते हैं, जो खासतौर पर रामबन ज़िले का जो स्ट्रेच है वहाँ पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, पत्थर गिरते हैं। सर्दियों के समय में जब हिमपात भी होता है राजमार्ग पर कई स्थानों पर, कश्मीर घाटी में भी, जम्मू संभाग में भी, तो जो यात्री सड़क मार्ग से जाते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घंटों उनको प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन अब इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मात्र 4:50 में पहुँचा जाता है। लेकिन ये समय से पहले पहुंच चुकी है ट्रेन, मात्र 4.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुंचे हैं। किस प्रकार से नए भारत की नई तस्वीर उभर रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी हमने आपको दिखा।

0: किया। तो ये एक स्पेशल ये कार्यक्रम था, ये एक हमारी तरफ से खास ये प्रस्तुति थी आपके लिए कि जम्मू से श्रीनगर का सफर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा किया और आपको पल पल की जानकारी दी, पूरे ट्रेन के मार्ग की, जो रेल के मार्ग की हमने आपको जानकारी दी और आपको भी अवगत कराया इस रेल मार्ग से और इस वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1,00,000 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लाल बागशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
9: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा छठे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़ की भी।
10: ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ा मंगल के इस शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में प्रसाद और हनुमान जी के लिए भेंट लेकर पहुंचे भक्तों की लंबी कतारें लग गई और फिर बारी आने पर वो हनुमान जी के दर्शन पूजन कर भक्ति भाव से सराबोर दिखे। हनुमान गढ़ी में छठे बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली को विशेष रूप से मालपुआ का प्रसाद अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था दिखी। उधर प्रयागराज में भी छठे बड़ा मंगलवार पर संगम के तट पर लेटे हनुमान जी दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर के लिए फूल पत्तियों के साथ ही लीची और केले से मंदिर की भव्य सजावट की गई। इन सब के बीच मंदिर पहुंचने वाले भक्त दर्शन पूजन के साथ ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में भगवान शिव से लेकर माता रानी के दरबार में भी आस्था का मेला लग रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पुरुषोत्तम मास के मंगलवार पर श्रद्धालुओं को दिव्य छटा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विशेष अवसर पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती में डमरू की ताल पर तालियों की ताल मिलाते हुए श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन का लाभ लिया। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के शुभ अवसर पर माता सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और इस विशेष अवसर पर माता का फूलों से आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला श्रृंगार किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बांदीपुरा में प्रशासन की टीम भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। सुंबल ट्रांजिट कैंप पहुंचकर उपायुक्त ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुंबल ट्रांजिट कैंप के तैयार होने के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियों को परखने का काम चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हथियारों से लैस जवान जहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को लेकर तेजी दिखाते नजर आए, तो वहीं उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। 12 जून तक चलने वाले इस समारोह का राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती है, तो शाम को सुर और संगीत की महफिल सजती है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 1960 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। पर्यटक भी इस फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। लाहौल में एक ऐसा ही पर्यटक चंद्रा नदी के किनारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के बीच जा फंसा। खुद को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाए रखने की जद्दोजहद करते हुए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पर्यटक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और फिर रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कवायद में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
9: और अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी एक मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि देश की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और इसके बाद ये सुरंग दोनों छोर से मिल गई और आर पार खुल गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। यही नहीं, ये टनल पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: जोजिला टनल में हुए इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस टनल ने तरक्की की नई इबारत लिख दी। जोजिला टनल का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सालों का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना ये जोजिला सुरंग आज इसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पटल को जोड़ दिया गया और इसी के साथ कश्मीर से लद्दाख को 12 महीने खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अब इसे जल्दी ही देश को सुपुर्द करने की तैयारी है।
0: सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है।
1: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के 12 महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है।
0: बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीरकर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सुरंग के बनने से उनका सालों पुराना सपना सच होने जा रहा है।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों की?
2: बहुत बढ़िया जगह सर, ये बन जाने से बहुत बढ़िया जगह, हमको
3: बढ़िया हो गया जना, आसान हो गया बिल्कुल।
2: बर्फ में बहुत दिक्कत होता है ना हमको, गाड़ी स्लिप करते हैं, बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते हैं?
2: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम है सर, उधर पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा पानी जम जाता है, बहुत बर्फ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट वेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए, हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहेंगे कश्मीर से लद्दाख, कितना अनुभव आपने, कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
3: हैरान कुन देखा, हैरान कुन, बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
4: कारगिल से जी।
1: कारगिल से, हाँ। कारगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
4: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है।
1: एक ऐसा जोजिला पास जिसके चलते दो बड़े शहर, न कह लिए अब तो दो केंद्र शासित प्रदेश, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे। एक 13 किलोमीटर की टनल, कुछ सालों की मेहनत, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत वो असंभव हो गया जिसके बारे में सालों पहले शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए कारगिल, लद्दाख, द्रास के लोग जो हैं उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है कि अब कितनी भी मुसीबत हो जाए कम से कम रास्ता तो खुलेगा।
0: लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क इस सुरंग के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही भारतीय सेना और आम नागरिकों को लद्दाख तक हर मौसम में सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। बर्फबारी के कारण लद्दाख का कई माह तक देश से सड़क संपर्क कट जाता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के सोनमर्ग के पास जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में जोजिला सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जोजिला दर्रे को पार करने में पहले जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा।
5: इस वक्त हम जोजिला टनल के बिल्कुल बीचों बीच हैं और हमारी मंजिल है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट, अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे, ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए, टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां की तरफ आना चाहते हैं तो आप जोजीला को आपको पास नहीं करना है, इस टनल के बीच से आपका जो ट्रेवल टाइम है जोजीला पास करते हुए 3.5 घंटे लग जाते थे, और जो रस्ते का खतरा वो अलग, और वही समय अब कम होके केवल जो 15 से 20 मिनट में आप यहां से सोनमर्ग साइड से वेस्टर्न पोर्टल से अगर आप आते हैं तो मिनमर्ग जो कि द्रास लद्दाख के काफी करीब है वहां तक पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी। जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जोजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जोजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान, रसद, हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फबारी हो, ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
0: जोजिला टनल का ये ब्रेक थ्रू आखिरी मंजिल नहीं है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद ही पहली गाड़ी यहाँ से गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के लोग जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो गया है। यानी ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही बल्कि ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: सुरक्षित बचाए गए ओमान के तट पर जहाज में फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मर्चेंट टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर दो बचाव जहाज को मोड़कर और मौके पर दो बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओएमएससी ओमान ने इसकी पुष्टि करते हुए सभी सदस्यों के अब सुरक्षित होने की जानकारी दी है। 27वें कारगिल विजय दिवस को मनाने को लेकर भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने 4 दिवसीय मोटरबाइक रैली आयोजित की जिसमें 54 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। श्रृंखला से द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल तक आयोजित ये मोटरबाइक रैली जांस्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के मुश्किल रास्तों से होते हुए 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित करीब 572 किलोमीटर की दूरी तय करती है। श्रृंखला से शुरू हुई ये रैली पदुम, कुंभथांग, कारगिल और द्रास से गुजरी और इसका समापन द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मोटोकिन्स एडवेंचर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 महिला बाइकर्स का दल बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा। रायपुर से शुरू हुई इस विशेष अभियान के जरिए महिला जिम्मेदार पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात का संदेश दे रही हैं। इन महिला बाइकर्स को और बाइकर्स कम्युनिटी का सहयोग भी मिल रहा है। ये प्रदेश का पहला महिला बाइकर्स समूह है जो एडवेंचर गतिविधियों के साथ साथ सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चला रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उनके चरण बनाकर उनकी पूजा की गई। इस मंदिर के भीतर लालबाग के राजा के चरण रखे गए हैं। इसके साथ ही मुंबई के इस सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से यहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव की छटा देखने को मिलेगी और उसी को लेकर यहाँ गणेश प्रतिमा बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।
6: और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 साल पुराने एक स्कूल की। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 साल पुराने स्कूल के छात्र छात्राओं को उनका विद्यालय वापस मिलेगा। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षण यानी कि DIOS ने AGM कोर्ट में सबूत पेश किए। इसके बाद AGM ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में दिया गया अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। आदेश की कॉपी मिलते ही स्कूल की प्रबंधक विद्यालय का ताला खुलवाने पहुंची। उन्होंने उसी पुलिस से मदद मांगी जिसने पहले दिन विपक्षियों को कब्जा दिलाया था, लेकिन मौके पर स्कूल प्रबंधन को पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।

0: डॉक्टर ये बहुत गलत चीज है, ये गुंडागर्दी यहाँ पे स्कूल में मत दिखाएं क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: हम आपको लिस्ट दे सकते हैं कितनी हमने इंजीनियर बनाई है, कितने हमने डॉक्टर बनाए हैं हिंदी मीडियम होने के बाद, लिस्ट है उन बच्चों की मेरे पास।
2: स्कूल में लगे इस बोर्ड पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90 वर्ष पुराना स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ। लेकिन लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र छात्राओं की किस्मत पर ही ताला लगा दिया। 90 वर्ष पुराने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं प्रशासन और यूपी सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। लखनऊ में हजरतगंज के नरही इलाके में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग में ताला लगाए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। विद्यालय के बाहर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने नारेबाजी की और 90 वर्ष पुराने इस विद्यालय को बचाने की अपील की।
0: बहुत नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही थी, उस बीच में आकर ये लोग ने गुंडागर्दी करके ताला लगा के चले गए। हम लोग के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है सब फेंक फाक दिए हैं और जितने भी सारी ट्रॉफी वगैरह हम लोग ने मेहनत करके जीती थी वो सारे फेंक दिए गए हैं और सब पानी में सब भीग गए। बहुत नुकसान हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से हम लोग का हक ना छीने और हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को प्लीज हम लोग का स्कूल खोल दें।
2: 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का ये दर्द है कि उसका हक न छीना जाए, क्योंकि इस स्कूल में इन मजलूमों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिससे इनका पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इसमें ताला जड़ जाने से इनके सपने भी बिखर गए।
0: स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गुंडागर्दी दिखाई गई है, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरा हक ना छीने, प्लीज ये इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और मेरा स्कूल मुझे वापस दिला दिया जाए।
2: 90 वर्ष पुराने इस सरकारी स्कूल की प्रबंधिका बताती हैं कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दबंगों ने इनके सपनों पर हथौड़ा चला दिया।
3: सरकारी स्कूल है और ये 90 वर्षों से चल रहा है, यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निशुल्क है, 9-10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वही ली जाती है, 100% रिजल्ट आता है, इंस्पायर अवार्ड ने बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की हैं और 4 तारीख को एडीएम के एक आदेश के तहत जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है, उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस नरही चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोछे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला।
2: स्कूल की प्रबंधिका कहती हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और यहाँ तो स्कूल ही नहीं बच पा रहा है,
3: सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं, बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की, कंप्यूटर सारे तोड़े हैं, लैपटॉप तोड़े हैं, हमारे दस्तावेज जो सरकारी हैं वो सब मैदान में ढेर कर दिए हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें सब मैदान में ढेर हैं और इतनी बर्बादी की है जिसका हम कह नहीं सकते आपसे कि इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा, हम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई है।
2: आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। विद्यालय की प्रबंधक संतोष रस्तोगी के मुताबिक करीब 100 साल पहले विद्यालय की भूमि शिक्षा के उद्देश्य से दान में मिली थी। भूमिदाता के निधन के बाद कुछ लोग कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कागजों पर एसडीएम कोर्ट ने विद्यालय बंद कर।
4: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाया है। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ मुस्कुराने पर।
5: माँ का प्यार दुनिया की सबसे
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
7: 50.
8: Oh, hey, Watson.
7: Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
9: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
10: Learn more at APGE.com.
11: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
12: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
11: Big 12 Radio.
13: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
11: and
13: down.
11: Talk sports.
14: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
11: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
4: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की यह राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1,00,000 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबागशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी के व्यापारियों के लिए राहत का पैगाम ला रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। वहीं आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी वॉक थ्रू भी मिल गया है। इतिहास रचते हुए जोजिला टनल ने अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टान की दीवार को तोड़ दिया। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मेनमार्ग आपस में जुड़ गए हैं। आज गुड न्यूज टुडे आपको न केवल वंदे भारत के जरिए जम्मू टू श्रीनगर के सफर पर लिए चलेगा, बल्कि जोजिला के रास्ते आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर से सीधे लद्दाख, और वो भी 15 मिनट में।
1: इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। आइए लिए चलते हैं।

तो मैं इस समय जोजिला सुरंग के बिल्कुल भीतर हूँ। 13 किलोमीटर का वो रास्ता जो 3 घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जो जिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद। और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उस पर स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहान आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाए गए, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल की बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांदरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद 12 महीने खुला रहेगा। चलिए लद्दाख हो गया, अब कश्मीर चलते हैं।

0: और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका दरअसल गांदरबल में है। अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी। सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी तैयार हो जाएगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोजिला टनल के बाहर मनीष भिधुरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं और जोजिला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघकर कैसे पहाड़ तोड़े जाते हैं उसका उदाहरण है ये टनल जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहाँ खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है। नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ विला रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जैसे जॉर्जिला ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले सवा महीने से ये ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है, उतने ही खुश कश्मीर के लोग भी हैं। और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था। और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहां पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है, 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नजारे हैं प्रकृति के। और जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है, हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में, चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक के जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था अब वो सफर 5 घंटों से भी कम समय में तय हो जाता है। आज इसी सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। विस्तृत सिक्योरिटी चेक के बाद आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए रवाना हो गई।
1: तो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है यहां से रवाना हो चुकी है और ठीक 1:30 पर ये ट्रेन जो है यहां जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन यहां से दौड़ पड़ी है। हालांकि इस ट्रेन का समय था 1:20, लेकिन 10 मिनट ये देरी से निकली है। और जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, इसकी खास बात यही है कि 5 घंटे से भी कम अवधि में ये आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, यानी कि मात्र 4:50 में ये सफर होने जा रहा है। हम भी इसी ट्रेन में सवार हैं।
0: आपको बता दें हर हफ्ते 6 दिन 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से श्रीनगर का सफर तय करती है। इस सफर में 5 घंटे का समय लगता है। एक ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना होकर 11:10 पर श्रीनगर पहुंचती है, फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोपहर 1:20 पर जम्मू से रवाना होकर 6:05 पर श्रीनगर पहुंचती है। डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलकर दोपहर 12:45 पर जम्मू तवी पहुंचती है। हमारा सफर जारी था। जम्मू से निकलने के बाद वंदे भारत का अगला स्टॉप उधमपुर था। यात्री इस आरामदायक सफर में शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे थे।
2: पर जो यात्री हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में अपनी सीट पर जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम?
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है।
2: पारुल शर्मा कहाँ के रहने वाले?
3: मैं सर जम्मू से हूँ।
2: अच्छा, तो आप कश्मीर में काम करते हैं?
3: नहीं सर, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ।
2: घूमने के लिए जा रहे हैं?
3: यस यस।
2: कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस ट्रेन यात्रा का?
3: सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेलवे मंत्रालय का जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो क्योंकि देखिए जैसे लोग पहले जाते थे तो काफी एक तो समय लगता था दूसरा कहीं जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं, थोड़ा हिली,
4: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग,
3: जी जी जी जी, हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे, एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे यात्रा, इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
4: अच्छा, आपको लगता है इससे जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा?
3: हाँ जी, बढ़ावा मिलेगा।
4: लगातार यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन आ रहा है, उधमपुर में ये जो ट्रेन है 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस समय जो यात्री हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। जी आप बताइए आपका नाम?
5: शायान।
4: कहाँ के रहने वाले?
5: रामपुर के। रामपुर, रामपुर यूपी,
4: उत्तर प्रदेश।
5: जी।
4: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
5: जी जी, घूमने जा
4: रहे। पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
5: नहीं, जा चुके,
4: पहले भी जा चुके। तो इस बार तो अनुभव अलग है, वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं।
5: फैमिली भी है साथ में? फैमिली भी है साथ में।
4: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव है इस बार?
5: बढ़िया।
4: तो आपको क्या लगता है, जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
5: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है,
4: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
6: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
4: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
5: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है,
4: भोजन बढ़िया है,
5: कोई कमी नहीं है।
4: और इस रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है, चंद्रभागा नदी पर, जिसको कि चिनाब नदी भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है और उसकी ऊंचाई जो है पेरिस के आइफल टावर से भी अधिक है, तो वो एक खासा आकर्षण है इस रेल मार्ग का। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग उस विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को देखने भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। मैडम देखिए, पहले हॉट वाटर इसमें डालेंगे, गर्म पानी, और फिर हम सूप का आनंद लेंगे। तो काफ़ी ये आकर्षक ट्रेन यात्रा है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं इस पल के।
7: वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर को काफी हद तक सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं।
4: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है, और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान ना करे किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय आप यहाँ मतलब इस प्रकार की जो पैनल से जगह जगह लगे हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सहायता भी मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, यानी कि जो फर्स्ट एड के समय जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी को कोई चोट अगर लगती है तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन में जो है ये स्पेशलाइज कमांडोज जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तैनात रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर कोच में ये तैनात रहते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही कमांडोज हैं, इनको जो है ख़ास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये रेल मार्ग काफ़ी संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, तो इसीलिए सुरक्षा भी एक चुनौती रहता है।
7: दरअसल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। इस रेल रूट की कई जगह आतंकियों के निशाने पर रही हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेन को हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ही देखती हैं। ट्रेन चलने से पहले एंटी सबोटाज टीम पूरे ट्रैक की जांच करती है। सीसीटीवी सर्विलांस, टनल्स की मॉनिटरिंग और ट्रैक का सैनिटाइजेशन होता है। ट्रेन के अंदर और पूरे रूट पर विशेष आरपीएफ कमांडो कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी की तैनाती रहती है। ब्रिज, टनल और यूएसबीआरएल रेलवे लाइन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करते हैं। सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों का जायजा लेने के बीच ही हम उधमपुर पहुंच चुके थे।
4: ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अब सवारी बस देखिए चढ़ रहे हैं। ये उधमपुर है, जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और उधमपुर में ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है, काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर, तो इसीलिए हम तुरंत ट्रेन में वापस चले जाते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
7: वंदे भारत अपनी मंजिल की तरफ फिर फर्राटा भर चुकी थी। आपको बता दें कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक के इस सफर में रोड ट्रिप की तुलना में 5 से 7 घंटे बचते हैं। बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी।
4: ये देखिए, चंद्रभागा नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए इसकी ऊंचाई रिवर बेड से अगर हम बात करें तो 359 मीटर है, यानी कि पेरिस के आइकॉनिक आइफिल टावर से भी ये ऊंचा रेल पुल है। और यहाँ पर आप मनमोहक दृश्य भी देखिए, ये देखिए, देखिए शानदार तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो यात्रीगण हैं वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। और वहां पर देखिए आप, ये चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, जो कि जम्मू संभाग के यहाँ रियासी जिले में ये जो नदी है इस समय इसके ऊपर जो ये पुल बना है, यही पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और ये खासा आकर्षण है इस पूरे रेल मार्ग का। जब ये पुल बन रहा था, कई बार हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि बड़ी ही परिश्रम के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने रात दिन यहाँ पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें देखिए, कि नए भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे देश में है। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यात्रीगण हैं इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है।
7: एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है।
4: भाई साहब आपने तो अपनी सीट ही मोड़ दी ब्रिज का।
6: हम तो देखने ही आए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, सिर्फ ये रिवॉल्विंग सीट को एंजॉय करने के लिए ब्रिज देखने।
8: ये जो ब्रिज बना है जो चिनाब रिवर के ऊपर, इसको हम देखने आते हैं। इससे मतलब बाय एयर जाते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं सिर्फ इस चीज को देखने के लिए।
4: कितनी प्रसन्नता है कि आपने इस ब्रिज को
8: देखा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
7: जम्मू तवी से चलकर पहले उधमपुर, फिर कटरा और रियासी होते हुए वंदे भारत अपने अंतिम हाल्ट बनिहाल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, नजारे और बेहतर होते जा रहे थे।
4: जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन आज दोपहर को 1:30 पर निकली थी, अब वो इस समय बनिहाल पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट के लिए रुकेगी। और अगर हम इस ट्रेन सेवा की बात करें तो ये जो बनिहाल रेलवे स्टेशन है ये आखिरी रेलवे स्टेशन होगा जम्मू संभाग का, क्योंकि बनिहाल जो है वो जम्मू संभाग के राम

0: आम नागरिकों के लिए तो अच्छी है, मतलब एक सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है और फिर वो हम जैसे लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो दैट्स गुड।
1: अब हम बिल्कुल बस कुछ ही मिनटों बाद कश्मीर घाटी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इस रेल मार्ग से कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ चुका है।
0: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जम्मू से आई वॉज एक्साइटेड, और ये व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन से।
2: ट्रेन अब दक्षिण कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ और खूबसूरत वादियों का कैनवास अब यूरोप की खूबसूरती को भी टक्कर दे रहा था। आखिरकार तय समय से कुछ पहले वंदे भारत ट्रेन अपनी अंतिम पड़ाव श्रीनगर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी।
1: इस समय लगभग 6 बज रहा है, यानी कि मात्र 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर हम पहुंच गए। जरा आप कल्पना कीजिए कि जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम जाते हैं, जो खासतौर पर रामबन जिले का जो स्ट्रेच है, वहां पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, पत्थर गिरते हैं। सर्दियों के समय में जब हिमपात भी होता है राजमार्ग पर कई स्थानों पर, कश्मीर घाटी में भी, जम्मू संभाग में भी, तो जो यात्री सड़क मार्ग से जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घंटों उनको प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन अब इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में पहुंचा जाता है, लेकिन ये समय से पहले पहुंच चुकी है ट्रेन। मात्र 4.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुंचे हैं। इस प्रकार से नए भारत की नई तस्वीर उभर रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी हमने आपको दिखाया। तो एक स्पेशल ये कार्यक्रम था, ये एक हमारी तरफ से खास ये प्रस्तुति थी आपके लिए कि जम्मू से श्रीनगर का सफर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा किया और आपको पल पल की जानकारी दी, पूरे ट्रेन के मार्ग की, जो रेल के मार्ग की हमने आपको जानकारी दी और आपको भी अवगत कराया इस रेल मार्ग से और इस वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
11: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू, अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह, फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल, विश्व योगा संघ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला, बाबा नीम करौली महाराज के पावन धाम में

0: मनाया जाएगा स्थापना दिवस, 1 लाख से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, मुंबई में लालबागशा राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत, आज हुई चरणों की पूजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा छठे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था की भीड़ की भी।
3: ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ा मंगल के इस शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में प्रसाद और हनुमान जी के लिए भेंट लेकर पहुंचे भक्तों की लंबी कतारें लग गई, और फिर बारी आने पर वो हनुमान जी के दर्शन पूजन कर भक्ति भाव से सराबोर दिखे। हनुमान गढ़ी में छठे बड़ा मंगलवार पर बजरंग बली को विशेष रूप से मालपुआ का प्रसाद अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर भीड़ को देखते हुए भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था दिखी। उधर प्रयागराज में भी छठे बड़ा मंगलवार पर संगम के तट पर लेटे हनुमान जी दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस विशेष अवसर के लिए फूल पत्तियों के साथ ही लीची और केले से मंदिर की भव्य सजावट की गई। इन सब के बीच मंदिर पहुंचने वाले भक्त दर्शन पूजन के साथ ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार को लेकर मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में भगवान शिव से लेकर माता रानी के दरबार में भी आस्था का मेला लग रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पुरुषोत्तम मास के मंगलवार पर श्रद्धालुओं को दिव्य छठा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विशेष अवसर पर महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आरती में डमरू की ताल पर तालियों की ताल मिलाते हुए श्रद्धालुओं ने इसके दर्शन का लाभ लिया। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के शुभ अवसर पर माता सिद्धिदात्री के प्राचीन मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, और इस विशेष अवसर पर माता का फूलों से आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला श्रृंगार किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बांदीपुरा में प्रशासन की टीम भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेती नजर आई। सुंबल ट्रांजिट कैंप पहुंचकर उपायुक्त ने यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। सुंबल ट्रांजिट कैंप के तैयार होने के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी तैयारियों को परखने का काम चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उधमपुर के रामनगर में मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हथियारों से लैस जवान जहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को लेकर तेजी दिखाते नजर आए, तो वहीं उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से खोजी अभियान को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां 5 दिवसीय समर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। 12 जून तक चलने वाले इस समारोह का राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पहाड़ी संस्कृति को जानने समझने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। महानाटी इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी पोशाक में एक साथ रिज मैदान पर लोक नृत्य नाटी प्रस्तुत करती है, तो शाम को सुर और संगीत की महफिल सजती है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 1960 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। पर्यटक भी इस फेस्टिवल का पूरा लुत्फ उठाते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग इन दिनों हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। लाहौल में एक ऐसा ही पर्यटक चद्रा नदी के किनारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव के बीच जा फंसा। खुद को एक बड़े पत्थर के सहारे बचाए रखने की जद्दोजहद करते हुए वो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पर्यटक की आवाज सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और फिर रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में फंसे युवकों को बाहर निकालने की कवायद में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
2: और अब बात करते हैं जोजिला टनल की। जी हाँ, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को तोड़कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग इसकी एक मिसाल बन गई। आपको बता दें कि देश की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और इसके बाद ये सुरंग दोनों छोर से मिल गई और आर पार खुल गई। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। यही नहीं, ये टनल पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: जोजिला टनल में हुए इस धमाके ने जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई रफ्तार दे दी। लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली इस टनल ने तरक्की की नई इबारत लिख दी। जोजिला टनल का आखिरी सिरा खुलते ही लद्दाख के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी का सालों का सपना साकार हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मौजूद थे।
1: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना ये जोजिला सुरंग आज इसका ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पटल को जोड़ दिया गया है और इसी के साथ कश्मीर से लद्दाख को बारहों महीने खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि अब इसे जल्दी ही देश को सुपुर्द करने की तैयारी है।
0: सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोरों से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं और बीच में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो उसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है।
1: मैं हूं इस समय लद्दाख के द्रास जिले में, जहां से शुरुआत होती है उस जोजिला सुरंग की जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। आज एक आखिरी विस्फोट के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कारगिल को लद्दाख से साल के बारहों महीने, जम्मू कश्मीर को कारगिल लद्दाख से साल के बारहों महीने जोड़ा जा सकेगा। मौका खास था, अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है।
0: बालटाल से मीना मार्ग तक करीब 14 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू होने से लद्दाख अब पूरे साल सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। इस टनल के निर्माण से पहले सर्दियों के दिनों में लद्दाख पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, लेकिन अब पहाड़ों को चीरकर बनी ये टनल पहाड़ों में हिंदुस्तान के सामर्थ्य का प्रतीक बन गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सुरंग के बनने से उनका सालों पुराना सपना सच होने जा रहा है।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों को?
2: बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, ये बन जाने से बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमको बढ़िया हो गया जना, आसान हो गया बिल्कुल। बर्फ में बहुत दिक्कत होता है ना, हमको गाड़ी स्लिप करते हैं, बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते?
2: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम रहता है सर, पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा पानी जम जाता है, बहुत बर्फ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम रहता है, आने जाने में दिक्कत होता है, पेशेंट वेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए, हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहेंगे कश्मीर से लद्दाख, कितना अनुभव आपने, कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
3: हैरान कुन देखा, हैरान कुन, बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
4: कारगिल से जी।
1: कारगिल से, हाँ। कारगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
4: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर, ये हमारा लाइफ लाइन है।
1: एक ऐसा जोजिला पास जिसके चलते दो बड़े शहर, न कह लिए अब तो दो केंद्र शासित प्रदेश, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे। एक 13 किलोमीटर की टनल, कुछ सालों की मेहनत, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत वो असंभव हो गया जिसके बारे में सालों पहले शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इसीलिए कारगिल, लद्दाख, द्रास के लोग जो हैं उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे रही है कि अब कितनी भी मुसीबत हो जाए कम से कम रास्ता तो खुलेगा।
0: लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क इस सुरंग के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही भारतीय सेना और आम नागरिकों को लद्दाख तक हर मौसम में सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। बर्फबारी के कारण लद्दाख का कई माह तक देश से सड़क संपर्क कट जाता है, लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ऐसा नहीं होगा। कश्मीर के सोनमर्ग के पास जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है, ऐसे में जोजिला सुरंग पूरी होने के बाद लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से सर्दियों के 3 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है। लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके बनने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जोजिला दर्रे को पार करने में पहले जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, वो सफर अब महज 15 मिनट का रह जाएगा।
5: इस वक्त हम जोजिला टनल के बिल्कुल बीचों बीच हैं और हमारी मंजिल है जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है। 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस, और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे, ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए, टूरिज्म हो, सप्लाईज हो, लद्दाख के लोग अब बिल्कुल आराम से बाय रोड यहां से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहां की तरफ आना चाहते हैं तो आप जोजीला को आपको पास नहीं करना है, इस टनल के बीच से आपका जो ट्रेवल टाइम है जोजीला पास करते हुए 3.5 घंटे लग जाते थे, और जो रस्ते का खतरा वो अलग, और वही समय अब कम होके केवल जो 15 से 20 मिनट में आप यहां से सोनमर्ग साइड से वेस्टर्न पोर्टल से अगर आप आते हैं तो मिनमर्ग जो कि द्रास लद्दाख के काफी करीब है वहां तक पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज
5: पहुंच सकते हैं।
0: जोजिला टनल को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये टनल 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इस टनल के निर्माण से सोनमर्ग से मीना मार्ग तक का सफर महज 30 मिनट में तय किया जा सकेगा। पहले सोनमर्ग से मीना मार्ग तक जाने में करीब 2 घंटे लग जाते थे। इससे समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही पर्यटन और व्यापार को नई रफ्तार भी मिलेगी। जोजिला टनल एक तरफ विकास की राह खोल रही है तो दूसरी तरफ सरहदों पर सुरक्षा चक्र को और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। इस टनल के निर्माण से अब पूरे साल सीमा पर सैन्य आवाजाही आसान हो जाएगी। सरहदों तक भारी हथियारों और उपकरणों को पहुंचाने में भी अब कम वक्त लगेगा।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जोजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जोजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान, रसद, हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फबारी हो, ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
0: जोजिला टनल का ये ब्रेक थ्रू आखिरी मंजिल नहीं है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है। उसके बाद ही पहली गाड़ी यहां से गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के लोग जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो गया है। यानी ये सुरंग सिर्फ लद्दाख को जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से ही नहीं जोड़ रही बल्कि ये टनल विकास, रोजगार, आर्थिक प्रगति और व्यापार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोल रही है। जोजिला टनल से मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
6: सुरक्षित बचाए गए ओमान के तट पर जहाज में फंसे 24 भारतीय क्रू मेंबर्स। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: ओमान के मसीरा के पास लंडर डाले मर्चेंट टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उस पर फंसे सभी 24 भारत क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर से संपर्क कर क्रू मेंबर को बचाने के लिए मिलकर काम किया। ओएमएससी ओमान ने पास के एक जहाज को मोड़कर और मौके पर 2 बचाव हेलीकॉप्टर्स भेजकर बचाव अभियान शुरू किया और फिर ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। ओएमएससी ओमान ने इसकी पुष्टि करते हुए सभी सदस्यों के अब सुरक्षित होने की जानकारी दी है। 27वें कारगिल विजय दिवस को मनाने को लेकर भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने 4 दिवसीय मोटरबाइक रैली आयोजित की जिसमें 54 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। शिंकुला से द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल तक आयोजित ये मोटर बाइक रैली जांस्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के मुश्किल रास्तों से होते हुए 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित करीब 572 किलोमीटर की दूरी तय करती है। श्रृंखला से शुरू हुई ये रैली पदुम, कुंभथांग, कारगिल और द्रास से गुजरी और इसका समापन द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान शहीद बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के इको टूरिज्म पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मोटोकिन्स एडवेंचर का आयोजन किया गया, जिसके तहत 18 महिला बाइकर्स का दल बारनवापारा अभ्यारण्य पहुंचा। रायपुर से शुरू हुई इस विशेष अभियान के जरिए महिला जिम्मेदार पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित यातायात का संदेश दे रही हैं। इन महिला बाइकर्स को और बाइकर्स कम्युनिटी का सहयोग भी मिल रहा है। ये प्रदेश का पहला महिला बाइकर्स समूह है जो एडवेंचर गतिविधियों के साथ साथ सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक विषयों को लेकर अभियान चला रहा है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उनके चरण बनाकर उनकी पूजा की गई। इस मंदिर के भीतर लालबाग के राजा के चरण रखे गए हैं। इसके साथ ही मुंबई के इस सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से यहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव की छटा देखने को मिलेगी और उसी को लेकर यहाँ गणेश प्रतिमा बनाने का काम भी शुरू हो रहा है।
6: और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 90 साल पुराने एक स्कूल की। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 साल पुराने स्कूल के छात्र छात्राओं को उनका विद्यालय वापस मिलेगा। लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS ने AGM कोर्ट में सबूत पेश किए। इसके बाद AGM ने विपक्षी पार्टी के पक्ष में दिया गया अपना पिछला आदेश रद्द कर दिया। आदेश की कॉपी मिलते ही स्कूल के प्रबंधक विद्यालय का ताला खुलवाने पहुंची। उन्होंने उसी पुलिस से मदद मांगी जिसने पहले दिन विपक्षियों को कब्जा दिलाया था, लेकिन मौके पर स्कूल प्रबंधन को पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली।

0: मैडम तो ये बहुत गलत चीज है, ये गुंडागर्दी यहाँ पे स्कूल में मत दिखाएं क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: हम आपको लिस्ट दे सकते हैं कितनी हमने इंजीनियर बनाई है, कितने हमने डॉक्टर बनाए हैं हिंदी मीडियम होने के बाद, लिस्ट है उन बच्चों की मेरे पास।
2: स्कूल में लगे इस बोर्ड पर लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 90 वर्ष पुराना स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ स्कूल बचाओ। लेकिन लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला जड़कर छात्र छात्राओं की किस्मत पर ही ताला लगा दिया। 90 वर्ष पुराने इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं प्रशासन और यूपी सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। लखनऊ में हजरतगंज के नरही इलाके में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग में ताला लगाए जाने का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। विद्यालय के बाहर बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने नारेबाजी की और 90 वर्ष पुराने इस विद्यालय को बचाने की अपील की।
0: बहुत नुकसान हो रहा है, अभी तो हम लोग समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही थी, उस बीच में आकर ये लोग ने गुंडागर्दी करके ताला लगा के चले गए। हम लोग के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है सब फेंक फाक दिए हैं और जितने भी सारी ट्रॉफी वगैरह हम लोग ने मेहनत करके जीती थी वो सारे फेंक दिए गए और सब पानी में सब भीग गए। बहुत नुकसान हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग से हम लोग का हक ना छीने और हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को प्लीज हम लोग का स्कूल खोल दें।
2: 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा का ये दर्द है कि उसका हक न छीना जाए, क्योंकि इस स्कूल में इन मजलूमों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है जिससे इनका पढ़ने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन इसमें ताला जड़ जाने से इनके सपने भी बिखर गए।
0: स्कूल में कुछ गुंडे लोग आकर बता रहे हैं कि ये मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, पर ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, बट ये स्कूल मेरा है और यहाँ पे ताला लगा दिया गया, गुंडागर्दी दिखाई गई, तो इस ताला को खोल दे, मुझसे मेरा हक ना छीने। सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझसे मेरा हक ना छीने, प्लीज ये इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और मेरा स्कूल मुझे वापस दिला दिया जाए।
2: 90 वर्ष पुराने इस सरकारी स्कूल की प्रबंधिका बताती हैं कि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, लेकिन दबंगों ने इनके सपनों पर हथौड़ा चला दिया।
3: सरकारी स्कूल है और ये 90 वर्षों से चल रहा है, यहाँ पर निशुल्क शिक्षा दी जाती है, 1 से 10 तक हम लोग चलाते हैं, 1 से 8 तक निशुल्क है, 9-10 की मिनिमम फीस गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है वही ली जाती है, 100% रिजल्ट आता है, इंस्पायर अवार्ड ने बच्चे आते हैं, मेहनत करके तमाम ट्रॉफी इन लोगों ने इकट्ठी की है और 4 तारीख को ADM के एक आदेश के तहत जिसको हमने खुद चैलेंज किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी डेट 2 जुलाई लगी हुई है, उसके बाद भी गर्मी की छुट्टियों में जानकर कि कोर्ट बंद रहेगा, पुलिस नरही चौकी के इंचार्ज शिवम पांडे और एक रामकेश सिपाही, कुछ 3-4 वकील और कम से कम 25 व्हाइट कपड़े लाल लंगोछे वाले और 25-30 लेबर सब आ करके हमारे स्कूल का विध्वंस कर डाला।
2: स्कूल की प्रबंधिका कहती हैं कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और यहाँ तो स्कूल ही नहीं बच पा रहा है,
3: सारे पंखे उतार के फेंक दिए हैं, बहुत ही इन लोगों ने दुर्दशा की है स्कूल की, कंप्यूटर सारे तोड़े हैं, लैपटॉप तोड़े हैं, हमारे दस्तावेज जो सरकारी हैं वो सब मैदान में ढेर कर दिए हैं, लाइब्रेरी की पुस्तकें सब मैदान में ढेर हैं और इतनी बर्बादी की है जिसका हम कह नहीं सकते आपसे कि इतना ज्यादा मुझे दुख हो रहा, हम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में ये गुंडागर्दी हुई।
2: आइए अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। विद्यालय की प्रबंधक संतोष रस्तोगी के मुताबिक करीब 100 साल पहले विद्यालय की भूमि शिक्षा के उद्देश्य से दान में मिली थी। भूमिदाता के निधन के बाद कुछ लोग कथित रूप से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के कागजों पर SDM कोर्ट ने विद्यालय बंद करने का आदेश दिया। 4 जून को विद्यालय में पुलिस की मौजूदगी में ताला लगा दिया गया। आदेश के संबंध में विद्यालय प्रबंधन को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनकी आपत्तियों को सुना गया, लिहाजा ADM कोर्ट के आदेश को सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। स्कूल पर ताला लगने से यहां पढ़ाई कर रहे लगभग 250 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में है, लिहाजा विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी से दखल देने की मांग की है और कहा है कि अगर स्कूल बंद हो गया तो उनके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो जाएंगे। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाया है। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और कुछ मुस्कुराने पर।
5: माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और फिलीपींस से सामने आया ये वीडियो इसकी मिसाल बन गया है। तेज भूकंप के दौरान जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे, तब एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को सीने से लगाकर अपने शरीर से ढक लिया और हर खतरे को खुद झेलने के लिए तैयार हो गई। माँ की इस साहस और ममता ने लोगों का दिल जीत लिया है। कहते हैं कि अगर भरोसा मजबूत हो तो निशाना कभी नहीं चूकता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक महिला ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसने अपने पिता को पहचानते हुए सीधे उनकी ओर एक बंडल उछाल दिया। खास बात ये है कि बंडल बिना कहीं भटके सीधे पिता के कंधों पर पहुंच गया और उन्होंने भी शानदार अंदाज में कैच पकड़ लिया। महिला का आत्मविश्वास और पिता पुत्री की समझदारी लोगों को खूब भा रही है। भारतीयों की जुगाड़ के किस्से अक्सर चर्चा पे रहते हैं और ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। ट्रेन में सीट ना मिलने पर एक यात्री ने आराम से सोने का अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने सीट के नीचे रस्सियों की मदद से झूले जैसा अस्थायी बिस्तर तैयार कर लिया और उसी पर आराम से सो भी गया। इस अनोखे जुगाड़ को देखकर आसपास बैठे यात्री भी हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यस्त सड़कों पर अक्सर लोग अपनी जल्दी में दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन इस वीडियो ने मानवता की खूबसूरत तस्वीर पेश की है। सड़क पार करने की कोशिश कर रहे एक कुत्ते का एक पैर नहीं था, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी एक शख्स आगे आया और उसने ट्रैफिक को रोककर कुत्ते को सुरक्षित सड़क पार कराई। इस संवेदनशील और दयालु व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब सराहा भी जा रहा है। मासूमियत से भरी ये प्यारी बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। उसकी चंचल हरकतें, खिलखिलाती हंसी और मासूम चेहरे के भाव हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। कभी वो दौड़ते हुए शरारत करती नजर आती है तो कभी अचानक चौंकने की एक्टिंग कर लोगों को हंसा देती है। उसकी एक एक अदा से बच्चों की सादगी और खुशी झलकती है। यही वजह है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग इसे बार बार देखना पसंद भी कर रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee House and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Good news today is really good. In this case, there are no news of the news and the news.
8: दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल और चली तेज आंधी। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जोजिला टनल में हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू। अब साल के 365 दिन खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की ये राह। फरवरी 2028 तक मुसाफिरों के लिए सुरंग खोलने का लक्ष्य। अहमदाबाद में राजस्थान के अर्जुन परमार ने किया कमाल। विश्व योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 78 देशों के खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे। पंद्रह जून को नैनीताल के कैंची धाम में लगेगा आस्था का मेला। बाबा नीम करोली महाराज के पावन धाम में मनाया जाएगा स्थापना दिवस। 1,00,000 से अधिक भक्तों के आने का अनुमान। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू। मुंबई में लाल बादशाह राजा की प्रतिमा बनाने की शुरुआत। आज हुई चरणों की पूजा।

0: ढाबा आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात सफर की। सफर जो अब शुरू हो चुका है, एक सफर जो लाखों करोड़ों जिंदगियों को आसान बनाएगा, सफर जो हमारे देश के विकास की रफ्तार को पंख लगाएगा, एक सफर जिसे जोड़ा पटरी पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों ने, दूसरा वो सफर जिसके दो किनारों को एक कर दिया गया है एक सुरंग की वजह से। एक तरफ है जम्मू को कश्मीर से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन, जिसने 10 से 12 घंटों के मुश्किल सफर को अब 5 घंटों में समेट दिया है। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ रही है, सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंख लगा रही है, सेब और खुबानी के व्यापारियों के लिए राहत का पैगाम ला रही है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस जम्मू कश्मीर के इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। वहीं आज दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी वॉक थ्रू भी मिल गया है। इतिहास रचते हुए जोजिला टनल ने अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टान की दीवार को तोड़ दिया। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर किया। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मेनमार्ग आपस में जुड़ गए हैं। आज गुड न्यूज टुडे आपको न केवल वंदे भारत के जरिए जम्मू टू श्रीनगर के सफर पर लिए चलेगा, बल्कि जोजिला के रास्ते आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर से सीधे लद्दाख, और वो भी 15 मिनट में।
1: इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। आइए लिए चलते हैं।

तो मैं इस समय जोजिला सुरंग के बिल्कुल भीतर हूँ। 13 किलोमीटर का वो रास्ता जो 3 घंटे की दूरी को महज 20 मिनट में समेट देगा। देखिए लगभग ये जो सुरंग है वो पूरी तरह बनकर तैयार है, यानी इसकी सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो अंदर का ढांचा होता है सीमेंट का वो पूरी तरह से तैयार है। और अब जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल इसी इलाके पर वो विस्फोट किया गया, यहाँ से ब्रेक थ्रू पूरा हुआ, जिसके बाद अब सुरंग का आर पार का रास्ता तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो एस्केप रूट होते हैं वो तैयार किए जाएंगे, वेंटिलेशन पॉइंट तैयार किए जाएंगे। यानी ये जरूर माना जा सकता है कि संभवतः 12 से 18 महीनों में जोजिला की ये सुरंग आम जनता के यातायात के लिए खोल दिया जाए, साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी इससे मजबूती मिलेगी। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, द्रास यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूँ लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद। और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया, जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहाना आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाई गई, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल की बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांधरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है, जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद 12 महीने खुला रहेगा। चलिए लद्दाख हो गया, अब कश्मीर चलते हैं।

0: और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका दरअसल गांदरबल में है, अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी। सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्व की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी तैयार होगी। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जोजिला टनल के बाहर मनीष भिदुरी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: दरअसल हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसमान हुआ करते हैं और जोजिला टनल इसकी मिसाल है। चुनौतियों को लांघ करके से पहाड़ तोड़े जाते हैं, उसका उदाहरण है ये टनल जो भारत ने दुनिया के सामने आज मिसाल पेश की है। आज सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का रहा किरा आसान हो गई है। ये सुरंग लद्दाख को पूरे साल जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करेगी। ये सुरंग पर्यटन, कारोबार और सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

0: हिंदुस्तान का गौरव है ये जोजिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रिगर दबाया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया। आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी लंबी सुरंग है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहाँ खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में एक ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में लद्दाख को देश से जोड़े रखेगा। ना तो यहाँ खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी।
1: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
0: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेट मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। मसलन ये एक ऑल वेदर सुरंग है। इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशनल टनल भी तैयार की गई है। सुरंग में हर 750 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए दो हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है, नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत ना हो इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के मीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट के लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। लद्दाख से मीर फरीद और आशुतोष मिश्रा के साथ विला रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जैसे जॉर्जिया ने कश्मीर और लद्दाख की दूरी को कम किया है, वैसे ही वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर की राह को आसान बना दिया है। कभी जिस सफर में 10 से 12 घंटे का समय लगा करता था, अब वो दूरी बस 5 घंटे में सिमट गई है। पिछले 1.25 महीने से ये ट्रेन कश्मीर की पटरी पर खूब दौड़ रही है। जितनी खुशी सैलानियों में है, उतने ही खुश कश्मीर के लोग भी हैं। और इसी खुशी को थोड़ा करीब से देखने और आपको भी इसमें शामिल करने के लिए गुड न्यूज़ टुडे ने जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत का सफर किया है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, कटरा, रियासी और बनिहाल के रास्ते चिनाब ब्रिज की ऊंचाइयों से गुजरकर श्रीनगर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकलने को तैयार है और इसी के साथ आज सफर पर निकला है गुड न्यूज टुडे। दोपहर के 1 बजे थे और जम्मू तवी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी में अब कुछ ही मिनट बचे थे।
1: आज हम निकले हैं श्रीनगर की ओर जम्मू से। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और यहां पर श्रीनगर जाने वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो निकलने वाली है कुछ ही देर में। और अब जम्मू से श्रीनगर जाना जो है काफ़ी आसान हो गया है। एक ऐसा भी समय था जब जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ही लोगों को जाना पड़ता था और कई बार जब मौसम खराब होता है तो हिमपात भी होता है, कभी जब सर्दियों का समय हो या अगर बारिश हो तो वहां पर भूस्खलन भी होता है। इसके कारण जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई घंटों तक फंसे भी रहते हैं। लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल हो गया है, 5 घंटे से भी कम समय में लोग जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं या श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। ये संभव हुआ है वंदे भारत ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन सेवा जो है सीधा जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ था। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो पहली ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई थी और फिर यहीं से ये ट्रेन सेवा अब शुरू हो चुकी है। आज हम इसी ट्रेन में सफर करेंगे और आपको हम पूरे इस रूट की जो है जानकारी देंगे कि ये जो जम्मू से श्रीनगर का रेल मार्ग है कितना मनमोहक मार्ग है और रास्ते में पहाड़ियां देख सकते हैं आप और सुंदर नजारे हैं प्रकृति के और जम्मू से श्रीनगर जाना काफी सरल है क्योंकि ट्रेन जल्दी निकलने वाली है। हम भी इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन ज्यादा समय के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। हम भी अपना सामान उठाते हैं और अब चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सुहाने सफर के लिए सीधा कश्मीर घाटी हम जा रहे हैं श्रीनगर इसी वंदे भारत ट्रेन में, चलिए मेरे साथ।
0: आपको बता दें वैसे तो श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत की शुरुआत जून 2025 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस साल 30 अप्रैल से वंदे भारत का सफर जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। कभी जम्मू से श्रीनगर तक के जिस सफर में पूरा दिन लग जाता था अब वो सफर 5 घंटों से भी कम समय में तय हो जाता है। आज इसी सफर पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। विस्तृत सिक्योरिटी चेक के बाद आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए रवाना हो गई।
1: तो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है यहां से रवाना हो चुकी है और ठीक 1:30 पर ये ट्रेन जो है यहां जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन यहां से दौड़ पड़ी है। हालांकि इस ट्रेन का समय था 1:20, लेकिन 10 मिनट ये देरी से निकली है। और जो ये वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, इसकी खास बात यही है कि 5 घंटे से भी कम अवधि में ये आपको श्रीनगर पहुंचा देगी, यानी कि मात्र 4:50 में ये सफर होने जा रहा है। हम भी इसी ट्रेन में सवार हैं।
0: आपको बता दें हर हफ्ते 6 दिन 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू से श्रीनगर का सफर तय करती है। इस सफर में 5 घंटे का समय लगता है। एक ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना होकर सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचती है, फिर दोपहर 2 बजे श्रीनगर से रवाना होकर शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचती है, जबकि दूसरी ट्रेन दोपहर 1:20 पर जम्मू से रवाना होकर शाम 6:05 पर श्रीनगर पहुंचती है। डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलकर दोपहर 12:45 पर जम्मू तवी पहुंचती है। हमारा सफर जारी था। जम्मू से निकलने के बाद वंदे भारत का अगला स्टॉप उधमपुर था। यात्री इस आरामदायक सफर में शानदार नजारों का लुत्फ उठा रहे थे।
2: पर जो यात्री हैं, कुछ लोग अभी ट्रेन में अपनी सीट पर जा रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम?
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है।
2: पारुल शर्मा कहाँ के रहने वाले?
3: मैं सर जम्मू से हूँ।
2: अच्छा, तो आप कश्मीर में काम करते हैं?
3: नहीं सर, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ।
2: घूमने के लिए जा रहे हैं?
3: यस यस।
2: कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका इस ट्रेन यात्रा का?
3: सर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने रेलवे मंत्रालय का जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो क्योंकि देखिए जैसे लोग पहले जाते थे तो काफी एक तो समय लगता था दूसरा कहीं जो रास्ता है पुराना, जो बसेस जहाँ से जाती हैं, थोड़ा हिली,
2: श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग,
3: जी जी जी जी, हिली एरिया, थोड़ा स्टोन वगैरह गिरते थे, एक तो वो भी सुरक्षित है कि गाड़ी पे कोई रिस्क नहीं है कि स्टोन वगैरह गिरने का, और ये है कि इससे यात्रा, इससे जो है मेरे को लगता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जम्मू कश्मीर में।
2: अच्छा, आपको लगता है इससे जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा?
3: हाँ जी, बढ़ावा मिलेगा।
2: लगातार यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उधमपुर जो है रेलवे स्टेशन आ रहा है, उधमपुर में ये जो ट्रेन है 2 मिनट के लिए रुकने वाली है। इस समय जो यात्री हैं वो अपना भोजन कर रहे हैं। जी आप बताइए आपका नाम?
4: शायान।
2: कहाँ के रहने वाले?
4: रामपुर के। रामपुर, रामपुर यूपी,
2: उत्तर प्रदेश।
4: जी।
2: कश्मीर घूमने जा रहे हैं?
4: जी जी, घूमने जा
2: रहे। पहली बार जा रहे हैं? पहले भी जा चुके?
4: नहीं, जा चुके।
2: पहले भी जा चुके, तो इस बार तो अनुभव अलग है। वंदे भारत ट्रेन से जा रहे हैं?
4: फैमिली भी है साथ में। फैमिली भी है साथ में।
2: अच्छा, परिवार के साथ है, तो कैसा अनुभव इस बार?
4: बढ़िया।
2: तो आपको क्या लगता है, जो ट्रेन अब शुरू हुई है जम्मू से श्रीनगर के बीच में, इससे अब काफी सुविधा हो रही है,
4: लोगों को काफी सहूलत मिल रही है,
2: कैसा अनुभव है अभी तक आपका इस ट्रेन में?
5: अभी तो अच्छा ही चल रहा है।
2: अच्छा। तो भोजन कैसा है?
4: बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है।
2: भोजन बढ़िया है,
4: कोई कमी नहीं है।
2: और इस रेल मार्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, जो कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है, चंद्रभागा नदी पर, जिसको कि चिनाब नदी भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है और उसकी ऊंचाई जो है पेरिस के आइफल टावर से भी अधिक है, तो वो एक खासा आकर्षण है इस रेल मार्ग का। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग उस विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को देखने भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। मैडम देखिए, पहले हॉट वाटर इसमें डालेंगे, गर्म पानी, और फिर हम सूप का आनंद लेंगे। तो काफ़ी ये आकर्षक ट्रेन यात्रा है और हम इसके सहभागी बन रहे हैं इस पल के।
6: वंदे भारत ट्रेन ने जम्मू से श्रीनगर के बीच सफर को काफी हद तक सस्ता और सुविधाजनक बना दिया है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास इंतजाम किए गए हैं।
2: देखिए, ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वंदे भारत ट्रेन जो जम्मू से श्रीनगर जाती है उसमें इस प्रकार की सुविधा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह के जो ये पैनल्स हैं कई जगह पर लगे हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये जो पुश टू टॉक है इस बटन को प्रेस करना है, और आप यहाँ पर रेल इस ट्रेन में जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। अगर भगवान न करे किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है या कोई दूसरी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय आप यहाँ मतलब इस प्रकार की जो पैनल से जगह जगह लगे हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको सहायता भी मिल जाएगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, यानी कि जो फर्स्ट एड के समय जो चीज़ें लगती हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी को कोई चोट अगर लगती है तो वहाँ पर जो मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा काफ़ी संवेदनशील रहता है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन में जो है ये स्पेशलाइज कमांडोज जो हैं डिप्लॉयड रहते हैं, तैनात रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर कोच में ये तैनात रहते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ही कमांडोज हैं, इनको जो है ख़ास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये रेल मार्ग काफ़ी संवेदनशील इलाकों से गुजरता है, तो इसीलिए सुरक्षा भी एक चुनौती रहता है।
6: दरअसल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस देश के सबसे संवेदनशील इलाकों से गुजरती है। इस रेल रूट की कई जगह आतंकियों के निशाने पर रही हैं। इसीलिए भारतीय रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रेन को हाई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह ही देखती हैं। ट्रेन चलने से पहले एंटी सबोटाज टीम पूरे ट्रैक की जांच करती है। सीसीटीवी सर्विलांस, टनल्स की मॉनिटरिंग और ट्रैक का सैनिटाइजेशन होता है। ट्रेन के अंदर और पूरे रूट पर विशेष आरपीएफ कमांडो कोरस यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी की तैनाती रहती है। ब्रिज, टनल और यूएसबीआरएल रेलवे लाइन के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बल लगातार गश्त करते हैं। सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों का जायजा लेने के बीच ही हम उधमपुर पहुंच चुके थे।
2: ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अब सवारी बस देखिए चढ़ रहे हैं। ये उधमपुर है,
1: जम्मू संभाग का उधमपुर जिला और उधमपुर में ही भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। तो आप समझ सकते हैं कि उधमपुर भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह है, काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप रखा गया है, क्योंकि ये ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पर, तो इसीलिए हम तुरंत ट्रेन में वापस चले जाते हैं। ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है।
6: वंदे भारत अपनी मंजिल की तरफ फिर फर्राटा भर चुकी थी। आपको बता दें कि जम्मू तवी से श्रीनगर तक के इस सफर में रोड ट्रिप की तुलना में 5 से 7 घंटे बचते हैं। बात अगर किराए की करें तो जम्मू से श्रीनगर तक चेयर कार का किराया 855 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपए। वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ पूरे रास्ते मिलने वाला शानदार प्राकृतिक नजारा इस सफर के अनुभव को और भी खास बनाता है। इसी अनुभव का सबसे खास पड़ाव आया तब जब ट्रेन चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरी।
1: ये देखिए, चंद्रभागा नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। देखिए इसकी ऊंचाई रिवर बेड से अगर हम बात करें तो 359 मीटर है, यानी कि पेरिस के आइकॉनिक आइफिल टावर से भी ये ऊंचा रेल पुल है। और यहाँ पर आप मनमोहक दृश्य भी देखिए, ये देखिए, देखिए शानदार तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर जो तमाम जो यात्रीगण हैं वो इन तस्वीरों को अपने फोन में कैद कर रहे हैं। और वहां पर देखिए आप, ये चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, जो कि जम्मू संभाग के यहाँ रियासी जिले में ये जो नदी है इस समय इसके ऊपर जो ये पुल बना है, यही पुल जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और ये खासा आकर्षण है इस पूरे रेल मार्ग का। जब ये पुल बन रहा था, कई बार हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि बड़ी ही परिश्रम के साथ, बड़ी ही तत्परता के साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने रात दिन यहाँ पर कार्य किया। और आज देखिए कितनी शानदार ये तस्वीरें देखिए, कि नए भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल हमारे देश में है। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी यात्रीगण हैं इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण है।
6: एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इस पुल से जब ट्रेन गुजरती है तो यात्रियों को कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है।
1: भाई साहब आपने तो अपनी सीट ही मोड़ दी ब्रिज का।
5: हम तो देखने ही आए हैं यहाँ।
7: अच्छा।
5: हाँ हाँ, सिर्फ ये रिवॉल्विंग सीट को एंजॉय करने के लिए ब्रिज देखने।
8: ये जो ब्रिज बना है जो चिनाब रिवर के ऊपर, इसको हम देखने आते हैं। इससे मतलब बाय एयर जाते हैं हम, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं सिर्फ इस चीज को देखने के लिए।
1: कितनी प्रसन्नता है कि आपने इस ब्रिज को
8: देखा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
6: जम्मू तवी से चलकर पहले उधमपुर, फिर कटरा और रियासी होते हुए वंदे भारत अपने अंतिम हाल्ट बनिहाल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, नजारे और बेहतर होते जा रहे थे।
1: जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन आज दोपहर को 1:30 पर निकली थी, अब वो इस समय बनिहाल पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है और यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, 2 मिनट के लिए रुकेगी। और अगर हम इस ट्रेन सेवा की बात करें तो ये जो बनिहाल रेलवे स्टेशन है, ये आखिरी रेलवे स्टेशन होगा जम्मू संभाग का, क्योंकि बनिहाल जो है वो जम्मू संभाग के रामबन ज़िले में आता है। तो ये आखिरी ये रेलवे स्टेशन है और ये आखिरी कस्बा है जम्मू संभाग का। इसके बाद बनिहाल को पार करके फिर कश्मीर घाटी ये ट्रेन प्रवेश कर जाएगी। तो आप सीधा

0: कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इस रेल मार्ग से कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से जुड़ चुका है?
1: मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक मैं श्रीनगर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जम्मू से आई वॉज एक्साइटेड, और ये व्यू भी बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन से।
2: ट्रेन अब दक्षिण कश्मीर में प्रवेश कर चुकी थी। पहाड़ और खूबसूरत वादियों का कैनवास अब यूरोप की खूबसूरती को भी टक्कर दे रहा था। आखिरकार तय समय से कुछ पहले वंदे भारत ट्रेन अपनी अंतिम पड़ाव श्रीनगर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी।
0: इस समय लगभग 6 बज रहा है, यानी कि मात्र 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर हम पहुंच गए। जरा आप कल्पना कीजिए कि जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से हम जाते हैं, जो खासतौर पर रामबन जिले का जो स्ट्रेच है, वहां पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, पत्थर गिरते हैं। सर्दियों के समय में जब हिमपात भी होता है राजमार्ग पर कई स्थानों पर, कश्मीर घाटी में भी, जम्मू संभाग में भी, तो जो यात्री सड़क मार्ग से जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और घंटों उनको प्रतीक्षा करनी होती है। लेकिन अब इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में पहुंचा जाता है, लेकिन ये समय से पहले पहुंच चुकी है ट्रेन। मात्र 4.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुंचे हैं। इस प्रकार से नए भारत की नई तस्वीर उभर रही है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भी हमने आपको दिखाया। तो एक स्पेशल ये कार्यक्रम था, ये एक हमारी तरफ से खास ये प्रस्तुति थी आपके लिए कि जम्मू से श्रीनगर का सफर हमने वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरा किया और आपको पल पल की जानकारी दी, पूरे ट्रेन के मार्ग की, जो रेल के मार्ग की हमने आपको जानकारी दी और आपको भी अवगत कराया इस रेल मार्ग से और इस वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन का सफर है वो पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है।